0: वंदे मातरम।
1: वंदे

नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 24वीं तिथि, तदनुसार 15 सितंबर सन 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी। डॉ. जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधि मंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉ. जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है। अमेरिका के एक विश्लेषक ने नई दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को बहुत सफल बताया है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र अलग अलग विचारों वाले देशों के बीच आम सहमति बनाने की भारत की क्षमता को दर्शाता है। अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ फेलो माइकल कुगलमैन ने कहा कि ये घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता और ब्रिक्स की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। प्रतिष्ठित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू होने जा रहा है। दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन का संयुक्त उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव

0: करने में सहायता मिलेगी। मंत्रालय ने कहा है कि भारत नेपाल की सहायता करने और ऊर्जा क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को नई दिल्ली के यशो भूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि पार्टी की जीत झूठ की गूंज पर सच्चाई की जीत का साक्ष्य है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा है कि न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र मजबूत, सक्रिय और समयबद्ध है। उन्होंने न्यायपालिका में लगातार सुधार और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में कल आयोजित 6वें राम जेठमलानी स्मृति व्याख्यान में मुख्य भाषण देते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सुधार को नियमित प्रक्रिया का होना चाहिए। झारखंड में सीआईडी ने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में एक कोचिंग सेंटर संचालक संजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। रांची के रातू रोड इलाके में शिवांगन कोचिंग सेंटर चलाने वाले संजीत कुमार पर आरोप है कि उसने एजेंट के तौर पर उम्मीदवारों से परीक्षा पास कराने का वादा कर पैसे वसूले थे। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती।

नमस्कार, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदनवार। आज का चिंतन, आचार्य चाणक्य का कथन है, वन की अग्नि चंदन के वृक्ष को भी जला देती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति किसी का अहित करते समय अच्छे या बुरे व्यक्ति में अंतर नहीं करते। तात्पर्य ये कि हमें दुष्ट प्रकृति के लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वे अवसर मिलने पर सिर्फ हानि ही पहुंचा सकते हैं। आइए अब सुने भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन झरोखा के अंतर्गत। सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

सुबह 6:45 और संध्या 6:45 से सुनवाएंगे आपको कार्यक्रम संगीत सरिता। इन दिनों आप सुन रहे श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। आज 15वां भाग प्रसारित किया जाएगा। आमंत्रित कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरने, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सुबह 7 बजे से भूले बिसरे गीत 7:30 से सुनेगा हम हैं राही प्यार के। सुबह 8:15 से सुनवाएंगे त्रिवेणी, आलेख एवं स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। चित्रलोक सुनिएगा सुबह 8:30 से। सुबह 9:30 और रात्रि 9:30 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा प्रसून जोशी पर, आलेख एवं स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।

सुबह 10 बजे से सुनेगा पिटारा के अंतर्गत सेहतनामा। इसके अंतर्गत पोषण, इस विषय पर आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा भाग सुनिएगा, प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। सुबह 11 बजे रात्रि 11 बजे से रंग तरंग यादों की महफिल सुनेगा, दिन में 12:05 से सुरीला सफर दोपहर 1 बजे से सुनवाएंगे आपको। त्रिवेणी दोपहर 2 बजे से और सदाबहार नगमे प्रोग्राम का वक्त होता है दोपहर 2:30।

सखी सहेली ये कार्यक्रम सुन सकेंगे दोपहर 3 बजे से शाम 4 बजे से पिटारा के अंतर्गत सेल्युलॉइड के सितारे। इसके अंतर्गत अभिनेता कमलजीत से सविता बजाज की बातचीत सुनेगा प्रस्तुति शकुंतला पंडित की। छाया गीत का पुनर्प्रसारण होता है शाम 5 बजे से, शाम 5:30 से सुनेगा तराने नए पुराने। झरोखा सुनेगा शाम 6:30 से, शाम 6:35 से सुनवाएंगे संध्या रंजन। फौजी साथियों के लिए कार्यक्रम जयमाला प्रसारित किया जाएगा शाम 7 बजे से, शाम 7:45 से सुनेगा इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस। रात 8 बजे से आपको सुना संतोष जोशी का चितलोक सुनेगा रात्रि 8:15 से, आपके लिए सुनवाएंगे आपको रात 9 बजे से।

छाया गीत ये कार्यक्रम सुन सकेंगे आप रात 10 बजे से। आलेख एवं स्वर ममता सिंह का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। ढलती जाए रात 10:30 से और रंग तरंग सुनिएगा रात 11 बजे से।

अपनी राजसभा में अंगद की चेतावनी और चुनौती सुनकर रावण के क्रोध की सीमा न रही। उसे लगा कि ये मूर्ख वानर ये नहीं जानता कि कुंभकर्ण जैसा वीर उसका भाई और इंद्र को परास्त करने वाला योद्धा मेघनाथ उसका पुत्र है। वानरों की सहायता से समुद्र पर सेतु बांध लेने से राम की किस वीरता का परिचय मिलता है। समुद्र तो पक्षी भी लांग जाते हैं। अपने हाथों अपना सिर काटकर शिव के समक्ष अग्नि में होम कर देने वाला वीर अन्यत्र कौन है? रावण अपने बल और पराक्रम की गाथा सुनाते हुए कहता है, मेरी भुजाओं के बल रूपी समुद्र में कितने ही देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। अब कौन ऐसा शूरवीर है जो इनकी अथाह गहराई को पार कर सके? यदि तेरा स्वामी इतना ही बलशाली है तो फिर दूत क्यों कर भेजता है? शत्रु की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाते उसे लज्जा का अनुभव नहीं होता? इन भुजाओं को देख, जिनसे अपना सिर काटकर मैंने होम कर दिया था। अंगद बोले, सिर काटकर होम कर देना एक मायावी द्वारा रचित इंद्रजाल का कर्तव्य है।

0: श्रोताओं नमस्कार। स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने। आइए अब सुनते हैं इस श्रृंखला की 15वीं और आखिरी कड़ी।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना श्रृंखला के इस अंतिम कड़ी में आप सभी का स्वागत है और स्वागत है सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे जी का।
2: नमस्ते
1: शकुंतला जी। इस अंतिम कड़ी में हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो संगीत आज के दौर में गाया जाता है, जो संगीत प्रचलित है, उसमें ऐसे माहौल में शास्त्रीय संगीत का घरानेदार जो संगीत है उसका क्या भविष्य आप देखती हैं?
2: आज के आधुनिक युगों में संगीत की अनेक शैलियों का विकास होने के बावजूद भी
1: जी,
2: घराना परंपरा का महत्व आज भी अक्षुण्य और अखंड बना हुआ है। एक संगीत घराना यानी सिर्फ गायन की एक शैली नहीं बल्कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की समृद्ध सांगीतिक परंपरा, सौंदर्य दृष्टि और गुरु शिष्य परंपरा का जीवन स्वरूप है
1: जी।
2: है ना? प्रत्येक घराना अपनी विशिष्ट गायकी, स्वर विन्यास, राग विस्तार तथा सौंदर्य बोध के कारण अपनी अलग पहचान रखता है। ये अलग पहचान रखते हुए एक कलाकार विभिन्न घरानों का अध्ययन और श्रवण अवश्य कर सकता है, वहाँ कोई रोकता नहीं है, जिससे उसका संगीत दृष्टिकोण व्यापक होता है। मान लिया, किंतु किसी एक घराने की परंपरा, एक ही घराने की परंपरा में विविध और विधिक्त शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसकी गायकी में विशिष्टता, शास्त्रीयता और एक स्वतंत्र सांगीतिक व्यक्तित्व विकसित होता है। यही घराने की वास्तविक देन है, ऐसा नहीं लगता आपको?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: आज आवश्यकता है इस बात की कि घराना परंपरा का संरक्षण और संवर्धन करते हुए उसे वैश्विक स्तर पर नई पीढ़ी तक पहुँचाना, ये हमारा काम है। इससे भारतीय शास्त्रीय संगीत की समृद्ध विरासत सुरक्षित रहेगी, क्योंकि हम परंपरा में फिर एक बार जा रहे हैं तथा विश्व भर में उसकी प्रतिष्ठा और अधिक सुदृढ़ होगी ही होगी, क्योंकि आज किराना घराना विश्व भर फैला हुआ है
1: जी।
2: इसका कारण क्या है? एक घराने में जो गायक पैदा हुए ये प्रतिभावान थे
1: जी,
2: लेकिन उसके साथ भी हर एक पीढ़ी में एक एक गायक कलाकार ऐसे बन गए कि ये परंपरा और उसकी जो गान शैली वो अच्छी तरह से आगे लेके जा सके। विभिन्न घरानों का अध्ययन कलाकार के लिए उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है, किंतु किसी एक घराने की परंपरा और साधना अगर आप करते हैं तो उसकी गायकी में एक विशिष्ट शैली, अनुशासन और अलग पहचान विकसित होती है और यही घराना परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता है, ऐसे मुझे लगता है। जयंत जी, हमारे किराना घराने के महान आचार्य और कलाकारों ने अपनी साधना तथा संगीत के माध्यम से इस परंपरा को विश्व भर प्रतिष्ठित किया है
1: जी।
2: आज हमारा भी दायित्व है कि हम इस अमूल्य सांगीतिक विरासत का सम्मान करें, उसका संरक्षण करें, नई पीढ़ी तक उसे पहुंचाएं, ताकि भारतीय शास्त्रीय संगीत की ये गौरवशाली परंपरा आने वाले समय में इसी प्रकार सुरों की मधुरता के साथ निरंतर प्रवाहित होती रही
1: जी।
2: इन्हीं शब्दों के साथ मुझे लगता है आज के इस श्रृंखला का हम विराम
1: समापन करेंगे
2: और
1: जैसे संगीत की बैठकों में अंतिम राग गाया जाता है वो भैरवी होता है, तो क्या हम
2: अच्छा,
1: भैरवी की कोई बंदी सुनेंगे?
2: बहुत ही फेमस ठुमरी दादरा जो समझो,
1: हाँ।
2: बेगम अख्तर, बाद में शोभा गुरुटू, बहुत सारे ठुमरी गायकों ने गाई है
1: जी,
2: और छोटी सी गायिका मैं भी हूँ, मुझे भी लगाए गाकर लोगों तक पहुँचाए।
1: क्या बात,
2: हमारी अटरिया
1: स्वागत है।
2: चढ़ जाओ, पाई गंगा अजरे तमरे मध्यम।

0: शकुंतला जी, इसी के साथ हमारी श्रृंखला का आज यहाँ समापन हो रहा है और विविध भारती की ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से और संगीत सरिता के सभी सुनने वालों की ओर से मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही आपको तबला संगत कर रहे थे रोहिदास परब जी, आपका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। और हारमोनियम पर संगति कर रहे थे ऋषित होनावरकर जी, आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा, किराना घराना, आज आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 15वीं और आखिरी कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने, तबला संगत रोहिदास परब, हारमोनियम पर संगत दी ऋषित होनावरकर ने। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। श्रोताओं, आपको ये श्रृंखला कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया हमारे फेसबुक पेज www.facebook.com/vbsmumbai पर जरूर हमें बताएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं सुरैया की आवाज़ में प्यार की जीत फिल्म के गाने के साथ। राजेंद्र कृष्ण हैं गीतकार और संगीतकार हैं हुसनलाल भगतराम।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं।
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए शकील बदायनी का लिखा और नौशाद का संगीतबद्ध किया गाना। आवाजें हैं शमशाद बेगम और मुकेश की। फिल्म का नाम अनोखी यादा।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
1: श्रोताओ लीजिए अब सुनिए अंदाज फिल्म से ये गाना मुकेश की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी हैं गीतकार और संगीतकार हैं नौशाद।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। वक्त हो गया है एक छोटे से अंतराल का, तुरंत हाजिर होते हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए किशोर कुमार की आवाज में जिद्दी फिल्म का गाना।

0: सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: भूले बिसरे गीत इस कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं। चंद्रलेखा फिल्म का गाना, इसे गाया है उमा देवी और मोती ने, भरत व्यास ने लिखा इसे और संगीत से संवारा एस राजेश्वर राव ने।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: भूले बिसे गीत, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश के सुरीली धड़कन से। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश शमशाद बेगम, मुकेश और साथियों की आवाजों में मेला फिल्म से शकील बदायनी हैं गीतकार और संगीतकार हैं नौशाद।

0: से पर्वत पर आकर, खेतों से पर्वत पर आकर जीवन जोत गाले, जीवन जोत गाले। दुनिया है दो दिन का मेला, कुछ रोले कुछ गाले। दुनिया है दो दिन का मेला, कुछ रोले कुछ गाले।
1: इस गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न हुआ। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम हैं राही प्यार के। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन प्रस्तुत है कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में मैं चुप रहूंगी। इस फिल्म के गाने के साथ राजेंद्र कृष्ण हैं, गीतकार और संगीतकार हैं चित्रगुप्त।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
3: मैं निकला ओ गडले,
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: श्रोताओ, हमारी अगली पेशकश लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में तुमसे अच्छा कौन है। इस फिल्म से हजरत जयपुरी हैं, गीतकार और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

लीजिए सुनिए मनहर उदास और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में गुलशन बावरा का लिखा और कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया गाना। फिल्म का नाम है विश्वास।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है हम हैं राही प्यार के। लीजिए अब सुनिए किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में महल फिल्म का गाना। आनंद बख्शी हैं गीतकार और संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
2: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
2: बिल्कुल।
0: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। लीजिए अब सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में एक फूल दो माली फिल्म का गाना। प्रेम धवन हैं गीतकार और संगीतकार हैं रवि।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने कहा 2000 रुपए तक के यूपीआई भुगतान पर बैंक कोई शुल्क नहीं लेंगे। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 का आज से गुजरात के गांधीनगर में शुभारंभ। भारत और कनाडा के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर अगले दौर की बातचीत शुरू। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को मजबूत और कारगर बताया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की। और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने कहा है कि बैंक 2000 रुपए तक के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई लेनदेन और रूपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने यूपीआई लेनदेन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। एक रिपोर्ट।
2: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह नियम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में किए जाने वाले यूपीआई लेनदेन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। अगर भविष्य में कभी डिजिटल लेनदेन पर कोई शुल्क जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाया भी गया तो वह केवल दुकानदारों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं। हालांकि ये शुल्क भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड लेनदेन पर लागू MDR से काफी कम होंगे। सरकार का यह स्पष्टीकरण भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में हालिया संशोधन के बाद यूपीआई लेनदेन पर शुल्क की आशंकाओं के बीच आया है। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रतिष्ठित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू होने जा रहा है। दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल संयुक्त रूप से करेंगे। सम्मेलन का विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसमें 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक हितधारक भाग लेंगे।
3: दो दिवसीय वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम में विश्व भर से पर्यावरण विशेषज्ञ, नीति निर्माता, उद्योजक और शोधकर्ताओं हिस्सा ले रहे हैं। इस फोरम का मुख्य उद्देश्य पुरानी सामग्रियों और उत्पादों के पुनरुपयोग, रिसाइकलिंग और पुनर्चक्रण के माध्यम से सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। इस आयोजन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग, हरित ऊर्जा, रोजगार, वित्त और स्टार्टअप इकोसिस्टम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर 4 प्लेनरी और 16 विषय आधारित सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो में 125 से अधिक प्रदर्शक अपने व्यावहारिक सर्कुलर समाधानों का भी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद 17 और 18 सितंबर को दुनिया भर में 80 विशेष एक्सीलेटर सत्र आयोजित किए जाएंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: भारत और कनाडा ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए नई दिल्ली

0: प्रमुख आयात में दालें, मोती और अर्धकीमती पत्थर, कोयला, उर्वरक, कागज और कच्चा तेल शामिल हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेतकिन ने भारत और दक्षिण अमरीका के प्रमुख व्यापार समूह मरकोसुर के बीच तरजीही व्यापार समझौते के विस्तार के लिए बातचीत शुरू करने की घोषणा की है। दोनों मंत्रियों ने वर्तमान समझौते में आपसी हित के क्षेत्रों को शामिल करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को सुदृढ़, सक्रिय, समयबद्ध और बेहद कारगर बताया है। कल नई दिल्ली में राम जेठमलानी स्मृति व्याख्यान के 6वें संस्करण में उन्होंने ये बात कही।
4: Given a choice, a judicial officer,
5: अगर किसी न्यायिक अधिकारी को अंतरिम आदेश देने पर, मामले की सुनवाई टालने पर या अंतिम आदेश पारित करने पर शिकायत का सामना करना पड़े तो हर चरण में उसके खिलाफ शिकायत आ सकती है। यह गंभीर बहस का विषय है कि क्या ऐसी हर शिकायत को किसी सार्वजनिक मंच या वेबसाइट पर रखा जाना चाहिए या फिर इसके लिए न्यायपालिका के भीतर ही एक मजबूत व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था में पूरी निष्पक्षता और बिना किसी पूर्वाग्रह के शिकायतों पर विचार किया जाना चाहिए।
1: मुख्य न्यायाधीश ने न्यायपालिका में निरंतर सुधार और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान के लोगों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वे डबल इंजन सरकार के अंतर्गत सुशासन और विकास की नीतियों का पूरा समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोगों के बीच प्रेम और सद्भावना बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे हृदय में प्रेम, सौहार्द और सद्भावना का विकास हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद यह प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, उनके सुरक्षाकर्मी डिनो मौर्या, रोहन रॉय, सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती और पुलिस अधिकारियों सचिन वाजे तथा परमवीर सिंह सहित कई लोगों के नाम हैं। झारखंड में सीआईडी ने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में एक कोचिंग सेंटर संचालक संजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। रांची के रातू रोड इलाके में शिवांगन कोचिंग सेंटर चलाने वाले संजीत कुमार पर आरोप है कि उसने एजेंट के तौर पर उम्मीदवारों से परीक्षा पास कराने का वायदा कर पैसे वसूले थे। पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर गहरा गया है। यमन के ईरान समर्थित हाउसी विद्रोहियों ने दक्षिणी सऊदी अरब के एक सैन्य हवाई अड्डे पर कई

0: टाइले और ड्रोन दागे हैं। सऊदी गठबंधन के अनुसार इस हमले में 13 नागरिक घायल हुए हैं, जिसके बाद 4 पड़ोसी शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दूसरी तरफ हाउसी विद्रोहियों ने लाल सागर के पास देश के पश्चिमी तट पर अपनी स्थिति मजबूत करना शुरू कर दिया है। इस बढ़ते तनाव के कारण खाड़ी देशों ने ईरान के साथ होने वाली बातचीत को फिलहाल टाल दिया है। जानकारों का मानना है कि यदि ये टकराव और बढ़ा तो लाल सागर के रास्ते होने वाली दुनिया की तेल आपूर्ति बड़ी मुसीबत में पड़ सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने पर सहमत हो गए हैं, हालांकि उन्होंने इसे लागू कराने से जुड़ी जानकारी नहीं दी। सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन रूस के ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं करने और रूस भी ऐसा ही करने पर सहमत हुआ है। हालांकि पोस्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन ऊर्जा प्रतिष्ठानों को इस समझौते के दायरे में रखा जाएगा या क्या दोनों पक्षों ने कोई शर्त रखी है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले डाक से मतदान प्रतिबंधित करने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना को खारिज कर दिया है। न्यायाधीशों ने संघीय न्यायाधीश के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें डाक सेवा को डाक मतपत्रों से जुड़े नए नियमों को लागू करने से अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। न्यायाधीश सैमुअल एलिटो और क्लेरेंस थॉमस ने संक्षिप्त आदेश से असहमति जताई। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी दिनभर ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा और राजस्थान में बिजली चमकने की आशंका है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। तीसरा और अंतिम मुकाबला दिल्ली में ही बृहस्पतिवार को होगा। भारत ने पहले T20 मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। एशियाई ट्रैप चैंपियन निशानेबाज सबीरा हारिस के नेतृत्व में 20 सदस्यीय भारतीय दल आज से इटली में ISSF जूनियर विश्व कप शॉटगन में भाग लेगा। प्रतियोगिता का समापन 19 सितंबर को होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद प्रियंका। आज अधिकांश अखबारों ने रक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट को प्रमुखता से दिया है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन ने घटाई सैन्य तैनाती, देश फिर से चौकस। दैनिक भास्कर ने लिखा है, रिपोर्ट में तकनीकी बदलाव का रोड मैप बताया गया। ऑपरेशन सिंदूर से सबक, ड्रोन के 9 फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट शुरू होंगे। अमर उजाला ने भारत चीन में भरोसा और बढ़ा शीर्षक से चीन के विदेश मंत्री का बयान दिया है, सुधार और नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहे रिश्ते। नवभारत टाइम्स की खबर है, साइबर ठगी के आरोप पर बैंक खाते से लेन देन पर 60 दिन तक लग सकेगी रोक, RBI ला रहा नियम। हिंदुस्तान के आर्थिक पन्ने की खबर है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने करोड़ों अंशधारकों को दी बड़ी राहत, PF की सूचनाएं अब WhatsApp पर मिलेंगी। EPFO पोर्टल या उमंग ऐप पर बार बार लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को आसान हिंदी में समझ सकेंगे लोग, कल हिंदी दिवस पर न्यायालय की नई पहल को दैनिक जागरण सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। लोक सत्य ने लिखा है, जन सूचना सेवा में सरल हिंदी सारांश के साथ ऑडियो वीडियो बुलेटिन भी मिलेंगे। जनसत्ता की यह खबर ध्यान खींचती है, लंदन में टेम्स नदी के तट पर पहली बार हुई गंगा आरती, हजारों लोग शामिल हुए, वाराणसी के घाटों जैसी दिखी झलक।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, सरकार ने कहा 2000 रुपए तक के UPI भुगतान पर बैंक कोई शुल्क नहीं लेंगे। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 का आज से गुजरात के गांधीनगर में शुभारंभ, भारत और कनाडा के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर अगले दौर की बातचीत शुरू। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए

सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को मजबूत और कारगर बताया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

दुनिया बहुत तेजी से बदलती चली जा रही है। एक जमाने में इंटरनेट इतना सुलभ नहीं था, आज इंटरनेट की स्पीड इतनी तेज है कि लोग अपने मोबाइल फोन्स पर तरह तरह का वीडियो कंटेंट भी देख सकते हैं और बहुत ही उन्नत किस्म के वीडियो गेम्स भी खेलते हैं, जो बुजुर्ग पीढ़ी है उसके लिए चुनौतियां बढ़ जाती हैं और तब सामने आना चाहिए युवा पीढ़ी को। हमें अपने परिवार और आस पड़ोस के बुजुर्गों को टेक्नोलॉजी सिखानी चाहिए। मुमकिन है कि हमारे आसपास के बुजुर्ग टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए तैयार ना हों या फिर उसे अपनाने से डरते या सकुचाते हों। हमें आगे बढ़कर उन्हें टेक्नोलॉजी सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

0: गजब भयार भाई हाय हाय हाय, चेला गुरु को चूना लगाए, जनता को ज्योतिषी उल्लू बनाए, और दूध वाला दूध में पानी मिलाए।
1: जिसको ना झाड़ू पकड़ना भी आए, वो बेटा अपना ही झंडा उड़ाए। आदमी भी कैसा काजी है हाय, मौका मिले तो भगवान पेट खाए।
0: मौका मिले तो भगवान पेट खाए। हाय हाय हाय हाय, कुछ लोगों का धंधा हुआ है
1: क्या?
0: मंदिर में जूते

आम धारणा ये है कि मोबाइल फोन्स अमूमन युवा पीढ़ी या आगे की पीढ़ी के काम के उपकरण हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग रिटायर हो चुके हैं, जो उम्र के एक ऐसे दौर पर हैं जब उनके पास बहुत सारा खाली समय है, उनके लिए मोबाइल बहुत उपयोगी बन सकते हैं। बच्चे जब दूर देश चले गए हों, दूसरे शहरों में रह रहे हों, तो वीडियो कॉल करके उन्हें देखा जा सकता है, उनसे बातें की जा सकती हैं। सवाल ये है कि हम अपने बुजुर्गों को ये सब बताएं और रोज धीरज के साथ उन्हें सिखाएं। मुमकिन है कि

एक हफ्ते, दो हफ्ते या एक महीने में वो इस टेक्नोलॉजी में माहिर हो जाएंगे और उसके बाद देखिएगा उनके चेहरे की चमक क्या कहती है।

हर चीज के दो पहलू होते हैं, उसी तरह टेक्नोलॉजी के भी दो पहलू हैं, एक अच्छा और एक बुरा। जहां एक तरफ युवा मोबाइल फोन और इंटरनेट की लत के शिकार होते चले जा रहे हैं, अपना जरूरत से ज्यादा वक्त वो इस स्क्रीन के सामने बिताते हैं, वहीं दूसरी तरफ इसके संयमित इस्तेमाल से सबका भला हो सकता है। आज जहां किताबें बहुत ज्यादा मात्रा में खरीदना मुश्किल बनता जा रहा है, स्टूडेंट्स के लिए एक ही विषय की बहुत सारी मोटी मोटी किताबें लेकर यहां से वहां जाना मुश्किल हो सकता है, ऐसे में टेक्नोलॉजी काम आती है।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन चित्रलोक। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं अग्निपथ फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया अजय ने। अमिताभ भट्टाचार्य हैं गीतकार, संगीतकार हैं अजय अतुल।

0: रस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए रेखा भारद्वाज की आवाज में डेर इश्किया फिल्म का गाना। इस गाने में नृत्य के बोल हैं पंडित बिरजू महाराज के स्वर में, गुलजार के हैं बोल और विशाल भारद्वाज ने बनाई है तर्ज।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए सुनिए नीलेश मिश्रा का लिखा और प्रीतम का संगीतबद्ध किया गाना। आवाज है कार्तिक की, फिल्म का नाम वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई।

दोस्तों, आज है दूरदर्शन दिवस, यानी आज के ही दिन 15 सितंबर 1959 को भारत में दूरदर्शन की प्रायोगिक सेवा का शुभारंभ दिल्ली में हुआ था। दूरदर्शन ने मनोरंजन के साथ शिक्षा, सूचना और सामाजिक जागरूकता के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कृषि संबंधी कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों तक उपयोगी जानकारी पहुंचाई गई, शैक्षिक कार्यक्रमों ने विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान किया और स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा सामाजिक कुरीतियों जैसे विषयों पर जन जागरूकता उत्पन्न की गई। स्पष्टतः राष्ट्र निर्माण में दूरदर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आप सभी को दूरदर्शन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए चित्रलोक कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको सुनवा रहे हैं निकिता गांधी की आवाज में बागी 3 फिल्म का ये गाना।

दोस्तों, आज है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। दोस्तों, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये तो आप जानते ही होंगे। हमारा लोकतंत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित है, और ये मानवतावादी सिद्धांत ही तो हमें विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाते हैं, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूल्य भी सम्मिलित हैं। आज का दिन पूरे विश्व के लोकतंत्रों के लिए और विशेषकर प्रत्येक भारतवासी के लिए गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान करता है। तो चलिए लोकतंत्र की इस बात को आगे बढ़ाते हुए और चित्रलोक कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको सुनवा रहे हैं एक प्यारा सा गाना। राघव सच्चर ने गाया इसे, फिर है फिल्म का नाम, आदित्य धर ने लिखा इसे और संगीत से संवारा है राघव सच्चर ने। गाने के बोल हैं, लव इज ऑल आई गॉट।

आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम वेद भारती राष्ट्रीय सेवा देश के सुरीली धड़कन से। वक्त हो गया है एक छोटे से अंतराल का, तुरंत हाजिर होते हैं।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए सुनिए श्रेया घोषाल और जावेद बशीर की आवाजों में भाग मिल्खा भाग फिल्म का गाना। प्रसून जोशी हैं गीतकार और संगीतकार हैं शंकर एहसान लॉय।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध।

दोस्तों, भारत में प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाया जाता है। ये दिन भारत के महान अभियंता और राष्ट्र निर्माता भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। विश्वेश्वरैया जी ने अपने अभियंत्रण कौशल, दूरदृष्टि और अनुशासन से आधुनिक भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अभियंता दिवस उनके योगदान को स्मरण करने के साथ साथ देश के सभी अभियंताओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर है। तो चलिए चित्रलोक कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और प्रेम रतन धन पायो, इसका शीर्षक गीत आपको सुनवा रहे हैं पलक मुछाल और साथियों की आवाजों में।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
2: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती

0: है मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी। अम्बिका
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: श्रोताओं, इस संदेश से ठीक पहले आपने सुना था बेशरम फिल्म का गाना अमितोष नागपाल, सुजीत शेट्टी और रणवीर कपूर की आवाजों में। अब आपको सुनवा रहे हैं एक पारंपरिक रचना जिसे गाया है कनिष्क सेठ और कविता सेठ ने, संगीतबद्ध भी किया है कनिष्क सेठ और कविता सेठ ने ही। फिल्म का नाम है जुग जुग जियो।

और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश पद्मावत फिल्म से आवाजें श्रेया घोषाल और सुरू खान की, एम तुराज के बोल और संजय लीला भंसाली की है तर्ज़।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है कि शोधन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोलो रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: वाह,

सुनने वालों को नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे गीतकार की जो विज्ञापनों की दुनिया से फिल्मों की दुनिया में आया और जिसके गाने सुनना आपको

जी हाँ, आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें कर रहे हैं एक ऐसे गीतकार की जिसके शब्दों में लालित्य है, कविता है और है जज्बात का समंदर। मैं

प्रसून जोशी का जन्म 16 सितंबर 1971 को हुआ था। बचपन से ही उन्हें लिखने पढ़ने का शौक रहा और आगे चलकर उन्होंने दिल्ली के एक संस्थान से एमबीए किया। आगे चलकर वो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करने लगे। लिखने का शौक तब भी जारी रहा और उनकी कॉपीराइटिंग में लिखने का वो शौक झलकता रहा। तब तक प्रसून जोशी की किताब भी छप चुकी थी। इस किताब का नाम था मैं और वो। जब ये किताब छपकर आई तब प्रसून की उम्र केवल 17 साल थी। कई बरस तक प्रसून एडवर्टाइजिंग की दुनिया में सक्रिय रहे। उसके बाद उन्होंने गायिका शुभा मुद्गल के लिए कुछ एल्बम के गीत भी लिखे। फिल्मों में उनका पहला कदम था फिल्म लज्जा के जरिए। राजकुमार संतोषी की इस फिल्म के कुछ गाने प्रसून जोशी ने लिखे थे। इसके बाद उन्हें यश चोपड़ा प्रोडक्शंस की फिल्म हम तुम में गाने लिखने का मौका मिला। हम तुम के गाने बहुत चले।

इसके बाद तो जैसे मुंबई फिल्म जगत में प्रसून जोशी के कदम जम गए। उन्होंने फिल्म फना के लिए भी गाने लिखे और इस फिल्म के सारे गाने बेहद लोकप्रिय हुए। प्रसून जोशी की सबसे बड़ी खासियत है वो जिंदगी के बहुत मामूली से जज्बात को पकड़ते हैं और अपने शब्दों के जरिए उसे एक खास रंग दे देते हैं। उनके गीत दिल को छू जाते हैं। फिल्म फना का ये देशभक्ति गीत सुनिए। ये उस दौर का गाना है जबकि देशभक्ति के बहुत नगमे नहीं आ रहे थे। नई फिल्मों में ऐसे गानों की जगह ही कहां बनती है, पर प्रसून जोशी ने अपनी कलम के जादू से इस गाने को अनमोल बना दिया।

प्रसून जोशी ने इसके बाद फिल्म रंग दे बसंती की पटकथा भी लिखी और इस फिल्म के गीत भी रचे। रंग दे बसंती अपनी तरह की एक अनमोल फिल्म थी, सबसे अलग, और इस फिल्म का असर भी बड़ा गहरा था। जरा इस फिल्म का ये गाना सुनिए जो आपके दिल की गहराई तक उतर जाएगा।

आमिर खान की फिल्म तारे जमीन पर जब बनी तो इसके गाने लिखने की जिम्मेदारी मिली प्रसून जोशी को, और इस फिल्म के लिए प्रसून जोशी ने कुछ अलग ही गीतकारी की।

इस फिल्म के इस गाने के लिए प्रसून जोशी को मिला सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ गीतकार का राष्ट्रीय पुरस्कार। आपको बता दें कि प्रसून जोशी कुल 2 बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल कर चुके हैं। तारे जमीन पर के अलावा फिल्म चिटगांव के एक गाने के लिए भी उन्हें नेशनल अवार्ड मिला था।

जुलाई 2013 में आई फिल्म भाग मिल्खा भाग, इस फिल्म की कथा, पटकथा, संवाद और गीत प्रसून जोशी ने लिखे थे। इस फिल्म का ये गाना सुनिए जो फिल्म का शीर्षक गीत तो है ही, साथ ही इस गाने में प्रसून जोशी ने फिल्म के पूरे मर्म को समेट दिया है।

इस फिल्म में ये मौज मस्ती भरा गाना भी प्रसून जोशी ने लिखा, जो शायद फौजी बैरकों में मौज मस्ती का सबब बन चुका है।

अब आपको सुनवाते हैं प्रसून जोशी के कुछ अनमोल नगमे। साल 2009 में आई फिल्म लंदन ड्रीम्स का ये गाना जो एक प्रयोग था, और ये प्रयोग बड़ा कामयाब रहा।

0: जाने दे।
1: जैसा कि हमने आपको बताया, प्रसून जोशी ने गायिका शुभा मुद्गल के कुछ एल्बम्स के लिए नगमे भी लिखे। आपके सावन एल्बम का ये शीर्षक गीत सुनिए।

0: अच्छा लगता है।
1: प्रसून जोशी का रचना कर्म अभी भी जारी है और उनके चाहने वाले उनसे नित नए नगमों की उम्मीद करते रहते हैं। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गीतकार प्रसून जोशी पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
2: आज के फनकार।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, हाँ जी। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
1: करो वादा,
3: हाँ जी वादा।
0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध, बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
4: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
3: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

0: श्रोताओं नमस्कार। सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। न्यूट्रिशन अर्थात पोषण, इस विषय पर आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत, और इस बातचीत की दूसरी कड़ी लेकर हम हाजिर हैं। तो चलिए सुनते हैं।
1: अदिति जी, ये जो कार्यक्रम है, हमारे बहुत सारे श्रोता सुनते हैं, ग्रामीण श्रोता भी सुनते हैं और शहरी श्रोता भी सुनते हैं। पोषण सप्ताह मनाया जाता है, तो पोषण सप्ताह आप अपने पैमाने पर भी मनाती होंगी, क्या कुछ शामिल करती हैं इसमें, किस तरह से लोगों को जोड़ पाती हैं?
2: पोषण सप्ताह सितंबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है, 1 से 7 तारीख के बीच में, और ये कई सालों से चल रहा है
1: जी।
2: और इस सप्ताह में हम बहुत जनहित के लिए प्रचार करते हैं, बहुत ज्यादा रोड स्किट्स होते हैं ग्रामीण लेवल पे या आदिवासियों के लेवल पे, हम जाके वहाँ पे कैंप्स करते हैं या हेल्थ कैंप्स होते हैं सोसाइटीज में, ऐसे बहुत सारी चीजें चलती है। हर डाइटिशियन अपने तरीके से कुछ ना कुछ करती रहती है, वो चाहे अपने क्लिनिक में थोड़े से छोटे मोटे कैंप हो या कॉलेज में जाके सिखाना हो या कॉरपोरेट जॉब्स हैं जहाँ पे वहाँ पे जाके आहार के ऊपर बातें करनी हो, ताकि लोगों को आहार के बारे में और आहार के महत्व के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले और उनको ये पता चले कि कहाँ और किसके पास जाना है सही जानकारी मिलने के लिए। ये इस चीज़ के लिए हम ये पूरा सप्ताह इस्तेमाल करते हैं। ये हम कई सालों से कर रहे हैं, मगर पिछले कई सालों से पोषण माह ज्यादा करके मनाया जाता है, जो कि सितंबर का पूरा महीना होता है। इसका मतलब अब हम एक हफ्ता नहीं, पूरा महीने भर हम कुछ करते रहते हैं, जैसे कुछ छोटा मोटा कुछ भी हो जो जनरल पॉपुलेशन या लोगों के लिए फायदेमंद हो, ये हम ज्यादा इसके ऊपर ध्यान देते हैं।
1: जी बिल्कुल, भारत सरकार की ओर से एक मुहिम चलाई जाती है, बहुत सारी कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं, क्योंकि बहुत सारा वर्ग कुपोषण का शिकार है आज भी, तो उन्हें पोषक तत्व मिले और कुपोषण से रहित अपना देश हो जाए, ये एक मुहिम है। और अब हमें बताइए कि ये जो वर्किंग वुमेन होती हैं और जो हाउसवाइफ होती हैं, तो उनके लिए किस तरह के पोषक तत्व जरूरी हैं, किस तरह के न्यूट्रिशन उन्हें लेने चाहिए?
2: अगर हम पोषण के बारे में बात करें और औरतों के बारे में बात करें, तो मेरी हमेशा एक बड़ी शिकायत होती है कि औरतें जो होती हैं वो सबका करने में इतनी मशरूफ हो जाती है, वो हमेशा खुद को भूल जाती है।
1: हाँ।
2: भले आप हाउसवाइफ हैं या भले आप जॉब करते हैं, दोनों तरीके से आप बहुत ज्यादा काम करते हो।
1: जी जी,
2: कोई भी किसी से कम नहीं होता। बहुत बार हमें लगता है अरे ये कुछ नहीं कर रहे, ये तो हाउसवाइफ है, इनको घर संभालना है। नहीं, अगर आप देखें कई बार हाउसवाइफ जो है पूरे दिन में इतना काम करते हैं, उनको अलग से वर्कआउट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
1: जी बिल्कुल,
2: और दोनों के लिए अपना सही वक्त पे खाना, सही मात्रा में खाना बहुत जरूरी हो जाता है।
1: जी,
2: अगर आप वर्किंग हैं तो अक्सर ये दिक्कत आती है कि सुबह उठे डब्बा बनाया तो अपना नाश्ता भूल गए, तो अपने नाश्ते का समय निकाल के फुर्सत से बैठ के नाश्ता करना जरूरी है। फिर उसके बाद आपके खाने में प्रोटीन की मात्रा, फाइबर की मात्रा सही है कि नहीं, ये देखना जरूरी है, और पूरे दिन में पानी के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। वैसे ही घर की जो औरतें हैं जो घर संभालती हैं, उनको ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या वो वक्त पे खा रही हैं, या क्योंकि वो किचन में काम कर रही है बहुत बार छोटा मोटा खाया जा रहा है और उसके वजह से भी तबीयत खराब हो रही है, क्योंकि हमें चखने की तो बहुत आदत होती है।
1: हाँ।
2: चलो ये खा लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, इसमें

0: चीजें आपको खाने में होनी चाहिए, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद ठहरता है।
1: जी, आपने कहा पानी पीना चाहिए प्रचुर मात्रा में। कुछ लोगों को देखा पानी एक साथ गट गट गट गट पी लेते हैं, एक बोतल या 2-3 गिलास पानी। तो
0: जी,
1: ये तरीका सही है? थोड़ा तरीका भी बताइए किस तरह से पीना चाहिए पानी।
0: कुछ लोग बहुत जल्दी में पानी पी लेते हैं, कुछ लोग सुबह उठ के पानी पी लेते हैं और पूरा दिन पानी नहीं पीते। हमारा शरीर इस तरीके से काम नहीं करता,
1: जी, सही
0: उसको
1: तरीका।
0: सही वक्त पे पानी की जरूरत होती है। आपको प्यास लग रहा है, इसका मतलब आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, मतलब पानी की मात्रा आपके शरीर में कम हो गई है। प्यास लगने तक राह ना देखिए,
1: बिल्कुल
0: धीरे धीरे थोड़े थोड़े वक्त पे थोड़ी थोड़ी घूंटों में पानी पीजिए। और मैं हमेशा बोलती हूँ पानी हमेशा ग्लास में लेकर पीजिएगा,
1: जी,
0: ना
1: बैठकर।
0: बॉटल से। आप बैठकर पियो, खड़े रहकर पियो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ग्लास में इसलिए ताकि आपको एक क्षण की क्यों ना हो, थोड़ी सी एक पॉज मिल जाए, एक ठहराव मिल जाए,
1: सिप
0: जो कि
1: सिप करके
0: आपके लिए
1: पानी। हाँ,
0: बहुत जरूरी हो जाता है भागदौड़ की जिंदगी में, कि आप वो 1-2 सेकंड का काम है कि थोड़ा सा रुक लो, थोड़ा ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान दो, आप किस तरीके से पूरे दिन में सांसें अंदर बाहर कर रहे हैं, थोड़ा सा ठहराव आने दो, पानी पी लीजिए और फिर अपने काम पे आगे बढ़ जाइए।
1: जी
0: कहीं अगर हम देखें तो अगर हम 2-3 लीटर की बात करें पूरे दिन में, तो आपको 1 ग्लास 1 घंटे में धीरे धीरे करके पी लेना चाहिए, धीरे
1: जी
0: धीरे, ये जरूरी है।
1: जी
0: गर्म पानी पिए, ठंडा पानी पिए, वो आपके ऊपर है।
1: जी
0: आप
1: बिल्कुल
0: बैठकर पियो, खड़े रह के पियो, वो आपके ऊपर है, मगर धीरे धीरे पीना बहुत जरूरी है।
1: जी, बहुत भ्रांति थी, बहुत बड़ी आपने दूर की। एक गाना सुनते हैं यहाँ पर।
0: जी।

0: और अब हमारे श्रोताओं को बताइए कि आज एक बहुत बड़ी समस्या और है, डायबिटीज के मरीज बढ़ रहे हैं और थायराइड की समस्या ज्यादातर हो रही है, तो क्या आहार के जरिए, सही न्यूट्रिशन के जरिए क्या इस पर नियंत्रण किया जा सकता है?
1: अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो अगर आपके फैमिली में या आपके परिवार में माता पिता को, चाचा चाची को, जो इमीडिएट फैमिली होती है, तुरंत आपके माता पिता, भाई बहन, किसी को भी डायबिटीज़ है, आपको डायबिटीज़ होने का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको ये जानकारी है तो आपको आपके आहार या पोषण का ध्यान पहले से रखना शुरू कर देना चाहिए। आपके खाने में क्या होना चाहिए ये आप समझ गए तो आप अपने ब्लड शुगर को आराम से मैनेज कर पाओगे, आपको डायबिटीज के लेवल पे आप पहुंचोगे नहीं। अगर आप प्री डायबिटीज के लेवल पे किसी वजह से पहुंच गए, सही आहार से आप उसको रिवर्स कर सकते हो। अगर आपका लेवल डायबिटीज में चला गया और आपको डॉक्टर ने डायग्नोस कर लिया कि आपको डायबिटीज है या आपको शक्कर की बीमारी लग गई है, तो उस वक्त के बाद से आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब वो चला जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। उस लेवल के बाद से आप बस वो शक्कर की मात्रा को कंट्रोल में रख सकते हैं। तब भी आपको आहार की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो टाइप का आपको डायबिटीज है, भले वो जेस्टेशनल डायबिटीज जो कि प्रेगनेंसी में होता है, टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, उसके हिसाब से और आपको कौन सी दवाई दी जा रही है और आपका करंट ब्लड शुगर कितना है, उस हिसाब से आहार को डिजाइन किया जाता है, ताकि आपका जल्द से जल्द शुगर कंट्रोल में आए, आपको दवाइयां कम लेनी पड़े, या अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं तो वो अच्छे से आपके ऊपर काम करे कम से कम डोज में। तो आहार इतनी आपकी हेल्प कर सकता है कि आपका 16-15 ऐसा HbA1c है तो वो 7-6 पे भी लेकर आ सकते हैं 3-4 महीने में।
0: जी बिल्कुल।
1: बट लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट दवाई ले लेंगे मगर खाना नहीं छोड़ेंगे और यहाँ पे दिक्कत आती है। बिना खाने को ठीक किए आपकी दवाई काम नहीं करने वाली है या कम काम करेगी।
0: बिल्कुल सही बात है, मतलब कि हमारे जीवन में सही और संतुलित आहार का बहुत महत्व है।
1: बहुत महत्व है।
0: अदिति जी, हमें बताइए कि सप्लीमेंट की कितनी जरूरत होती है पोषक तत्वों के साथ साथ? कई बार लोग खाना पीना तो ठीक ठाक रखते हैं, उसके बावजूद उन्हें विटामिन की कमी होती है, कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो सप्लीमेंट किस तरह से लेना चाहिए और कितना इसका महत्व है और कितनी हानि है?
1: सप्लीमेंट कुछ लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, कुछ लोगों के लिए वो जरूरी नहीं है। अगर आप संतुलित आहार ले रहे हैं, आपका रहन सहन सही है, नींद ठीक है, पानी ठीक है, आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं है, तो अक्सर आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। मगर अगर आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं या आपके रिपोर्ट्स में आ गया कि आपको कोई विटामिन या मिनरल की कमी है, तो कभी कभार आपको वो लेने पड़ते हैं।
0: जी,
1: जो भी आप सप्लीमेंट ले वो हमेशा डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह से ले, और डाइटिशियन आपको दवाई नहीं दे सकते हैं, डाइटिशियन आपको विटामिन मिनरल के बारे में जरूर बता सकते हैं, मगर ये विटामिन और मिनरल भी एक समय के लिए लेना चाहिए, एक उसका विशिष्ट रूप होता है जिस तरीके से लेना चाहिए, और विटामिन मिनरल्स ऐसी चीज है जिसका कॉम्पोजिशन अलग अलग होता है सप्लीमेंट में, तो वो पेशेंट की जरूरत के हिसाब से हम देते हैं, बिना किसी की सलाह के, बस इसलिए क्योंकि विटामिन मिनरल मिल रहा है और किसी दोस्त ने या रिश्तेदार ने बता दिया आपको विटामिन ये लेना है, कैल्शियम ये लेना है, आपको वो अवॉइड करना चाहिए। अगर सलाह दी है तब भी ले लीजिए, और उतने वक्त के लिए ही लेना जितना बताया गया है।
0: बिल्कुल,
1: वो सही वक्त पे लेना, सही तरीके से लेना जरूरी है। अभी कौन से विटामिन मिनरल ज्यादातर लगते हैं, अगर आपकी डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, मतलब आपके शरीर में कोई भी विटामिन या मिनरल की कमी बहुत ज्यादा है, तब आपको सप्लीमेंट की जरूरत लगती है। उसके साथ साथ आपको आहार को भी आपके ठीक करना पड़ता है, क्योंकि आपका जो रोज का आहार है वो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में आपकी जरूरतें पूरा

0: करेगा। सप्लीमेंट जो कि आपका बैकलॉग है, जो कि आपके शरीर में ऑलरेडी कम है, वो चीजें को भरेगा। तो वो सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। वैसे ही जैसे विटामिन डी की बात करें, तो विटामिन डी का मेन तो धूप से मिलता है, मगर हम आजकल धूप में ज्यादातर जाते नहीं हैं, या फिर हम पूरे कपड़े पहनते हैं, या ऐसे कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, क्रीम्स या कुछ भी शरीर पे, जिससे विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं होता।
1: अच्छा।
0: और खाने में विटामिन डी की मात्रा कम है, तो आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ जाती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप विटामिन डी बहुत, क्योंकि कम है, सबको कम होता है, हम हर रोज लेंगे या हर हफ्ते लेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि विटामिन डी फैट सॉल्युबल है, उससे आपकी बॉडी में विटामिन डी स्टोर हो सकता है और आपको टॉक्सिसिटी हो सकती है। सो बिना सलाह के कभी भी उनको नहीं लेना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: दूसरी चीज, आप कोई भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं या कोई डाइटिशियन के पास जा रहे हैं, आप जो भी सप्लीमेंट ले रहे हैं, एक चिट्ठी पे लिख के उन डॉक्टर को थमा दीजिए कि मैं ये ऑलरेडी ले रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि दिक्कत ये हो जाती है, आप एक डॉक्टर के पास गए, उन्होंने भी कैल्शियम दिया, किसी और ने भी कैल्शियम दिया, और आपने उनको बताया नहीं, तब भी ज्यादा हो सकता है आपके लिए। तो सप्लीमेंट कभी भी, कितने भी आसानी से मिले, कितने भी करीबी रिश्तेदार ने आपको बताए हो, बिना जांच पड़ताल या बिना कोई प्रोफेशनल सलाह के नहीं लेने चाहिए।
1: जी बिल्कुल। एक गाना सुनते हैं यहाँ पर।
0: जी,
1: कौन सा गाना आपके पसंद का?
0: आजकल तेरे मेरे प्यार।
1: जब सेहत सही रहती है तो भाई जाहिर सी बात है मन ठीक रहता है,
0: हाँ जी,
1: मन में अच्छे विचार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे तो प्यार की भावना भी उपजती है। सुनते
0: एब्सोल्युटली।
1: हैं ये गाना।

अदिति जी, हमें बताइए कि कुछ लोगों का ये मानना होता है कि खाने से पहले एक गिलास पानी पी लो, खासतौर से वो लोग जो वजन घटाने की मुहिम चला रहे होते हैं, और कुछ लोगों का ये मानना होता है कि खाने के बीच बीच में पानी पीते जाओ थोड़ा थोड़ा।

0: और कुछ लोग ये मानते हैं कि खाना खाने से पहले ना तो पानी पीना है, ना खाने के दौरान, ना खाने के बाद। ये जरा स्पष्ट कीजिए, क्या करना चाहिए?
1: इस सवाल का जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल है, और मैं वही सोच रही हूँ कि सही अल्फाज क्या है इसके लिए, थोड़ा स्पष्टीकरण देने के लिए, क्योंकि ये सब विचारधारणा है, ये किसी किसी को आप अप्लाई कर सकते हो, हर किसी के लिए नहीं है। सीधी बात है, आपको पानी लगता है, आप पानी पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप खाने के पहले एक गिलास पानी पियोगे, क्या हो जाएगा, आपके खाने पे असर पड़ेगा,
0: भूख कम हो जाएगी
1: आपकी
0: तुरंत।
1: भूख कम तो हो जाएगी, मगर ऐसा भी हो सकता है आप कम भूख के कारण खाने की कोई विशिष्ट चीज जो आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है आप
0: जरूरी।
1: उसी को निकाल दो।
0: जी जी
1: जैसे भूख कम हो गई तो आपने रोटी सब्जी कर ली, दाल छोड़ दी, तो आपको दिक्कत देगा। अगर आप कर रहे हो तो उसके पीछे का शास्त्र समझ लो कि आप पानी पी रहे हो ताकि आपकी थोड़ी भूख कम हो जाए, मगर ऐसा करने के बाद अगर आपको 4 बजे बड़ी जोर की भूख लग रही है तो फिर क्या ही फायदा उस चीज करने का।
0: बिल्कुल।
1: वैसे ही आप पानी आधा घंटे पहले मत पियो, आधा घंटे बाद मत पियो, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। पानी किसको संभाल के पीना चाहिए? कुछ लोग जो होते हैं ना, जो खाना खाने के वक्त पे कम चबाते हैं या उनको चबाना पसंद नहीं आता, तो ऐसे लोग जो है थोड़ा चबा लेते हैं खाना, बाकी पानी पी के उसको थोड़ा सा गटक लेते हैं, मुझे उसका सही अल्फाज नहीं पता, बट उसको पूरा स्वॉलो कर लेते हैं,
0: जी।
1: तब आपके खाने की मात्रा बहुत कम हो जाती है और आप पानी से ही आपके खाने को अंदर ढकेल रहे हो, तो ये आपको तकलीफ देगा और बहुत ज्यादा तकलीफ देगा, आपके डाइजेशन के हिसाब से भी तकलीफ देगा और आपको भूख के हिसाब से भी तकलीफ देगा। ऐसे वक्त पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो अगर आप थोड़ा सिप सिप करके पानी पी रहे, घूट घूट लेके पानी पी रहे खाने के दौर में, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
0: जी बिल्कुल। और एक सवाल और है, वो ये कि एक वक्त में दो अनाज खाएं, एक अनाज जैसे कि या तो दाल चावल खाएं या फिर रोटी सब्जी खाएं, रोटी सब्जी शाम को खा लें, दिन में दाल चावल खा लें, ऐसा लोग बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पूरी थाली, जैसे पुराने जमाने में पूरी थाली सजा के खाई जाती थी, तो आपका क्या कहना है?
1: इसमें सीधी सी बात है, धान धान होता है, आपको आखिर में देखना है धान की मात्रा आपकी थाली में कितनी है। आप अगर रोटी भी कर रहे हो और चावल भी कर रहे हो और आपकी आधी थाली उसी से भर रही है, तो उसमें दिक्कत है। हमने क्या बात की थी कि थाली में 1/4 धान होना चाहिए, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि आप रोटी सब्जी अलग करें, दाल चावल अलग करें या साथ में करें। प्रॉब्लम ये आती है या दिक्कत ये आती है जब आप उसका प्रमाण बदल देते हो। अगर आपकी थाली में रोटी सब्जी है मगर आप सब्जी को अचार की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, और दाल चावल है मगर आप दाल को अचार की तरह इस्तेमाल कर रहे हो कम मात्रा में,
0: जी
1: तब आपकी थाली का संतुलन बदल जाता है।
0: जी
1: और 90% लोगों का यही इशू होता है कि उनकी थाली में आधे से ज्यादा धान होता है, एक छोटी मात्रा में सब्जी होती है और बहुत कम मात्रा में प्रोटीन होता है।
0: जी। खाने का सही तरीका बहुत जरूरी है, और जिसको पित्त की समस्या, एसिडिटी की समस्या हो, तो उसे तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत गलत फहमी है लोगों में कि कब क्या खाएं, दो भोजन के बीच में कितना गैप होना चाहिए।
1: इसका कोई एक सरल फॉर्मूला तो है नहीं, क्योंकि हर इंसान अलग होता है। किसी किसी को दिन में 3 बार खाने की आदत होती है, किसी को 5 बार खाने की आदत होती है। मुझे ऐसे लगता है, और मैं हमेशा पेशेंट्स को भी यही बताती हूँ, कि आपकी जो जिंदगी है, आपका जो रूटीन सेट है, आप उस तरीके से काम करो। अगर आप 3 बार खाते हो 3 बार खा लीजिए, मगर ये देखिए कि वो आहार संतुलित हो। अगर हम बात करें भूख की, दिक्कत ये है शहर में आजकल लोगों को यही समझ नहीं आता भूख कब लग रही है और प्यास कब लग रही है, बस 1 बज गया है तो अभी लंच करने जाना है, ये समझ में आता है। तो सबसे पहले आपको अपने शरीर को समझना जरूरी है कि मुझे भूख कब लग रही है, मुझे प्यास कब लग रही है।
0: तो क्या जब भूख लगे तभी खाना चाहिए या
1: ऐसा
0: टाइम?
1: जरूरी नहीं है, शरीर को जरूरत है उसकी समझे, और आप अपना रूटीन सेट करें उस हिसाब से। अब मैं ये कहूंगी, पहले तो रूटीन सेट करिए और उस वक्त पे आपके बॉडी को ट्रेन करिए कि आपको उस वक्त पे भूख लगे, मगर भूख लगना उस वक्त पे जरूरी है। बस 1 बजा है इसके लिए मुझे खाना है, ये नहीं होना चाहिए। मुझे 1 बजे भूख लगनी चाहिए क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, ये होना चाहिए। जब आपको भूख लगेगी, वही अनाज वही थाली आपको अच्छे से, शरीर आपका उसको एब्जॉर्ब करेगा। आपके दो खाने के बीच में कितना गैप होना चाहिए ये

0: निर्भर करता है आप कितनी मात्रा में खाते हो। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग क्वांटिटी में ज्यादा खाते हैं, खाने की मात्रा उनकी ज्यादा होती है, और कुछ लोग होते हैं जो एक वक्त पे एक रोटी या दो रोटी के ऊपर नहीं खा सकते। जो कम खाते हैं उनको कई बार थोड़े थोड़े अंतर पे खाना जरूरी है। तो 2-3 घंटे के अंतर पे आप थोड़ा थोड़ा खा लेंगे, अच्छा रहता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपकी खाने की मात्रा ज्यादा है तो आप दिन में 3 बार खा लोगे, आप ठीक रहोगे। अगर आपको जैसे एसिडिटी या गैस की दिक्कत है तो आपको थोड़ा थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। आपको ब्लड शुगर की इश्यू है तब भी आपको थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए ताकि आपका शुगर स्टेबल रहे। अगर आप दिन में 3 बार खा रहे हो जस्ट इसलिए कि अभी ट्रेंड चल रहा है दिन में 1 बार खाने का, आप डायरेक्टली 3 से 1 पर आ गए, वो दिक्कत करेगा।
1: जी जी अभी 2 टाइम का भी चल
0: बहुत
1: रहा है
0: ज्यादा
1: कि सिर्फ 2 टाइम खाना खा रहा है। यहाँ पर एक जरूरी बात जहन में आई है, वो ये कि कई बार लोग एक साथ खाना खाने बैठते हैं तो सलाद भी रख लिया, दही भी रख लिया, फल भी रख लिया काट के, और पूरी थाली भी।
0: हाँ।
1: तो क्या फल और खाना एक साथ खाना चाहिए या उसे बीच में गैप देना चाहिए?
0: हमेशा मुझे ऐसे लगता है कि फल ऐसी चीज है जो हमारे पूरे खाने में हम उसे बिना पकाए खाते हैं,
1: जी जी
0: तो उसे ऐसे वक्त पे खाएं जहां आप उसका मजा अलग से ले पाए।
1: जी
0: जहां पका हुआ खाना जा रहा है वहां पे वो होना चाहिए। सलाड आपके खाने में जा सकता है, वो कच्चा होता है, मगर सलाड हर किसी को सूट करता है ऐसा नहीं है। इसका मतलब कच्चा खाना सबके लिए है नहीं,
1: जी जी बिल्कुल
0: आपकी सेहत के हिसाब से, आपके पेट कैसा काम कर रहा है उस हिसाब से आपका सलाद पका हुआ हो या कच्चा होना चाहिए, ये देखना आपको जरूरी होता है। फल आपको हमेशा अलग से ही खाने होते हैं, और कभी भी फल के साथ आपके नट्स जाने चाहिए। अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लें कि नॉर्मली लोग 8-9 बजे नाश्ता कर लेते हैं, 1 बजे खाना खाते हैं, और जो रात का खाना होता है वो अक्सर 8-9-10 बजे चला जाता है। तो आपके दोपहर के खाने और रात के खाने में बहुत बड़ी गैप हो जाती है। तो ऐसे वक्त पे इसके बीच में वहां पे फल और आपका जो नट्स है वो बहुत आसानी से इस्तेमाल हो सकता है। अभी आपको ये भी देखना है कि 5 से 7 के बीच में ही आपको समोसे चाट की जरूरत पड़ती है, तो वो भूख लगने के पहले और आपके दोस्त आपको बताने के पहले कि चलो हम जाके समोसा खाते, उस वक्त पे आपका फल और नट्स खा लीजिए और आपकी सेहत बढ़िया रहेगी।
1: जी जी एक गाना सुने
0: जी,
1: कौन सा?
0: क्यों ना ये जीवन है
1: इस
0: पिया
1: जीवन
0: का घर,
1: जी इस जीवन का यही
0: इस
1: है
0: जीवन
1: रंग रूप।

0: और कुछ लोगों का ये भी मानना है रोटी के मामले में कि गेहूं की रोटी नहीं पचती है, देर से पचती है, और मोटा अनाज ज्वार बाजरा और नाचनी, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए।
1: अगर हम गेहूं की बात करें, एक ट्रेंड चल रहा है जहां पे लोग बोलते हैं कि गेहूं बहुत बुरा है। गेहूं हर किसी के लिए बुरा नहीं है। अगर आपको एलर्जीज हैं या IBS IBD जैसे कोई मेडिकल कंडीशन है, तब आपको, या आप गेहूं जब भी खाते हो आपको थोड़ी बहुत डाइजेशन की इश्यू होती है, गैस की इश्यू होती है, तब गेहूं दिक्कत दे रहा है आपको, और तब आपको उसको अवॉइड करना चाहिए।
0: तो वहां
1: मतलब
0: पर
1: आपकी थाली में गेहूं नहीं होना चाहिए या कम मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि वो आपको तकलीफ दे रहा है। बाकियों को गेहूं से दूर रहने की कोई जरूरत नहीं है। कि आप गेहूं कौन से तरीके का यूज कर रहे हो ये देखिए,
0: जी।
1: जिसमें आपके पास खपली गेहूं है जो सबसे बेहतर है, उसके बाद आपके पास अलग अलग तरीके के गेहूं हैं, आप कौन सी वैरायटी यूज कर रहे हो ये भी देखिए, और उसमें आप जो गेहूं के ऊपर का छिलका होता है, ब्रैन होता है, वो इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं खाने में, रोटी में, ये देखिए, आप सही रहोगे। रोटी गलत नहीं है, रोटी हर किसी को तकलीफ देती है ऐसा भी नहीं है। अगर हम ज्वार बाजरा की बात करें, मिलेट्स बहुत ज्यादा चर्चा में है एक दो
0: बिल्कुल
1: सालों से, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो मिलेट्स हम पहले से ही इस्तेमाल कर रहे हैं अपने देश में, आज उसकी मात्रा बहुत बढ़ गई है, मगर लोगों को उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना आज भी नहीं आता है। ये जो मिलेट है या मोटे अनाज है, ये बहुत बार आप देखोगे थोड़े सूखे या ड्राई टेंडेंसी के होते हैं। ये कम खाएंगे तब भी आपको एकदम ऐसे लगेगा कि भरा भरा पेट लग रहा है, या पेट बहुत टाइट हो रहा है, या आप और एक ज्वार की रोटी के ऊपर नहीं खा सकते। अच्छे हैं, मगर वो भी सही मात्रा में आपके दिन में होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको थायराइड जैसा इश्यू और आप पूरी तरीके से मिलेट्स पे रह जाए, आपको दिक्कत होगी। तो एक संतुलन गेहूं और मिलेट्स के बीच में रखना, चावल के बीच में रखना बहुत जरूरी है। अगर आपने वो संतुलन जमा लिया तो आपका पेट सही रहेगा। दूसरी चीज मुझे ये हमेशा दिखती है कि कुछ लोग जो होते हैं ना, आंकड़ों के पीछे पड़े रहते हैं। इसका
0: जी
1: मतलब क्या होता है कि उनके प्लेट में उनको या थाली में उनको दो रोटी चाहिए होती है, उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो गेहूं की है, ज्वार की है, बाजरा की है। अभी ये दिक्कत है कि एक फुल्का या एक रोटी जो है 20 से 30 ग्राम आटे की बनती है, और एक ज्वार की रोटी जो है 50 से 60 ग्राम आटे की बनती है।
0: बिल्कुल
1: तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपने ज्वार बाजरा जो भी है वो बहुत ज्यादा मात्रा में खा लिया, जहाँ कि आप रोटी एकदम हल्के फुल्के में काम चला लेते हैं।
0: तो पाचन पर असर पड़ेगा।
1: जी, तो ये लोग सोचते ही नहीं है, क्योंकि ये उन्होंने कभी उस तरीके से सोचा ही नहीं है। तो ये आपको देखना जरूरी है कि आपकी पाचन क्रिया कैसी है, आपका पेट कैसा है, क्या आप मिलेट्स को डाइजेस्ट कर पा रहे हो, और अगर आप मिलेट्स को आपके खाने में, रोजमर्रा की जिंदगी में इंट्रोड्यूस करना चाहते हो या डालना चाहते हो, आप किस तरीके से डाल रहे हो।
0: जी
1: आप अगर मिलेट्स बिल्कुल भी नहीं खा रहे तो तुरंत से पूरे हफ्ते मिलेट्स ना करें, हफ्ते में एक दो बार करें, फिर 3 4 बार करें, धीरे धीरे मिलेट्स की आदत लगाएं,

0: और ज्वार बाजरा नाचनी के आगे भी हमारे पास धान है, उसका
1: जी
0: भी इस्तेमाल करें, जैसे कोड़ो हो गया, कांग हो गया, पोरसो हो गया, महाराष्ट्र में वरी हो गया, ये सारे भी तो धान हैं, वो भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। सूडो मिलेट्स हैं, जैसे कि किनुआ हो गया, कुट्टू हो गया, बकवीट जिसे बोला जाता है। किनुआ को तो हिंदी मराठी नाम है नहीं, किनुआ को किनुआ ही बोलते हैं।
1: सावा,
0: नहीं,
1: अच्छा
0: सामा है जो कि होता है महाराष्ट्र में वरी, बार्नयार्ड मिलेट।
1: जी जी
0: तो ये
1: जी
0: सारी चीजें भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। हमें सिर्फ रोटी और उसके आगे ज्वार बाजरा नाचने की जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ है, हमें बस कुछ चीजें पता नहीं है और कुछ चीजें हमें इस्तेमाल करनी नहीं आती। तो आप सही तरीका सीख लो तो हो जाएगा। जब भी आप मोटे धान की बात करें और आप अगर अक्खा धान यूज कर रहे हैं तो उसको अच्छे से 4 से 6 घंटे भिगो के रखना बहुत जरूरी है, और सही मात्रा में पानी डाल के उसको पकाना बहुत जरूरी है। उसके साथ आप किस तरीके की सब्जी खा रहे हो, अगर आप मोटा धान इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके साथ जो सब्जियों में पानी का अंश ज्यादा होता है, जैसे दूधी हो गया, कद्दू हो गया, पेठा हो गया, इसका इस्तेमाल ज्यादा करें, तो वो आपका सूखी रोटी और उसके साथ गीली सब्जी, ये थोड़ा सा बैलेंस आपके पेट के लिए बहुत अच्छा ठहरता है।
1: अच्छा, क्या बात है,
0: तो
1: ये
0: ये
1: तो
0: थोड़ा संतुलन आपको समझना चाहिए और आपको धीरे धीरे अपने खाने को उस तरीके से बदलना जरूरी है।
1: एक गाना सुने,
0: जी,
1: कौन सा
0: आप भी बता दीजिए कोई गाना।
1: सुनते हैं ये गाना।
0: एक

0: तो जो आप धान की बात कर रही थी, धान में ये सारी चीजें आती हैं।
1: जी
0: धान में सिर्फ वो चावल जो हम रोज खाते हैं वो नहीं,
1: हाँ,
0: बल्कि कोदो और जो नाम
1: बहुत
0: आपने
1: ज्यादा।
0: बताया।
1: और आप अगर चावल की ही बात करें तो भारत ऐसा देश है जहाँ हमारे पास 150-200 तरीके के चावल है,
0: बिल्कुल,
1: मगर हम एक ही चीज जानते
0: सिर्फ
1: हैं,
0: खुशबूदार
1: सफेद
0: चावल।
1: चावल,
0: बिल्कुल, और खुश।
1: खुशबूदार चावल, बासमती चावल, इतना ही जानते हैं। थोड़ा हमारे जो चावल के अनाज है जो हमारे पास है, जैसे अंबे मोहर है, मट्टा है केरला का, या असम का ब्लैक राइस है, जो आपके यहाँ है, या कृष्ण कमोद है, आप वो चावल का
0: ब्राउन
1: इस्तेमाल
0: राइस
1: करें।
0: भी एक आता है।
1: ब्राउन राइस आता है, मगर उससे अच्छा हमारे पास बहुत सारे चावल

0: अनपॉलिश्ड वैरायटी का चावल इस्तेमाल करें या सेमी पॉलिश्ड वैरायटी इस्तेमाल करें। बहुत खुशबूदार, बहुत फ्लेवरफुल चावल आते हैं हमारे पास। सफेद चावल में कोई भी न्यूट्रिशन नहीं रहता है, उसका
1: अच्छा
0: सब कुछ निकाला हुआ होता है। बस हल्का सा बी विटामिन आपको मिल जाएगा, बाकी सब वो स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट है।
1: क्या बात है, बहुत सही जानकारी आपने दी है। पहले ग्रामीण इलाकों में आज भी
0: आज भी वही
1: धान को
0: इस्तेमाल।
1: उबाल कर चावल बनाया जाता है, वो उसको उसना चावल कहते हैं,
0: हाँ,
1: वो बहुत
0: हमारे यहाँ
1: मोटा
0: उकड़ा
1: होता है।
0: तांदूल बोलते हैं
1: हाँ
0: महाराष्ट्र में, जहाँ हम वही राइस को यूज करते हैं,
1: जी जी जी
0: जिसमें अच्छा ब्रांड भी होता है, वाइटामिन भी होते
1: हाँ
0: हैं, वो मोटा होता है तो आप कम भी खाते हो।
1: अदिति जी, बहुत जरूरी मुद्दा है आजकल तेल के बारे में, कि पुराने जमाने में तो हम सबको याद है कि सरसों का तेल सब्जियों में इस्तेमाल होता था, और कुछ जगहों पर नारियल का तेल, साउथ में खास तौर से, अलग अलग जगहों पर। और आजकल तरह तरह के तेल हैं, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, सनफ्लावर, राइस ब्रॉन, तो बताइए कि कौन सा तेल सब्जियों के लिए सही होता है इस्तेमाल करना।
0: आप जिस जगह रहते हो उस जगह आपके आजू बाजू में कौन से पेड़ ज्यादा है, उस हिसाब से उस इलाके में वो तेल ज्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट की बारे में बात करें तो वहां पे आपको सरसों का इस्तेमाल ज्यादा मिलेगा। महाराष्ट्र की बात करें या साउथ की बात करें तो नारियल का तेल ज्यादा मिलेगा। आज ग्लोबलाइजेशन का जमाना है तो ये सारे तेल अभी हम सबको मिल रहे हैं। कोई तेल बुरा हम नहीं बोल सकते, हर तेल अपने तरीके से सही है। किसी के लिए वो अच्छा हो सकता है, किसी के लिए वो बुरा हो सकता है। मुख्य क्या होता है कि आपके खाने में तेल की मात्रा कितनी है। आप अगर आपके खाने में, जैसे एक इंसान को पूरे दिन में तेल की मात्रा 3 से 4 चम्मच रखनी चाहिए,
1: ओहो
0: छोटे चम्मच,
1: हो
0: 5 ml के चम्मच, उसके ऊपर नहीं।
1: जी
0: मगर हम कभी गिन के थोड़ी ना तेल इस्तेमाल करते, अंदाजे से भिंडी की सब्जी को थोड़ा ज्यादा तेल डाल दिया, कोई पत्ते की सब्जी है तो उसमें कम तेल डाल दिया। हम स्वाद अनुसार तेल इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। अगर हम तेलों की बात करें कि कौन सा सबसे अच्छा होता है, सबसे पहले आप देखिए कि आपको मेडिकल इश्यूज है या नहीं। कुछ मेडिकल इश्यूज में कुछ तेल हम मना कर देते हैं, बाकी केस में अगर आपको कोई इश्यूज नहीं है, आप सेहतमंद है, आपको बस आपकी तबीयत का ख्याल रखना है, तो इसका सिंपल तरीका यह है कि आप पारंपरिक तौर से आप जो तेल खा रहे हो उसका इस्तेमाल करें। बाकी तेल भी अपने रूटीन में रखें, उसको थोड़ा सा साइकिल करें। मतलब अगर 1 महीना आप सरसों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा सा फिर राइस ब्रैन को लेकर आए, फिर आप सरसों पे चले जाए, फिर सनफ्लावर का इस्तेमाल करें। ऐसे थोड़े आप बदलाव लेकर आ सकते हैं। आखिर में आपकी तेल की मात्रा कितनी है ये मायने रखता है।
1: जी
0: कुछ तेल होते हैं जिनको बहुत बुरा नाम पड़ा है, जैसे पाम ऑयल है, क्योंकि ये ज्यादा करके पैकेज फूड, बेकरी आइटम्स में इस्तेमाल किया जाता
1: जी
0: है।
1: जी जी
0: तो हाँ, ये बुरा है क्योंकि उसकी जो गुणधर्म है वो आपको तकलीफ दे सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप पैकेज फूड और प्रोसेस फूड कितना खा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल
0: आखिर में गिन के आप पूरे दिन में तेल कितना खा रहे हो। और तेल भी दो तरीके से हम देखते हैं, नॉर्मल लोग सिर्फ तेल को गिनते हैं, हम डाइटिशियंस दो तरीके से देखेंगे।
1: जी
0: विजिबल सोर्सेस जो कि दिखते हैं, मतलब आपका तेल, घी, बटर, चीज, और दूसरा होता है इनविजिबल सोर्सेस, मतलब दूध में से आने वाला फैट, आपके नट्स में से आने वाला फैट, ये भी तो जरूरी है।
1: जी जी
0: तो अगर आप पूरे दिन में 2 मुट्ठी ड्राई फ्रूट ही खा रहे हैं और आपकी सब्जी तेल में तैर रही है
1: बिल्कुल
0: तो आप ज्यादा तेल खा रहे हो, आपको तकलीफ
1: होनी
0: होने ही
1: होनी है
0: वाली है।
1: बिल्कुल।
0: आखिर में तेल की मात्रा कितनी है वो ज्यादा मायने रखती है। और अपने तेल को बदलते रहिए, कौन सा तेल अच्छा है, क्या केमिकली रिफाइंड तेल अच्छा है, फिजिकली रिफाइंड अच्छा है, वुड प्रेस्ड अच्छा है, कोल्ड प्रेस अच्छा है। तो फिजिकली रिफाइंड या घानी, वुड प्रेस, कोल्ड प्रेस, ये अच्छे हैं। जितना हो सके केमिकल जो फिल्टर्ड होता है वो थोड़ा सा दूर रखें। अगर शहर में रह रहे हैं या आपको दिक्कत है, आपको एक्सेसिबिलिटी या फाइनेंस का इशू है, तो आप जो भी तेल मिल रहा है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको फाइनेंशियली अफोर्डेबल है तो घानी का तेल, कोल्ड प्रेस ऑयल, वुड प्रेस ऑयल, इसकी तरफ थोड़ा सा मुड़ जाइए। वो तेल थोड़ा सा गाढ़ा भी होता है, तबीयत के लिए भी अच्छा होता है और उसमें गुणधर्म भी अच्छे खासे होते हैं,
1: जी
0: तो
1: जी
0: वो
1: जी
0: इस्तेमाल आप कर सकते हो।
1: जी बिल्कुल। घानी का

0: और घी के बारे में भी बताइए। घी के बारे में भी बहुत सारी भ्रांतियां, लोग चुपड़ के घी खाते हैं कुछ लोग, कुछ लोग कहते हैं कि अरे इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, घी खाते ही नहीं। तो घी क्या है बताइए।
1: घी भी फैट का एक ही रूप है। आप तेल खाओ, घी खाओ, बटर खाओ, चीज खाओ, उसके रूप अनेक है।
0: अच्छा।
1: आखिर में मात्रा आपकी मैटर करती है। जो कि मैंने आपको बताया कुछ देर पहले कि दिन में आपकी 3 से 4 चम्मच तेल होना चाहिए, उसमें घी भी आता है। आप 4 चम्मच घी इस्तेमाल करना चाहते हो या उसमें से 1 चम्मच घी इस्तेमाल करना चाहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। क्या घी खाने से फायदा है? हाँ, पेट के लिए अच्छा है, तबीयत के लिए अच्छा है। आप वेट गेन करने की कोशिश कर रहे हो तब भी आपको फायदेमंद ठहरेगा। अगर आपको ब्लॉकेज इश्यूज है, हार्ट इश्यूज है, या आपको कोई मेडिकल बाकी के कंडीशन है, तो आपको घी को थोड़ा कंट्रोल में रखना जरूरी है। अगर आप घी नहीं खाते हो, क्या आपको कोई नुकसान है? नहीं, बिना घी खाए भी आप अच्छे खासी जिंदगी निकाल सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको घी खाना जरूरी है जिंदगी में। तो आखिर में आप कितनी मात्रा में खा रहे हो, ये महत्वपूर्ण है।
0: जला हुआ घी नहीं खाना चाहिए पराठे
1: नहीं
0: के रूप में,
1: जी,
0: पूड़ी और पराठे के रूप
1: बहुत ज्यादा।
0: में। अदिति जी, घी तेल सब कुछ शामिल हो गया, और हर खाने में मिठाई भी शामिल होता है। कुछ लोगों के साथ तो ये दिक्कत है कि हर खाने के बाद उनको मीठा चाहिए, तलब होती है। तो ये मिठाई के खाने के बारे में बताइए कि खाने के बाद, खाने के साथ खाना जरूरी है, खाने से पहले या बाद में, या नहीं खाना चाहिए?
1: अगर आप मिठाई खाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको मिठाई की जरूरत नहीं है। शक्कर कम खाने से आपकी शक्कर कम नहीं होने वाली। मिठाई भी शक्कर का ही एक अलग रूप है, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट ही कहते हैं। अगर आपके पूरे दिन में, आपके आहार में कार्बोहाइड्रेट का प्रमाण बहुत ज्यादा है, तो मिठाई उसे और बढ़ाएगा। और मिठाई जो है, छोटा बम बड़ा धमाका है। छोटे से बाइट में बहुत ज्यादा कैलोरीज होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा फैट भी होता है, और उतनी ज्यादा आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाते हैं। तो क्या मिठाई जरूरी है? नहीं। अगर आप मिठाई हर खाने के बाद खाना चाहते हो, तो ये आपको कम करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से, आपकी तबीयत के हिसाब से। तो एकदम से अचानक से अगर आप बंद नहीं करना चाहते, पहले तो दिन में एक ही बार कर लीजिए, और फिर उसी मिठाई के थोड़े से हेल्दी रूप थोड़े से देख लीजिए। जैसे आपको खजूर मिल जाएगा, या आपने थोड़ा चना और गुड़ ले लिया, या आपने छोटा चिक्की चिक्की का टुकड़ा ले लिया, आप इसका इस्तेमाल करें, ना कि गुलाब जामुन या और कोई तली हुई मिठाई, मावा जलेबी, इसका इस्तेमाल करें। जैसे मैंने कहा, आखिर में पूरे दिन में आपने कार्बोहाइड्रेट कितने खाए हैं वो मायने रखता है। कुछ लोग जो है खाने में भी शक्कर और गुड़ का इस्तेमाल बहुत करते हैं, तो मतलब आप चाय में शक्कर गुड़ खा रहे हैं, आपके खाने में गुड़ और शक्कर जा रहा है, और फिर आपकी मिठाई में भी शक्कर है। तो आपने यहाँ फॉर्मूला बना लिया आपका ब्लड शुगर बढ़ाने का।
0: जी
1: इससे आपका ब्लड शुगर बढ़ेगा, क्योंकि आप हर जगह पे मिठाई खा रहे हो। अभी कुछ लोग बोलेंगे, हमें तो ब्लड शुगर नहीं है, हम तो जिंदगी भर खा रहे हैं। अच्छी बात है, हो गए, आपकी तबीयत उतनी अच्छी है, हो गया। मगर क्या ये हर कोई कर सकता है? नहीं, वो हर किसी को तकलीफ दे सकता है।
0: जी
1: तो मिठाई भी आखिर में आपको ये देखनी है कि क्या ये मेरे को फायदा देने वाली है। आज के टाइम में हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी मिठाई आ रही है, जो कि आपकी तबीयत को भी संभाल सकती है और मीठे की क्रेविंग को भी संभाल सकती है। जैसे डार्क चॉकलेट हो गया, या आप छेना इस्तेमाल करो, रसगुल्ले का छेना वो आप यूज करो।
0: खीर घर में बना के।
1: खीर भी आखिर में दूध और शक्कर ही आई, और उसमें अगर आपने साबुदाना डाल दिया तो खत्म। तो आपने एकदम एकदम ऐसा फॉर्मूला बना दिया जहाँ पे शुगर बढ़ जाएगा। तो ये कितने मात्रा में खा रहे हैं, पूरे दिन में कितनी शक्कर गुड़ जा रही है, और ओवरऑल आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक कितना है, इस पे निर्भर करेगा कि क्या आप मिठाई खा सकते हो या नहीं। दूसरी चीज ये होती है कि बहुत ज्यादा मीठा खाने से ना, कुछ लोग कई सालों तक उनको आदत होती है मीठा मीठा खाने की, कार्बोहाइड्रेट खाने की। इसकी वजह से उनकी टेस्ट बड्स जो है ना, वो भी थोड़े चेंज हो गए। उनको
0: जी
1: हर चीज उस तरीके से टेस्ट नहीं आती, तो जब वो मिठाई थोड़े दिन के लिए निकाल लेते हैं, तब उनको वही मिठाई कितनी मीठी है वो पता चलेगी। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जो मिठाई बिल्कुल नहीं खाते हैं, वो फटक से बोलेंगे आपकी 1 चम्मच शक्कर भी बहुत ज्यादा है। वो क्यों बता पा रहे? क्योंकि उनके टेस्ट बड अभी वापस ट्रेन हो गए कि जो निसर्ग में जो चीजें जैसी हैं वो उनके फ्लेवर्स का मजा उस तरीके से ले ले, तो
0: बिल्कुल,
1: हमें उस चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है।
0: मतलब ये भी है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम खाना कम खा लें, मिठाई ज्यादा खा लें, तो
1: हाँ
0: वो भी ठीक नहीं है,
1: ठीक नहीं है।
0: क्योंकि मीठा तत्व तो आपके शरीर में
1: हाँ,
0: जा रहा
1: और
0: है जो
1: कुछ लोग
0: हानिकारक
1: ऐसे बोलते हैं कि मैं तो सब कुछ कर रही हूँ, डाइट भी कर रही हूँ, मगर वेट लॉस नहीं हो रहा है या मेरी शक्कर कम नहीं हो रही है, तभी भी अक्सर गुनहगार वो मिठाई ही होती है।
0: बिल्कुल। तो अब इस मिठाई के साथ ही मीठी मीठी बातों को हम विराम दे रहे हैं। अदिति जी, बड़ी ढेर सारी जानकारी आपने साझा की हमारे श्रोताओं के साथ। एक गाना सुने
1: जी।
0: चीनी का।

पोषण माह के उपलक्ष्य में सेहतनामा कार्यक्रम में आज आपने सुना न्यूट्रिशन अर्थात पोषण। इस विषय पर आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी। इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग मिला मंगेश सांगले से। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।

रंग तरंग आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं शंकर महादेवन और साथियों की आवाजों में इस गणेश वंदना के साथ।

या तो मिट जाइए या मिटा दीजिए, ये प्यारा सा कलाम अभी आप सुन रहे थे। वाजिदा तबस्सुम का था ये कलाम, जगजीत सिंह की आवाज़, और एल्बम इन सर्च से हमने लिया था इसे। आइए अब आपको सुनवा रहे हैं लोक गीत कजरी, हेमंत कुमार की आवाज़ है।

श्रोताओं, कजरी के रंग से आप सराबोर हो रहे हैं, तो चलिए एक और कजरी आपको सुनवा देते हैं। मनोरमा श्रीवास्तव ने गाया है इसे, मिर्जापुर कैला गुलजार हो।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम रंग तरंग। तो लीजिए सुनिए सुरैया की आवाज में मिर्जा गालिब का ये कलाम जिसे संगीतबद्ध किया है गुलाम मोहम्मद ने। फिल्म का नाम भी है मिर्जा गालिब।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम रंग तरंग। आइए अब आपको सुनवा रहे हैं एक राजस्थानी लोकगीत मारा रंगीलो राजस्थान, और इसे गाया है शोभा गोटू ने, संगीतबद्ध किया है बाबू सिंह ने।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम रंग तरंग। आइए अब आपको सुनवा रहे हैं कबीर दास जी के कुछ दोहे, जिसे गाया है जगजीत सिंह ने और इसे संगीतबद्ध भी किया है जगजीत सिंह जी ने ही।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं मिश्र संगीत का कार्यक्रम रंग तरंग। आइए अब सुनते हैं उत्तर प्रदेश का एक लोकगीत जिसे गाया है सुजाता चक्रवर्ती ने।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास, वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण, वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: बिल्कुल। वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम रंग तरंग। लीजिए अब सुनिए एक कव्वाली जिसे गाया आशा भोसले और साथियों ने। साहिर लुधियानवी के हैं बोल और रोशन की है तर्ज। फिल्म का नाम दिल ही तो है। निगाहें मिलाने को जी चाहता है।

श्रोताओं, आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश एक और कव्वाली के रूप में इस्माइल आजाद कव्वाल और साथियों ने गाए से शेवन रिजवी ने लिखा, बुलो श्री रानी की तर्ज है, फिल्म का नाम अल हिलाल। हमें तो लूट लिया मिलके हंसने वालों ने।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। आप सबका उमंग कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। आइए हमेशा की तरह पहले सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने। लिखा है, किसी का भी उदय अचानक नहीं होता, उसमें समय, धैर्य और तपस्या की जरूरत होती है। धन्यवाद आप दोनों का। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। छत्तीसगढ़ सहसपुर से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुली चंद साहू, सतीबाई साहू और सत्यम साहू जी ने लिखा है, प्रिय उद्घोषक जी मन से नमस्कार, आप दोनों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और ज्ञानवर्धक बात बताई। आपका संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजा जी नगर बेंगलोर से NR प्रसाद और अखिला प्रसाद। करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर। छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू ने लिखा है, उमंग कार्यक्रम का मैं नियमित श्रोता हूँ। इस कार्यक्रम से हमें भरपूर मनोरंजन तो होता ही है और इससे हमें सीख व प्रेरणा भी मिलती है। बेहतरीन प्रस्तुति के लिए पूरी टीम को हार्दिक बधाई और धन्यवाद। आपका

भी संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी जानिए कि अगली कड़ी में अब आप सबका स्वागत है। इस सप्ताह हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी कुछ घटनाएं और कुछ लोक कथाएं। ये लोक कथाएं कुछ ऐसी हैं जिन्हें सुनकर यदि आप कभी किसी पेड़ के पास से गुजरे तो आप उसे सिर्फ एक पेड़ नहीं समझेंगे, आपके देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। आपने अक्सर उत्तराखंड के चिपको आंदोलन और उससे जुड़ी गौरा देवी के बारे में जरूर सुना होगा, इस पर हमारा कार्यक्रम भी है। लेकिन आज हम बात करेंगे चिपको आंदोलन मूल रूप से कब शुरू हुआ। आज की कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव खेजड़ली की और एक ऐसी महिला की जिसने पेड़ों को बचाने के लिए अपना जीवन तक न्यौछावर कर दिया। कहानी लगभग लगभग 300 साल पुरानी है, सन 1730 की बात है। राजस्थान की गर्म और रेगिस्तानी धरती, चारों ओर रेत और उस धरती पर जीवन का सहारा बने हुए थे खेजड़ी के पेड़। एक दिन गांव में कुछ लोग पहुंचे, उनके हाथों में कुल्हाड़ियां थीं। उन्हें वहां के राजा अभय सिंह के द्वारा पेड़ों को काटने का आदेश मिला था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। गांव की एक महिला उनके सामने आ खड़ी हुई, उसका नाम था अमृता देवी बिश्नोई। उन्होंने पेड़ को अपनी बाहों में भर लिया और पेड़ काटने वालों से कहा, पेड़ को काटना है तो पहले मुझे काटना होगा। जरा सोचिए श्रोताओं, क्या दृश्य रहा होगा। सामने कुल्हाड़ी लिए लोग और दूसरी ओर एक निहत्थी महिला। पेड़ काटने वालों ने उसे धमकाया, लेकिन अमृता देवी पीछे नहीं हटी। उनकी तीन बेटियां भी अपनी माँ के साथ खड़ी हो गईं और फिर जो हुआ वो भारतीय पर्यावरण इतिहास की अमर घटना बन गया। अमृता देवी का दृढ़ संकल्प देखकर गांव के लोग भी आने लगे और एक एक करके पेड़ों से चिपकने लगे। किसी ने कहा, ये पेड़ हमारे पशुओं का चारा है। किसी ने कहा, ये हमारे जीवन का सहारा है। और किसी ने शायद ये महसूस किया कि पेड़ कटेंगे तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी कट जाएगा। श्रोताओ, इसके बाद शुरू हुआ क्रूर संहार। इस बेहद दुखद आंदोलन में 363 बिश्नोई लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। जब ये समाचार महाराजा तक पहुंचा तो वे सन्न रह गए और शोक में डूब गए। अंततः खेजड़ली क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी गई। साथियों, आज से लगभग 300 साल पहले जब पर्यावरण संरक्षण जैसे शब्द आम बातचीत का हिस्सा भी नहीं थे, तब इन लोगों ने प्रकृति के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया और यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। हम आज कहते हैं पेड़ बचाओ, पानी बचाओ। सोशल मीडिया पर, अखबारों में ये संदेश भरे पड़े हैं। बड़ी बड़ी कार्यशालाएं होती हैं, उपदेश होते हैं जिसमें लोग कहते हैं पर्यावरण बचाओ। लेकिन अमृता देवी ने केवल कहा ही नहीं था, उन्होंने करके दिखाया था। अंग्रेजी की एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स, यानी हमारे शब्दों से ज्यादा हमारी खामोशी में किए गए कार्य बोलते हैं। तो श्रोताओ, उमंग कार्यक्रम के द्वारा आज हम विशेष रूप से कहना चाहेंगे कि अगली बार जब आप किसी पेड़ की छाया में बैठें, उसके फल खाएं, उसकी ठंडी हवा को महसूस करें, तो एक पल के लिए राजस्थान की खेजड़ली गांव की उस महिला अमृता देवी बिश्नोई को जरूर याद कीजिएगा, जिनके लिए पेड़ केवल लकड़ी मात्र नहीं थे लेकिन वो जीवन का आधार थे। आइए सोचें, पेड़ हमारी सांस हैं, हमारे लिए शीतल छाया हैं, वे हमारे जल और मिट्टी के रक्षक हैं और सबसे बढ़कर वे आने वाली पीढ़ियों की विरासत हैं। तो आज हम उमंग कार्यक्रम में मन की उमंग से चलते चलते एक छोटा सा संकल्प क्यों न लें, एक पेड़ को केवल लगाएंगे नहीं, उसे बड़ा भी करेंगे और उसे बचाएंगे भी। एक नारा बहुत प्रसिद्ध हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसी तर्ज पर आज हम उमंग कार्यक्रम की ओर से एक नया नारा देना चाहेंगे, पेड़ लगाओ पेड़ बढ़ाओ पेड़ बचाओ। और शायद ही यही चिपको आंदोलन की मूल माता अमृता देवी बिश्नोई को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अमृता देवी की कहानी पर्यावरण संरक्षण के इतिहास में पेड़ बचाने के लिए अपना जीवन देने का अद्भुत उदाहरण मानी जाती है। बता दें, देश ने उनके अतुल्य बलिदान को नहीं भुलाया। आज भारत सरकार का अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पर्यावरण पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण, विशेषकर वन और वन्य जीवन संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। तो श्रोताओ, कैसी लगी हमारी प्रस्तुति जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, चिपको आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से किस गांव से हुई थी। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, चिपको आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से किस गांव से हुई थी। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताजा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए।
और यदि आप एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को

वैसे तो हमारे देश में दूसरे विद्यालयों की ही तरह ये भी एक साधारण सा विद्यालय है, लेकिन कुछ अर्थों में ये बड़ा असाधारण भी है। जानते हो क्यों? क्योंकि इस विद्यालय का प्रारंभ कुछ असाधारण लोगों के द्वारा बड़ी ही असाधारण परिस्थितियों में किया गया था। सुनना चाहते हैं इसकी कहानी? तो सुनो।

0: विवेकानंद आए हैं, उनके साथ एक अंग्रेज मेम साहब भी है।
1: अरे तो उन्हें बाहर क्यों खड़ा करके आया? जरा मेरी शॉल तो दे लो।
0: अच्छा बाबू।
1: और सुन
0: जी,
1: मालकिन से कह देना कि तैयार रहेगी, हैं? भगिनी निवेदिता
0: है?
1: अरे वही अंग्रेज मेम साहब, शायद तेरी मालकिन और चुन्नी दीदी से मिलना चाहें।
0: क्या कह रहे हैं बाबू, मालकिन भला मेम साहब से कैसे बात करेंगी, वो क्या अंग्रेजी पढ़ी लिखी है?
1: इसकी चिंता मत कर माधो, ये मेम साहब दूसरी मेमो जैसी नहीं है।
0: अच्छा?
1: हाँ, बंगला बोल लेती है, बड़ी नेम धर्म वाली है, स्वामी विवेकानंद की खास शिष्या है।
0: अच्छा?
1: अपना घर बार छोड़कर 100 समुद्र पार से यहाँ आई है, हमारी लड़कियों को पढ़ाएंगी, यहाँ कलकत्ते में एक कन्या पाठशाला खोलेंगी।
0: वो तो ठीक है, पर बाबू।
1: अरे दुष्ट, स्वामी जी को दरवाजे पर खड़ा कर रखा है और यहाँ पर कर रहा है, जा भाग यहाँ से।
0: अच्छा।
1: पहले मैं उन्हें फीतर ले आऊं। आइए आइए स्वामी जी, भीतर आइए, धन्य भाग है हमारे जो आपकी चरण रज से मेरा घर पवित्र हुआ।
2: अरे अरे, ये क्या करते हैं बोस बाबू, उठिए उठिए, माँ काली आपका कल्याण करे, इनसे मिलिए। यही वो आयरिश महिला है मिस मार्गरेट नोबल, जिनके विषय में मैंने आपसे चर्चा की थी।
1: कुटिया में आपका हार्दिक स्वागत है मिस नोबल।
3: धन्यवाद बोस बाबू, किंतु आप यदि मुझे स्वामी जी के दिए हुए नाम से पुकारें तो मुझे अधिक प्रसन्नता होगी।
1: यदि ऐसा है तब मैं आपको सिस्टर निवेदिता ही कहूँगा। आइए स्वामी जी, यहाँ बैठिए, आप भी बैठिए सिस्टर।
3: धन्यवाद।
2: अब बताइए बोस बाबू
1: जी,
2: क्या सलाह है? इधर बाग बाजार में स्कूल खोलने पर यहाँ के लोग अपनी लड़कियों को पढ़ने भेजेंगे या नहीं?
1: देखिए स्वामी जी, मैंने इस बारे में कई लोगों से बात की है। जो लोग अपनी लड़कियों को पढ़ाना भी चाहते हैं, वो भी समाज के डर से उन्हें स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है।
3: अरे, अगर कोई आदमी अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाना चाहता है तो इसमें समाज का क्या नुकसान है?
1: नुकसान तो है सिस्टर, पुराने लोगों को डर है कि यदि लड़कियां पढ़ गईं तो फिर अपनी बुद्धि से सोच सकेंगी, अपना भला बुरा समझ सकेंगी, तब वे समाज से अपनी दुर्दशा का कारण पूछने लगेंगी, समाज की हर गलत सही और उल्टी सीधी प्रथा को मानने से इनकार करने लगेंगी, तब फिर इस अंधे समाज का क्या होगा? समाज में तो हाहाकार मच जाएगा ना।
3: कैसी बातें कर रहे हैं आप बोस बाबू, जब परिवार की बहू बेटियां पढ़ी लिखी होंगी तो उससे तो पूरे समाज का लाभ होगा ना।
1: देखिए सिस्टर, ये बात मैं समझता हूँ, कुछ और पढ़े लिखे लोग भी समझते हैं, लेकिन समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग न तो इस बात को समझता है और न मानने को तैयार है।
3: तब क्या ये स्कूल नहीं खुल सकेगा?
2: खुल सकेगा और खुलेगा। जिस कार्य के लिए तुमने इतना बड़ा त्याग किया है, माँ बहन भाई मित्र सहयोगी सब छोड़ छाड़ कर यहाँ आई हो, तुम्हारा वो कार्य अवश्य सिद्ध होगा, तुम्हारा विद्यालय अवश्य खुलेगा।
3: लेकिन वो शुभ दिन कब आएगा स्वामी जी?
2: उतावली ना हो निवेदिता, हर काम का समय निश्चित होता है। हाँ तो बोस बाबू
1: जी,
2: यही बोसपाड़ा में अगर कोई छोटा मोटा मकान किराए पर मिल जाए तो उसमें निवेदिता अपना विद्यालय खोल सकेंगी।
1: मकान की व्यवस्था आप मेरे जिम्मे छोड़ दीजिए स्वामी जी, किंतु मेम साहब के पास घर का कामकाज करने के लिए कोई स्त्री तैयार होगी या नहीं, इस विषय
2: वो व्यवस्था हो गई है। माँ शारदा मणि के पास एक वृद्धा ब्राह्मणी आती थी, गोपाल की माँ, उससे माँ ने कहा तो वो निवेदिता का खाना बनाने और घर द्वार संभालने के लिए राजी हो गई।
1: चलिए, तब तो ये चिंता भी दूर हुई, अब केवल आपके लिए छात्राओं की व्यवस्था कर दी है। वैसे एक छात्रा तो मेरे घर में भी है, मेरी छोटी लड़की चुन्नी। मैं चाहता हूँ कि वो भी कुछ पढ़ना लिखना सीख ले, पर उसकी माँ किसी भी तरह तैयार नहीं होती, कहती है कि अगर चुन्नी पढ़ लिख गई तो फिर कोई उससे शादी नहीं करेगा।
3: अरे वाह, ये तो उल्टी बात हुई, आजकल के पढ़े लिखे युवक तो चाहते हैं कि उनकी पत्नी भी पढ़ी हो। बोस बाबू, आप मुझे एक बार मिसेस बोस से मिलवा सकते हैं? शायद मैं उन्हें चुन्नी को स्कूल भेजने के लिए राजी कर सकूं।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए मैं आपको भीतर ले चलता हूँ।
2: जाओ निवेदिता, शायद ये चुन्नी ही तुम्हारी पहली शिष्या हो। इस तरह स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से और बलराम बोस जैसे कुछ और समझदार लोगों के सहयोग से 13 नवंबर 1898 को बाग बाजार के बोस पाड़ा लेन के एक छोटे से मकान में निवेदिता ने अपनी कन्या पाठशाला का शुभारंभ किया। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी मां शारदा मणि भी इस अवसर पर उपस्थित थी। निवेदिता अपनी थोड़ी सी छात्राओं को केवल लिखना पढ़ना ही नहीं अपितु चित्र बनाना, सीना पिरोना, हिसाब किताब रखना, सभी कुछ सिखाकर उनके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना चाहती थी। लेकिन परंपरागत शिक्षा के आदि लड़कियों के माता पिता शिक्षा के इस ढंग को बिल्कुल समझ नहीं पाए।
4: गुड मॉर्निंग गर्ल्स।
5: गुड मॉर्निंग दीदी।
3: ये सुभाषिनी आज फिर नहीं आई, क्या बात है, बीमार तो नहीं पड़ गई? चारू, तुम गई थी उसके घर?
6: हाँ दीदी, आज मैं उसके घर गई थी। उसकी माँ कहने लगी, इश, ये कैसा स्कूल है जी तुम्हारा, वहाँ हम लड़की को पढ़ने भेजते हैं या खिलौनों से खेलने?
3: फिर तुमने क्या कहा?
6: मैंने कहा कि हमारी निवेदिता दीदी खिलौनों से खेलने को कहती हैं, और फिर ना जाने कैसे खेल खेल में हमें बहुत सारी बातें सिखा देती हैं, हमें तो पता भी नहीं चलता। इस पर वो बोली कि आज वो स्वयं आपसे मिलने आएंगी।
3: अच्छा ठीक है, तुम तो आज हमें अल्पना बनाकर दिखाने वाली थी ना चारू?
6: हाँ दीदी।
3: ये लो कागज और रंगीन पेंसिल, एक सुंदर सी अल्पना बनाकर उस पर अपना नाम लिखो। और चुन्नी, तुम मुझे कल वाली कविता सुनाओ। तो
7: क्या मैं अंदर आ सकती हूँ?
6: दीदी, ये माशी माँ है, सुभाषिनी की माँ।
3: आइए आइए ना माँ, वहाँ द्वार पर ही क्यों खड़ी है, भीतर आइए ना। जाते चारू, माशी माँ के लिए एक आसन तो ले आ।
7: अच्छा दीदी।
3: नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, आप हमारे विद्यालय की पहली अतिथि हैं, हम आपको ऐसे खड़े खड़े ही थोड़ी लौट जाने देंगे।
6: दीदी ये लीजिए आसन।
3: बैठिए ना माँ। सुभाषिनी कहती है आप बहुत सुंदर गाती हैं, आप हमारी लड़कियों को चंडीदास के एक दो गीत जरूर सुनाकर जाइएगा।
6: किंतु मेरे गाने से इनकी पढ़ाई का हर्ज नहीं होगा।
3: क्या कहती है माँ, आप गीता भागवत का पाठ करती हैं तो उनसे आपको कुछ नहीं मिलता?
6: क्यों नहीं मिलता, जो गीता का उपदेश समझ ले उसका तो जीवन ही सुधर जाए।
3: वही तो मैं भी कहती हूँ, शिक्षा का मतलब केवल अक्षर ज्ञान थोड़ी है, शिक्षा का मतलब है व्यक्तित्व का पूर्ण विकास। आप जो घर में सुभाषिनी को अल्पना बनाना सिखाती हैं, उसे पहनने ओढ़ने का सलीका सिखाती हैं, वो भी तो शिक्षा ही है ना माँ?
6: हाँ वो तो है,
3: मेरी लड़कियाँ जीवन के हर पक्ष से, हर रंग से शिक्षा प्राप्त करती हैं, मैंने इसीलिए ये स्कूल खोला है माँ। अच्छा आजकल सुभाषिनी नहीं आ रही, तबीयत तो ठीक है ना उसकी?
6: तबीयत तो ठीक है।
3: अच्छा मीम दीदी, अब मैं चलूंगी,
6: कल से सुभाषिनी स्कूल आएगी,
3: और मैं देखूंगी आस पड़ोस की और लड़कियां भी राजी हो जाए तो, ये तो बड़ा उपकार होगा मुझ पर।
2: निवेदिता के सौम्य सहज और स्नेहपूर्ण व्यवहार से उनके विद्यालय की छात्राएं और आस पड़ोस की स्त्रियां बड़ी प्रभावित हुई।

निवेदिता सिर्फ इतने से ही संतुष्ट नहीं थी, वे चाहती थी कि भारत मुक्त हो, अज्ञान से मुक्त हो, निर्धनता से मुक्त हो और विदेशी दासता से मुक्त हो। उनका घर बंगाल के कितने ही क्रांतिकारियों का आश्रय स्थल था और उस समय जब वंदे मातरम का उच्चारण भी अपराध समझा जाता था, निवेदिता के विद्यालय में प्रतिदिन सरस्वती वंदना के साथ वंदे मातरम का स्वर भी गूंजता था।

0: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्शद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
2: आकाशवाणी लखनऊ से अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।
3: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTUEP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा नहीं जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।

0: नमकीन फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। आशा भोसले की आवाज में गुलजार के बोल थे, राहुल देवर्मन का संगीत था।
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा,
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
6: देखो जी बहार आई गांवों में।
5: जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
7: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
5: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज। सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। दो जासूस फिल्म का गाना आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में।

लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में आप सुन रहे थे दो जासूस फिल्म का ये गाना। आइए अब सुनते हैं मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में। लिखा है इसे आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। इसी के साथ आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।

दोस्तों, अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि इस कार्यक्रम में एक इबारत यानी कि टेक्स्ट हम पोस्ट करते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, और आपको उनमें से उस इबारत में से शब्द चुनना होता है और शब्दों से गाने। लेकिन आज हमने एक अलग खेल किया है, वो ये कि इबारत हमने आपके लिए लिख दी है और साथ में हमने आपसे ये कहा है कि आप भी मिलती जुलती इबारत लिखिए। उसके लिए हमने शब्द भी दिए हैं, लेकिन जरा पहले हम अपनी वाली इबारत आप तक पहुंचा दें। बहुत सारे श्रोताओं ने इबारत लिखने की कोशिश भी की है। यहां हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि जो लोग अब लिख रहे हैं इबारत, तो जरा बहुत संक्षेप में लिखें ताकि हम बहुत सारे श्रोताओं के की इबारत को शामिल कर सकें। तो सुनिए, गीत जब शब्दों की देहरी से निकलकर सुरों की दुनिया में आते हैं तो महज गीत नहीं रहते, वे मन की कोई अनकही बात बन जाते हैं। हिंदी के ललित गीतों की यही तो खूबसूरती है, इनमें प्रेम की कोमल आहट है, विरह की नमी है, प्रकृति की छुअन और जीवन के अनगिनत रंग हैं। कभी कोई गीत चांदनी रात में मन का हमसफर बन जाता है, तो कभी बरसात की फुहारों के साथ पुरानी यादों की खिड़की खोल देता है। कुछ गीत जो बरसों बाद भी कानों में पड़ते ही किसी भूली हुई गली, किसी चेहरे या किसी अधूरी कहानी तक ले जाते हैं। कुछ गीत हमारे मनमीत बन जाते हैं। कभी मन एक अजनबी से पूछ उठता है कि ये तो कहो

कौन हो तुम? तो कभी आपसे भी किसी ने पूछा है या आपने कभी पूछा है? और कभी किसी की आहट पर खुद से कहता है कोई मतवाला आया मेरे द्वारे? कभी प्रेम की ऐसी खुमारी छा जाती है कि आज मदहोश हुआ जाए मन, ये मन की बातें हैं। तो कभी दिल की बेताबी कहती है बेताब दिल की तमन्ना। नसीम है दोस्तों गीतों का संसार और मन की दुनिया, यही तो गीतों का जादू है। कुछ पंक्तियां हमारे मन के उन कोनों तक छू जाते हैं जहां शब्द भी नहीं पहुंच पाते। तो आइए शब्दों की मिठास और सुरों की रवानी में डूबते हुए शुरू करें ललित गीतों का सुरीला सफर। पर दोस्तों आज आपको भी लिखनी है चंद लाइनें, नोट करिए ये शब्द। चांदनी रात हम सफर, यादों की खिड़की मनमीत हम सफर, जीवन के अनगिनत रंग, इन शब्दों से बुनिए आप भी कोई इबारत। हमारी इबारत से शब्द और गाने भी चुनिए, इबारत अर्थपूर्ण होने चाहिए। और हाँ, मेरी वाली इबारत को काट पीट कर मत लिखिएगा, नई इबारत चाहिए। तो देखते हैं, भले ही आप दो लाइन लिखें, जैसे कहानी का एक अंश होता है, आजकल तो वन लाइनर का जमाना है कि आप अपनी कहानी को वन लाइन में, मतलब एक दो लाइन में बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला। हम जो गाना सुनवा रहे हैं उस गाने को सुनिए ध्यान से और आप बताइए कि इसमें हीरो हीरोइन कौन है, और साथ में इबारत तो आपको लिखनी ही है, वो आप लिखते रहिए। हाँ, आप को ऐसा लगता है कि गाने सुने और गाने सुनने के बाद जहन में कोई इबारत जैसी बात आती है तो लिख डालिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। चलिए अब सुनते हैं ये गाना और आपको बूझना है हीरो हीरोइन का नाम। शर्मिली फिल्म का गाना है, बता दिया हमने फिल्म का नाम, आप बताइए हीरो कौन हीरोइन कौन। गीतकार का नाम भी बता सकते हैं तो जरा बताइए।

शर्मिली फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज में, लता मंगेशकर, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में नीरज की रचना थी। सचिन देव बर्मन का संगीत था। पूछा था हीरो हीरोइन का नाम, गीतकार का नाम। सभी श्रोताओं ने बहुत जल्द और लंबी तादाद में जवाब दिया, शशि कपूर और राखी, राखी डबल रोल में। एक श्रोता की टिप्पणी है, मुझे तो चांद बहुत सुकून देता है, शायद इसलिए इसको शीतलता प्रदान करने वाला माना जाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि कल शाम तीज पर्व पर अपने हमसफर के साथ दूसरी मंजिल की खिड़की में चांद को निहार रहे थे, तब हम बीते बरस के अनगिनत रंगों में सराबोर होकर गुनगुना रहे थे, खुद पे इतराते हुए, चांदनी रात में एक बार तुम्हें देखा है। मनमीत के साथ बिताए पलों को याद करते, कब रात बीत गई पता ही न चला, सहसा चिड़िया चहकने लगी, कितना सुकून था उन पलों में। एक श्रोता लिख रहे हैं कि रात के हम सफर थक के घर को चले, फिर चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, ये तो कहो कौन हो तुम, कोई मतवाला आया, जरा सी आहट होती है आज मदहोश हुआ जाए, बेताब दिल की तमन्ना हो, दिल की तमन्ना थी मस्ती में। क्या बात है भाई, आपने तो बहुत सारे गानों के बोल लिख डाले हैं और भी बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं। जरा अब अगली फिल्म के लिए लिखिए कि ये फिल्म आपने कब और कहाँ देखी थी, एक बात। दूसरी बात, कौन है कलाकार, हीरो हीरोइन, किन पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना, और साथ में गीतकार और संगीतकार का नाम। बहुत सारे सवाल एक साथ पूछ लिए, कोई बात नहीं, जो जवाब आपको सूझे वो दीजिए।

लव इन टोक्यो फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र की रचना थी, शंकर जयकिशन की धुन थी और जॉय मुखर्जी आशा पारेख पर फिल्माया गया था ये गाना। हमारे श्रोताओं ने इसका जवाब भी सही दिया और बहुत जल्द जवाब आया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आज की इबारत सुरमयी पुकार है, जब चांदनी रात में किसी गीत के वादी संवादी सुर मिलकर सतरंगी आसमान खोलते हैं, यादों की खिड़की खोलकर जब कोई मतवाला मनमीत द्वार पर दस्तक देता है तब रूह का कोना कोना रोशनी से जगमगा उठता है। जीवन के अनगिनत रंग लिए इन गीतों में उड़ने को अनंत खुला है और डूबने को अतल गहराइयां भी। चांदनी रात में गीतों की तान जब सोए कंदीलों को जगा देती हैं तब हम सफर के साथ तारों जड़ी ओढ़नी ओढ़कर कोई प्रियतमा पैरों के झांझर उतार बेताब दिल की तमन्ना लिए किसी योगी की तरह गीत की तरंग में ध्यानस्थ हो जाती हैं। गीतों की मीठी विकल पुकार के साथ पलके नींद की दस्तक पर झपकती हैं और मन को पंख और कल्पना को परवाज देते अमर और मधुर गीतों की अनुगूंज पहरों पहर बनी रहती है। क्या बात है भाई, बहुत ही ललित भाषा में आपने ये इबारत लिखी है और बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि यादों की खिड़की खुली तो जीवन के अनगिनत रंग नजर आए, मनमीत की मीठी यादें मन में हलचल मचाने लगी, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, चांदनी रात में एक बार तुम्हें देखा है, ओ मेरे हम सफर मेरे हम सफर। बहुत सारे गाने इन्होंने लिखे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई इन टिप्पणियों के लिए और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमने आपसे कहा कि आप भी इबारत लिखिए तो आप सभी लिख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जिन्होंने नहीं लिखी है इबारत वो भी लिखे और जो शब्द हमने दिए हैं उन शब्दों को शामिल करते हुए भले ही दो तीन लाइन की इबारत लिखे, हम जाना चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि किसी के भीतर एक कहानीकार छुपा होता है, कवि छुपा होता है, जिन्हें बस कहने की जरूरत होती है। तो टटोलिए कहीं आपके भीतर भी कोई कथाकार तो नहीं छुपा। फिलहाल चलिए अगला गाना सुनते हैं, बूझना है आपको फिल्म का नाम। बहुत आसान सवाल है, फिल्म का नाम बूझना है और फटाफट बताइए। विविध भारती के फेसबुक पेज पर चाहें तो गीतकार का नाम भी बूझ सकते हैं और ये भी बताइएगा कभी आपने गुनगुनाया है इस गाने को

फिल्म थी दी ट्रेन, और यही था हमारा सवाल। श्रोताओं ने त्वरित जवाब दिया, कुछ श्रोताओं ने बहुत जल्द लिख दिया दी ट्रेन, यहाँ कि मैंने पूछा और उधर उनके जवाब आने शुरू हो गए हैं। इसी तरह से आप फौरन जवाब देते रहिए और हम आपकी टिप्पणियाँ आप तक पहुँचाते रहेंगे। जिन्होंने इबारत नहीं लिखी है वो अभी भी कोशिश कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि लंबी इबारत लिखें। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म लव इन टोक्यो के लिए कि ये बड़ा ही बेहतरीन गाना है। इस गीत में किसी प्रिय के आने की खुशी, मन की हल्की सी शरारत और प्रेम की मीठी आहट महसूस होती है, जैसे किसी की दस्तक से अचानक सूना सा मन भी खिल उठे। कोई मतवाला आया मेरे द्वारे, सुनते ही लगता जैसे कोई चुपके से मन के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी हो। गीत की मिठास लता जी की आवाज मिलकर प्रेम की ऐसी हल्की सी आहट देती है जो सुनते ही चेहरे पर मुस्कान ले आए। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं जा रहा था मंदिर दर्शन करने, सोचा दर्शन के बाद रोज के कामकाज यानी दुकान खोलने के लिए दर्शन करने के बाद रास्ते में पुराना दोस्त मिल गया। कहने लगा बहुत दिन हुए कोई फिल्म देखने चली, मॉर्निंग शो में राज कपूर जी की फिल्म चल रही है आवारा देखी, लगता है कोई पुरानी बात इन्हें याद आ गई। और जरा बीच में हम आपसे पूछ रहे हैं कि अगला गाना कौन सा होना चाहिए, कहीं आपकी प्लेलिस्ट में यही गाना तो नहीं जो हम सुनवाएंगे, जरा बूझिए ये भी। और अगले दो तीन गाने आप सुझाइए, हम आप जो सुझाएंगे गाना वही गाना आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन हाँ इबारत वाले शब्द होने चाहिए। एक श्रोता ने लिखा है कि वो मेरा मनमीत जो मुझे अनायास एक चांदनी रात में ट्रेन के सफर में मिल गया, एक रात के लिए मेरा हम सफर, ट्रेन की खिड़की यादों की खिड़की बनी, कितनी अनकही बातें जबान पर आ गईं, और ट्रेन रुकी उसको जाना था मुझे भी, अब के पिछड़े कभी न मिलने को। चलिए अब बारी है गाने की, गाना सुनिए और बूझिए जरा फिर एक बार हीरो हीरोइन का नाम, साथ में गीतकार का नाम, देखते हैं गीतकार का नाम सही बता पाते हैं आप या नहीं।

हंसते जख्म फिल्म का गाना था। हमने गीतकार का नाम पूछा था, बहुत जल्द जवाब आया श्रोताओं की ओर से। कैफी आजमी के बोल थे मदन मोहन का संगीत था। कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है, कुछ अधूरी रह गई तमन्नाओं के जख्मों को नगमे अपनी मरहम से, नासूर बनने से रोकती है एक ऐसा ही गाना है। जाने वो कैसे लोग थे जिनको प्यार से प्यार मिला। एक श्रोता ने लिखा है कि खो जाती सुधबुद जब खुलती यादों की है वो खिड़की, इस चांदनी रात की शीतलता अंतर मन को है छूती, वो हम सफर बना मनमीत जब चले हैं बन साथी, जीवन के अनगिनत रंगों की परिभाषा तब है सजती। भाई जो आपने इबारत लिखी है उसके जो शब्द मैंने दिए थे उन शब्दों से गीत के बोल नहीं लिखे, जरा वो शब्द टटोलिए और उसके गीत भी लिख डालिए। अभी हमने आपसे पूछा था कि कौन से वो गाने हैं जो आप सुनना चाहते हैं इस समय, तो कुछ श्रोताओं ने लिखा है और कुछ श्रोताओं ने नहीं लिखा है, तो हम जो गाने आप लिख रहे हैं वही गाना हम अगला सुनवाएंगे। उसके बाद कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं जरा फिल्म का नाम जरूर लिखिए। एक श्रोता की टिप्पणी है कि गीत सिर्फ कागज पर लिखे शब्द न रहकर सुरों की सांसें पाते हैं तो वो सीधे रूह में उतर जाते हैं। हिंदी के सुरीले और ललित गीतों का यही तो जादुई असर है। इनमें कहीं किसी की यादों की महक है, कहीं पहले मोहब्बत की मासूमियत है, तो कहीं तन्हाई का सुकून भरा सन्नाटा है। कभी कोई धुन दिल के सुनेपन को गुदगुदा जाती है, तो कभी कोई बंदिश आंखों में गुजरे जमाने की कोई खास तस्वीर सजा देती है। बहुत बड़ी बड़ी टिप्पणी लिख रहे हैं आप, जरा छोटी छोटी टिप्पणी लिखिए ताकि बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां शामिल हो सके। अब जरा सुनिए ये गाना, आप सभी की ओर से गाना आया है, बताइए फिल्म का नाम और गीतकार संगीतकार का नाम भी। इबारत में कौन सा शब्द है जिसके जरिए ये गाना सुनवाया जा रहा है?

आशिक फिल्म का गाना था, मुकेश की आवाज थी, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत था और कुछ श्रोताओं ने बहुत सही जवाब दिया, सही जवाब दिया और जल्द जवाब दिया, कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है और अभी भी कुछ श्रोता लिख रहे हैं। तो आप अब बताइए कि अगला गीत कौन सा लिया जाए, मतलब आपके जहन में कौन सा गीत आ रहा है, हमारी इबारत से शब्द चुनकर बताइएगा और तब तक हम आपकी टिप्पणी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि सुरीला सफर और विविध भारती सुनते सुनते कभी गर्म कभी ठंडी हवाओं के झोंकों से यादों की खिड़की खुल जाती है और मन पुरानी यादों में खो जाता है। याद आती है वो बहुत सारे प्रोग्राम के नाम लिखे हैं, भूले बिसरे गीत और ऐसे गीत जो जीवन से आज भी जुड़े हैं, जीने का सहारा बनते हैं, जैसे एक दिन बिक जाएगा, नदियां चले चले रे धारा वगैरह वगैरह। भाई भूले बिसरे गीत तो आज भी प्रसारित होता है सुबह 7 बजे, आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि हिंदी फिल्मों के गीत न होते तो हम सभी संगीत प्रेमियों श्रोताओं का जीवन नीरस हो जाता। ये बात तो बिल्कुल सच है, हम सभी का जीवन नीरस हो जाता। एक श्रोता लिख रहे हैं कि ललित गीत केवल शब्द और सुरों का मेल नहीं बल्कि मन की अनकही भावनाओं की आवाज होते हैं, इनमें कुछ भाव ऐसे होते हैं।

0: जिन्हें शब्द कह नहीं पाते मगर एक मधुर गीत उन्हें सहज ही दिल तक पहुंचा देता है। और दोस्तों यूं भी होता है कि जब हम एक गीत सुन रहे होते हैं तो मन में बहुत सारे विचारों का झोंका आता है, तो आप बताइए कि आपके मन में इस समय कौन से विचार आ रहे हैं और साथ में आप मन की बात को कब कब सुनते हैं, मतलब मन में जो बातें आपके भीतर आती हैं तो वो कैसे आप मानते हैं। कई बार मन बहुत कुछ कहता है जो आप नहीं करना चाहते हैं, जो नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मन में जो बात आती है लगता है इसे किसी तरह से हम पूरा कर लें। तो एक शब्द आज की इबारत में मनमीत है, उससे जुड़े हुए कौन से गाने हैं जरा बताते चलिएगा। फिलहाल प्रेम पुजारी फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, आपको बूझना है हीरो हीरोइन का नाम और गीतकार का नाम।
1: शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिल

दोस्तों, हमने आपसे मनमीत शब्द से गाना पूछा है जिसमें मीत शब्द भी चलेगा, वो गाने आप बताइए। बहुत सारे श्रोता इबारत लिख रहे हैं लेकिन गाने के बोल फिल्म का नाम नहीं लिख रहे हैं।

प्रेम पुजारी फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में नीरज की रचना थी, सचिन देव बर्मन का संगीत था और हमने आपसे फिल्म का नाम भी पूछा था, गीतकार का नाम भी पूछा था। एक श्रोता ने लिखा है कि ललित गीतों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी गायकी होती है। ओपी ने यह रवि जयदेव एआर रहमान जैसे महान संगीतकारों ने इन ललित शब्दों को ऐसे मधुर धुनों में पिरोया जिससे गीत केवल सुनने तक सीमित नहीं रह जाते बल्कि दिल में असर करते हैं। बिल्कुल सही कहा है दोस्तों आपने। एक श्रोता लिख रहे हैं कि मन का अंतर्द्वंद्व और उसका बोलना मनुष्य के जीवन की एक बहुत ही स्वाभाविक लेकिन गहरी स्थिति है। कहते हैं कि मन कभी कभी बहुत बातें करता है, मतलब है कि हमारे भीतर विचारों का एक ऐसा ज्वार उठ रहा है जिसे शांत करना मुश्किल हो रहा है। जब बाहरी दुनिया में हमारे पास बात करने या व्यस्त रहने का कोई साधन नहीं होता तब मन खुद को व्यस्त रखने के लिए खुद से ही बातें करने लगता है। दोस्तों हम तो आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि कब आप अपने आप से बतियाते हैं, कब अपने मन से बतियाते हैं, कब वो लम्हा कौन सा होता है जब आप खुद से गुफ्तगू करते हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि चांदनी रात में जब हम सफर साथ हो तो सिर्फ सफर रास्तों का नहीं होता, वो यादों का सफर बन जाता है। यादों की खिड़की से झांकता हर बीता पल कभी मुस्कान देता है, कभी आंखें नम कर जाता है। मनमीत के साथ तो जीवन के अनगिनत रंग और भी गहरे हो जाते हैं। और हमने आपसे पूछा था मनमीत शब्द से कौन सा गीत, बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, किसी ने अभिमान फिल्म का गाना लिखा है, किसी ने कुछ लिखा है और हमारे पास ये गाना है। तो जरा सुनिए ये गाना और बताइए फिल्म का नाम।

मृग तृष्णा फिल्म का ये गाना था, लता मंगेशकर की आवाज थी, संगीतकार थे शंभू सेन, और हमारे श्रोताओं ने इसका भी जवाब बिल्कुल सही दिया है और बहुत जल्द जवाब आया है श्रोताओं की ओर से। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि नगमों की दुनिया निराली होती है, कुछ नगमे तराने बन दिल की देहरी लांग ताऊ उम्र साथ चलते हैं, कुछ पुरानी अधूरी यादों को दस्तक दे जाती हैं, कुछ तन्हाई के आलम में हम सफर अतीत वर्तमान और आगामी अनंत काल तक एक सुखद एहसास प्रदान करती है। एक श्रोता ने लिखा है, आपके शब्द हमारी कविता, जीने के अनेक ढंग हैं, जीवन के अनगिनत रंग हैं, यादों की खिड़की खोल कर देखो, मेरे मन मीत चांदनी रात थी तुम भी साथ थे। एक श्रोता लिख रहे हैं कि चांदनी रात थी, खिड़की से झांकती चांद को निहारती, यादों के पन्ने को पलटने लगती है वो, हम सफर के साथ बिताए उस मीठे पल का एहसास मन को आनंदित कर देती है, जीवन में कई सुनहरे रंग खिल उठते हैं। एक श्रोता ने लिखा है, आज का सफर आपके साथ अपने खूबसूरत शब्दों की इबारत है, कितने सुंदर और भावात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, प्रत्येक शब्द के भाव और उनको संगीत के सुर में उतारना, हर भाव को जीवंत होते देखना है, जीवन के हर पड़ाव में इस तरह की बातें आम बात बन जाती हैं, कुछ यादें बन जाती हैं। और भी बहुत कुछ लिखा है, एक श्रोता ने लिखा है, चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है, और साथ साथ नगमे गाए थे हम सफर मेरे, और गानों के बोल लिख के इन्होंने माला पिरोई है। तो चलिए अब अगला गीत सुनते हैं और बूझिए जरा गीतकार संगीतकार का नाम। फिल्म है आखिरी दांव। गीतकार और संगीतकार का नाम आपको बताना है।

आखिरी दांव फिल्म का गाना था मोहम्मद रफी की आवाज, गीतकार का नाम हमने पूछा था, सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया, जल्द जवाब दिया, मजरूह सुल्तानपुरी मदन मोहन संगीतकार। और एक श्रोता ने लिखा है वाह वाह वाह जबरदस्त गीत, एक श्रोता ने लिखा वाह क्या गीत है, तेरी एक नजर की बात है, और बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं मेरी हर खुशी तेरे दम से है, मेरी जिंदगी तेरे गम से है। और एक श्रोता ने लिखा है कि धर्म पत्नी अगर रूठ जाए तो मुझे फिल्मी गीत गाकर मनाना पड़ता है। और एक श्रोता ने लिखा है नूतन बुआ जी शेखर जी मजरूह सुल्तानपुरी। भाई बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने के लिए लिखा है वाह वाह, तो अगर आपको लगता है कि अगला गीत भी आप करना चाहते हैं वाह वाह और आप सभी की पसंद का हो तो लिख डालिए अगला गीत कौन सा होना चाहिए, हम बता रहे हैं कि आपने क्या लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि चांदनी रात में जब कोई अपना हम सफर बनकर साथ चलता है तो यादों की खिड़की से बीते लम्हे भी मुस्कुराने लगते हैं, कभी मनमीत की मीठी यादें दिल को छू जाती हैं तो कभी हम सफर का साथ जीवन को और खूबसूरत बना देता है। इन्होंने आगे ये भी लिखा है किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं चलने देना छोड़कर। भाई क्या बात है, गाने तो आप बेहतरीन चुन रहे हैं लेकिन बहुत सारे श्रोताओं ने ये गाना भी चुना है, तो देखिए आपने भी चुना था क्या ये गाना, जरा फिल्म का नाम बताइए और आवाजें किसकी है बूझिए जरा, बहुत ही आसान सवाल पूछा है, देखते हैं कितनी जल्दी जवाब आता है। अगले गीत की फरमाइश भी आप कर सकते हैं, अगला गीत कौन सा होना चाहिए, हम वही गाना बजाएंगे जो आप चाहेंगे सुनना।

पूर्णिमा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में। गुलजार के बोल थे कल्याण जी, आनंद जी का संगीत था। श्रोताओं ने फिल्म का नाम सही बूझा, आवाजें भी सही बूझी। मुकेश की आवाज, लता मंगेशकर की आवाज, भला कौन नहीं पहचान सकता है। और अगले गाने के लिए हमने आपसे कहा था कि आप लिखिए कौन सा गाना हो सकता है। बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि अब आएगा चांदनी रात में, ये वाला गाना। लेकिन और भी गानों के लिए जिक्र किया है श्रोताओं ने, तो हम चाहते हैं कि और जो गाने हैं उसका भी जिक्र कीजिए। ये गाना अब आप अक्सर सुनते रहते हैं विविध भारती से, हम वो गाना सुनवाएंगे जो आप अक्सर नहीं सुनते हैं, तो जरा और गाने भी याद कर लीजिए, शायद आप वाला गाना ही हम आपको सुनवा दें। एक श्रोता ने टिप्पणी लिखी है कि वाह, मैं सुरीला सफर का पोस्ट पढ़ने से अनुमान लगा रही थी कि आज अवश्य आ पाएंगी, और देखिए आपका आगमन हो गया और आपकी बात कहने का अंदाज एक अलग ही स्तर का मन मोह लेता है, और आप सभी का अंदाज हमारा मन मोह लेता है। आप सभी जिस अंदाज में टिप्पणियां लिखते हैं तो हम भी मोहित हो जाते हैं कि कैसे आप इतनी जल्द जवाब देते हैं, कैसे इतनी सारी इबारत लिख लेते हैं, हमें भी अचरज होता है और अच्छा भी लगता है। यही तो है आपका और विविध भारती का साथ, इसीलिए तो सुरीला है और हमेशा हमेशा के लिए है। एक श्रोता ने लिखा है कि चांदनी रात में जब कोई अपना हमसफर बनकर साथ चलता है तो यादों की खिड़की खुलती है, ये वाली लाइन मुझे लगता है बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी है। एक श्रोता ने लिखा है कि मन का मीत प्रेमी प्रियतम या साजन हो सकता है, वहीं दूसरी ओर दिलदार दोस्त या मित्र सखा हो सकता है। और बहुत सारे श्रोताओं ने आज इबारत लिखी है और हमने कोशिश की कि सभी की टिप्पणी आज हम शामिल करें। अब सुनिए ये गीत और जरा याद कीजिए, आपने सोचा था कि ये गाना आप सुन सकेंगे, फिल्म का नाम अगर बता सकते हैं तो बताइए। गीतकार और संगीतकार का नाम भी आपको ही बताना है, बूझिए फिल्म का नाम। गाने के बोल तो समझ गए होंगे ना अब तक, या अभी नहीं समझ में आया, इंतजार कीजिए अभी बोल आ ही जाएगा।

फिल्म का नाम दोस्तों हमने आपसे पूछा था, फिल्म थी मुक्ति, मुकेश की आवाज थी, आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत था। सभी श्रोताओं ने जानकारी बिल्कुल सही दी, हमें लगता है आप सभी की जानकारी बहुत समृद्ध है, इसी तरह से समृद्ध बना रहे। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा वाह वाह ये गाना तो बहुत दिनों बाद सुना, और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है वाह सुरीला सफर सुरीली प्रस्तुति, तो हम भी आपसे कह रहे हैं वाह सुरीली टिप्पणियां, और बड़े अच्छे अंदाज में आज आपने टिप्पणी भेजी है, इस बात के लिए सभी का शुक्रिया। अब आज का सुरीला सफर कार्यक्रम समाप्त होता है, कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

दुनिया बहुत तेजी से बदलती चली जा रही है। एक जमाने में इंटरनेट इतना सुलभ नहीं था, आज इंटरनेट की स्पीड इतनी तेज है कि लोग अपने मोबाइल फोन्स पर तरह तरह का वीडियो कंटेंट भी देख सकते हैं और बहुत ही उन्नत किस्म के वीडियो गेम्स भी खेलते हैं। जो बुजुर्ग पीढ़ी है उसके लिए चुनौतियां बढ़ जाती हैं और तब सामने आना चाहिए युवा पीढ़ी को। हमें अपने परिवार और आस पड़ोस के बुजुर्गों को टेक्नोलॉजी सिखानी चाहिए। मुमकिन है कि हमारे आसपास के बुजुर्ग टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए तैयार न हों या फिर उसे अपनाने से डरते या सकुचाते हों। हमें आगे बढ़कर उन्हें टेक्नोलॉजी सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

0: गजब भयारे भाई हाय हाय हाय, चेला गुरु को चूना लगाए, जनता को ज्योतिषि उल्लू बनाए, और दूध वाला दूध में पानी मिलाए।
1: जिसको ना झाड़ू पकड़ना भी आए, वो बेटा अपना ही झंडा उड़ाए। आदमी भी कैसा साजी है हाय, मौका मिले तो भगवान भेज खाए।
0: मौका मिले तो भगवान भेज खाए।

आम धारणा ये है कि मोबाइल फोन्स अमूमन युवा पीढ़ी या आगे की पीढ़ी के काम के उपकरण हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग रिटायर हो चुके हैं, जो उम्र के एक ऐसे दौर पर हैं जब उनके पास बहुत सारा खाली समय है, उनके लिए मोबाइल बहुत उपयोगी बन सकते हैं। बच्चे जब दूर देश चले गए हों, दूसरे शहरों में रह रहे हों, तो वीडियो कॉल करके उन्हें देखा जा सकता है, उनसे बातें की जा सकती हैं। सवाल ये है कि हम अपने बुजुर्गों को ये सब बताएं और रोज धीरज के साथ उन्हें सिखाएं। मुमकिन है कि एक हफ्ते, दो हफ्ते या एक महीने में वो इस टेक्नोलॉजी में माहिर हो जाएंगे और उसके बाद देखिएगा उनके चेहरे की चमक क्या कहती है।

हर चीज के दो पहलू होते हैं, उसी तरह टेक्नोलॉजी के भी दो पहलू हैं, एक अच्छा और एक बुरा। जहां एक तरफ युवा मोबाइल फोन और इंटरनेट की लत के शिकार होते चले जा रहे हैं, अपना जरूरत से ज्यादा वक्त वो इस स्क्रीन के सामने बिताते हैं, वहीं दूसरी तरफ इसके संयमित इस्तेमाल से सबका भला हो सकता है। आज जहां किताबें बहुत ज्यादा मात्रा में खरीदना मुश्किल बनता जा रहा

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, भारत सतत विकास के अंतर्गत चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच की बैठक गांधीनगर में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्मयोगी बताया। अमरीकी अदालत ने विदेशी छात्रों और पत्रकारों के लिए ट्रंप प्रशासन के नए वीजा नियमों पर रोक लगा दी है। मौसम विभाग ने आज पंजाब, दिल्ली, कच्छ, तमिलनाडु, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज शाम दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन उद्योग सहभागिता सम्मेलन विमर्श 2026 को संबोधित करते हुए ये बात कही।
1: अभी पिछले कुछ वर्षों में हमने डिफेंस सेक्टर में जो रिफॉर्म्स देखे हैं, मैं कह सकता हूं कि वह अनप्रेसिडेंटेड है। हमारे प्रधानमंत्री के विजन और लीडरशिप में हमने कई गेम चेंजिंग फैसले लिए हैं, चाहे वो पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट हो, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हो, आईडेक्स हो, अदिति हो, या फिर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का 25% प्राइवेट सेक्टर के लिए एलोकेशन का फैसला हो।
0: श्री सिंह ने डीआरडीओ तथा उद्योग के बीच साझेदारी भारत को रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
1: टीडीएफ के माध्यम से स्टार्टअप्स को ग्रांट्स दिए जा रहे हैं और अनेक टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन स्टेज तक पहुंच चुकी हैं। आईडेक्स ने भी डिफेंस इनोवेशन के लिए एक नया इकोसिस्टम भी तैयार किया है, जहां स्टार्टअप्स हमारी वास्तविक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के आधार पर सॉल्यूशंस विकसित कर रहे हैं। अब डीआरडीओ और इंडस्ट्री की पार्टनरशिप केवल प्रोडक्शन तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। रिसर्च, डिजाइन, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग की पूरी वैल्यू चेन में साझेदारी हमें बढ़ानी होगी।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि संघर्षों और विरोधाभासों से जूझ रही दुनिया में नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता उल्लेखनीय है। भारतीय विश्व मामलों की परिषद ICWA के रजत जयंती समारोह में उन्होंने सर्वसम्मति से अपनाई गई नई दिल्ली घोषणा को बड़ी उपलब्धि बताया। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि भारत वैश्विक चुनौतियों पर अपने दृष्टिकोण को अधिक आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश के हित तेजी से दुनिया भर से जुड़ रहे हैं।
2: इंडिया टुडे, भारत का संबंध आज कहीं अधिक व्यापक देशों और क्षेत्रों से है। हमारी जिम्मेदारियां और दुनिया की भारत से अपेक्षाएं दोनों बड़ी हैं। भारत वैश्विक चुनौतियों पर अपने दृष्टिकोण को अधिक आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर रहा है। भारत की वैश्विक भूमिका बढ़ने के साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हमारी बौद्धिक भागीदारी को भी उसी गति से आगे बढ़ना होगा। आवर इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट विद इंटरनेशनल अफेयर्स मस्ट कीप पेस।
0: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय जलशक्ति मंत्री CR पाटिल, केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय जल संसाधन सचिव और संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव भी उपस्थित थे। इससे पहले इसी वर्ष जून में गृहमंत्री अमित शाह ने इस संबंध में इन प्रदेशों के मुख्यमंत्री

0: के साथ बैठक की थी। बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि केशव बहुद्देशीय बांध परियोजना की 90% लागत केंद्र सरकार द्वारा जबकि शेष 10% लागत 6 भागीदार राज्यों द्वारा वहन की जाएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध है।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सतत विकास ढांचे में चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को समाहित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया है। गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच WCEF 2026 के 10वें संस्करण के उद्घाटन में श्री यादव ने कहा कि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, EPR विनियमों और मिशन लाइफ जैसी पहलें चक्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण कदम है।
2: अंडर द EPR मैकेनिज्म,
3: EPR व्यवस्था के अंतर्गत EPR प्रमाण पत्रों का हस्तांतरण पुनर्चक्रण कर्ताओं को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है, जिससे क्षमता विस्तार, तकनीकी उन्नति और पुनर्चक्रण गतिविधियों में वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। ये सभी मिलकर संपूर्ण पुनर्चक्रण मूल्य श्रृंखला में रोजगार सृजन और आजीविका में योगदान करते हैं। विभिन्न EPR ढांचों के अंतर्गत 83,000 से अधिक उत्पादक और 4,802 पुनर्चक्रण कर्ता पंजीकृत हैं।
0: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है। 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक हितधारक इसमें भाग ले रहे हैं। इसका विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। एक रिपोर्ट।
4: गांधीनगर में आयोजित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व यानी कि EPR विनिमयों और मिशन लाइफ जैसे पहलों को भारत की चक्रीय अर्थव्यवस्था यात्रा के लिए महत्वपूर्ण बताया। ब्रिक्स नई दिल्ली घोषणा पत्र, भारत यूरोपीय संघ सहकार में चक्रियता के बढ़ते महत्व का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि चक्रियता की शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए। समारोह को संबोधित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि विकास, पारिस्थितिकी, समृद्धि और स्थिरता को एक साथ आगे बढ़ना होगा। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिनिश इनोवेशन फंड सिट्रा और गुजरात सरकार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस दो दिवसीय मंच में AI के अनुप्रयोग, हरित ऊर्जा, टिकाऊ वित्त सुशासन और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र जैसे विषयों पर 4 पूर्ण सत्र और 16 विषयगत सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार से कहा कि नए सदस्यों की नियुक्ति होने तक अर्ध न्यायिक निकायों के सेवानिवृत्त होने वाले पीठासीन अधिकारियों और सदस्यों का कार्यकाल करीब एक महीने तक बढ़ाने पर विचार किया जाना चाहिए, जिससे कामकाज प्रभावित न हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। ये प्राथमिकी बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद दर्ज की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने रेजीनगर सीट से शाखाराव सरकार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि नंदीग्राम विधानसभा सीट से हसीरानी रथ पार्टी की उम्मीदवार होंगी। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के रात्रि भोज में कांग्रेस शासित 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अनुपस्थिति की आलोचना की। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा नेता और सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि राजनीतिक और वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब भारत और राष्ट्रहित की बात आती है तो किसी भी प्रकार के मतभेद की कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। आज राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस हर साल 15 सितंबर को भारत के महानतम इंजीनियरों में से एक मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
5: इंजीनियर्स भारत के विकास की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। वे देश के जरूरी बुनियादी ढांचे को तैयार करने के साथ साथ नई तकनीकों और ज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। एम विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने नई तकनीकों, दूरदर्शी योजना और व्यवहारिक समाधानों के जरिए देश के बुनियादी ढांचे के विकास में बड़ा योगदान दिया। आज जब भारत तेजी से तकनीकी विकास और बदलाव

0: एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है, तब इंजीनियर्स की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। रिशु के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्मयोगी बताया। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि एम विश्वेश्वरैया एक इंजीनियरिंग प्रतिभा थे, जिनकी राष्ट्र निर्माण की दूरदृष्टि नागरिकों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी।
2: महान इंजीनियर्स की हमारी विरासत में एक ऐसा रत्न भी हमें मिला, जिसके कार्य आज भी लोगों को अचंभित कर रहे हैं, और वे थे भारत रत्न डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। उन्हीं की याद में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे देश के इंजीनियर पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बना चुके। मैं इस अवसर पर सभी इंजीनियरों को उनकी निर्माण शक्ति को आदरपूर्वक नमन करता हूं।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने भी एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट, @AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी छात्रों और पत्रकारों के रहने की अवधि पर लगाई गई सख्त सीमाओं के नियम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि इस नीति को लागू करने से अमेरिका की अर्थव्यवस्था और उच्च शिक्षा प्रणाली को भारी नुकसान हो सकता है। ट्रंप प्रशासन ने इस साल जुलाई में इस नियम को अंतिम रूप दिया था। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर हुई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दूरदर्शन अपनी कई बेहतरीन सेवाओं जैसे सैटेलाइट और डायरेक्ट टू होम सर्विस के जरिए शत प्रतिशत आबादी तक पहुंचने वाला माध्यम है।
4: 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन की स्थापना के साथ भारत में टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत हुई। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसी दिन दूरदर्शन के पहले प्रसारण का उद्घाटन किया था। वर्ष 1982 में दिल्ली एशिया खेलों के दौरान रंगीन टेलीविजन की शुरुआत ने दूरदर्शन के प्रसारण और दर्शकों की संख्या को नई ऊंचाई दी। वर्तमान में दूरदर्शन के 35 सैटेलाइट चैनल और 66 स्टूडियो केंद्र हैं। ये 24 से अधिक भाषाओं और विभिन्न बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित करता है। दूरदर्शन ने रामायण, भारत, हम लोग, बुनियाद, चाणक्य, मालगुडी डेज, शक्तिमान, चित्रहार, फौजी सर्कस और उड़ान जैसे कई लोकप्रिय और यादगार धारावाहिक भी प्रसारित किए। आरजू के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मौसम विभाग ने आज हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली, कच्छ, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पुदुच्चेरी, केरलम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता जारी की। एक रिपोर्ट।
5: राज्य के 15 जिलों के 88 प्रखंडों में करीब 49 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय दल के बिहार दौरे को लेकर उनकी गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत हुई है।
6: आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक टीम बनाने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री जी का फोन आया था कि हम लोग एक केंद्रीय टीम केंद्रीय मंत्री के स्तर पर बिहार शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में आएगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ।
5: आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
1: भारत और अफगानिस्तान के बीच 2020 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। पहले मैच में रविवार को भारत ने 7 विकेट से जीत हासिल की थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। तीसरा मैच बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में 0.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 337 अंक गिरकर 74,445 पर आ गया, जबकि निफ्टी 130 अंक गिरकर 23,268 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, भारत सतत विकास के अंतर्गत चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध।

है। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच की बैठक गांधीनगर में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्म योगी बताया। अमरीकी अदालत ने विदेशी छात्रों और पत्रकारों के लिए ट्रंप प्रशासन के नए वीजा नियमों पर रोक लगा दी है। मौसम विभाग ने आज पंजाब, दिल्ली, कच्छ, तमिलनाडु, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज शाम दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का ये पहला गीत, आवाज लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है आकाशदीप। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं चित्रगुप्त।

कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और साथियों का गाया हुआ, फिल्म का नाम है अमर ज्योति।

0: la la la la la la la.
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर,
0: सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन।
1: सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा,
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

रोशन के संगीत निर्देशन में ये था शकील बदायूनी का लिखा गीत, स्वर था मन्ना डे का और फिल्म का नाम था बेदाग।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
0: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज है। फिल्म का नाम है चांद और सूरज। इसे शैलेंद्र ने लिखा है और धुन बनाई है सलील चौधरी ने।

आइए सुनते हैं खयाम साहब के संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत। गायिका हैं सुमन कल्याणपुर और फिल्म का नाम है मोहब्बत इसको कहते हैं।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला और गड्डी ले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: ये आवाज थी मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम था भीगी रात। इसे मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा था और धुन बनाई थी रोशन ने।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले,
1: जो संगीत की साधना

0: एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सखी सहेली, बस थोड़ी ही देर में।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाले सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
2: आरती श्रीवास्तव का
1: प्यार भरा
2: नमस्कार।
1: कहिए आरती, कैसी हो?
2: बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, क्योंकि चल रहा है गणेश उत्सव।
1: बिल्कुल, और हम खा रहे हैं मोदक। भाई घर घर में गणपति बप्पा के आगमन की जो तैयारी हम पिछले कई दिनों से कर रहे हैं, और लोग अपने घर पर बुला रहे हैं, बाकायदा भोजन करवा रहे हैं और गणपति बप्पा को याद भी कर रहे हैं।
2: बिल्कुल, और जब अलग अलग घरों में जाओ ना, जो वो शोभा देखने को मिलती है ना, इतनी सुंदर झांकी सी सजा के रखते हैं गणपति बप्पा को, इतना सुंदर सजाया हुआ है, उनके चारों तरफ कहीं फूल हैं तो कहीं अलग अलग तरीके की उन्होंने सजावट करके रखी हुई है, बहुत अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, जब हम लोग हमें बुला रहे हैं और हम उनके घर जाते हैं तो देखते हैं कि इतने सुंदर तरीके से बप्पा को उन्होंने सजाया है, आसपास गुलाबी फूल, कहीं लाल फूल, कहीं पीले फूलों से सजावट की गई है, और आसपास वाद्य यंत्र भी रखे गए हैं। कई जगह मैंने देखा सितार रखा है, तानपुरा रखा है, इस तरह से भी जो है उस मंदिर को लोगों ने अपने घर में सजाया है।
2: बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगता है देख के, एक सकारात्मक अपने अंदर आते हैं ना, एक ऐसी भावना आती
1: बिल्कुल,
2: है
1: बिल्कुल।
2: कि चलो ये जो त्योहारों के दिन होते हैं ना, जब हम निकलते हैं तो वहाँ भी जो सड़कों पे भी जाइए तो वहाँ पर भी इतना अच्छा सब जगह जगह देखने को मिलता है कि सजावट है, दुकानें भी सजी हुई हैं, हर जगह बहुत अच्छा लगता है।
1: लोगों का जो उत्साह है वो देखते ही बनता है, और कहते भी हैं कि जो गणेश जी हैं सिर्फ विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि ज्ञान और विवेक के प्रतीक भी हैं, तो लोगों में जो है उनका बड़ा ही एक महत्व है। हम ना जैसे ही हमारा कोई काम नहीं बनता, हम तुरंत गणपति बप्पा मोरिया को याद करने लगते हैं और कहते हैं कि हे गणेश देवता, ये जो भी विघ्न बाधाएं आ गई हैं उन्हें आप दूर कर दें और हमारे जीवन को सुचारू रूप से चला दें, है ना?
2: बिल्कुल,
1: तो हम यही कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के जरिए भी कि भाई जो ये खास दिन हम मना रहे हैं, हमारे जो बप्पा हैं हमारे जीवन के सभी विघ्न हर लें और खुशियों के रास्ते हमारे सभी श्रोताओं के, सभी सखियों और सखाओं के जीवन के खोल दें, ताकि हम अपनी जो राह है जहाँ जगह जगह पर हर्डल्स हमें दिखाई देती हैं वो न दिखाई दें और हम अपना रास्ता अच्छे तरीके से तय कर लें।
2: बिल्कुल, मीठा खाते खाते है ना।
1: हाँ बिल्कुल, मोदक के साथ साथ और एक सुरीला गीत भी सुन लेते हैं, लेकिन इससे पहले हमारे श्रोता तो जानना चाहेंगे ना, आज आप क्या विषय लेकर आई,
2: कौन से विषय पे हमें बातें करनी है, ये भी जानना जरूरी है। तो आज हम लेकर आए हैं जो विषय है वो है खत्म होती जा रही सहनशीलता।
1: ओहो,
2: किस तरीके से हम अपनी सहनशीलता को खत्म करते जा रहे हैं और हम उतावले हो रहे हैं हर चीज के लिए, तो इसके बारे में भी
1: हम तुरंत किसी चीज को पाना चाहते है ना। पहले सहन शक्ति होती थी हमारे अंदर, और अभी ये हो गया है कि हमें किसी ने कुछ कह दिया है तो हम तुरंत उसका जवाब दे देते हैं। पहले हम पहले सोचते थे, गुनते थे, मनन करते थे कि हम इसका जवाब देना भी है कि नहीं देना है, है ना, शांत रहते थे, लेकिन अभी तुरंत जवाब देना सीख गए हैं
2: जी। तो और हम सिर्फ अभी मुंह से जवाब नहीं देते, हाथ पैर भी चलने लगते हैं।
1: हाँ, ये और भी गलत तरीका है। तो ये जो आपने कहा कि सहन शक्ति खत्म हो गई, इस पर वाकई हम चर्चा करेंगे और अपने श्रोताओं से भी चाहेंगे कि वो बताएं कि उनके जीवन कितनी सहन शक्ति बची है।
2: बिल्कुल, वो अपने विचार हमारे साथ साझा करें। साथ ही हम बात करेंगे सखी विशेष के अंतर्गत सुमिता घोष की, जो कि रंग सूत्र की संस्थापक हैं।
1: क्या बात है।
2: और आज हम मुहावरों की दुनिया में लेकर आए हैं कान भरना।
1: बहुत से लोगों का शौक होता है ये, आपको पता है ना कि लोग एक दूसरे के कान भरते रहते हैं। घरों में देख लीजिए, पड़ोस में देख लीजिए, कार्यालयों में देख लीजिए,
2: हर जगह
1: आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके लिए किसी दूसरे का कान भर रहे हैं।
2: बिल्कुल,
1: और सामने वाले का कान भी कच्चा होता है।
2: बिल्कुल, इसी के साथ में जुड़ा हुआ कि आपके कोई कान भर रहा है तो आप कान के कच्चे हैं, इसका मतलब आप जो बातों में आ रहे हैं
1: और बातों में आ जाते हैं और उसे सच्चा मान लेते हैं।
2: बिल्कुल, और आज हम बात करने जा रहे हैं हल्की फुल्की बातों के अंतर्गत खाने की अतरंगी आदतों की।
1: जैसे
2: कि किसी किसी को शौक होता है ना कि जलेबी को सॉस में डुबो के खाने का।
1: बिल्कुल
2: अजीब अजीब, सच में मैंने देखा है, शौक होते हैं लोगों के। और इस तरीके की बातों पे हम बात करें, क्योंकि हमारे जो श्रोता हैं, जो सखियां हैं, जो सखा हैं, क्या उनके अंदर भी इस तरीके की कोई आदत है कि उनको मीठे के साथ नमकीन को मिक्स करके खाना अच्छा लगता है, या कुछ इस तरीके से जैसे मैं मैंने बताया जलेबी को सॉस में डुबा के खाना अच्छा लगता है।
1: अच्छा।
2: तो इस तरीके की अगर आदतें हैं आपके अंदर या आपके किसी जानने वाले के अंदर तो आप हमारे साथ उसको साझा करिए।
1: हाँ बिल्कुल, एक अलग किस्म की ये आदतें हैं जो हर एक में नहीं होती और हर एक इस तरह का स्वाद लेना पसंद भी नहीं करता है।
2: जी।
1: तो आप बताइएगा कि आपके घर में आप कोई व्यंजन बनाते हैं या किसी के घर जाते हैं या आपके घर में बच्चे ऐसा करते हो कि किसी चीज के साथ कोई ऐसी चीज
2: जो बहुत
1: अजीब होती, कॉम्बिनेशन ही नहीं उस चीज का, है ना। तो इस तरह की बातें हम चाहेंगे आज बहुत अच्छी तरीके से हम श्रोता के साथ सेलिब्रेट करेंगे। और अभी गीत सुन लें।
2: बिल्कुल सुनते हैं।

0: आरती, ये गीत तो बहुत ही सुंदर था और बहुत कम सुनने में आया है ये गीत, है
1: बहुत
0: ना?
1: प्यारा लगता है ना।
0: हाँ। अच्छा एक बात बताओ आरती, अगर तुम्हारे घर पर किसी जरूरी फैसले पर सबकी राय ली जाए तो क्या मानती हो तुम, वो लोकतंत्र है?
1: बिल्कुल लोकतंत्र माना जाएगा उस चीज
0: माना
1: को
0: जाएगा?
1: मेरी नजर में तो माना जाएगा।
0: बिल्कुल, मतलब बात छोटी सी है लेकिन लोकतंत्र की जो भावना है हम समझते हैं यहीं से शुरू हो जाती है,
1: जी,
0: है ना?
1: जी।
0: सबकी बात सुनी जाए और फैसले में लोगों की भागीदारी भी हो, और यही वजह है कि हर साल हम 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाते हैं। और ये दिन हमें ये भी याद दिलाता है आरती कि लोकतंत्र केवल चुनाव और मतदान तक सीमित नहीं होता, ये समानता, स्वतंत्रता, भागीदारी, संवाद और जिम्मेदारी की भावना से भी जुड़ा होता है।
1: बिल्कुल, इसको एक उदाहरण देके समझा सकते हैं लोकतंत्र को।
0: हाँ?
1: बहुत छोटा सा उदाहरण है।
0: हाँ?
1: आप शायद हंस भी पड़े इस पर कि सोचिए कक्षा में पिकनिक के लिए दो जगहों के नाम सामने आए। एक बच्चा बोला मुझे पहली जगह पसंद है और दूसरा बोला मुझे तो दूसरी जगह पसंद है।
0: ठीक है,
1: अगर शिक्षक जो है जो पढ़ा रहा है वो बिना किसी की बात सुने खुद ही फैसला दे दे कि तो ये भागीदारी वाली प्रक्रिया तो नहीं कही जाएगी।
0: बिल्कुल,
1: कि नहीं ना हमने उनकी सुनी ना उनकी सुनी, हमने तो अपना फैसला लागू कर
0: दिया।
1: दिया।
0: हाँ?
1: तो लेकिन अगर सबकी राय सुनी जाए और विकल्पों पर चर्चा हो और फिर उचित तरीके से निर्णय लिया जाए तो ये लोकतांत्रिक सोच का एक छोटा सा उदाहरण है। यानी सरल शब्दों में कहें तो मेरी आवाज महत्वपूर्ण है लेकिन आपकी आवाज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।
0: ये सबसे बड़ी बात है ना,
1: जी,
0: कि हमारे विचार तो हमने थोप दिए किसी पर लेकिन सामने वाले के विचारों को देखा भी नहीं, लेकिन अगर आपने दोनों विचारों का सम्मान किया यही लोकतंत्र है।
1: बिल्कुल,
0: है ना?
1: बिल्कुल।
0: और मान लीजिए घर में आज तय होना है कि रात के खाने में क्या बनेगा, है ना, होता है ना भाई आज क्या बनाना है, तो पापा कहते हैं भाई आज तो पूरी सब्जी खाने का मन है, और बच्चे कहते हैं नहीं नहीं नहीं हमें तो पिज्जा खाना है, हमें तो बर्गर खाना है, है ना? लेकिन मम्मी कहती है कि आज तो खिचड़ी बनेगी,
1: हो गया फैसला।
0: ऐसे में क्या होता है कि वो लोकतंत्र खत्म हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: और असंतोष घर में
1: प्रजा में
0: व्याप्त हो जाता है, है ना?
1: बिल्कुल।
0: तो
1: जी, और लोकतंत्र हमें सिखाता है कि असहमत होना गलत नहीं।

0: हैं। गलत तब होता है जब हम दूसरे की बात सुनना ही बंद कर दें। तो लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि इसमें नागरिक केवल दर्शक नहीं होते बल्कि व्यवस्था में भागीदार होते हैं, यानी कि मम्मी को सबकी बात सुननी चाहिए। हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, सवाल पूछते हैं, अपनी राय रखते हैं और समाज के बेहतर भविष्य के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं।
1: बिल्कुल, और साथ ही हमेशा ये भी याद रखना चाहिए आरजी हमें कि अधिकारों के साथ साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं जिन्हें निभाते हुए लोकतंत्र का सम्मान किया जा सकता है। और अब मैं भी यहाँ सम्मान करूंगी लोकतंत्र का, आपसे पूछती हूँ कि एक अंतराल ले लें।
0: बिल्कुल लिया जाए।

0: तो इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का फिर से हम स्वागत करते हैं
1: जी।
0: तो हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है, हमारे सखियों और सखाओं ने,
1: हमारे जो सखियां हैं, जो हमारे सखा लोग हैं, सभी कुछ बहुत सारी चीजें लिख रहे हैं। तो एक हमारे जो जो श्रोता है वो लिखते हैं कि इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2007 में हुई थी। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र के महत्व को बढ़ावा देना, लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करना है और इसी उद्देश्य से प्रतिवर्ष ये दिवस मनाया जाता है।
0: बिल्कुल, हमारे श्रोता ने लिखा है कि लोकतंत्र में जनता की सरकार जनता के द्वारा और जनता के हित के लिए बनाई जाती है और लोकतंत्र का यही एक मौलिक पहलू भी है। ऐसे में लोकतंत्र के परिवर्धन और संवर्धन का ये आज का अंतर्राष्ट्रीय दिवस खास मायने रखता है और इसीलिए इसे मनाया भी जाता है।
1: बिल्कुल, और साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र केवल मतदान का अधिकार नहीं बल्कि समानता, स्वतंत्रता, सहिष्णुता और अपनी बात कहने के अधिकार का सम्मान भी है। सच्चा लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब हम दूसरों के विचारों का सम्मान करते हुए अपने कर्तव्यों को भी ईमानदारी से निभाते हैं।
0: बिल्कुल, वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2007 में एक प्रस्ताव पारित करके इस दिन की शुरुआत कर दी थी और इसका उद्देश्य दुनिया भर में लोकतंत्र के सिद्धांतों, मूल्यों और स्थिति की समीक्षा करना और इसे मजबूत करना है। यानी जब हर आवाज मायने रखती है तो लोकतंत्र बेहतर परिणाम देता है और ये खास आज के दिन मनाया जाता है।
1: बिल्कुल,
0: है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2007 में हुई और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य था लोकतंत्र के महत्व को बढ़ावा देना, लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना और इसी उद्देश्य से प्रतिवर्ष ये दिवस मनाया भी जाता है।
1: जी, तो इस समय लोकतंत्र क्या कहता है,
0: यही कि गीत सुन लिया जाए।
1: जी बिल्कुल।

0: तो आरती, हमारी बहुत सारी सखियों ने, बहुत सारी महिलाओं ने ख्वाब को हकीकत का रंग भी दिया है।
1: बिल्कुल,
0: है ना। और उसी में एक नाम है सुमिता घोष का।
1: जी, तो कहते हैं ना कि किसी के पास हुनर होना बड़ी बात है, लेकिन उस हुनर को सही पहचान और सही अवसर मिलना उससे भी बड़ी बात है। हमारे देश के गांवों में सदियों से महिलाएं खूबसूरत कढ़ाई करती आई हैं, हाथ करके एक पर बुनाई करती आई हैं, कढ़ाई करती आई हैं, और अपनी पारंपरिक कलाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाती आई हैं।
0: बिल्कुल आरती, सही कहा तुमने। लेकिन एक सवाल ये कि अक्सर इतने सुंदर काम को देखकर भी मन में आता है कि क्या इन हुनरमंद हाथों को उनके हुनर का उचित मूल्य मिल सकता है। बस इसी सवाल को अपने काम का आधार बनाया हमारी आज की सखी विशेष यानी सुमिता घोष ने।
1: जी, और सुमिता घोष का जन्म हुआ कोलकाता में और उन्होंने मुंबई से अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री हासिल की। बाद में उन्होंने अमेरिका के एक विश्वविद्यालय से कन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन में मास्टर डिग्री की उन्होंने हासिल की। और सुमिता का असली विश्वविद्यालय था उनका अपना देश, यानी कि अपना ग्रामीण भारत।
0: कितनी बड़ी बात है ना।
1: जी,
0: और एक लंबे समय तक सुमिता ने ग्रामीण राजस्थान में एक ट्रस्ट के साथ काम किया और उनका काम ग्रामीण विकास, समुदायों के सामाजिक आर्थिक विकास और विशेष रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ काम था, है ना।
1: और इस तरीके के जो लोग होते हैं ना, सच में जो ग्रामीण भारत को चुनते हैं, सच में वो कुछ कर गुजरने के लिए मन में पहले ही सोच के रखते हैं,
0: ठान लेते हैं। मैं बताऊं, मैं एक ऐसी महिला से मिली थी जो एनएसडीएन थी और उन्होंने नागालैंड जाकर वहां के जो लोग थे उनको चुना कि मैं उनको एक्टिंग सिखाऊंगी।
1: अरे वाह।
0: जो वहां का जो ग्रामीण तबका था, जो अशिक्षित था, वहां जाकर उन्होंने एनएसडी पास आउट करने के बाद वहां स्थान चुना और वहां जाकर वो आज भी काम कर रही
1: है। बहुत बड़ी बात।
0: कितनी बड़ी बात है, जबकि हम एनएसडी से निकलकर सीधा मुंबई की शरण में आते हैं, है ना, और हम फिल्मों की तरफ आते हैं, लेकिन उन्होंने वो स्थान चुना जहाँ कोई जाना नहीं चाहता और उन लोगों की तरफ कोई देखना भी नहीं चाहता है, लेकिन उन्होंने वो स्थान चुना और वहां लोगों को कलाकारी से जोड़ा। तो ऐसे ही सुमिता घोष हैं जो कि वो सोच रही थी कि कैसी संस्थाएं होनी चाहिए जो समाज में जो असमानताएं हैं और अन्याय है उसे कम करने में हमारी मदद कर सकती
1: है। बिल्कुल। और ये सब सोचते हुए उनके मन में एक विचार आकार लेने लगा था कि गांव और शहर के बीच की दूरी को कम करना बहुत जरूरी है। किस तरह कारीगर और ग्राहक के

0: सीधा रिश्ता बनाया जाए, परंपरा को आधुनिक बाजार से कैसे जोड़ा जाए, यही विचार आगे चलकर रंग सूत्र बना। लेकिन विचार को हकीकत में बदलना आसान भी नहीं था।
1: बिल्कुल, इतना आसान तो नहीं होता है। जब भी कोई व्यवसाय शुरू करना हो तो सबसे पहले उसकी जो जरूरी चीज है वो क्या है? पैसा,
0: बिल्कुल
1: पूंजी, है ना। और सुमिता घोष को भी पूंजी की जरूरत थी, लेकिन एक बड़ी समस्या सामने थी जो थी दान देने वाली संस्थाएं, और उन्हें इसलिए फंड नहीं करना चाहती थी क्योंकि रंगसूत्र एक चैरिटी नहीं बल्कि व्यवसाय के रूप में काम करने वाला सामाजिक उद्यम था।
0: बिल्कुल, और इसके अलावा बैंक भी ऋण देने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि पर्याप्त व्यवसायिक अनुभव और ऋण के लिए जरूरी चीजें उपलब्ध नहीं थी उनके पास। सुमिता के मन में यही बात चल रही थी कि अब क्या किया जाए। तभी उन्हें एक ख्याल आया, अगर इन्हीं कारीगरों के हुनर से ये संस्था बनेगी तो क्यों ना वो इसके मालिक भी बन जाए।
1: कितनी बड़ी बात उनके दिमाग में आई, जो कि हर एक के दिमाग में नहीं आती,
0: क्योंकि अपना तो सब सोचते हैं कि हम अपना व्यवसाय खड़ा कर लें, लेकिन जो हमारे साथ काम करने वाले हैं उनको, उनके लिए सोचकर इतनी बड़ी बात सोचना बहुत बड़ी
1: बिल्कुल
0: बात।
1: और कि वही मालिक भी बने, हम क्या सोचते हैं काम तो हम शुरू कर दें, मालिक भी हम बन जाएं।
0: जी,
1: है ना, हमारे विचार में यही रहता है ना ज्यादातर, कि मालिकाना हक जो है हम पाना चाहते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ कि राजस्थान के लगभग 1000 कारीगरों ने आगे बढ़कर कंपनी में 1-1000 रूपये का निवेश किया, यानी शुरुआत हुई कारीगरों की अपनी भागीदारी से। और ये केवल पैसा जुटाने का तरीका नहीं था बल्कि एक सोच थी कि कारीगर सिर्फ काम करने वाला व्यक्ति नहीं है बल्कि व्यवसाय का भागीदार भी हो सकता है।
0: बिल्कुल, एक बहुत अच्छी शुरुआत करी और यही रंगसूत्र की सबसे खास पहचान बनी। रंगसूत्र की यात्रा पहले 2004 में एक उत्पादक कंपनी के रूप में शुरू हुई और फिर 2006 को क्राफ्ट्स इंडिया के रूप में पंजीकृत हुई। और रंगसूत्र का उद्देश्य था कि ग्रामीण कारीगरों को नियमित काम और टिकाऊ आजीविका से जोड़ना, साथ ही उनके पारंपरिक कौशल को भारत और दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना।
1: सबसे बड़ी बात ये थी। और यहाँ बात केवल आरती हस्तशिल्प बेचने की नहीं थी, बात थी हुनर, बाजार, सम्मान और स्वामित्व, इन सभी को एक साथ लाने की। और रंगसूत्र से जुड़े कारीगरों में बड़ी संख्या महिलाओं की थी, तो नीति आयोग के अनुसार रंगसूत्र में 2000 से अधिक कारीगर शेयर होल्डर रहे और लगभग 80% कारीगर महिलाएं हैं। तो कारीगरों की भूमिका सह मालिक, सह निर्माता, प्रबंधक और बोर्ड सदस्य के रूप में भी वहां पर रही है।
0: बिल्कुल, और यानी जो महिलाएं, उनके हाथ में सिर्फ सुई और धागा नहीं आया बल्कि साथ में उनके हाथ में निर्णय लेने की ताकत भी आई।
1: बिल्कुल,
0: और सुमिता घोष के रंगसूत्र पर लिखे एक लेख में एक महिला कारीगर के अनुभव को बताया गया है कि कंपनी के शेयर उसके नाम की उन संपत्तियों में शामिल थे जिन पर उसका अपना अधिकार था। अपनी कमाई से उसके पास अपने बैंक खाते और खर्च के बारे में निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी आई थी।
1: और यही वो बदलाव था जिसे सुमिता घोष सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानती थी। रंगसूत्र ने पारंपरिक कढ़ाई, हथकरघा और अन्य हस्तशिल्प कौशल को आधुनिक बाजार की जरूरतों से जोड़ने का काम किया और इसका उद्देश्य था ग्रामीण कारीगर केवल स्थानीय बाजार तक सीमित नहीं रहे बल्कि बड़े ग्राहकों और वैश्विक बाजारों तक इनकी पहुंच बन सके।
0: बिल्कुल, और रंगसूत्र ने बड़े बाजार भागीदारों के साथ में काम किया है। इस तरह एक गांव में बैठा कारीगर अपने हाथों से तैयार किए गए उत्पाद को दुनिया के दूसरे हिस्से के ग्राहक तक पहुंचते हुए देख सकता था। सुमिता घोष के काम को राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली। 2016 में उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें ग्रामीण कारीगरों और महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े उनके कामों के लिए मिला था।
1: बिल्कुल सही कहा, तो एक तरफ गांव की कच्ची गलियां, दूसरी तरफ दुनिया बड़ा बाजार, इन दोनों के बीच एक पुल बनाने की जो कोशिश, या यूं कहें बहुत बड़ी कोशिश, बहुत बड़ा काम सुमिता घोष ने किया, उस पुल का नाम क्या है?
0: रंगसूत्र।
1: और सुमिता घोष ने साबित किया कि अगर किसी महिला के हाथ में हुनर है तो उसे केवल काम नहीं, साथ में काम का उचित मूल्य, अपनी पहचान और अपने फैसलों की ताकत भी मिलनी चाहिए।
0: बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि अगर आप किसी हुनर, आपके अंदर कोई हुनर है तो उसको तराशना बहुत जरूरी है, है ना। और उसको तराश के जब आप अपने लिए उसको उपयोग करते हैं ना, तो अपना ही नहीं, साथ में अपने परिवार का, अपने साथ में जितने भी जुड़े हुए लोग हैं या आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं, उन सब का भी भला करते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और ग्रामीण तबकों में क्या होता है आरती, महिलाएं एक साथ समूह में इकट्ठी होकर वो लघु उद्योग, लघु कुटीर उद्योग जिसे हम कहते हैं, शुरू करती हैं छोटे छोटे, और उनमें अलग अलग चीजें बनाती हैं, फिर वो सब मिलकर अपना घर भी चलाती हैं। तो इस तरह के भी जो है कुटीर उद्योग गांवों की महिलाएं खासतौर से, लेकिन उनको एक बड़ा व्यक्ति ऐसा मिल जाए, बड़ी सोच वाला, जो उन सबको इकट्ठा करके इस तरह का एक बहुत बड़ा
0: एक मालिकाना हक भी दे दे साथ में। हाँ,
1: इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हमने देखी है जो 70-80 महिलाओं का समूह इकट्ठा करके गृह उद्योग धंधे शुरू करती है और वो वहां पर सभी को जो है अपने अपने तरीके से मालिकाना हक भी मिल जाता है।
0: और ये काम करने से उनके अंदर भी एक आत्मविश्वास आता है ना कि हम भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें शहर जाना पड़े कुछ काम करने के लिए।
1: वो ग्रामीण तबके में रहकर
0: हम अपने घर में रहकर, अपने गांव में रहकर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं
1: और आर्थिक रूप से मजबूत हो जाती है। सबसे बड़ी बात है स्त्री का आर्थिक रूप से मजबूत हो जाए। और अभी क्या जरूरी है?
0: अंतराल।

0: हाँ तो आरती, पता है कभी कभी हम बहुत बेचैन होते हैं ना, तो कागज के दिल पे कुछ ना कुछ लिखने लग जाते हैं
1: हाँ बिल्कुल
0: और इसी चक्कर में हम साहित्यकार भी बन जाते हैं, लेखक बन जाते हैं, कवि बन जाते हैं।
1: जी
0: और कहते भी हैं कई बार आपका मन बहुत बेचैन है, मन में बहुत सारी बातें हैं, तो उन्हें कागज पर लिख दो, एक डायरी
1: बिल्कुल
0: मेंटेन करो, कहा जाता है ना कि डायरी लिखो, ताकि जो सहन शक्ति जवाब दे गई है वो आपकी कलम से आपकी किताब में एक
1: बिल्कुल
0: संकलन के रूप में आ
1: आ
0: जाए।
1: जाएगी। और वैसे भी कहते हैं ना, अगर आप लिख लेते हैं ना कोई भी चीज, तो आपका गुस्सा थोड़ा सा कम हो जाता है,
0: हाँ
1: आप थोड़े शांत हो जाते हैं,
0: बिल्कुल,
1: तो बहुत जरूरी। लिखना तो वैसे भी बहुत अच्छा है
0: बहुत अच्छी बात है, लेकिन
1: जी।
0: अगर आप लेखक नहीं भी हैं तो अपनी सहनशीलता को बनाए रखने के लिए लिखने का अभ्यास शुरू कर देना चाहिए, ताकि
1: जी
0: जैसे ही गुस्सा आया, लगा कि कुछ बोलने वाली हूँ, तुरंत कागज पेन निकाला और उस गुस्से को कागज के द्वारा अंकित कर दो, तो एक बार
1: बिल्कुल
0: कागज पे वो गुस्सा उतर जाएगा।
1: बिल्कुल, आप
0: और
1: बाद में से इरेज कर सकते हैं,
0: हाँ,
1: मिटा
0: उसे
1: सकते
0: मिटा
1: हैं
0: सकते हैं, आप मिटा सकते हैं, फाड़ सकते हैं कागज को कि
1: बिल्कुल
0: आपका गुस्सा निकल गया, लेकिन
1: जी
0: मन आपका शांत हो जाता है।
1: जी
0: तो इसीलिए कहते भी हैं कि धैर्य रखिए, धैर्य का फल क्योंकि मीठा होता है। और आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में क्या है कि धैर्य रखने का जो कड़ा इम्तिहान है, एक तरह से ये बहुत बड़ी परीक्षा हो जाती है।
1: जी
0: अगर किसी से हमारी लड़ाई हो गई, किसी ने हमारी बात काट दी, तो हम गुस्से में आ जाते हैं, सड़क पर ट्रैफिक मिल गया तो हम परेशान हो जाते हैं, मोबाइल में हम इतना कुछ लिखते हैं, अगर हमें लाइक नहीं मिले
1: अरे
0: पर्याप्त किसी ने असहमति जता दी, किसी ने
1: जी
0: काट कर दी, किसी ने आपको पसंद नहीं किया, तो हम गुस्से से भनभना जाते हैं और
1: बिल्कुल
0: लगते हैं क्या जो बात कर देंगे, और बात गर्मा गर्म स्थिति तक पहुंच भी जाती है।
1: बिल्कुल, अक्सर ट्रैफिक में तो अक्सर ही ऐसा होता है ना कि लोग एकदम से लड़ पड़ते हैं कि क्यों आप आगे निकल, अगर कोई आगे निकल जाए, कोई पीछे रह जा रहा है, तो वो लड़ रहे
0: हाँ,
1: हैं। मतलब कोई भी किसी भी बात पे हम लड़ सकते
0: मतलब
1: हैं
0: हम अपने वाहन में बैठे बैठे भी गुस्सा निकाल देते हैं
1: बिल्कुल।
0: और इतने गुस्से में आ जाते हैं कि कई बार हम इस तरह की पढ़ भी रहे हैं स्थितियां कि ट्रेनों में दो लोगों के बीच में तकरार हुई और बात
1: जी
0: कहां से कहां पहुंच गई, यानी सहनशीलता की कमी होना।
1: बिल्कुल, और सहनशीलता का मतलब हर बात को चुपचाप सह लेना भी नहीं होता है। और जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ हों, उस समय आप थोड़ा सा धैर्य अगर हम बना के रखते हैं ना, और दूसरों के विचार को सुनते हैं, और तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। कोई भी बात हो, तुरंत प्रतिक्रिया देने से ये होता है ना कि हम गुस्से में होते हैं उस समय, तो उस समय हमें पता नहीं होता कि हम क्या कह रहे हैं,
0: बिल्कुल,
1: तो हम सिर्फ गुस्से में अपने गुस्सा निकाल रहे होते हैं, तो उस वक्त हम कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकते हैं, तो रिश्ते भी उससे खराब हो
0: खराब होते
1: सकते हैं,
0: हैं,
1: दोस्ती टूट सकती है। तो
0: बिल्कुल,
1: इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए
0: हाँ,
1: कि हम जो भी बोलें सोच
0: सोच
1: समझ कर
0: समझ,
1: बोलें।
0: इसे तोल मोल के बोल कहा जाता
1: बिल्कुल
0: है ना। और आज के जो टेक्नो समय जो आ गया है, इसमें क्या हो गया आरती, कि हमें हर चीज तुरंत पाने की आदत हो गई, एक क्लिक
1: बिल्कुल
0: में हमें सारी चीजें मिल जाती है, सामान हुआ कुछ भी, कुछ ही सेकंड से हमें मिल जाता है। एक समय होता था जब हमें सोचना पड़ता था कि हमें जाना है, घर से बाहर निकलना पड़ेगा,
1: जी
0: सामान लाना पड़ेगा, अब बस केवल एक क्लिक करने की जरूरत होती है
1: बिल्कुल।
0: और सामान आपके घर पर आ जाता
1: अब
0: है।
1: 5 मिनट का अगर सामान हमारे पास 5 मिनट में नहीं पहुंचा, तो एकदम से हम गुस्से में आ जाते हैं, फिर हम उसको
0: हाँ,
1: फिर चिल्लाने लगते हैं जो सामान लेकर आया, कि 5 मिनट से 1 मिनट कैसे ज्यादा हो
0: ज्यादा
1: गया।
0: कैसे आपने कर दिया, सोचिए हमारी सहन शक्ति कितना जवाब दे गई है।
1: जी
0: तो ये जो तनाव है, काम का जो दबाव है, प्रतिस्पर्धा है, और ये जो रोज की दिनचर्या में इतनी व्यस्तता है, हमारी झुंझलाहट को और हमारी स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रही है।
1: बिल्कुल, और जरा सोच कर देखिए, जब कोई हमारे संदेश का तुरंत जवाब नहीं देता है, तो मन में पहला विचार क्या आता है कि आखिर आया क्यों नहीं जवाब,
0: हाँ,
1: हमने
0: क्या
1: जो
0: बात हो
1: लिखा
0: गई
1: था क्यों नहीं आया उसका जवाब, शायद मुझे जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। हम अक्सर जल्दबाजी में पूरी बात जाने बिना नतीजे पर पहुंच जाते हैं, और यहीं से गलतफहमी शुरू हो जाती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, हो सकता है आपने कोई सवाल पूछा और सामने वाले के पास टाइम नहीं हो, या वो उस वक्त यात्रा में हो या परेशानी में हो, जवाब नहीं दे पाया हो, हमने उसका तुरंत तुरंत
1: बिल्कुल
0: अपने तरीके से उत्तर निकाला और फटाफट उसे अपना ही जवाब दे डाला, और
1: बिल्कुल, या हो
0: रिश्ते,
1: सकता है वो नहीं देना चाह रहा उस
0: हाँ,
1: समय,
0: ये भी हो
1: कुछ
0: सकता है,
1: सोचना चाह रहा हो, समझना
0: हाँ
1: चाह रहा हो, या उसके बारे में पड़ताल करना चाहता हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी स्थिति हो सकती है।
1: जी
0: तो सहनशीलता की जो कमी है, वो उसका असर हमारे व्यवहार पर ही नहीं पड़ता आरती, बल्कि हमारे रिश्तों पर भी पड़ता है, हम जानते ही हैं। और परिवार में छोटी सी बात पर बहस, दोस्तों में नाराजगी और कार्यस्थल पर मतभेद होना, इन सब के पीछे कई बार हमारी ये जो अधीरता है, यही जिम्मेदार होती है।
1: बिल्कुल, सोशल मीडिया ने भी हमारी सहनशीलता को कम करने में बड़ी बड़ी भूमिका निभाई है। अलग विचार रखना लोकतंत्र और समाज की स्वाभाविक विशेषता होती है, लेकिन असहमति को व्यक्तिगत विरोध मान लेना रिश्तों और सामाजिक संवाद दोनों के लिए नुकसानदायक होता है। कि असहमति अगर कोई हमसे असहमत है तो हमें लगता है कि वो हमारे विरोध में है, हम उसके विचार को नहीं जानना चाहते, वो किस तरह से क्या सोच रहा है वो उसको नहीं जानना चाहते, बस हम सोचते हैं कि ये हमारे विरुद्ध है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और हम उसका सम्मान भी नहीं करना चाहते हैं कि उसकी विचारों का हम सम्मान करें। अगर वो हमारे विरुद्ध कोई बात कह भी रहा है तो पहले समझें कि वो क्यों कह रहा है।
1: सबका अपना अपना नजरिया
0: विचार हो सकता है, नजरिया हो सकता है आपके प्रति, और सहनशीलता को बढ़ाना वो मुश्किल काम नहीं है। उसके लिए ये जरूरी है कि हम धैर्य रखें, धैर्य पूर्वक दूसरे को सम्मान दें, सुने, दूसरे व्यक्ति को अपनी बात पूरी करने का मौका दें और गुस्से में तुरंत जवाब नहीं दें, कुछ देर रुके, सोचें, दूसरे की सोच को समझें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सामने वाला गलत ही हो और हम ही सही हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल। एक बहुत ही जरूरी बात ये भी है कि हमें छोटी छोटी बातों को जाने देना सीखना होगा, हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता, और कई बार हमारी चिड़चिड़ाहट हमारे जो सामने है उसके सामने वाले की गलती से ज्यादा हमारी अपनी थकान और तनाव का परिणाम होती है जो हम चिड़चिड़ा रहे होते हैं इस समय। तो हम अक्सर सहनशीलता को कमजोरी मान बैठते हैं, जो बिल्कुल गलत सोच है।
0: बिल्कुल, हमें लगता है आक्रामक रूप बनाए रखना ही आज के जमाने में बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं होता। आपकी सहनशीलता बहुत बहुत मायने रखती है आपके लिए,
1: एक अलग पहचान बनाती है कि इतना सब सामने वाला इतना गुस्सा हो रहा है, इतना चिल्ला रहा है ना, लेकिन आप एकदम शांत खड़े,
0: आपने अपनी सहनशीलता को बनाए रखा है, कितनी बड़ी बात है, इसे कमजोरी नहीं समझना चाहिए। हम समझते हैं कि अरे सामने वाला कितना कमजोर है, देखो इतना सुनने के बाद भी चुप बैठा रहा, मैं होती तो ऐसा कर देती, है ना। ये जो
1: चुप बैठना है सबसे बड़ी ताकत,
0: बहुत बड़ी, और सामने वाले को भी हिला कर रख देती है, है ना, आपकी चुप्पी। तो सहनशीलता का मतलब कमजोर होना बिल्कुल नहीं है, और देखा जाए तो अपने गुस्से और भावनाओं को नियंत्रण रखें, अपने आप अपने भीतर एक बहुत बड़ी ताकत महसूस करेंगे। इसके अलावा हम दूसरे को धैर्य से सुने, रिश्तों को समझें, और कम बोलें, सोच समझ कर बोलें तो विवाद भी कम होगा, और जब हम किसी की असहमति का सम्मान करेंगे तो लोगों में हमारा संवाद भी मजबूत होता है।
1: बिल्कुल, और हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर मतभेद को विवाद बनाना भी जरूरी नहीं है, और हर परिस्थिति को अपने अनुसार बदलना भी जरूरी नहीं है। कभी कभी थोड़ा ठहर जाना, और सबसे जो कहते हैं ना सबसे बड़ा समझदारी वाला कदम होता है
0: वो ये होता है,
1: तो थोड़ा रुक जाइए, सोचिए, थोड़ा समझिए, और दूसरे को भी समझने की कोशिश करिए कि वो अगर ऐसा व्यवहार कर रहा है तो उसके पीछे कोई कारण है, क्या है, तो उसके बिना आप एकदम से प्रतिक्रिया मत दीजिए,
0: मत दें, और स्पेस दें खुद को भी और दूसरे के विचारों को भी, ताकि सोचने समझने का मौका मिले। एक श्रोता लिखते हैं कि सहनशीलता कमजोरी नहीं बल्कि भीतर की शक्ति है, ये हमें सिखाती है कि हर उत्तर शब्दों से देना आवश्यक नहीं होता, कुछ उत्तर स्वयं समय दे देता है, सहन करने की अपनी एक गरिमा है, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, कुछ रिश्ते खामोशी से बच जाते हैं और कुछ सच वक्त के साथ सामने भी आ जाते हैं,
1: है ना। और एक श्रोता जो लिखते हैं कि सहनशीलता का मतलब हर बात सहना नहीं बल्कि हर बात पर रिश्ता को तोड़ना नहीं होता है, कुछ बातों को समझकर कुछ को मुस्कुराकर छोड़ देना ही शायद रिश्तों की सबसे खूबसूरत समझदारी है।
0: और हमारी एक श्रोता ने बहुत सुंदर कविता लिखी है हमारे आज के जो भी सेगमेंट है उन पर, कि मंदाकिनी जी की मधुर आवाज, आरती जी का साथ, सखी सहेली सजाए हर दिन नई बात, लोकतंत्र का संदेश, सहनशीलता की पुकार, सुमिता घोष संग रंग सूत्र की सुंदर बहार, कान भरना मुहावरे की दुनिया का ज्ञान, खाने की अतरंगी आदतों से मुस्कान, विविध भारती की ये प्यारी सी महफिल, मंदाकिनी जी आरती जी बनाए हर पल दिलकश मंजिल।
1: बहुत अच्छा लिखा है। तो एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि जीवन में कोई भी निर्णय लेते समय सहनशीलता की बड़ी जरूरत होती है, मगर आज के युग में जो चीज सबसे ज्यादा इंसानों के अंदर से खोती जा रही है वो है सहनशीलता का गुण। आक्रामकता को इंसान अपना गुण मानने लगा है, जीवन में आक्रामकता पूरा धागा ही उलझा देती है, ये इंसान सोचता ही नहीं। सहनशील और धीर गंभीर इंसान की छवि अलग ही दिखती है, सो सहनशील बनिए और जीवन को सुगम बनाइए।
0: बिल्कुल, बहुत सुंदर लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं कि जहां सहनशीलता है वहां प्रेम, सम्मान और रिश्तों की गर्माहट भी बची हुई है, वरना आज की तेज रफ्तार जिंदगी में इंसान के पास सब कुछ है, बस ठहर कर सुनने और समझने का धैर्य कम होता जा रहा है। छोटी सी बात पर नाराजगी, जरा सी असहमति पर रिश्तों में दूरी और अपनी बात मनवाने की जिद सहनशीलता को धीरे धीरे पीछे छोड़ रही है। सहनशीलता कमजोरी नहीं बल्कि रिश्तों को बचाए रखने की एक बहुत बड़ी ताकत है।
1: बिल्कुल, एक हमारी श्रोता है जो लिखते हैं कि खत्म होती जा रही सहनशीलता का कारण मानसिक तनाव है, जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लगातार देखने को मिल रहा है। इसका मुख्य कारण मानसिक दबाव और धैर्य की कमी होती है। इसमें सोशल मीडिया का भी काफी प्रभाव है। इसके द्वारा तुरंत मिल रही जानकारी या मिल रहे मैसेज ने पुराने जमाने के खत लिखने के धैर्य भरे दौर को खत्म कर दिया है। मतलब हम तो सोच समझ के लिखते थे, दो दो तीन तीन दिन में खत
0: पहुंचते थे
1: जी, तो वो मजा इस टेक्नोलॉजी में कहां, जो खतों के इंतजार में पोस्टमैन की

0: तख्ते रहने में हुआ करता था। सहनशीलता पाने के लिए तनाव को छोड़कर शांत लहरों पर जीवन की नाव पर सवार होना पड़ेगा।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा लिखा है। और अब हम भी गीत संगीत की नाव पर सवार हो जाते
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: गीत सुनते हैं।

0: तो आरती, जब हम बात कर रहे हैं आदतों की कि हमारे अंदर सहनशीलता का होना कितना जरूरी है, वहीं कुछ आदतें ऐसी भी हैं जो हमारी हमें हंसी का पात्र भी बना देती हैं, है ना। अभी बताऊं तुम्हें, आज जब मैं सुबह चाय के साथ बिस्किट खाती हूँ हमेशा, आज मैंने सोचा कि नमक का पराठा खा लूं और चाय में डुबो कर खा लूं, है ना, तो कैसा लगेगा। और बाद में मुझे अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हो पाई, क्योंकि ये कैसा कॉम्बिनेशन मैं सोच रही थी, ये खाने का भला कोई ऐसे खाता है क्या।
1: लेकिन सच में मजा आता है,
0: मजा आता है। तुमने खा के देखा है इसको?
1: बिल्कुल मैंने खाया है।
0: ठीक है।
1: और मतलब हर व्यक्ति का खाने का अंदाज अपना अपना होता है। किसी को गरम गरम रोटी के साथ ठंडी ठंडी दही पसंद होती है, तो कोई चाय के साथ नमकीन की जगह बिस्किट को चाय में डुबोकर खाने का मजा लेता है। कुछ आदतें इतनी अनोखी होती हैं कि सामने वाला देखकर बस यही कहता है कि भला ऐसे भी कोई खाता है। जैसे कि मैं खाती हूँ कैसे जलेबी को सॉस
0: डुबोकर।
1: जी।
0: और मैंने देखा हमारी एक नून है, वो पहले दाल पी जाती है और उसके बाद जो चावल है ना वो सूखे खाती है। तो हम उन्हें हंसते थे कि अब आप क्या गोल गोल लौटने वाली हैं कि दाल चावल मिल जाएगा आपका। वो ऐसे ही खाती थी, पहले दाल का कटोरा जो लिया और दाल पूरी पी ली, उसके बाद वो सूखे चावल जो सफेद चावल हम उबाल के रखते हैं उन्हें खाती थी। तो ये भी एक अजीब ही किस्म की आदत है, जिसे हम कई बार जब देखते हैं

0: बड़ा आश्चर्य होता है, बच्चों में तो ऐसी आदतें हमें मिल जाती हैं कि सब्जी अलग रोटी अलग, दाल को चावल के साथ मिलाने में वो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं कुछ लोगों को, मैंने जैसा तुमने कहा मीठी जलेबी और सॉस के साथ खाती हो तू, और कुछ लोग खाने को बहुत धीरे धीरे चबाकर खाते हैं, जबकि कुछ लोग फटाफट फटाफट फटाफट फटाफट एक रोटी को दो ही उसमें खा लेते हैं टुकड़ों में। तो ये खाने के जो तरीके हैं हालांकि हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं, इसलिए सबसे बड़ी बात कि इसका भी ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हम कुछ भी खा रहे हो लेकिन वो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए।
1: जी बिल्कुल, जैसे कि हमारी एक श्रोता है जो लिखती है कि आज खाने की अतरंगी आदतें देखकर मुझे भी कुछ याद आ गया। मैं जब छोटी थी तब पापा जी के ट्रांसफर के कारण हम लोग दूसरे शहर में आए और जिस घर में रहने के लिए आए वहां के मकान मालिक के बच्चों को हमने देखा कि वो चावल के साथ दूध का पाउडर खाते थे। उनको देखकर हमें भी शौक चढ़ा पर हम लोग नहीं खा पाए। सच में तो बहुत ही अलग चीज है।
0: बिल्कुल सही कहा। वही एक श्रोता लिखती है कि खाने की आदतें, भाई आदतें सभी की अच्छी हो ऐसा नहीं हो सकता, और यदि है तो फिर कहने ही क्या। लेकिन अतरंगी शब्द या ये तो कार्यक्रम से स्पष्ट हो सकता है कि भोजन सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं बल्कि हमारे मूड, दिमाग और विज्ञान से गहराई से भी जुड़ा है। भावना और मूड का असर खाने की तीव्र इच्छा अक्सर तब होती है जब हम तनाव में होते हैं या हमें किसी अपने की याद आती है। कई बार खाने के तुरंत बाद घबराहट होती है, बेचैनी महसूस होती है, क्योंकि हमारा पेट हमारे दिमाग से सीधे तौर पर जुड़ा होता है। अगर नाक बंद हो तो हमें खाने का असली स्वाद पता ही नहीं चलता, और 80% हिस्सा हमारी सूंघने की क्षमता पर भी निर्भर करता है। और अचानक कभी कभी किसी खास चीज को देखने से भोजन से अरुचि हो जाती है या हमें कह जैसे उल्टी महसूस होने लगती है। तो जब तक आपकी तीव्र इच्छा नहीं हो आप कोई भी चीज नहीं खाएं, ये ध्यान रखिए।
1: जी, और एक हमारी सखी हैं जो लिखती हैं कि सखियों कभी कभी हरी मूंग की दाल वाली खिचड़ी में गुड़ डालकर खाया है कभी, बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा,
1: तो इन्होंने यानी खिचड़ी में गुड़ डाल के खाया है। तो ये भी हमें करना चाहिए ट्राई का मतलब। और हमारे साथी जो लिखते हैं कि खाने की अतरंगी आदतें, भाई आदतें तो सभी अच्छी ही हों ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन यदि है तो फिर कहना ही क्या, लेकिन अतरंगी शब्द है या अतरंगी ये इन्होंने कार्यक्रम में स्पष्ट होगा तो अब इनको शायद स्पष्ट हो गया होगा।
0: वही एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे घर वालों की आदत है कि कटोरे में ही दाल सब्जी को मिला के मिक्स करके खाते हैं, और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मेरे घर वालों को लगता है कि जो मेरे घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनको कि खाना खाने से इससे स्वादिष्ट लगता है, मतलब एक ही कटोरे में दाल चावल मिक्स करके खाया जाए, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे ही मेरे घर वालों की आदत है समोसे में सब्जी को पूरी तरीके से मिक्स करके खाने की, ये भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और लोग कहते हैं कि एक बार खाकर तो देखो, पर मैं इसे आज तक नहीं खा पाई। इन दोनों ही तरीकों को मैं कभी भी नहीं मतलब ये इसको स्वीकार ही नहीं कर पाए हैं कि कभी दाल भात को साथ नहीं खाया इन्होंने कटोरे में लेकर, और ना समोसा खा पाए हैं।
1: अच्छा, तो होता है ना कुछ अतरंगी आदतें ऐसी होती है ना कि समझ नहीं आता कि ये ऐसी क्यों होती है, मतलब इस तरह से हम कैसे खा लेते हैं। दूसरे को जब हम खाते देखते हैं ना तो लगता है कि कैसे खा रहा है इस तरीके से।
0: हाँ, एक लिखते हैं कि हमें कभी कभी बूंदी में सेव मिलाकर खाना अच्छा लगता है। हाँ, ये तो होता है। हाँ, बूंदी और जो भुजिया जिसे हम नमकीन भुजिया उसे मिलाकर लोग खाना पसंद करते हैं, लेकिन हर एक को वो भी पसंद नहीं आता है।
1: बिल्कुल, सबके अपने अपनी आदतें अलग अलग तरीके से होती हैं।
0: हाँ, एक श्रोता लिखते हैं कि हल्की फुल्की आदतें, अतरंगी खाना खाने की आदत, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि बड़े अलग तरीके से खाना खाते हैं। और जैसे एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे कुछ याद आ गया, मैं जब छोटी थी तब पापा जी के ट्रांसफर के कारण हम लोग दूसरे शहर में आए और जिस घर में रहने आए वहां के मकान मालिक के बच्चे को हमने देखा कि वो, अच्छा अभी तुमने बताया कि चावल के साथ वो दूध, अमूल दूध इस्तेमाल करके खा रहा था, तो ये देखकर उन्हें बड़ी हंसी आई, उन्होंने इसको खा के देखा लेकिन उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और एक लिखते हैं कि मुझे चाय के साथ कुल्फी चूसना बेहद पसंद है।
1: अरे भैया, चाय के साथ कुल्फी,
0: सर्दी गर्म नहीं होता,
1: सच में बिल्कुल अलग है।
0: हाँ, वैसे मुझे भी एक साथी मिले और उन्होंने कहा कि अभी कॉफी पी है, चलिए अब जो है हम आइसक्रीम खा लेते हैं। आइसक्रीम खाने के बाद उन्होंने कहा कि चलिए अब गर्म गर्म दूध पी लेते हैं। मैंने कहा भाई ये कैसी आदतें हैं आपकी, लेकिन वो आराम से कर रहे थे इन बातों।
1: बिल्कुल नहीं, जिनको आदत होती है ना इस तरह की चीजें खाने की तो उनको कोई परेशानी नहीं होती,
0: लेकिन हमें तो हो जाती है। अभी हमारे श्रोताओं को हो जाएगी अगर हमने उन्हें एक गाना नहीं सुनवाया तो।

0: तो हमारा एक सेगमेंट तो रह गया अभी, यानी कान भरना, मुहावरों की दुनिया।
1: क्या बात है, हाँ हाँ।
0: तो कान भरना, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि कान भरना मतलब कान में कोई भौतिक चीज या वस्तु को भरना नहीं होता है। इस मुहावरे का अर्थ किसी व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत, चुगली करना या उसके प्रति गलत भावना या संदेह पैदा करना होता है। गुजराती में इसे कान भंभेरणी बोला जाता है।
1: अच्छा, वही एक श्रोता लिखते हैं कि कान भरना यानी चुगली करना। मेरे हिसाब से चुगली करने वाले से ज्यादा गलती चुगली सुनने वालों की होती है, क्योंकि यदि हमसे कोई चुगली कर रहा है और अगर हम उसे कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएं तो सामने वाला दोबारा चुगली करने की कोशिश भी नहीं करेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि किसी के मन में दूसरे के प्रति गलत या नकारात्मक बातें डालना, उसे भड़काना, जैसे कि हम कोई दो लोग अच्छे मित्र हैं तो उनके बीच में तीसरे व्यक्ति ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया किसी दूसरे के कान में, तो इससे दोनों के बीच में गलत फहमी पैदा हो जाए, तो इसे कान भरना कहते हैं।
1: बिल्कुल, वही एक श्रोता लिखते हैं कि कान भरना, भाई कान है तो भरे ही जाएंगे ना। फिर कर्ण पूरण की विधिवत विधि भी बताई गई है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप कर्णेन्द्रिय का विकास भी होता है, किंतु यहाँ कान भरने का तात्पर्य किसी के खिलाफ किसी को उकसाने मात्र से ही है, और कच्चे कान वाले लोग इसके शिकार शीघ्र बन जाते हैं, और इस दृष्टिकोण से ऐसे लोगों से सावधान रहना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल। और एक और हमें जो श्रोता है जो लिखते हैं कि चुपके से किसी के खिलाफ ऐसी बातें कहना जिससे कि वो सामने वाले व्यक्ति से नफरत करने लगे या उस पर शक करने लगे। ऐसा माना जाता है कि यदि खाने में जहर मिल जाए तो उसका इलाज संभव है, लेकिन कानों में घोला गया जहर रिश्तों को अंदर से खोखला बना देता है और इसका कोई आसान इलाज भी नहीं है। तो क्या कह सकते हैं?
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और कई कई इसका सबसे बड़ा उदाहरण मानी जाती है जब हम जिक्र करते हैं कान भरने का। तो अब तो कार्यक्रम का समय इजाजत नहीं दे रहा है कि हम और कान भरें अपने श्रोताओं के।
0: बिल्कुल।
1: तो कार्यक्रम सखी सहेली से मंदाकिनी जोशी और
0: आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति।
1: नमस्कार।
0: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: भी है, पहले भी था, क्योंकि मैं बेसिकली फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हूँ,
1: जी
0: तो सिनेमा से तो मुझे बहुत लगाव है, इश्क है, मोहब्बत है, लेकिन वहाँ न बन सका इसका
1: वहां
0: मलाल
1: पे तो
0: मुझे
1: मुझे नहीं है।
0: बहुत लगाव है, इश्क है, मोहब्बत है, वहाँ न बन सका इसका मलाल मुझे नहीं है। अब भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि दुनिया में मैं समझता हूँ कभी भी कुछ भी किसी वक्त भी हो सकता है कि मैं फिर से वापस सिनेमा करने लगूं, लेकिन शर्त यह है कि मुझे मेरी पसंद के रोल अगर मिलेंगे और मुझे अच्छा लगेगा कोई भी रोल, तो मैं करूंगा
1: तो इसी बात पे एक गाना हो जाए आपकी पसंद का।
0: जरूर।
1: कौन सा गाना सबसे पहले सुनाना चाहेंगे आप?
0: जिन दिनों जब मैं फिल्में किया करता था,
1: जी
0: तो उस जमाने की एक फिल्म का जो मेरी सबसे पहली ऑलमोस्ट फिल्म थी, शंकर हुसैन, उसमें एक गाना था बड़ा खूबसूरत, लता जी ने गाया था, अपने आप रातों में चिलमने सरकती हैं, चौंकते हैं दरवाजे, सीढ़ियां धड़कती हैं।

0: आपने संघर्ष तो खूब किया और
1: जी
0: बहुत समय लगा, मुझे लगता है, पहचान बनाने में। तो ये पहचान आपकी कैसे बनी?
1: के कुछ लोगों की इमारत जो है सबसे पहले बन जाती है, वो दिखने लगती है। कुछ लोग बुनियाद काफी देर तक बनाते रहते हैं, तो मेरे हिस्से में मेरा ख्याल बुनियाद ने काफी टाइम ले लिया, और फिर जब बुनियाद मिली तो उसके बाद लोगों ने काम भी अप्रिशिएट किया और फिर काम मिलना भी बाकायदा शुरू हो गया।
0: मेरे ख्याल बुनियाद की बात निकली तो बुनियाद सीरियल भी आपका काफी हिट हुआ था,
1: जी उसी,
0: उसी
1: हाँ
0: से बात बनी
1: जी
0: ना?
1: जी जी उससे काफी टेलीविजन में काम मिला उसके बाद।
0: अच्छा, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में क्या एक अजीब सी बात है कि आपकी फिल्म हिट होती है तो इसका फायदा तो सबको होता ही है, तो क्या सीरियल में भी ऐसा चलन है? क्योंकि चैनलों की भीड़ बढ़ती जा रही है, जैसे कि आप बहुत से सीरियल कर रहे हैं, सांस है, बुनियाद, दरार, किस्मत, फरमान वगैरह,
1: नहीं,
0: तो ये कॉम्पिटिशन को आप कैसे फेस करते हैं?
1: ये सब ऐसा ही है जैसे फिल्मों में होता है। मतलब फिल्में अगर आपकी चलती हैं आपको काम मिलता रहता है, सीरियल आपके चलते हैं, आप चल रहे हैं, आपका काम अप्रिशिएट हो रहा है तो आपको काम मिलता रहेगा। देखिए बेसिकली अगर आप डॉक्टर हैं,
0: जी
1: आपके पास अगर पहले दो मरीज आए और वो आपके हाथों मारे जाएं, तो फिर मेरा ख्याल आपके पास कोई दूसरा मरीज नहीं आएगा। तो ऐसा ही है, एक्टर की अगर पहली फिल्म या पहले दो तीन सीरियल चल गए तो उस बेचारे को काम मिलता रहता है, वरना उसी डॉक्टर वाला हिसाब होता
0: अच्छा, आपने फिल्में भी बहुत की और सीरियल भी बहुत किए।
1: है।
0: शंकर हुसैन फिल्म की आपने, फिर सत्ते पे सत्ता की, अशांति की, माचिस हाल ही में की,
1: जी माचिस हाल में
0: एक शर्त भी फिल्म की थी, और सीरियल तो आपने मेरे ख्याल से सैकड़ों कर लिए। तो फिल्म और
1: ये आप
0: सीरियल
1: शिकायत कर रही हैं, ये बता रही हैं, मुझे लगता समझ नहीं आ
0: क्योंकि मैं तो रोज ही जब टीवी
1: रहा।
0: ऑन करती हूँ तो आप ही आप दिखाई
1: नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। वो
0: देते
1: असल
0: हैं।
1: में ये कई लोग ये सोचते हैं ऐसा, क्योंकि ये जो नए चैनल्स आए हैं इसमें प्रोग्राम्स क्योंकि रिपीट होते हैं तो ऐसा लगता है लोगों को कि ये बहुत आ रहा है, पर मैं ज्यादा काम लेता नहीं हूं, उतना ही लेता हूं जितना मैं अच्छी तरह

0: ये मीडियम जो टेलीविजन का है वो क्लोजर मीडियम है शॉर्ट्स का, लेकिन एक्टिंग के लिहाज से मैं नहीं समझता हूँ। आप जैसे अपना कैरेक्टर किरदार वहां निभाते हैं सिनेमा में, वैसे ही आपको यहाँ पे करना पड़ता
1: ये फिल्म में तो बहुत ऑथेंटिसिटी दिखानी पड़ती है ना,
0: है। क्यों क्यों
1: कैरेक्टराइजेशन
0: हम लोग
1: करना
0: टेलीविजन में नहीं दिखाते? मेरा ख्याल हम लोग टेलीविजन में ज्यादा ऑथेंटिसिटी
1: ज्यादा
0: दिखाते
1: होते हैं।
0: हैं।
1: यही बात तो
0: बिल्कुल।
1: उगलवाना चाह रही थी
0: गुस्सा आ गया
1: अच्छा
0: गुस्सा दिलवा के है।
1: जब शुरू शुरू में सीरियल बनने शुरू हुए थे तो फिल्मी एक्टर से, माफ कीजिए, छूत की बीमारी समझते थे, कहते थे कि नहीं छोटे से बक्से में कौन अभिनय करेगा सविता जी, अब तो बड़ा एक्टर जो भी है वो सब सीरियल में ही अपने आप को कैश कर रहे हैं। क्या ख्याल आते हैं इस बारे में?
0: देखिए मेरे ख्यालात जो हैं इस बारे में बड़े सीधे और ये हैं। मैं सिनेमा को नंबर वन समझता हूं, बट टेलीविजन का शुक्रगुजार हूं कि इसने मुझे काम दिया और मेरा किचन चलाया। लेकिन सिनेमा जैसा मैजिक टेलीविजन पर नहीं है और नहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि टेलीविजन जो देखा जाता है वो ऐसे माहौल में देखा जाता है जहां पे और इतनी 100 डिस्ट्रैक्शन है। आपका बच्चा रो रहा है, अभी खाना बनाना है, उसने स्कूल जाना है, कल के स्कूल की तैयारी करनी है, तैयारी करनी है, कुछ भी करना है। सिनेमा एक हॉल में देखा जाता है। इट इज अ ग्रेट मैजिक, इट इज अ मोस्ट ब्यूटिफुल आर्टिस्टिक अचीवमेंट, आई थिंक सिनेमा इज। तो मेरे लिहाज से अगर मुझे आज कहा जाए सिनेमा और टेलीविजन में कौन सा बेटर मीडियम है, डेफिनेटली सिनेमा है। लेकिन क्योंकि सर्वाइवल, हर एक को सर्वाइव करना है यहाँ, तो जो सिनेमा में नहीं है वो टेलीविजन में है, जो सिनेमा में बहुत अच्छा जिनका करियर जा रहा है वो टेलीविजन में नहीं आना चाहते, दैट इज अंडरस्टैंडेबल।
1: बहुत अच्छी बात है। अच्छा इसी अच्छी बात पे एक अच्छा सा गाना सुना दीजिए
0: तो फिर अच्छे से शायर का ही सुनाते हैं।
1: जो आपको पसंद हो।
0: गालिब की एक गजल है मुझे बड़ी पसंद है और जगजीत ने बहुत खूबसूरती से गाई है। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक,
1: अरे
0: कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक।
1: वाह वाह वाह।

0: कमल जी, पहले एक्टर स्टेज को स्टेपिंग स्टोन बना के फिल्मों में आते थे,
1: जी हाँ
0: मतलब प्रवेश करते थे,
1: जी,
0: और अब उल्टा हो रहा है कि फिल्मों से सीरियल में आ रहे हैं। ये उल्टी हवा कैसे बह निकली?
1: फिल्मों से सीरियल में आ रहे हैं, मेरा ख्याल इसलिए आ रहे हैं जो फिल्मों से निकाले जा रहे हैं वो सीरियल से आ रहे हैं। सीधी बात है,
0: निकाले नहीं जा रहे, दोनों जगह काम
1: जिनको
0: कर रहे
1: जिनको
0: हैं।
1: जिनको काम नहीं मिला, जिनको मैंने वही पहले ही अर्ज किया है कि अगर जो जिसका करियर बहुत अच्छी तरह चल रहा है फिल्म में, वो टेलीविजन में नहीं आना चाहता है, एंड इट इज अंडरस्टैंडेबल, ऐसी कोई वही बात नहीं है, और ऐसा उसको अपटी बिहेवियर समझा जाए ऐसा भी नहीं मैं समझता।
0: मतलब रोजी रोटी का सवाल है
1: नहीं,
0: वहां
1: रोजी
0: भी
1: रोटी के नहीं,
0: शायद।
1: भाई वो क्यों लेसर मीडियम में आएगा? अगर मैं नॉवल लिख रहा हूं तो मैं रिपोर्टिंग न्यूज़पेपर के लिए क्यों करूंगा? सीधी बात है,
0: सच
1: अगर मेरा नॉवल बिक नहीं रहा है तो मैं न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग करूंगा, ये है।
0: अच्छा, स्टार सिस्टम, इसका फिल्म जगत में साम्राज्य है जो लंबे समय से चल रहा है। सिर्फ ऐसा होता है कि चेहरे बदल जाते हैं, और अब यही बात सीरियल में भी लागू होती है। आपके क्या विचार हैं?
1: वो इसलिए क्योंकि बेसिकली मीडियम जो हैं सारे ये हम मूवी बिजनेस कहते हैं, टेलीविजन बिजनेस है।
0: बिजनेस।
1: जी हाँ, तो जब तक आपके प्रोग्राम बिकेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, तो आपको एडवर्टीजमेंट्स नहीं मिलेंगे, एडवर्टीजमेंट नहीं मिलेंगे तो चैनल कैसे रन करेगा, तो चैनल नहीं रन करेगा तो वो फिर पूरा विशेष सर्कल है बड़ा। तो इसमें जो एक्टर्स जो थोड़े बहुत ऊपर हैं, टॉप लेवल पे हैं, उनके प्रोग्राम हिट हो गए हैं या उनको लोग ज्यादा पसंद करते हैं, तो और क्योंकि लोग ज्यादा पसंद करते हैं तो चैनल कहता है कि भाई इन एक्टर्स के साथ बनाओ।
0: मतलब यह ऐसा तो नहीं जो पैसा लगाता है वो बोलता है हमको यही चाहिए, जैसे फिल्मों में प्रोड्यूसर पैसा
1: पैसा
0: लगाता
1: नहीं,
0: है
1: हाँ तो ऑब्वियसली
0: ना?
1: जो जो पैसा लगाता है वो ये सोच के लगाता है कि मुझे पैसा रिटर्न होगा, मतलब रिटर्न में आएगा पैसा, वापस आएगा, जो लागत है मेरी वो कम से कम वापस वसूल होगी। तो वो कैसे होगी कि पॉपुलर एक्टर को लेंगे आप? पॉपुलर हर हर जो चीज है जो डिमांड में है, जिसे सराहा जा रहा है इस वक्त, पब्लिक उसे चाह रही है, उसे
0: जी।
1: ही आप लेके बनाएंगे ना।
0: अच्छा, जो ऐसे एक्टर हैं जिनको काम नहीं मिलता, तो उनको क्या करना चाहिए आपकी राय में? मतलब
1: आप देखिए, हमें भी तो काम नहीं मिला था
0: उनको फिल्मों
1: इनिशियली,
0: में भी काम नहीं मिलता और सीरियल में भी काम नहीं मिलता। कहाँ
1: एक तो यहां
0: तो उम्मीद
1: आप
0: जगी थी कि सीरियल बन रहे हैं, तो जिनको फिल्मों में काम नहीं मिलता उनको सीरियल में भी
1: देखिए,
0: मिलेगा।
1: अपने बारे में ऑब्जेक्टिव होना बड़ा मुश्किल है जिंदगी में। जब जब आदमी यहां पे ट्रेन में बंबई में उतरता है तो वो ये आप उससे पूछें भाई तेरा अपने बारे में क्या विचार है, क्या राय है, तो वो ये थोड़ी कहेगा कि नहीं यार मुझे नहीं लगता मैं मेरा करियर यहां बनेगा और मुझे लगता है कि मुझे वापस लौट जाना चाहिए, ये कोई कहता है?
0: कोई नहीं कहेगा।
1: तो फिर तो या तो अपने बारे में बहुत ही ऑब्जेक्टिव आदमी हो, अपने आप को 1 साल दे, 2 साल दे, 2.5 साल दे, 3 साल दे, कहना भाई, या फिर बाप बहुत रईस हो समझे ना, जिसे कोई फर्क ना पड़े कि बेटा कर रहा है स्ट्रगल तो करता रहेगा। तो अब ये तो अपने पे निर्भर करता है कि मैं अपने आप को कितना वक्त देता हूं और मैं कितना, मतलब मुझे कितनी अपने बारे में समझ है और मैं कितना इंटेलिजेंट हूं कि मैं कहूं कि यार बस अब बहुत हो गया, लेट अस ट्राई समवेयर एल्स।
0: कमल जी, जिंदगी का सफर तो हमेशा चलता रहता है, जैसे सुख दुख आते हैं, इसी तरह फिल्म सीरियल और सीरियल फिल्म, ये चक्र घूम रहा है, बरसों से घूम रहे। कहीं ये थम गया तो क्या होगा, ये सोचकर कैसा लगता है?
1: हाँ, बहुत डर लगता है। देखिए, हर आदमी जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उसका काम कब अच्छा चलता रहे और कब तक चलता रहे इसका कुछ भरोसा नहीं, तो ये तो हमेशा इनसिक्योरिटी रहती है हर सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी को और हमारे कॉम के लोगों को, यानी एक्टर्स को, कि भाई ये जो इस वक्त बड़ा अच्छा चल रहा है ये कल को ऐसा ना हो कि सब हमारे प्रोग्राम बंद हो जाएं और हमें काम ही ना मिले, क्योंकि हम तो एक ही काम जानते हैं ये, और यही मिलना बंद हो जाएगा तो फिर हम क्या खाएंगे? हमने माना दिल्ली में रहें मगर खाएंगे क्या?
0: अच्छा, आपकी पत्नी भी तो इसी मीडिया में है, तो आप दोनों अपने इस प्रोफेशन को, अभिनय को, किस तरह से एडजस्ट करते हो? कभी प्रोफेशनल जेलेसी का सामना तो नहीं करना पड़ता?
1: नहीं, क्यों, मैं जलेसी इसलिए नहीं क्योंकि मेरी बीवी मुझसे बहुत बढ़िया एक्ट्रेस है, तो इसका मुझे अंदाजा है।

0: है और मैं जानता हूं इस बात को अच्छी तरह। दूसरी बात यह है कि मेरा ख्याल उसमें जो इतना सेक्रीफाइस, और मेरा ख्याल औरत जात में जितना सेक्रीफाइस करने की वो है
1: ताकत
0: ताकत, इसी वजह से जब से हमारे बच्चे हुए हैं अब तक उसने कोई काम नहीं किया। शी रिफ्यूज टू वर्क, मतलब वो अपना पूरा ध्यान बच्चों की ग्रोथ में लगाना चाह रही थी। तो अब रिसेंटली उन्होंने एक दो प्रोजेक्ट अभी साइन किए हैं, पायलट्स किए हैं, लेकिन मेरा बड़ा बेटा 9 साल का है, मेरा छोटा बेटा आदित्य 5 साल का है, बड़ा सिद्धार्थ। तो ये जब तक छोटे थे तब तक उन्होंने कोई काम लिया ही नहीं, तो इस वजह से कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि भाई वो बाहर है तो घर नहीं है। उसके उसके जहन में घर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस, जहाँ पे कुछ मतलब जहाँ पे सब सही रहना चाहिए। ये है
1: तो ये एक तरह से एडजस्टमेंट कहीं या सेक्रीफाइस
0: नहीं
1: पति के लिए।
0: नहीं नहीं वो जब बहुत छोटी थी मेरी वाइफ अनुराधा, तो उन जब बच्ची थी खुद, तो उनसे पूछा जाता था भाई बड़े होके तुम क्या बनोगी, तो कहती थी मम्मी। तो उसे शुरू से बच्चों का शौक रहा है, घर का शौक रहा है, उसे घर को सजाने का, घर को बनाने का, और बेसिकली शी इज अ होम बर्ड।
1: तो इसी एक सुंदर सी बात पे कुछ आपकी पसंद का सुंदर सा गाना।
0: सुंदर सी बीवी के लिए
1: हाँ, सुंदर सी बीवी के लिए कितनी।
0: तो चलिए बीवी की बात चलिए, तो फिर उन्हीं की फिल्म का एक गाना सुनाते हैं,
1: कौन सी फिल्म का?
0: उत्सव का, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मन क्यों महका।

आप जब छोटे थे तो तभी से एक्टर बनना चाहते थे या बड़े होने पर इस तरफ रुझान हुआ? क्योंकि हमारे माँ बाप अक्सर कहते हैं हम अपने बच्चे को बड़े होने पर डॉक्टर बनाएंगे या इंजीनियर बनाएंगे।

0: वगैरह।
1: जी हाँ, क्योंकि मैं सहारनपुर का हूँ
0: जी
1: और मेरा ना कोई चचा, ना कोई ताया, ना कोई अंकल, ना कोई आंटी यहाँ पे बम्बई में थी, तो जाहिर है मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता था कि मैं बम्बई जाकर एक्टर बनूँ। तो सहारनपुर में पढ़ रहे थे, थोड़ा बीच में मसूरी भी पढ़ा मैं, तो फादर चाहते थे कि मैं आईएएस पे जाऊँ, पर इतनी पढ़ाई हमारे बस की बात नहीं थी। थोड़ा वो शायरी का शौक था, जो दोस्त थे हमारे और आज तक वही दोस्त हैं सहारनपुर में, उन वो भी बड़े आर्टिस्टिकली इंक्लाइंड थे, तो हमें फिल्में देखने का तो बड़ा शौक था। मैं दिलीप साहब का फैन था, देव साहब का फैन था बहुत बड़ा, और बल्कि हमारे ग्रुप्स होते थे, कुछ दिलीप साहब के फैन होते थे और उनके सामने आप दिलीप साहब की बुराई नहीं कर सकते थे, और कुछ दिले देव साहब के फैन होते थे, बाकायदा झगड़ा हुआ हो जाया करता था। लेकिन ये कि एक दिन मैं खुद एक्टर बनूंगा, इसका मुझे भी अंदाजा नहीं था।
0: तो कोई फिल्म देखी थी, उसका असर हुआ, कुछ तो बात हुई होगी, या कोई
1: नहीं,
0: ड्रामा किया, उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा हुआ जहन पर, दिमाग पर।
1: मुझे बेसिकली क्या सबसे जो जहन में प्राइम चीज थी वो ये थी कि अपने दो पांव पे खड़ा होना जल्दी से जल्दी जिंदगी में। तो जो भी उस वक्त कंपटीशन आते थे, जैसे एनडीए का आया, डफरिन का आया, वो ऑफिसर ट्रेनिंग यूनिट होता था उसका आया, तो मैं सब कंपटीशन में बैठ जाता था, और बल्कि मैं एनडीए में ऑलमोस्ट हो भी गया था, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम एक हो गया था, उसकी वजह से मैं जा नहीं सका। तो जब ये सब चल रहा था, तो उन दिनों एक फिल्म इंस्टीट्यूट का फॉर्म भी आया, तो वो मैंने फॉर्म चुपके से काट कर वो भेज दिया, और चुपके से, और अपने दोस्तों को भी नहीं बताया, क्योंकि छोटे शहर में अगर ये पता लग जाए कि इसने फॉर्म भेजा था और ये सिलेक्शन नहीं हुई, तो बड़ा मजाक उड़ाया जाता कि भाई लौंडा हीरो बनने गया था, कुछ नहीं हुआ समझा? तो इस वजह से मैंने बताया नहीं। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे कॉल आ गया, और
0: स्कॉलरशिप भी मिलता था ना
1: नहीं
0: वहां पर?
1: स्कॉलरशिप तो नहीं मिलता था,
0: नहीं,
1: नहीं
0: अच्छा।
1: इंस्टीट्यूट में स्कॉलरशिप उन दिनों नहीं था, इन दिनों हो तो मुझे मालूम नहीं। तो हमारा दिल्ली में स्क्रीन टेस्ट हुआ, ऑडिशन हुआ, और हम सेलेक्ट हो गए।
0: अभी तो आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो उनको भी इस लाइन में लाना चाहेंगे, या वो जो खुद बनना चाहते हैं, ऐसा कुछ सोचा आपने?
1: जाहिर है, देखिए हर बाप ये कहता है जो बनना चाहता है बच्चा वो बने, लेकिन मैं ये कहता हूं कि बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है, ये उम्र कोई भी उम्र हो, तो वो इंडिकेशन देता है कि उसका रुझान किस तरफ है। तो बाप को यह कोशिश करनी चाहिए जिस तरफ उसका रुझान है उसे वो सब सप्लाई करे, चीजें, इंसेंटिव उसके शौक को पूरा करने के, तो वो अपना इवेंचुअली करियर बनाएगा। तो वो मैं देख रहा हूं मेरे बच्चों को, कुछ को एक को स्पोर्ट्स का शौक है, एक पढ़ाई का शौक है, तो अगर इसमें निकलते हैं, और अगर उनको बीच में सिनेमा का भी हो जाता है और एक्टर बनना चाहते हैं, तो व्हाई नॉट, आई थिंक इज द नोबलेस्ट प्रोफेशन।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेल्यूलॉइड के सितारे, और आज इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं टेलीविजन और फिल्मों से जुड़े अभिनेता कमलजीत। आपसे बातचीत की है सविता बजाज ने।
0: अच्छा, आजकल आजकल के समय में फिल्म इंडस्ट्री को कला का गढ़ माना जाता है, गढ़ है ना? तो इसमें तो मेरे ख्याल से 1 लाख से ज्यादा कोई बता रहा था कि कलाकार हैं जिन्हें काम नहीं मिलता, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा हो गई, क्योंकि हर आदमी इसी लाइन में आना चाहता है। तो आपकी क्या
1: ये
0: ख्याल है इस
1: आप
0: बारे में?
1: मेरा ख्याल फिगर्स इससे बहुत ऊपर
0: ऊंची
1: ऊंचे
0: है ना?
1: होंगे,
0: हाँ
1: क्योंकि,
0: हाँ
1: और आप इस बात की बात कर रही हैं, जब मैं फिल्म इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई कर रहा था, उस वक्त मेरा दोस्त एक इंजीनियर बनने के लिए रुड़की यूनिवर्सिटी में गया था,
0: जी
1: उस वक्त 75,000 इंजीनियर खाली था।
0: ओ
1: तो देखिए, एक क्लास में 60 लड़के होते हैं, पहले दो तीन तो दो तीन ही आएंगे, पांच दो तीन थोड़ी आ जाएंगे, तो किसी का वो जो 60वां है, एक 60वां भी होगा वहां, तो उसको ये बात से घबराना नहीं चाहिए कि भाई मेरा नंबर 60 आया, अबे तेरा नंबर 60 यहां आया, कहीं कोई और चीज जिनमें ट्राई करेगा वहां नंबर 1 हो जाएगा। तो अपने अपना पोटेंशियल खुद देखना चाहिए, खुद ढूंढना चाहिए,
0: मतलब इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए, चप्पा चप्पा कोशिश करते रहना चाहिए। इसी बात पे आपको आपको वो जो गाना अच्छा लगता है, आप भी थे ना माचिस फिल्म में,
1: माचिस
0: हो जाए,
1: बिल्कुल हो जाए, जलाइए
0: चप्पा चप्पा चरखा,
1: जलाइए माचिस
0: तो सुनते हैं वही गाना चप्पा चप्पा चरखा चले।

0: कमल जी, आपको कभी कभी फुर्सत भी मिलती होगी, मतलब जब समय मिलता है शूटिंग से, तो उसका इस्तेमाल आप कैसे करते हैं?
1: देखिए, जब मुझे समय मिलता है शूटिंग से, तो सबसे पहले तो मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूँ। तो अपने बच्चों के साथ अब और घर पे अपनी बीवी के साथ हम लोग इकट्ठा रहते हैं। और अगर कुछ एक दो दिन की ज़्यादा छुट्टी हो जाए इकट्ठी, और बच्चों का भी वीकेंड हो, सैटरडे संडे हो, तो हम लोग खंडाला वंडाला चले जाते हैं। तो ऐसे हमको, हम पूरे परिवार को, हमको ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है। तो अंग्रेजी में कहते हैं, ड्रॉप ऑफ अ हैट वी स्टार्ट फॉर एनी डायरेक्शन ऑन दिस अर्थ। तो इसीलिए मैं हर साल अपनी छुट्टियां जो है वो बच्चों की छुट्टियों के साथ कोऑर्डिनेट करता हूँ। एक तो दिवाली में और एक समर वेकेशन उनकी, तो उनके साथ मैं छुट्टियों पे चला जाता हूँ।
0: तो इसी बात पे कोई बच्चों के लिए गाना?
1: बच्चों के लिए क्या गाना, वो जब छोटा था, छोटे थे, तो इनको एक गाना बड़ा पसंद था, और मुझे आज तक समझ नहीं आई क्यों, क्योंकि वो उनकी उम्र का गाना है नहीं, लेकिन वो कुछ झूमने से लगता था, मेरा छोटा बेटा जो था। तो वो गाना है ना, रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है। तो मेरे ख्याल से वो मेरे बेटे को चांद लफ्ज समझ में आता होगा, तो उस वजह से वी यूज टू एंजॉय दैट नंबर। तो वो सुनवा देते हैं।
0: ठीक है, तो आइए सुनते हैं, रूप सुहाना लगता है।

0: अच्छा, कभी मन नहीं करता आपका भी कि मैं डायरेक्शन करूं?
1: आप दीजिए डायरेक्शन मेरे, आप लाइए
0: क्योंकि
1: प्रोड्यूसर तो मैं ये भी
0: 20
1: कर
0: 25 साल हो गए आपको
1: डालूंगा।
0: लोगों की बातें सुनते कि ऐसा ऐसा करो, अभिनय ऐसा करो, तो आपका तो दिल करता होगा कभी मैं भी कैमरे की
1: कभी
0: बागडोर संभालूं।
1: मैं उस बंदे का कॉलर पकड़ के कहूं कि अब तुम ऐसा करो। नहीं, मैं देखिए, मैं यहाँ पे एक्टिंग कोर्स करके पूना से यहाँ आया था। बड़ा मजा आता है इस काम में, इस प्रोफेशन में, लेकिन एज यू गो ऑन तो आप भी बहुत कुछ अलावा एक्टिंग के और भी आपके जो मीडियम है से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो सीखते हैं। साउंड के बारे में सीखते हैं, पिक्चर के बारे में, फोटोग्राफी के बारे में, डायरेक्शन के बारे में। तो ये मीडियम इतना फैसिनेटिंग है कि अगर मुझे कल को ये चांस मिलता है कि मैं डायरेक्टर डायरेक्शन करूं तो मैं ज़रूर इसमें भी एक क्या कहना चाहिए, गोताबाना
0: चांस
1: हाँ
0: लेना
1: चांस लेना चाहूंगा।
0: अच्छा,
1: व्हाई नॉट,
0: फिल्म में या सीरियल में?
1: किसी में भी।
0: किसी में भी।
1: हाँ
0: अच्छा, कहते हैं ना कि डायरेक्टर बड़े आर्टिस्टों को डायरेक्ट नहीं करता, बल्कि आर्टिस्ट उन्हें डायरेक्ट करते हैं। ये क्या बात सही है?
1: पहली बात तो बड़ा आर्टिस्ट कौन है, क्योंकि
0: आप बड़े आर्टिस्ट हैं भाई।
1: हाँ, तो मैं तो ऐसा नहीं करता हूं। तो अगर आप, हाँ मैंने आज तक कभी हमेशा अपने डायरेक्टर की सुनी है। देखिए, आर्टिस्टिक डिस्कशन जो हमारी सेट पे होती है कि भाई अगर हम ऐसा कर लें तो शायद ये ज्यादा स्पॉन्टेनियस लगे, अगर हम यूं डायलॉग लाइन को यूं करें तो शायद ये डायलॉग ही ना लगे और ऐसे लगे कि वाकई बातचीत हो रही है दो कैरेक्टर्स के बीच में। तो इतना तो हमारा दखल है ही और होना भी चाहिए। आफ्टर ऑल वी आर नॉट पपेट्स, हम लोग कठपुतलियां नहीं है, एक्टर्स आर नॉट कठपुतलियां,
0: जी।
1: हम सोचने वाले जीव जंतु हैं। और हमको इस बात का थोड़ा बहुत ज्ञान भी रहता है कि ये लफ्ज जो है या ये लाइन, ये डायलॉग ही लगेगी, क्लीशेड लगेगी, मेलोड्रामेटिक लगेगी, या के सच्ची लगेगी। सच्चा लगना बड़ा जरूरी है।
0: ये सच्ची बात जो है आपने बोला, सच्चा लगना जरूरी है। कहते हैं कि अच्छा एक्टर वही होता है जो कि अच्छा इंसान होता है, तो ये बात भी क्या सही है? क्योंकि मैंने
1: पता
0: देखा है
1: नहीं,
0: कई एक्टर बड़े अच्छे हैं, बट बेसिकली दे आर नॉट गुड ह्यूमन बींग्स।
1: मुझे मुझे ऐसा लगता है कि अगर आदमी एक्टर अच्छा है, अगर आर्टिस्ट अच्छा है, चाहे वो पेंटर है, चाहे वो एक्टर है, तो उसके काम से आप लुत्फ लीजिए ना, वो बुरा है या अच्छा है भाड़।

0: वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
1: समझा?
0: अच्छा, कभी आप पीछे मुड़ के देखते हैं जहां से आपने शुरुआत की और उसके आप तो बहुत सीढ़ियां आगे चढ़ लिए, तो पीछे मुड़ के देखते हैं तो पीछे बहुत सारे साथी छूट चुके होते हैं, कुछ को सफलता मिलती है, कुछ को सफलता नहीं मिलती। आपको कैसा लगता है ये?
1: देखिए, ऐसा आया कि मेरे साथ जो थे इंस्टीट्यूट से निकले, वो मेरा ख्याल अगर इस लाइन में कुछ मकाम हासिल नहीं कर पाए तो कहीं और हैं और बड़े अच्छे ओहदे पे हैं, बड़ी अच्छी पोजीशंस पे हैं। पीछे मुड़ के मैं नहीं देखता, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, लेकिन मैं ऐसा करता हूं।
0: आप पीछे मुड़ के नहीं देखते?
1: मैं कोशिश नहीं करता पीछे न देखने की, पर मेरी फितरत में ही नहीं है। मैं पीछे देखता ज्यादा नहीं हूं।
0: मतलब जो छूट गया वो छूट गया।
1: हाँ, मतलब कुछ उसमें मेरा फिलोसॉफिकल एटीट्यूड भी नहीं है, या फिर मेरी ये कोशिश भी नहीं है कि मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूं। इतना एरोगेंस भी नहीं है उसमें। बस ये मेरे साथ रहा है कि कुछ पुराना याद नहीं आता मुझे ज्यादा, और ये भी नहीं एटीट्यूड मेरा कि मैं सिर्फ आगे बढ़ना चाहता हूँ, ये सब भी नहीं है। बस ये जो इस वक्त कर रहा हूँ बड़ा अच्छा लगता है। मेरे एक दोस्त हैं रमेश दत्त, हमारे सहारनपुर में, वो बकौल उनके वो कहते हैं, भाई अब बस जीना अच्छा लगता है।
0: वाह वाह,
1: हाँ, तो ये काम अच्छा लगता है
0: मतलब
1: जो
0: छैया छैया।
1: हाँ,
0: तो
1: छैया
0: आइए
1: छैया,
0: फिर सुनते हैं छैया छैया,
1: बेशक
0: है आपको
1: बिल्कुल,
0: पसंद है ना?
1: बहुत पसंद है।

0: अच्छा कमल जी, आप एक्टिंग के अलावा क्या करते हैं?
1: एक्टिंग
0: एक्टिंग के अलावा एक्टिंग
1: देखिए बेसिकली
0: मतलब 24 घंटे आप एक्टिंग करते रहते हैं, वेदर कैमरा इज ऑन और
1: नहीं? ये मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सबसे पहले ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो एक्टिंग है जो मैं उसके सामने करता हूँ
0: कैमरे
1: के सामने
0: जी,
1: उसमें से एक्टिंग बिल्कुल खत्म कर दूं।
0: अच्छा
1: तो हाँ, तो बाकी क्योंकि सारी जिंदगी में हम एक्टिंग करते ही रहते हैं, तो कम से कम यहाँ से बिल्कुल निकाल के इसका वजूद खत्म करना चाहता हूँ। कितना कामयाब हुआ हूँ ये पता नहीं, लेकिन कोशिश मेरी यही है। बाकी इसके अलावा
0: जी,
1: मुझे शौक है खेलने के, आई हैव बीन अ स्पोर्ट्समैन बचपन में, स्कूल में भी और अब भी टेनिस खेलता हूँ मैं, और टेनिस से बहुत लगाव है, बहुत इश्क है, और क्रिकेट से भी। अपने बच्चों के साथ घर में जब बीवी नहीं होती तो फुटबॉल खेलता हूँ, तो क्योंकि बीवी हम लोग को खेलने नहीं देती
0: शीशे टूट जाते हैं
1: तो जब वो घर में होती हैं तो हम लोग थोड़ा बाहर आंगन में खेल लेते हैं, जब वो बाहर होती हैं तो फिर हम लोग अंदर खेल लेते हैं, मैं और मेरे दोनों बच्चे।
0: अच्छा, तो आप उनकी मदद भी करते होंगे किचन में या वो आपकी ही मदद करती रहती हैं?
1: नहीं, मैं उनकी मदद इस लिहाज से करता हूँ कि मुझे खाने का बड़ा शौक है, तो वो खाना इतना अच्छा लजीज बनाती हैं कि मैं उसको खाने में मदद करता हूँ। बाकी मुझे खाना, हालांकि आई एम सरप्राइज माई सेल्फ, क्योंकि मैंने इतना लंबा अरसा बैचलर लाइफ लीड की है मुंबई में कि, और अकेला रहा हूँ जिंदगी में, लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आया और खाना बनाने की कोशिश भी नहीं की मैंने। हालांकि मेरा एक भाई है, वो बड़ा अच्छा खाना बनाता है, मुझे नहीं बनाना आता।
0: अच्छा, आपके आने वाले कोई सीरियल या फिल्म?
1: जी हाँ, एक अभिमान कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं राकेश सारंग, उनके साथ कर रहा हूँ, मनीष गोस्वामी का सीरियल है और वो आने वाला है। बाकी 3 ऑलरेडी चल रहे हैं तो मुझे वक्त भी नहीं है कि मैं ज़्यादा कर सकूँ। ये खत्म होने वाले हैं कुछ, सांस जैसे हुआ ये खत्म हो जाएगा तो फिर दूसरा आई टेक ऑन। एक आधा पायलट किया हुआ है और पायलट किए नीना के साथ, दूसरा हमारा पायलट शूट होने वाला है, तो ऐसा ओवरलोड नहीं करता मैं काम से अपने आप को,
0: मतलब जितना कर सकते हैं उतना ही लेते हैं आप?
1: हाँ, जितना अपनी पूरी एबिलिटी, अपना पूरा कंसंट्रेशन में जिस काम को दे सकूं वही करता हूँ। तो अच्छा अच्छा आप मेरी पसंद के गाने तो सुनते रहे, आपको क्या पसंद है?
0: मुझे आपने एक बहुत बड़ी फिल्म की थी सत्ते पे
1: सत्ता, जी हाँ जी,
0: है ना?
1: हाँ, तो उसका गाना प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया
0: है।
1: चलिए साहब।

0: कमल जी,
1: जनाब।
0: अगर आप अभिनय नहीं करते तो क्या करते?
1: हाँ, अभी नहीं करता। मैंने जैसे शुरू में बताया, मैं फौज में जाना चाहता था, एयरफोर्स में। तो वहाँ इवेंचुअली नहीं जा सका कुछ वजह। तो मुझे समझ नहीं आता वाकई मैं क्या करता, क्योंकि ये काम, इसमें आने के बाद मुझे इससे इतना इश्क हुआ इस काम से, कि मुझे नहीं लगता कि मैं कोई और काम कर सकता।
0: मतलब आदमी बेकार हो जाता है
1: हाँ,
0: कुछ और
1: बेकार
0: कर
1: ही।
0: ही नहीं सकता एक्टर बन के,
1: बिल्कुल नहीं,
0: हैं
1: एक्टर बन के बेकार हो जाता है ये तो नहीं मुझे मालूम, लेकिन इससे
0: मतलब
1: अगर
0: इश्क
1: इश्क
0: हो
1: हो जाए,
0: जाता है
1: अगर
0: ना।
1: इससे इश्क हो जाए तो फिर मतलब और कुछ कर नहीं सकता। हाँ, अगर मैं ना, अगर एक और चांस दिया जाता मुझे, तो शायद मैं स्पोर्ट्समैन होता, शायद मैं टेनिस खेलने लगता।
0: अच्छा, कई ऐसे भी डायरेक्टर हैं जिनके साथ आप काम करना चाहते थे, आपको मौका नहीं मिला, या कोई ऐसे स्टार्स, आपने बहुत सारे स्टार्स के साथ काम किए, कोई बच्चा होगा जो आपके फेवरेट रहे हो और आपको मौका नहीं मिला होगा, तो आप तो अभी ऐसे स्टेज पर हैं कि आप जिसके साथ चाहे काम करना चाहें आप कर सकते हैं, तो अभी आप किनके साथ काम करना चाहते हैं?
1: देखिए, जिनके साथ मैंने काम किया है ऑलरेडी, उनको मैं जानता हूँ, और उनमें मोस्टली बड़ा मजा आया है सबके साथ काम करने में। और जिनके साथ मैंने काम नहीं किया उनके बारे में मैं ज्यादा जानता नहीं, तो मैं कह नहीं सकूंगा। और मुझे अच्छा लगता है जब मैं वैरायटी ऑफ एक्टर्स के साथ काम करता हूँ, अलग अलग रिएक्शंस मिलते हैं। वरना एक वो होता है, इंस्टिंक्टिवली आपको मालूम है अगला क्या करने वाला है, तो आपका परफॉर्मेंस और जो इंटरेक्शन है वो जरा रेपिटेटिव हो जाता
0: नहीं,
1: है।
0: मेरा कहने का मतलब है कि आप ऐसे ही कोई स्टार तो होगा ना आपका फेवरेट जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं, या कोई डायरेक्टर कि इतने सालों तक तो आपको चांस नहीं मिला, अभी तो आपका समय आ
1: नहीं
0: गया
1: नहीं
0: कि मैं काम कर लूं,
1: मैं अच्छी स्क्रिप्ट में काम करना चाहता हूँ।
0: ऐसा कोई फेवरेट नहीं है या लॉन्गिंग नहीं है कि मैं उसके साथ काम करूं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
1: नहीं,
0: चलिए इसी बात पे एक गाना सुनवा दीजिए, थोड़ा मूड अच्छा हो जाए।
1: मूड अच्छा हो जाए। चलिए, तो फिर अपनी बीवी के बात जब करता हूँ तभी मूड अच्छा रहता
0: ठीक
1: है। तो उन्हीं की फिल्म का एक और गाना सुना देते हैं आपको, मेरा वो सामान लौटा दो। गुलजार साहब ने बहुत ही खूबसूरत गाना लिखा है।

0: इस गीत के साथ ही मैं कमल जी आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे स्टूडियो में आए, विविध भारती स्टूडियो में आपने हमें अपना अनमोल समय दिया, धन्यवाद।
1: धन्यवाद
2: श्रोताओं, आज इस प्रोग्राम में आप सुन रहे थे टेलीविजन और फिल्मों से जुड़े अभिनेता कमलजीत से सविता बजाज की बातचीत। इस कार्यक्रम के निर्माण में तकनीकी सहयोग दिया दिनेश दाभोलकर ने, प्रस्तुति सहयोग रमेश गोखले का था और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने।

FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारे युवा श्रोता सुने दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

समय बदलता है, रास्ते बदलते हैं और दोस्त भी अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन दोस्तों के साथ बिताई हुई शामें मन में हमेशा कहीं न कहीं बची रहती हैं। कुछ यादें तस्वीरों में नहीं होती, वे बस दिल में दर्ज रहती हैं। वर्षों बाद भी किसी पुराने दोस्त के साथ बैठकर वही शाम याद आ जाए तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इसीलिए जिंदगी की दौड़ में थोड़ा ठहरना भी जरूरी हो जाता है। दोस्तों के लिए समय निकालना सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि रिश्तों को जीवित रखने की खूबसूरत आदत भी है। गुड इवनिंग, शुभ संध्या, नमस्कार दोस्तों। कार्यक्रम युववाणी में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो साथी रानी राजश्री। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में कुछ ऐसे पर्व हैं जिनके पीछे केवल धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि जीवन को बेहतर बनाने की एक सुंदर सीख भी छिपी होती है। ऋषि पंचमी भी एक ऐसा ही अवसर है जो हमें अपने ऋषियों और उनके ज्ञान के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर देता है। दोस्तों, हमारे ऋषियों ने जीवन को केवल आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं देखा बल्कि प्रकृति, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज और मानव व्यवहार को भी गहराई से समझा। उनके चिंतन में प्रकृति के प्रति सम्मान, संयमित जीवन और ज्ञान को आगे बढ़ाने की भावना दिखाई देती है। दोस्तों, ऋषि पंचमी के अवसर पर सप्त ऋषियों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने की परंपरा है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि ज्ञान किसी एक व्यक्ति की संपत्ति बिल्कुल नहीं होती। ज्ञान तभी सार्थक है जब वह आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे और समाज के काम आए। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम अक्सर अपने अतीत और अपनी परंपराओं से दूर होते चले जा रहे हैं। ऐसे में ऋषि पंचमी हमें थोड़ी देर रुककर यह सोचने का अवसर देती है कि हमारी संस्कृति ने हमें क्या दिया और हम उसे किस रूप में आगे ले जा सकते हैं। परंपराओं को निभाने का सबसे सुंदर तरीका शायद दोस्तों यही है कि हम उनके पीछे छिपे मूल विचार को अपने जीवन में उतारें, ज्ञान का सम्मान करें, प्रकृति के प्रति संवेदनशील रहें और अपने आचरण से समाज के लिए सकारात्मक उदाहरण बने। दोस्तों, कार्यक्रम में चलिए अब अगले चर्चा की ओर बढ़ते हैं जो है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। जी हाँ, ये आज के दिन यानी कि 15 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, लोकतंत्र केवल चुनाव के दिन मतदान करने का नाम नहीं है, लोकतंत्र तो उस सोच का नाम है जिसमें हर व्यक्ति की आवाज मायने रखती है और हर नागरिक अपने अधिकारों के साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी बखूबी समझता है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हमें इसी भावना की याद दिलाता है। लोकतंत्र हमें अपनी बात कहने, अपनी पसंद चुनने और सवाल पूछने का अधिकार देता है, लेकिन इसके साथ दोस्तों यह जिम्मेदारी भी आती है कि हम अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल समझदारी और शालीनता के साथ करें। आज सोशल मीडिया ने हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का एक बेहद अनोखा मंच दे दिया है। यह लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ एक चुनौती भी है। गलत जानकारी, अफवाह और बिना जांचे किसी खबर को आगे बढ़ा देना, इसीलिए जागरूक नागरिक होना आज पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, कहीं अधिक जरूरी है। दोस्तों, लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब नागरिक सिर्फ अधिकारों की बात न करें बल्कि कानून का सम्मान करें, दूसरों के विचारों को सुने, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और समाज के प्रति अपनी भूमिका को समझें। खासकर युवाओं की भूमिका यहाँ बेहद महत्वपूर्ण है। युवा केवल भविष्य नहीं, आज के लोकतंत्र की सक्रिय शक्ति भी हैं। उनकी सोच, उनके सवाल, उनकी भागीदारी और उनकी जिम्मेदारी देश की दिशा को प्रभावित कर सकती है। इसीलिए लोकतंत्र दिवस पर हम इतना जरूर सोचें कि हम अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल कितनी जिम्मेदारी से कर रहे हैं। मजबूत लोकतंत्र मजबूत नागरिकों से ही बनता है, ये हमें याद रखना चाहिए।
और इसके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और अपनी सहभागिता पूरी ईमानदारी के साथ देनी चाहिए। दोस्तों, दूरदर्शन का नाम सुनते ही एक ऐसा दौर

याद आता है जब घर में टीवी के सामने बैठना अपने आप में एक छोटा सा उत्सव हुआ करता था। स्क्रीन पर आने वाला हर कार्यक्रम लोगों को अपनेपन का एहसास देता था। समाचार हो, धारावाहिक हो, कृषि से जुड़ी जानकारी हो या फिर देश दुनिया की झलक, दूरदर्शन ने मनोरंजन के साथ साथ समाज को शिक्षित और जागरूक करने का एक बहुत बड़ा काम भी किया। आज हमारे हाथ में मोबाइल है, कुछ सेकंड में ही दुनिया की कोई भी जानकारी हमारे सामने आ जाती है। लेकिन दूरदर्शन का महत्व सिर्फ तकनीक में नहीं बल्कि उस भरोसे में है जो उसने दर्शकों के साथ बनाया हुआ है, खासकर ग्रामीण भारत तक शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी पहुंचाने में इसकी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही। दोस्तों, दूरदर्शन ने भारतीय संस्कृति और विविधता को भी मंच दिया। अलग अलग भाषाओं, लोक कलाओं, संगीत और परंपराओं को देश के कोने कोने तक पहुंचाने में इसका योगदान यादगार रहा है। आज माध्यम जरूर बदल गए हैं, देखने का अंदाज बदल गया हो, लेकिन एक जिम्मेदार प्रसारण की जरूरत आज भी उतनी ही है। बल्कि सोशल मीडिया के दौर में सही और विश्वसनीय जानकारी की जरूरत पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। दोस्तों, दूरदर्शन दिवस हमें यही याद दिलाता है कि प्रसारण केवल समय बिताने का माध्यम नहीं बल्कि समाज को जोड़ने, समझ बढ़ाने और जागरूक नागरिक बनाने की ताकत भी रखता है।

0: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, सौ बात की एक बात है सही। सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
1: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
2: दोस्तों कार्यक्रम के इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलिए अब बात करते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के बारे में, क्योंकि आज है इनकी जयंती। जी हाँ, हिंदी साहित्य की दुनिया में कुछ रचनाकार ऐसे होते हैं जिनकी पहचान केवल उनकी पुस्तकों से नहीं बल्कि उनकी भाषा और विचारों की विशिष्टता से बनती है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य के ऐसे ही महत्वपूर्ण रचनाकारों में गिने जाते हैं। उन्हें विशेष रूप से हिंदी एकांकी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए याद किया जाता है। उन्होंने इतिहास, संस्कृति और मानवीय संवेदनाओं को अपनी रचनाओं का आधार बनाया। उनकी लेखनी में भाषा की सुंदरता के साथ भावनाओं की गहराई भी दिखाई देती है। दोस्तों उनकी रचनाओं को पढ़ते हुए महसूस होता है कि साहित्य केवल मनोरंजन नहीं करता बल्कि हमें अपने समाज, अपने इतिहास और अपने भीतर झांकने का अवसर भी देता है। यही किसी अच्छे साहित्य की पहचान भी होती है। आज के दौर में जब पढ़ने के लिए हमारे पास पहले से ज्यादा साधन है फिर भी पढ़ने का समय कम होता जा रहा है, ऐसे समय में साहित्यकारों को याद करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि उनकी रचनाएं हमें ठहरना, हमें सोचना और महसूस करना सिखाती हैं। राम कुमार वर्मा जी की जयंती केवल एक साहित्यकार को स्मरण करने का अवसर नहीं बल्कि हिंदी भाषा और साहित्य की समृद्ध परंपरा को समझने का दिन भी है। दोस्तों अगर हम उनकी रचनाओं से संवेदना, भाषा के प्रति प्रेम और इतिहास को समझने की दृष्टि ग्रहण कर सकें तो यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी और साहित्य की यही खूबसूरती है। लेखक चला तो जाता है लेकिन उनके विचार लंबे समय तक हमारे साथ यूं ही चलते रहते हैं। दोस्तों कार्यक्रम में चलिए अब बात करते हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी के बारे में, क्योंकि आज है इनकी जयंती। दोस्तों कुछ लेखक ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े शब्दों के बिना ही लोगों के दिल तक पहुंच रखते हैं। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का साहित्य इसी सादगी और संवेदना के लिए जाना जाता है। उनकी कहानियों और उपन्यासों में आम इंसान की जिंदगी, उनके संघर्ष, रिश्तों की उलझन और भावनाओं की सच्चाई बेहद सहज रूप में दिखाई देती है। दोस्तों उनकी रचनाओं में समाज का वह चेहरा भी नजर आता है जहां व्यक्ति परंपराओं और सामाजिक बंधनों के बीच अपने मन की आवाज तलाशता है। खासकर स्त्री जीवन और मानवीय रिश्तों को उन्होंने जिस संवेदनशीलता से देखा वह उनके साहित्य को और भी प्रासंगिक बनाता है। दोस्तों उनकी सबसे बड़ी ताकत शायद यही थी कि उन्होंने साधारण लोगों की असाधारण भावनाओं को शब्द दिए। उनके पात्र हमें किसी दूर की दुनिया के लोग नहीं लगते बल्कि ऐसा महसूस होता है जैसे वे हमारे आसपास ही रहते हों। आज जब जीवन बहुत तेज हो गया है और रिश्तों के लिए समय कम होता जा रहा है, शरद चंद्र जी का साहित्य हमें संवेदनशील बने रहने की याद दिलाता है। वह बताता है हमें कि किसी इंसान को समझने के लिए केवल उसके फैसले देखना काफी नहीं, उसके पीछे छिपी परिस्थितियों और भावनाओं को समझना भी जरूरी है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जयंती पर उन्हें याद करना वास्तव में उस साहित्य को सम्मान देना है जो इंसान को इंसान के और करीब लाता है। उनके शब्द हमें आज भी यही कहते हुए महसूस होते हैं कि समाज कितना भी बदल जाए, मानवीय संवेदनाओं की जरूरत

दोस्तों कार्यक्रम में चलिए अब बात करते हैं डॉक्टर मोक्ष गुंडम जी के बारे में, क्योंकि आज है इनकी जयंती। जब किसी देश का निर्माण होता है तो उसमें केवल इमारतें और सड़कें नहीं बनती, बल्कि उस देश के सपने आकार लेते हैं। भारत के महान अभियंता और राष्ट्र निर्माता डॉक्टर मोक्ष गुंडम जी का जीवन इसी सोच का शानदार उदाहरण है। 15 सितंबर को उनकी जयंती के अवसर पर भारत में अभियंता दिवस भी मनाया जाता है। उन्होंने इंजीनियरिंग को केवल नौकरी के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे देश के विकास का माध्यम बनाया। जल प्रबंधन, सिंचाई और सार्वजनिक निर्माण के क्षेत्र में उनके योगदान ने भारत के विकास की मजबूत नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों उनकी सबसे बड़ी विशेषताओं में अनुशासन, समय की पाबंदी, मेहनत और अपने काम के प्रति समर्पण शामिल था। उनका जीवन यही संदेश देता है कि किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रतिभा के साथ मेहनत और ईमानदारी भी जरूरी है। आज जब भारत आधुनिक बुनियादी ढांचे, तकनीक और नवाचार की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, तब इनके जैसे व्यक्तित्व और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। इंजीनियरिंग का मतलब केवल मशीन और तकनीक समझना नहीं, बल्कि यह समझना है कि तकनीक का उपयोग समाज और देश के हित में कैसे आगे किया जाए। दोस्तों इनकी जयंती पर देश के सभी अभियंताओं और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को सम्मान देना तो जरूरी है, साथ ही उनके जीवन में अनुशासन और राष्ट्रहित की प्रेरणा लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

0: दोस्तों, कार्यक्रम में चलते चलते अटल बिहारी वाजपेयी जी के इस विचार के साथ, उनका मानना था कि हिंदी हमारी आत्मा की आवाज है। जी हाँ, यह कथन दर्शाता है कि अटल जी हिंदी को केवल एक भाषा नहीं बल्कि आत्मा की अभिव्यक्ति मानते थे। उनके लिए हिंदी भावनाओं, विचारों और सांस्कृतिक मूल्यों की वाहक थी। वे हिंदी को भारतीयता की पहचान मानते थे। इसी विचार के साथ अब अपनी रेडियो साथी रानी राशि को कार्यक्रम युववाणी से दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: नमस्कार। यदि आप रेडियो प्रस्तुति और एंकरिंग में रुचि रखते हैं और अपनी आवाज के माध्यम से श्रोताओं के बीच अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी ओबरा आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका।
0: आकाशवाणी ओबरा द्वारा युववाणी कार्यक्रम के लिए असाइनमेंट अर्थात समनुदेशती आधार पर कंपियर एवं अंतरवार्ताकार का पैनल तैयार किया जा रहा है। इसके लिए ओबरा परिक्षेत्र में निवास करने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
1: अभ्यर्थियों का चयन स्वर परीक्षा यानी ऑडिशन और स्क्रीनिंग समिति के संस्तुति के आधार पर किया जाएगा और सफल अभ्यर्थियों का नाम पैनल में शामिल किया जाएगा।
0: ध्यान रहे, यह स्थायी और नियमित रोजगार नहीं है। आकाशवाणी ओबरा अपनी कार्यक्रमगत आवश्यकता के अनुसार ही पैनल में शामिल अभ्यर्थियों को समय समय पर कार्य हेतु आमंत्रित करेगा। प्रत्येक असाइनमेंट के लिए प्रसार भारती के नियमानुसार मानदेय देय होगा।
1: आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की आयु 28 अगस्त 2026 को 18 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय अथवा महाविद्यालय से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
0: आवेदन शुल्क ₹118 निर्धारित है। शुल्क ऑनलाइन अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से PBBC ऑफ इंडिया प्रसार भारती आकाशवाणी वाराणसी के खाते में देय होगा।
1: आवेदन पत्र के साथ शुल्क जमा करने की रसीद संलग्न करना भी अनिवार्य होगा।
0: इच्छुक अभ्यर्थी सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में आकाशवाणी ओबरा कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं और पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन 28 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
1: और यदि आप व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा करने में असमर्थ हैं, तो आवेदन पत्र डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। पता इस प्रकार लिखें: स्वर परीक्षा युववाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी ओबरा जिला सोनभद्र, पिन कोड नंबर है 231219।
0: तो जुड़िए आकाशवाणी ओबरा से,
1: दीजिए अपनी आवाज को नई पहचान।
2: अभी हमारे युवा श्रोता दैनिक कार्यक्रम युवाणी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हुए हैं। अब हमारी ग्रामीण महिलाएं सुने अपना कार्यक्रम घरनी।

0: सब बहिन लोगन के गौरी का राम राम। और बहिन लोगन सुनावे का हाल समाचार बा, सब कुशल मंगल बा ना। अब बहिन तो देख काल तीज व्रत रहलू है लोगन अपने पति परमेश्वर के लंबी आयु के लिए, जौना के हरितालिका तीज भी कहल जाला। आ देख लक्ष्मी बहिन हंसत है ना खूब, मेहंदी उदी लगाई के एकदम चटक साड़ी पहन के आयल हैं। तो बहिन लोगन देख कौनो भी तीज हो त्योहार हो आवेला तो घर में देखें पूरा रौनक का माहौल, मतलब एक बढ़िया माहौल बन जाला। पूजा पाठ से घर में देखें उत्साह और अच्छी ऊर्जा का संचार होला। और भोलेनाथ इतना शक्ति है दिहले हमें हमार लोगन के कि ए पूजा पाठ के निभा हम लोग सकत हैं जा। और बहन लोगन देखा सबसे जरूरी बात कि हमहन का भी हमहन का बचपन भी ए संस्कृति से अपन जौन भी हम लोग का पूजा बा पर्व बा परंपरा बा ओके सीख ली हैं, और जौन भी हमार अगली पीढ़ी बा वहाँ तक ये धर्म और कर्म पहुँच जाए, ये व्रत उपवास देख के वो सीखी हैं और अगला पीढ़ी तक पहुँची। तो कहें कि देखें बचपन का पहला गुरु तो माता पिता ही होलन, जहाँ से अपने बचपन के बोले के चाले के उठे के बैठे के सलीका सीखे के मदद मिलेला। और हमार लोगन तो देखें मातृभाषा हिंदी है, चाहे जितना भी हमार लोगन अपने बचपन के अंग्रेजी पढ़ावल जा, लेकिन पहचान तो हमार हिंदी भाषा से ही बनेला। और गणवा तो आप लोग सुन रही हुई हैं कि हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो वही लोगन देखा हिंदी सिर्फ बातचीत का जरिया भर नहीं है, बल्कि ई भावना संस्कृति और लोगन के आपस में पिरोए वाला एक मजबूत धागा है। आप कहीं भी होखें भाषा हमेशा दूरी के मिटा के अपनापन बढ़ावत है। और देखें धीरे धीरे हिंदी भाषा का प्रचलन बढ़ल है और ए भाषा देखा राष्ट्रभाषा का रूप भी ले लेला। अब हमार राष्ट्रभाषा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत पसंद कैल जा रहल बा। और एकर एक कारण यो है कि हमार भाषा हमारे देश के संस्कृति और संस्कार का प्रतिबिंब है। आज विश्व के कोने कोने से जन विद्यार्थी लोगन हवा हमार भाषा और संस्कृति के जाने के लिए उत्सुक हवा और हमारे देश का रुख भी कर रहा हवा। तो इतने कितना बढ़िया बात बा ना, कितना गर्व का विषय बा, ये जान के कितना हर्ष होला। एक हिंदुस्तानी के कम से कम अपन भाषा यानी हिंदी तो आवे के ही चाहिए और हम लोगों के अपने हिंदी भाषा का सम्मान भी करे के चाहिए। तो वही लोगों ने इससे जुड़ल एक जानकारी भी हम शामिल के लिए हैं अपने बैठकी में। सोशल मीडिया के दौर में हिंदी भाषा श्रीमती रजनी राजवंश जो प्रधानाध्यापिका हैं अवई सलखन से और उनसे अपन बातचीत के लिए हैं अपन संजू सिंह बहन, तो हम तो कहते हैं कि जानकारी हम लोग पहले सुन ले जाए फिर आगे आप लोगों से और बातचीत हो।
1: श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं आज के इस डिजिटल युग में सोशल मीडिया ने संचार के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। हिंदी जो भारत की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में से एक है और सोशल मीडिया पर अपनी लोकप्रियता के कारण एक महत्वपूर्ण स्थान बना रही है। आधुनिक डिजिटल युग में सोशल मीडिया ने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार और विस्तार के साथ उसकी वैश्विक उपस्थिति को मजबूत करने में ऐतिहासिक योगदान दिया है। इसके पीछे किसकी मेहनत और संघर्ष की कहानी है, आज इसके बारे में बातें करेंगे श्रीमती रजनी राजवंश जी से, जो कि प्रधानाध्यापिका हैं कंपोजिट विद्यालय अवई सलखन सोनभद्र से। आज हमारे साथ आकाशवाणी ओबरा के स्टूडियो में आमंत्रित हैं। तो बात किया जाए, सबसे पहले रजनी राजवंश जी आपको हमारा नमस्कार।
2: नमस्कार संजू जी,
1: और आकाशवाणी ओबरा के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: रजनी राजवंश जी देखे हम सब एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने के लिए जुटे हैं। बात करेंगे हम सब सोशल मीडिया और हिंदी भाषा के बारे में। तो ये बताएं कि सोशल मीडिया जो हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, ऐसे में हिंदी भाषा की वर्तमान स्थिति को किस तरह से आप देखती हैं?
2: जी हाँ संजू जी, ये बिल्कुल सत्य है कि आज की भाग दौड़ की जिंदगी में हमारा जीवन पूरा मोबाइल की तरह अनवरत चल रहा है।
1: जी जी,
2: इससे हमारा सोशल मीडिया से हमारा कोई भी जीवन का पहलू छूटा नहीं है। जहाँ सोशल मीडिया ने हिंदी भाषा को एक मंच दिया है, पूरी दुनिया को एक दूसरे के बहुत करीब ला के रख दिया है।
1: जी,
2: आज के दौर में बड़ी संख्या में लोग व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम पर हिंदी बोलते हैं और लिखते हैं।
1: जी,
2: तो हम ये कह सकते हैं कि हिंदी भाषा को जो मंच मिला है उसके कारण हिंदी भाषी लोगों को अपनी भाषा में भावनाओं को व्यक्त करने का एक स्थान मिल गया।
1: जी,
2: जिसके कारण एक तरह से हिंदी भाषा का विकास संभव हो पा रहा है।
1: जी रजनी जी, देखिए हम सोशल मीडिया पर इंग्लिश यानी कि हिंदी अंग्रेजी के मिश्रित रूप का ज्यादा प्रयोग करते हैं बजाय केवल हिंदी के, तो क्या ये चिंता का विषय है या फिर भाषा के बदलते स्वरूप का स्वाभाविक हिस्सा है, आप क्या मानती?

0: ये सच बात है कि आज जो इंग्लिश का प्रयोग हो रहा है
1: जी
0: उसने हिंदी भाषा को कहीं ना कहीं आहत किया है, उसकी शुद्धता पे एक प्रश्न लग गया है, जिससे कि इंग्लिश जो है एक मिश्रित भाषा है जिसमें कई भाषाओं का सम्मिश्रण है,
1: जी
0: इंग्लिश और हिंदी का ज्यादातर होता है। मुझे लगता है कि निश्चित ही ये चिंता का विषय है।
1: जी
0: हिंदी भाषा का एक अपना गौरवशाली इतिहास रहा है।
1: जी बिल्कुल
0: हम अगर पूर्व में जाएं तो भारतेंदु, कबीर, प्रेमचंद साहित्यकारों के साहित्य को पढ़ेंगे
1: जी
0: तो उनके साहित्य को पढ़ने से उस समय के तात्कालिक समाज का दर्शन होता है। किंतु आज जो इंग्लिश भाषा का प्रयोग हम कर रहे हैं वो बोलने और लिखने में तो आसान होता है, पर हिंदी भाषा की शुद्धता को नष्ट कर रहा है।
1: जी बिल्कुल। तो ये सोशल मीडिया ने हिंदी को जन जन तक पहुंचाने के लिए और लोकप्रिय बनाने में किस तरह की भूमिका निभा रही है?
0: जहाँ तक मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया एक ऐसी मंच है जिसके कारण हम समाज के हर एक तबके से, यहाँ तक कि देश विदेशों से भी जुड़े हुए हैं,
1: जी
0: और थोड़े से प्रयास से हम घर बैठे हुए विदेशों तक भी अपनी बातें पहुँचा लेते हैं।
1: जी
0: ये
1: बिल्कुल
0: एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से हम थोड़ी सी मेहनत से जन जन तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि शिक्षित नहीं है,
1: जी
0: वो भी इस सोशल मीडिया की देन है कि अपनी बातों को खुले मन से और पूरी स्वच्छंदता से अपनी बातों को रख पा रहे हैं।
1: जी अच्छा रजनी जी, देखिए कई बार सोशल मीडिया पर अशुद्ध वर्तनी और गलत व्याकरण देखने को भी मिलता है,
0: हाँ,
1: इससे भाषा की शुद्धता पर असर पड़ रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी?
0: या मैं यही कहना चाहूंगी कि हिंदी भाषा के लिए सोशल मीडिया खतरा नहीं है, बल्कि जब हम गलत हिंदी के शब्दों का लगातार और अनजाने में प्रयोग किए जाते हैं
1: जी
0: तो ये हिंदी भाषा के लिए खतरा है। सोशल मीडिया ने हिंदी भाषा को व्यापक मंच दिया है, लेकिन भाषा की शुद्धता के सामने निश्चित ही एक चुनौती आई है। आज के समय में लोग जल्दबाजी के दौर में
1: जी
0: अशुद्ध और अनावश्यक शब्दों का प्रयोग सोशल मीडिया पर करने लगते हैं। यही गलत शब्द जब हमारी युवा पीढ़ी बार बार देखती है तो उसे ये सामान्य लगने लगता है, और उसका यही परिणाम होता है कि वो उसी को शुद्ध मानने लगती है और उसी को वो सही मान के वही भाषा का प्रयोग करने लगती है,
1: जी
0: जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। इसको हमको सुधारने के लिए थोड़ा सा प्रयास करना होगा कि जो हम अपने युवा पीढ़ी को रचनात्मकता की ओर ले जाएं, और
1: जी
0: वो रचनात्मकता हिंदी भाषा की हो और भाषा की शुद्ध वर्तनी को और उसकी शुद्ध उच्चारण को बहुत ध्यान रखा जाए।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, क्या हिंदी को बस एक विषय के रूप में ही पढ़ाया जाना चाहिए रजनी जी, या फिर लोगों की जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें अव्यक्त करने के लिए भी उनसे उसको जोड़ा जाना चाहिए?
0: इसके लिए हमें हिंदी भाषा को एक पाठ्यक्रम के रूप में मानने की बजाय
1: जी
0: हमें इसको सामाजिक जीवन में हिंदी भाषा को एक महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। किसी भी विषय वस्तु को सिर्फ पाठ्यक्रम के रूप में जब हम पढ़ाएंगे तो वो ठीक नहीं है,
1: जी
0: उसका प्रभाव हमारे मानस पटल पे समय के साथ धूमिल पड़ जाएगा।
1: जी
0: तो ज्यादा अच्छा होगा कि शुद्धता के साथ इसे बढ़ाने के लिए युवाओं में रचनात्मक लेखनी और भाषा का प्रैक्टिस कराई जाए। इससे हमारी हिंदी भाषा को शुद्धता भी मिलेगा और साथ में हिंदी भाषा से प्रभावित लोग अपने आप स्वयं ही उससे जुड़ते जाएंगे।
1: जी आपने युवाओं की बात करी, तो ये भी आप बताएं कि हिंदी के प्रति सम्मान और रुचि बढ़ाने के लिए माता पिता, अभिभावक और शिक्षकों की क्या भूमिका होनी चाहिए?
0: हिंदी भाषा के प्रति रुचि और सम्मान बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी की भूमिका होती है तो वो माता पिता और शिक्षक की ही होती है।
1: जी
0: इसलिए माता पिता, जब बच्चा एकदम छोटा होता है तभी से उसको शुद्ध बोलना और जो कि अच्छी साहित्य होते हैं वैसी किताबों को पढ़ाना,
1: जी
0: ऐसी स्वस्थ आदतें डालनी चाहिए उनके अंदर,
1: जी
0: और हमें अपने बच्चों को हिंदी के प्रति प्रोत्साहित करना पड़ेगा।
1: जी
0: और छात्रों के सामने, अपने बच्चों के सामने कहानी, कविता जैसी रचनाएं स्वयं बनानी होंगी और उनको भी मौका देना होगा।
1: जी रजनी जी, देखिए आजकल AI और नई तकनीकों का जमाना है, और इस दौर में हिंदी भाषा के सामने आपको कौन सी नई संभावनाएं और चुनौतियां दिखाई देती हैं?
0: सबसे बड़ी तो है हिंदी भाषा की शुद्धता और गुणवत्ता को बनाए रखना।
1: जी
0: AI में जो भी जानकारियां हैं वो आज हमारी नई पीढ़ी ही प्रायोजित कर रही है,
1: जी
0: और सोशल मीडिया द्वारा इसे परोसा जा रहा है, उसमें मिश्रित भाषाओं का उपयोग किया जा रहा है, जबकि आवश्यकता है कि हमारे पास अपनी हिंदी भाषा की एक सुदृढ़ समृद्ध शब्द कोश हो।
1: जी
0: हमारा व्याकरण व्याकरण शुद्ध हो, हमें उसकी अच्छी जानकारी हो। जब कोई व्यक्ति अपने मूल से डिगेगा तो दूसरों का सहारा लेगा और यही हमारे भाषा की गिरावट का कारण होगा।
1: जी रजनी जी, वैसे तो युवाओं के बारे में आप बात बता ही रही हैं। आज के युवा जो कि देश की रीढ़ कहे जाते हैं, वो सोशल मीडिया पर तमाम तरह के रील्स, वीडियो, कंटेंट बनाते हैं, तो भाषा

0: स्तर पर अगर बात करें हम, तो उनको किस बातों का ध्यान रखने की सलाह आप देंगी?
1: सबसे पहले तो उन्हें जिस भाषा में कंटेंट करना है
0: जी,
1: उस भाषा का पर्याप्त शब्दकोश होना चाहिए,
0: बिल्कुल
1: व्याकरण की जानकारी होनी चाहिए और विषय वस्तु की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए उन्हें
0: जी,
1: तभी वो अपने कंटेंट को आगे बढ़ा सकते हैं और जन जन तक अच्छे से पहुंचा सकते हैं और लोग उनसे जुड़ेंगे
0: जी,
1: तभी हमारे हिंदी भाषा के विकास का और प्रसार का एक माध्यम बनेगा।
0: बिल्कुल रजनी जी, देखें बहुत ही अच्छी बातचीत आपसे हुई। अब अंत में हिंदी भाषा के प्रति जागरूकता और सम्मान के साथ भाषा की गरिमा बनाए रखने के लिए क्या कुछ और कहना चाहेंगी सभी श्रोताओं से?
1: देखिए संजू जी, अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि नई पीढ़ी को यह संदेश देना है कि परिश्रम का कोई शॉर्टकट नहीं होता।
0: बिल्कुल, बिल्कुल,
1: परिश्रम भी पूरे मनोयोग से होना चाहिए, इसमें कोई कसर नहीं होनी चाहिए
0: जी।
1: युवा पीढ़ी को यदि कुंदन जैसा चमकना है तो हिंदी भाषा की बारीकियों का गहन अध्ययन करना होगा
0: जी, बिल्कुल,
1: और इसके लिए वो स्वयं ही परिश्रम के आंच में तपकर तभी दुनिया को अपना अनुकरण करने के लायक बना सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: अपनी मातृभाषा पर गर्व कीजिए, क्योंकि भाषा तभी जीवित और सुदृढ़ रहती है जब नई पीढ़ी उसे अपने जीवन में अपनाती है।
0: बिल्कुल,
1: विशेष तौर पे अपने युवाओं से यही कहेंगे, अपने हिंदी भाषा पर गर्व करें, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसका प्रयोग करें, तभी हिंदी भाषा को हम ऊंचाइयों तक ले जा पाएंगे।
0: जी रजनी जी, तो श्रोताओं आप हमारे साथ थी श्रीमती रजनी राजवंश जी, जो कि प्रधानाध्यापिका हैं कंपोजिट विद्यालय अवई सलखन सोनभद्र में। श्रोताओं, सोशल मीडिया पर हिंदी की लोकप्रियता ने भाषा के संरक्षण और विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये न केवल भाषा को जीवित रख रहा बल्कि नई पीढ़ी को भी अपनी मातृभाषा से जोड़ रहा। सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदी भाषा के प्रसार और प्रचार के लिए और भी अधिक आगे बढ़ रहा है, जिससे यह और भी अधिक समृद्ध और प्रभावशाली बन रही। यह कहीं न कहीं प्रत्येक जन की जागरूकता का असर है, तो इसी प्रकार अपना योगदान देते रहें और हिंदी को और भी अधिक समृद्धशाली बनाते रहें। और रजनी राजवंश जी, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और आकाशवाणी स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।
1: धन्यवाद।
2: बहिन लोगन, हम लोग देखा जानकारी सुनत रहे हैं कि सोशल मीडिया के दौर में हिंदी भाषा श्रीमती रजनी राजवंश जो एक प्रधानाध्यापिका हैं उनसे अपन बता सब इनके बातचीत भैल है। अब इन लोग को एक धन्यवाद दिया जाए एक मनसाइन के साथ। तो सीमता मिश्रा के गावल एक कर्मा सुनल जाए।

बहिन लोगन देखा सीमता मिश्रा बहिन रहली ना, कर्मा सुनावत रहली हैं हर वनवासी के बनवे है थाती। सही बात है कि जे जहाँ रहेला ओकर उहे पूजी उहे थाती रहेला। और आगे सीमता मिश्रा बहन के और सुनल जाए। लेकिन बहन लोगन देखा आज दूरदर्शन दिवस पर आप लोगों से हम कुछ बात कही चाहब कि देखें, भारत का राष्ट्रीय टेलीविजन प्रसारक दूरदर्शन प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर के अपन स्थापना दिवस मनावेला। दूरदर्शन का शुरुआत आज के दिन 1959 के नई दिल्ली में आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो के एक हिस्से के रूप में भइल रहल। पहला प्रसारण देखा एक भइल रहल आधा घंटा के लिए शैक्षिक और विकास कार्यक्रम के रूप में कैल गेल रहल। और एक जब नामकरण भइल का शुरुआत भइल तो एक टेलीविजन इंडिया कहल जात रहल शुरू शुरू में। और वर्ष 1975 में एक नाम बदल करके दूरदर्शन कर दिल गई। और देखा दूरदर्शन भारत के घर घर में संस्कृति समाचार और मनोरंजन पहुँचावे में एक ऐतिहासिक भूमिका निभावेला। बहन लोग तो आप लोग जानते हुए हैं कि दूरदर्शन भारत का सरकारी और सबसे पुराना सार्वजनिक नेटवर्क है। आई सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आवेला। आई प्रसार भारती का एक प्रमुख हिस्सा भी है। और दूरदर्शन या टेलीविजन रेडियो का ही एक विकसित रूप है। टेलीविजन का आविष्कार सन 1926 में स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक जे एल बेयर्ड कैले रहना। अब भारत में अक्टूबर 1959 में दूरदर्शन प्रारंभ भइल। अब पहले पहले देखें केवल श्वेत शाम यानी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होत रहल हम लोग के बचपन में जब हम लोग देखल जा। आज तो देखें रंगीन टीवी का युग है, 100 से अधिक चैनल है। रंगीन टीवी का शुरुआत देखें भाई लगभग 1982 में। और अब देखें ताज़ा तरीन समाचार हो, गीत हो, संगीत हो, भजन हो, कीर्तन हो, या योग हो, ज्योतिषी लोगों के बात हो, हर भाषा में मनोरंजन और शिक्षा प्रद कार्यक्रम कहोर देखें लगल है। और घर बैठे सब कुछ देखे के और सुने के समझे के सुविधा बा। और टेलीविजन के माध्यम से देखें हमारे परिवार का, हमारे मित्र लोगन का सबका मनोरंजन हो सकता है। आ साथ में हम लोग को जो ज्ञान भी है वो बढ़ेला ये माध्यम से। वहीं लोग देखे टेलीविजन परिवार और समाज के लोगों के जोड़ के रखने का सबसे बढ़िया सशक्त माध्यम है। तो आगे भी आप लोगों से और बात कही हमार हुई बातचीत जब हम अपनी बैठक में शामिल हैं। तो लेकिन जैसे कि हम कहली हैं कि स्मिता मिश्रा बहन के एक मौका और दिल जाए, एक मनसाइन और सुनल जाए। तो कहते हैं देर न कल जा, इनकर गावल एक कहरवा है, आमे सुनल जा, आनंद लिहल जाए।

बहिन लोगन देखा स्मिता मिश्रा बहिन का हम लोग गावल कहरवा सुन ली हजा, कितना बढ़िया लगल है कि बहुत कुल जोन होला अपन संदेश गीत गौनी के माध्यम से शब्द के माध्यम से हम तक पहुँच जाला, हम लोग तक बढ़िया जब मनसायन हो जाला तब मन एकदम प्रसन्न हो जाला। बहिन लोगन देखा अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हम लोगन भारत के लोगन के समन्वित प्रयास से सामाजिक समरसता सद्भाव और सर्वसम्मति के उच्चतम मूल्य का लोकतंत्रात्मक गणराज्य स्थापित कैल गेल। आवे हमन सब लोगन सुरक्षा और सम्मान से युक्त भारतीय संविधान के साथ नागरिक लोगन के समृद्धि के लिए ये दायित्व के प्रति अनवरत संकल्पित रहल जाए। और वही लोगन देखा हम तो कह चाह चलत चलाओ तो आप लोगों से कि अपन बचवा हो या बचिया हो तो आप लोग बाल विवाह करे के बारे में मत सोचें, जवन भी भूल चूक भइल पीछे ओके दोहरावे नहीं, कहें कि बचवा हो चाहे बचिया हो उनके शिक्षा का अधिकार है, उनके पढ़े लिखे दे आगे बढ़े दें बहन लोगन, और पुरानी गलती मत दोहरावें बल्कि दोनों के खूब समय दें और सहारा दें, पढ़ावें लिखावें आगे बढ़ावें, आत्मनिर्भर बने बचवन, कमाए लायक हो जाएं फिर शादी विवाह के बारे में सोचें। कहें कि देखें बाल विवाह एक कानूनी अपराध है और जेकर सजा भी बा, ए लिए बेटा का उम्र कम से कम 21 साल और बिटिया का 18 साल तक हो जाए तब आप लोग शादी ब्याह के बारे में बात चलावें चर्चा करें, ताकि बिटिया बेटवा जोन भी हो अपने हाथ पैर पे खड़ा हो मजबूत रहे, उनका हाथ पैर अच्छा पैसा कमाए लायक हुई हैं तो अपन जीवन भी खुश खुशहाल रहे और केहू के कामे भी यही हैं अपन परिवार बसा सकी हैं। तो यही के साथ अब बैठकी समेटे के चले के समय होत बा, अगली बैठकी में फिर अपन लोगों से बात हुई मुलाकात हुई, आज बस इतना ही, चल जा सब बहन लोगन के राम राम।

अभी ग्रामीण महिलाएं अपना कार्यक्रम घर नहीं सुन रही थी। एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में हमारे गोरखपुर केंद्र से भोजपुरी में समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे। आइए चलते हैं अपने गोरखपुर केंद्र और सुनते हैं भोजपुरी में समाचार।

आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्री लोग आज जमुना नदी के उद्धार बदे केशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना समझौता पर दस्तखत कैले। नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के मौजूदगी में समझौता पर दस्तखत कैल गई। इससे पहले यही साल जून में गृह मंत्री अमित शाह इस बारे में यह प्रदेशन के मुख्यमंत्री लोगिन के साथ बैठकी कैले रहने। बैठकी में निर्णय लिहल गए रहे कि केशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना का 90% लागत केंद्र सरकार की ओर से, वहीं बाकी के 10% लागत 6 भागीदार राज्यन की ओर से वहन कैल जाए। केंद्र सरकार कहले हवे कि बैंक 2000 रुपया लेके यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI लेन देन और रुपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोनो शुल्क नहीं लगा सकी हैं। वित्त मंत्रालय UPI लेन देन पर शुल्क

0: से जुड़ल नियमन के स्पष्ट करे बदे भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत यह बदलावन के अधिसूचित कैले हो।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में किए जाने वाले यूपीआई लेनदेन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। अगर भविष्य में कभी डिजिटल लेनदेन पर कोई शुल्क जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाया भी गया तो वह केवल दुकानदारों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं। हालांकि ये शुल्क भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड लेनदेन पर लागू MDR से काफी कम होंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: श्री राम जन्मभूमि भवन निर्माण समिति का अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा समिति के दो दिन के बैठकी के बारे में आज मीडिया से बातचीत कैले। यह मौका पर वहां के कहने की समिति का मुख्य ध्यान अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय के ओर हवे, कहे से कि मंदिर का निर्माण पूरा हो गई बा।
2: अब हम लोगों का मुख्य ध्यान अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय की ओर है, क्योंकि मंदिर का निर्माण तो पूर्ण हो गया है। मंदिर के परिसर में, परिसर के बाहर एक ऑडिटोरियम है जिसका निर्माण चल रहा है, उसमें कुल मिलाकर करीब 3 से 4 महीने का विलंब है, लेकिन हम आशा करते हैं कि वो अभी कार्य निश्चित रूप से जनवरी फरवरी तक पूर्ण हो जाएगा।
0: आज राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनावल जा रहा हो। ये दिवस हर साल 15 सितंबर के भारत के महानतम इंजीनियरन में से एक डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया के जयंती के उपलक्ष्य में मनावल जाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर विश्वेश्वरैया के उनके जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कैले हमें। श्री मोदी कहले कि एम विश्वेश्वरैया एगो इंजीनियरिंग प्रतिभा रहने जेकर राष्ट्र निर्माण को दूरदृष्टि लोगिन के हमेशा प्रेरित करत रही।
3: महान इंजीनियर्स की हमारी विरासत में एक ऐसा रत्न भी हमें मिला जिसके कार्य आज भी लोगों को अचंभित कर रहे हैं, और वे थे भारत रत्न डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। उन्हीं की याद में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे देश के इंजीनियर पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बना चुके। मैं इस अवसर पर सभी इंजीनियरों को उनकी निर्माण शक्ति को आदर पूर्वक नमन करता हूँ।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो एगो सोशल मीडिया संदेशा में डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया के जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दिले हमें। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपन 67वां स्थापना दिवस मना रहल हो। यह लोक सेवा प्रसारक का शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के तहत एगो प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर भइल रहे।
4: 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन की स्थापना के साथ भारत में टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत हुई। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसी दिन दूरदर्शन के पहले प्रसारण का उद्घाटन किया था। वर्ष 1982 में दिल्ली एशिया खेलों के दौरान रंगीन टेलीविजन की शुरुआत ने दूरदर्शन के प्रसारण और दर्शकों की संख्या को नई ऊंचाई दी। वर्तमान में दूरदर्शन के 35 सैटेलाइट चैनल और 66 स्टूडियो केंद्र हैं। ये 24 से अधिक भाषाओं और विभिन्न बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित करता है। आरजू के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आजमगढ़ जिला के फूलपुर थाना क्षेत्र में आज सवेरे जगदीशपुर के लगे एगो सड़क हादसा में कार सवार 3 नौजवानन का मौत हो गई, वहीं आधा दर्जन लोग घायल हमें। यह हादसा ओ समय भइल जब एगो तेज रफ्तार कार सड़क के किनारे पेड़ से लड़ गई। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।
5: FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। अब आइए देते हैं आज के शेष मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी, इसके साथ ही कोई व्यक्ति के संबंध में सूचना। पहले सुनते हैं ये सूचना। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार देव कुमारी पुत्री रामकेश भारती निवासी ग्राम पिपरी सोनवानी थाना अनपरा जनपद सोनभद्र उत्तर प्रदेश, जो दिनांक 29 सितंबर 2026 से लापता हैं, क्षमा कीजिएगा 29 अगस्त 2026 से लापता हैं। हुलिया इस प्रकार है, उम्र 29 वर्ष, लंबाई 5 फीट, गोरा रंग, लंबा चेहरा, इकहरा मजबूत जिस्म, लंबे काले बाल, पहनावा है हरा रंग का सूट। और इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। एक और कोई व्यक्ति

पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार पवन कुमार पुत्र भोला प्रसाद केसरी निवासी ग्राम सिरसोती थाना बीजपुर जनपद सोनभद्र जो दिनांक 1 अगस्त 2015 से लापता है, हुलिया इस प्रकार है। उम्र 26 वर्ष, लंबाई 5 फीट 1 इंच, सांवला रंग, गोल चेहरा, इकहरा मजबूत जिस्म, बाएं गाल पर तिल का निशान, पूरे बांह का शर्ट, फुल पैंट और पैर में हवाई चप्पल पहने हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। सूचना समाप्त हुई। आइए देते हैं आज के शेष मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। आपकी जानकारी के लिए रात 10 बजे हमारे लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा खेल दर्पण कार्यक्रम। अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 6:50 पर हमारे किसान भाई सुनेंगे किसानवाणी कार्यक्रम। ये दोनों ही अनुप्रसारण हमारे लखनऊ केंद्र से किया जाएगा। रात 8 बजे जन कल्याण सेवा समिति कवरी तरावा सोनभद्र द्वारा आयोजित माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में चुर्क सोनभद्र में आयोजित नमो मैराथन की रेडियो रिपोर्ट प्रसारित की जाएगी। स्थलीय ध्वनांकन सौरभ कुमार तिवारी, वाचन एवं प्रस्तुति सहयोग अचल कुमार श्रीवास्तव, प्रस्तुतकर्ता सचिन कुमार वर्मा। फिल्म संगीत का कार्यक्रम इस प्रकार से होगा। आपकी बात कार्यक्रम में रात 10:30 पर, रात 9:30 पर आपके लिए कार्यक्रम में, रात 9:15 पर सुनिएगा भूले बिसरे गीत। रात 8:10 पर फिल्म संगीत कार्यक्रम और शाम 7:31 पर सबरस कार्यक्रम। रात 8 बजे हम लेकर आएंगे गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुगम संगीत। तो श्रोताओं, ये थी आज के शेष मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। आपकी जानकारी के लिए।

FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: सब पंचन
1: पंचन
0: के
1: के
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: राव भैया देखा आपो के राम राम भैया।
1: आपो के राम ना बचलू भैया, पंचेती की भैया देखा डुग डुगी बचल, और पंचेती में भैया देखा काका गठिया के लेले हुआ,
0: भैया
1: भैया देखा
0: देखा
1: शुरुआत करा।
0: बिल्कुल अभी देखा 3-4 दिन पहले देखा कितना बरखा बुनी पड़त रहे, लेकिन इस समय जन धूप और नरम गरम दोनों लगल बा भैया
1: बिल्कुल
0: देखा, संझा होते जन बा ओसो गिरे लगत बा।
1: एकदम
0: तो ऐसने में जन बा अपने मौसम का ख्याल रख करके जन बा तब है जन बा अपन काम धाम के आगे बढ़ावे के चाहिए। अगर किसानी से जुड़ा रही तो खेती किसानी के काम आगे बढ़ावे के चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा हुआ। चलो भैया मौसम के मिजाज भी भैया देखा एक बदलाव की ओर हुए, ऐसे ने भैया देखा अपने स्वास्थ्य के साथ साथ जोन बदलाव के मार अपन जोन बाकी फसल पे भी पड़ला, तो निश्चित रूप से भैया देखा अपन फसल पे भी ध्यान देने के लिए
0: बिल्कुल
1: बोलता।
0: बिल्कुल देखा इसने में अगर मौसम की जानकारी पुख्ता अगर लेवे के बा भैया, तो
1: हाँ
0: देखा एगो कृषि मौसम वैज्ञानिक मन यानी मौसम तकनीकी अधिकारी भू भौतिकी विभाग BHU वाराणसी से शिवमंगल सिंह भैया,
1: अच्छा
0: तो
1: अच्छा
0: वो अपन एगो जानकारी भेजले हुन मौसम से संबंधित अगले 3-4 दिन में। तो हम तो कहते कि जानकारी पहले सुन लिया जाए फिर हमन बतियावल जाए।
1: एकदम सुना जाए।

0: लोगन के जोन भी खेती पाती के काम हुए या भैया देखा मौसम के बात आवला तो अपने आसपास के जोन भैया देखा व्यवस्था हुए यानी भैया देखा जोन वातावरण हुए ओकरे पर भी ध्यान देने की जरूरत हुए। ऐसे मौसम में अपने लेकिन बचपन के विश्वास के ख्याल रखे के चाहिए और
1: मौसम के उतार चढ़ाव में उनके स्वास्थ्य में काफी तकलीफ आवेले,
0: बिल्कुल
1: तो जाहिर सी बात कि हमके ध्यान रखे के चाहिए। और रहल बात जानकारी की तो हम पहले जानकारी सुन लिया जाए।
0: बिल्कुल समझ जाए।
2: किसान भाइयों, मौसम पूर्वानुमान के आधार पर अगर बात करें अगले 3-4 दिनों की, तो मौसम को लेकर कोई खास चेतावनी नहीं है। बादलों की आवाजाही के बीच कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है और धूप निकलने पर दिन में उमस भरी गर्मी रहेगी और रात में मौसम सामान्य रहेगा। इस दौरान अगर हम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान जो है 26 से लेकर 27 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है और वहीं पे अधिकतम तापमान की बात करें किसान भाइयों तो वो 35 से लेकर 36 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहने की संभावना है।
3: जी जी
2: और आर्द्रता की बात करें तो आर्द्रता जो है न्यूनतम 49 से लेके 60% और अधिकतम की बात करें तो 92 से लेके 98% रहने की संभावना है। बिल्कुल, देखिए ऐसे मौसम में नमी और उमस बढ़ने से फसलों में क्या होता है कि कीट और रोग लगने की समस्या बढ़ सकती है, इसलिए खेतों की नियमित निगरानी करना बहुत जरूरी है। और अगर इसी क्रम में हम बात करें धान के फसल की, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी जो है धान की जो फसल है उसमें बाली बनने की अवस्था है, तो इस दौरान क्या होता है कि उमस और हल्की नमी के कारण तना छेदक, पत्ती लपेटक और झुलसा जैसे रोग बढ़ सकते हैं। तो किसान भाइयों को खेत में उचित मात्रा में पानी बनाए रखना है और खेत का नियमित निरीक्षण करते रहना है और अगर कीट दिखाई देता है तो किसी विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार उसका नियंत्रण करना है। और अपने अंचल की बात कर लें तो इस समय एक मिर्च भी एक मुख्य फसल है।
3: जी, जी जी
2: और इस समय क्या है कि मिर्च की फसल जो है फूल आने की अवस्था में है और फूल आने की अवस्था में अगर बादल हल्की वाले मौसम में क्या होता है ना, फूल झड़ना और थ्रिप्स माहू और सफेद मक्खी जैसे रस चूसक कीटों का जो है ना प्रकोप बढ़ जाता है।
3: जी जी
2: तो किसान भाई क्या करें कि ऐसे में खेत में जल निकास की उचित व्यवस्था रखें तथा खेत में पानी जमा न होने दें, ठीक है। और फूलों को और जो नई पत्तियां हैं की निगरानी समय समय पर करते रहें और कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार ही दवा के छिड़काव करें, क्योंकि अभी क्या होता है ना कि इस समय कुछ ऐसे भी कीट होते हैं जो कि परागण को भी बढ़ावा देते हैं, जैसे मधुमक्खियां हैं, अन्य परागण करने वाले कीट की भी सुरक्षा रखना, ध्यान में रखना बहुत जरूरी है।
3: बिल्कुल,
2: कि ऐसा नहीं है कि भाई हम दवा छिड़क दें और जो हमारे मित्र कीट हैं उनका भी नुकसान हो जाए तो आपका जो फूल बनने की जो प्रक्रिया है वो प्रभावित हो सकती है। इसी क्रम में अगर हम दो लाइन बोलना चाहेंगे जो दूध वाले किसान भाई हैं जो कि पशुपालक भाई लोग हैं, तो दुग्ध पशुओं को विशेषकर गायों को उमस से बचाने के लिए किसान भाई उन्हें साफ और हवादार स्थान पर ही रखें और दिन में पर्याप्त जो है स्वच्छ जल पिलाएं और हरा सूखा और संतुलित मात्रा में दें। ये नहीं कि भाई अगर मौसम साफ है तो एकदम ज्यादा खाना खिला दें उन लोगों को जिससे कि उनको अनपच हो जाए और विभिन्न प्रकार के रोग हो जाएं।
3: जी जी
2: ठीक है। तो अगर इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं किसान भाई तो निश्चित रूप से जो उनको मौसम जनित नुकसान होने वाला है आने वाले 3-4 दिनों के मौसम के आधार पर वो निश्चित रूप से ही कम होगा और उनको इसका अच्छा फायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों, जय जवान जय किसान।
1: देखे मुरहू भैया, इस तरह मौसम की जानकारी बहुत अच्छे तरीके से श्री मंगल सिंह भैया अपन जानकारी हमन के बीच में साझा कैलन।
0: बिल्कुल,
1: और देखा आज है 15 सितंबर भी है।
0: बिल्कुल,
1: 15 सितंबर के जोन बा वो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनावल जाला।
0: अच्छा,
1: जे लोकतंत्र के महत्व के याद दिलावेला।
0: अच्छा।
1: लोकतंत्र में हर नागरिक के अपन विचार रखे और निर्णय प्रक्रिया में भाग लेवे का अधिकार होला और लोकतंत्र खाली चुनाव तक सीमित नहीं खे बल्कि ई समानता, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार से जुड़ल व्यवस्था हुए। ये व्यवस्था में जनता अपन प्रतिनिधि चुन के देश के शासन चलावे में भागीदारी निभावेला।
0: बिल्कुल सही कहत हुआ चलो भैया, और हर वर्ष भैया देखा ये दिवस हम लोगन के जोन बाकी मनावल जाएला और निश्चित रूप से भैया देखा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2007 में दिवस मनावे के निर्णय लेवल गिर रहे और पहला जोन बाकी अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर 2008 के मनावल गिर रहे और वर्ष 2026 में संयुक्त राष्ट्र का जोन प्रमुख जोर हुए विचार विमर्श वाली लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर हुए जो समावेशी निर्णय लेवे और संवाद को बढ़ावा देवे में मदद करेला।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो देखा लोकतंत्र में अपन सरकार जनता खातिर जुनबा होला और

0: जनता के आवाज का सम्मान कईल जाला।
1: बिल्कुल
0: गांव के ग्राम सभा से लेके देश के संसद तक जनता की भागीदारी लोकतंत्र के पहचान हवे। और देखा, जब नागरिक बिना डर के अपन बात कह सकेला तब लोकतंत्र की असली भावना मजबूत होला। चाहे वो महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, या किसान या मजदूर हो, समाज के हर वर्ग के समान अवसर मिलल जरूरी भी है।
1: बिल्कुल सही कहा हुआ चलो भैया। और भारत जोन बाकी लोकतंत्र के सबसे बड़ा जोन बाकी देश हुए और यहाँ लोग जोन बाकी बढ़ चढ़ के अपन लोकतांत्रिक तरीका से सरकार चुनेलन और हम लोगन के भैया देखे अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूक रहे चाहिए, तभी भैया देखा हम लोगन अच्छा सरकार चुन सके
0: चुन सकेले। और देखा, अंतर्राष्ट्रीय लोक दिवस पर हमने सभी के जनबा लोकतंत्र के मूल भावना के बचावे और मजबूत करे के संकल्प लेवे के चाहिए। और देखा, हमन के बात बत गई तो होत रही भैया, लेकिन आज के पंचायती में रमेश कुमार यादव भैया जुटल बाड़न और भावी पीढ़ी खातिर जनबा लोकतंत्र का महत्व का होला ए विषय पर भोला भैया से बात बत गई करत हुन। हम तो कहते कि बिना देर के लिए बात बत गई के सुनल जाए।
1: एकदम सुनल जाए भैया।
2: श्रोताओं, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन काल में कुछ न कुछ तरह तरह के समस्याएं आते रहते हैं, लेकिन उनके समस्या के निदान करने के लिए अपने देश में विश्व स्तरीय तमाम तरह के कानून बनाए गए हैं, जिसके वजह से उनके हितार्थ तमाम ऐसे कदम उठाए जाते हैं जिससे कि उनको उचित निर्णय मिल सके और अच्छा से अच्छा जीवन यापन करने में सहूलियत मिल सके। इसके लिए कोई खास दिवस होते हैं जिसके यादगार के रूप में लोग मनाते हैं, ऐसा ही आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के बारे में बातचीत करेंगे। इस विषय पर बात करने के लिए दुद्धी से अधिवक्ता श्री रमेश कुमार यादव जी हैं, आपसे मुलाकात हो रही है। जानेंगे क्या है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और इसका क्या उद्देश्य है, किस प्रकार से प्रत्येक जनता के लिए हितार्थ है। तो रमेश कुमार यादव जी, आपका रेडियो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है
3: जी।
2: क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति कहीं न कहीं चलने में फिरने में या काम करने में कभी त्रुटि कर देता है या अपने स्वार्थ के वशीभूत हो करके भी कुछ गलतियां हो जाती हैं, लेकिन उस गलतियां का पुनरावृत्ति ना हो, उसका संशोधन करके फिर जो है कि सभी के हितार्थ काम हो, इसके लिए तमाम सारे कानून बने हुए हैं जिसके लोग अच्छा सा जो है कि पालन करते हुए
3: जी
2: अपना जीवन यापन करने में सार्थकता सिद्ध कर पाते हैं
3: जी।
2: तो ये अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के बारे में बातचीत करेंगे, तो ये क्या है अंतर्राष्ट्रीय लोक दिवस?
3: देखिए, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रयास से मनाने के लिए शुरू हो की गई और यह जो है हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है।
2: अच्छा।
3: हाँ, इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2007 में की थी और पहली बार ये जो है पूरे विश्व में, करीब विश्व के कई देशों में 2008 में मनाई गई थी।
2: अच्छा जी।
3: और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य ये है कि लोकतंत्र के जो सिद्धांत हैं
2: जी,
3: इसको बढ़ावा देना और इसको बनाए रखना है।
2: अच्छा अच्छा अच्छा।
3: चूँकि पूरे विश्व में देखें तो अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की शासन व्यवस्थाएँ हैं।
2: जी जी।
3: जैसे हमारे भारत में देखिए लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, लोकतंत्र का मतलब कहा जाता है कि जनता के द्वारा जो चुनी गई प्रतिनिधि होती है
2: जी जी, जनता के हित में,
3: जनता के हित में काम करती है
2: जी जी जी,
3: और जनता के लिए उनके सुख दुख में शामिल होते हुए उसके लिए ही वो कानून बनाते हैं
2: जी,
3: जिसके माध्यम से मानव जीवन की उसको अधिकार मिले, उसको रहन सहन में इसको मजबूती मिले
2: जी जी,
3: इसलिए जो है इसको लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।
2: अच्छा अच्छा।
3: जो हर साल 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
2: जी जी जी
3: इसको मनाया जाता है।
2: तो इसमें चूंकि लोग जानना चाहेंगे कि इसका क्या कुछ नियमावली है, कैसे हम लोग इसका पालन कर सकें और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका हम लोग अवलोकन कैसे कर सकते हैं जो है कि?
3: देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको देखा जाए तो लोकतंत्र के मूल्यों को समझने के लिए इसकी मनाया जाता है।
2: अच्छा।
3: और इसका मूल उद्देश्य यह है कि हम कहीं भी रहें और कहीं भी रहें तो लोकतंत्र में इसकी चर्चा करते रहें और लोकतंत्र के महत्व को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझते रहें। देखिए, लोकतंत्र का जो जनक होता है वो जिनके नाम से यह मनाया जाता है
2: जी,
3: ये हैं फिलिस्थीनेस।
2: अच्छा,
3: इनको जो है लोकतंत्र का जनक माना जाता है।
2: हाँ हाँ हाँ।
3: फिलिस्थीनेस एथेनियन लोगों के समर्थन में सत्ता में आए थे।
2: अच्छा।
3: और उन्होंने संविधान में सुधार करके दुनिया में पहली बार
2: हाँ हाँ।
3: लोकतंत्र की शुरुआत की थी
2: जी, जी,
3: इसलिए
2: जी।
3: इन्हें लोकतंत्र का जनक कहा जाता है।
2: तो जनक माने पिता हो गया, फिर जननी की बात अगर की जाए
3: जी
2: तो किनको जाना जा सकता है?
3: इसे भारत लोकतंत्र की जननी है।
2: क्या बात है।
3: अब देखिए भारत क्या है, लोकतंत्र की
2: जननी
3: है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र जो है शासन यह व्यवस्था है
2: जी, जी,
3: जनता सीधे सीधे जो है माध्यम से अपने प्रतिनिधि के माध्यम से चुनती है और वही आगे जा करके आप देखें राज्य में मुख्यमंत्री, देश में हमारे प्रधानमंत्री
2: जी, जी,
3: बनते हैं जो लोकतंत्र को चलाते हैं।
2: निश्चित रूप से जो ग्रामीण अंचल से लगायत शीर्ष तक जो है कि पूरे देश स्तर तक के जो एक सिस्टम बना हुआ है, गांव में जो एक त्रिस्तरीय चुनाव भी होता है।
3: हाँ, हाँ।
2: अब इसमें समझदारी है कि जब जनता को ही बनाना है राजा
3: हाँ।
2: तो उसमें बड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि हम किस प्रकार के लोगों का चयन करें क्या क्या पारखी होना चाहिए। क्योंकि बातचीत तो हो ही रही है तो एक ऐसा कुछ थोड़ा दिशा निर्देश दिया जाता कि जिसे कभी तो बहुत सारे लोग प्रलोभन में आकर के जिसके पास किसी तरीके के अगर धन आ गया हो या और कुछ बातें हो तो जिसके वजह से वो प्रलोभन दे करके मत जीतना चाहता है
3: जी, जी, जी।
2: लेकिन हम आम जनता को क्या कुछ ध्यान देना चाहिए?
3: देखिए आम जनता को सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि लोकतंत्र में आम जनमानस को
2: जी
3: किसी भी के बहकावे में नहीं आना चाहिए
2: जी।
3: यदि कोई लालच उन्हें दिया जा रहा है तो आप जहाँ भी हैं उसके लिए आप निर्वाचन आयोग को
2: जी
3: शिकायत कर सकते हैं। स्थानीय जो शासन प्रशासन है उन्हें भी आप बता सकते हैं, क्योंकि जब आप लालच में आ करके अपनी मत को देंगे
2: जी
3: तो क्या होगा, मजबूत लोकतंत्र आपका नहीं
2: बन पाएगा।
3: और जब लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा तो क्या होगा, जैसे जो लोकतंत्र की जो परिभाषा है
2: जी
3: कि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन
2: जी बिल्कुल बिल्कुल,
3: तो जनता के लिए शासन नहीं हो पाएगी।
2: हाँ हाँ।
3: देखिए इसमें हमारे भारत में एक ADR है जो अपनी समय समय पर रिपोर्ट देती रहती है
2: जी
3: कि लोकतंत्र का पालन कितना किया जा रहा है
2: जी जी जी।
3: और जो लोकतंत्र में चुनाव लड़ने वाले हैं चाहे वो सांसद हों चाहे विधायक हों उसकी वो रिपोर्ट को उस पर अध्ययन करता है वो।
2: अच्छा अच्छा अच्छा।
3: उन्होंने कहा भी है, निर्वाचन आयोग को भी लिखा है कि लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति जो अपराधी हो उसको लोकतंत्र में शामिल
2: ना किया जाए।
3: उन्होंने सारे पार्टियों से भी अनुरोध किया था कि ऐसे व्यक्तियों को आप टिकट भी ना दें
2: जी।
3: लेकिन इस पर पूरी तरह से अमल अभी नहीं हो पाई है, इसलिए आप देखें कि कई पार्टियों में ऐसे लोग भी हैं जो नियमानुसार उसमें नहीं आना चाहिए था।
2: अरे जहाँ जो है कि राजा अगर उस प्रकार के हो गए
3: जी
2: तो प्रजा हर समय
3: वो रहेगी,
2: परेशान रहेगी।
3: हाँ, आप देखें लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि लोकतंत्र एक ऐसा है जो सभी लोगों के लिए अधिकार को देता है
2: जी जी जी।
3: लेकिन लोकतंत्र में हमारी कमियां क्या है कि लोकतंत्र में लोग जो हैं वो अपने अधिकार को बखूबी नहीं जान पाते हैं।
2: केवल उसका सीधे
3: बस धन से जोड़ लेते हैं और उसमें अपनी लालच में पड़ जाते हैं
2: जी, जी,
3: और बस सोचते हैं चलो हमको एक वोट ही न देना है
2: जी,
3: लेकिन
2: जी,
3: एक वोट की कीमत कितनी बड़ी होती है,
2: बहुत है
3: इसको
2: बहुत
3: नहीं समझ पाता है
2: जी, जी।
3: जैसे आप एक आसान भाषा में कहें तो लोग कहते हैं कि एक जंजीर है
2: जी,
3: एक चेन है जिसे आप सिकड़ी कहते हैं
2: जी, जी, जी।
3: सिकड़ी में अलग अलग टुकड़ियां लगी रहती है, कड़ी होती है उसकी
2: जी, जी, जी।
3: अगर सिकड़ी का एक कड़ी कमजोर होता है तो लाखों, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का जो चेन होता है
2: कोई मतलब नहीं,
3: वो कमजोर होकर
2: गिर जाता है।
3: तो उसी तरह से लोकतंत्र में एक एक व्यक्ति का, एक एक नागरिक का
2: बहुत
3: बड़ी महत्व है।
2: वाह वाह, क्या बात है। और निश्चित रूप से देश को आगे बढ़ाने में या देश को मजबूत करने में एक गांव का बहुत एक चयन वो भी
3: है। जी बिल्कुल है,
2: एकदम छोटा चयन से लेकर के यहाँ चला जाए।
3: हाँ।
2: तब कहें जो है कि अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण जो प्रलोभन वाली बात है उसमें आकर के जो लोग देता है तो वो जो प्रलोभन दे करके जो बनता है वो निश्चित रूप से जो है कि वो आपसे सहयोग न करके बल्कि आपसे कुछ लेने की अपेक्षा करेगा या निष्क्रियता प्रस्तुत करेगा। तो ये बहुत ऊंची चीज है और इसको प्रत्येक नागरिक को सोचना विचारना चाहिए,
3: पालन करना चाहिए
2: जी जी जी जी जी।
4: तो इसमें

0: सबसे पहल तो ये हो गई। दूसरी बात ये प्रलोभन वाली और नशापति के द्वारा भी, एक तो नशा ऐसे भी खतरनाक शरीर के लिए भी है, मन मस्तिष्क के लिए भी है, तो ऐसे समय में लोगों को ये नशा पानी का भी जो है कि प्रयोग नहीं करनी नहीं चाहिए, जिससे जो है कि अच्छा हम लोग चयन करने में। अच्छा, सत्य अगर विचार किया जाए तो चूँकि लोकतंत्र में ये तो नहीं है, सभी नागरिक को एक समान रखा गया है
1: जी,
0: लेकिन फिर भी जो जिस प्रकार विकास की क्रिया क्रम चल रहे हैं, तो विकास के क्रम में अपने गांव का मुखिया अगर बुद्धिमान हो, जानकार हो, ज्ञानी हो,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो शायद अन्य लोगों को भी ज्ञानी करने का प्रयास करेगा।
1: बिल्कुल,
0: आज चुनाव के दरमियान यह भी हो जाता है कि किसी के भी नाम से वोट दे करके जिता लिया जाता है, उस पर राज कोई दूसरा करता है
1: जी,
0: ऐसा भी देखने को मिलता
1: जी,
0: है
1: जी, बिल्कुल मिलता
0: तो
1: है।
0: ऐसे लोगों के संदर्भ में क्या कुछ कहना?
1: देखिए, ऐसे लोगों के संदर्भ में हम जो पहले जैसे बताया आपको कि लोकतंत्र जो होता है वो पढ़े लिखे और शिक्षित लोगों को नहीं देखता है, क्योंकि उसकी जो चयन होती है वो संख्या बल के आधार पर होती है।
0: जी, जी, जी।
1: जिसको अधिक मत मिलेगा वो जो है उसके पद के लायक
0: होगा,
1: माना जाएगा
0: जी।
1: तो उसमें है क्या कि जैसे आप देखिए हमारे हिंदुस्तान में देख लीजिए, पूरे विश्व में भी देख लीजिए, कई ऐसे गांव हैं जहां पर जो साक्षरता दर है वो कम है, वो समझ नहीं पाते हैं। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा था कि भारत की वर्षोन्नति कैसे हो सकती है,
0: जी जी जी,
1: आपने देखा उसमें बहुत अच्छी चीजें लिखी।
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: जैसे आप देखिए हिंदुस्तान क्या है, रेल के डिब्बा,
0: जी जी जी,
1: उन्होंने कहा था
0: हाँ।
1: कि रेल के डब्बे बहुत अच्छे से बने हैं
0: जी,
1: लेकिन
0: जी।
1: उसको खींचने के लिए क्या चाहिए, उसका इंजन
0: चाहिए, जैसा इंजन रहेगा,
1: जैसा इंजन रहेगा वैसा ही
0: उस गति से डब्बे खिंचाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो श्रोताओं, ये लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हम प्रत्येक नागरिक को बहुत पुरजोर सहयोग करने की जरूरत है। सबसे प्रथम तो शिक्षित होना है, जब शिक्षित हो जाएंगे तो नशा से, लालच से, घुसखोरी से ये सबसे दूर हो जाएंगे, तब कहीं जा करके अपने लोकतंत्र को मजबूत की जा सकती है। इतनी अच्छी जानकारी दे रहे थे श्री रमेश कुमार यादव जी, जो आप अधिवक्ता भी हैं पेशे से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: भैया देखा, हम लोगन भैया अभी जानकारी सुनत रह लीजा, और जानकारी में हम लोगन के भावी पीढ़ी के लिए लोकतंत्र का महत्व रमेश कुमार यादव से अपन भोला भैया के बातचीत के माध्यम से सुनल गेल, और निश्चित रूप से इतना बढ़िया जानकारी देवे खातिर उनके बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अचलू भैया से कहब कि भैया देखा एक ठो मन फेर करावा और इन लोगन के धन्यवाद देहल जाए।
3: बिल्कुल, मन फेर जन बा सीताराम साहू भैया का विकास गीत बा, वही के माध्यम से करल जाए, तो तनिको न हो देर हो जाएगो
2: मन फेर।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: मुराओ भैया।
2: हाँ चलो भैया।
1: देखा भाई, हमारे संदेश से पहले मनफेर सुनत रही जा।
2: बिल्कुल।
1: और मनफेर के माध्यम से सीताराम साहू भैया देखा कितना बढ़िया अपने गांव के समृद्धि के बारे में बतौलन। और वाकई अपन गांव समृद्ध तबे हो सकेला जब अपने देश का किसान भी समृद्ध रहे।
2: बिल्कुल।
1: और समृद्धि कैसे आ सकेला कि भैया अपने खेती किसानी जो परंपरागत तरीके से करत हुए ओकरे साथ साथ वैज्ञानिक तरीका अपना करके आय का कोनो अन्य साधन भी अपना हुए।
2: बिल्कुल सही बात हुआ चलो भैया। और आय के साधन के बात आवेला तो निश्चित रूप से भैया देखा हम लोगों के किसानी से जुड़ल कई ठो जोन बाकी रोजगार हुए जेकरा अपना करके हम लोगन भैया देखा अपन आय बढ़ा सकेला। वही में भैया देखा मत्स्य संपदा योजना हुए जेकरे माध्यम में भैया देखा आय बढ़ावे खातिर हम लोगन के प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलावल जात हुए। और जौन भारत सरकार के प्रमुख योजना हुए ई योजना के भी देखा शुरुआत भी 10 सितंबर 2020 के भइल रहले। और ई योजना के सुचारू रूप से चलावे खातिर भी देखा 20,000 करोड़ रुपया के भी देखा धन के आवंटन कर गेल हुए ताकि सुचारू रूप से भी देखा चल सके।
1: और देखा एक सीधे उद्देश्य यह बमुरा भैया की मत्स्य पालन के

0: बढ़ावा दे के जनबा अपने किसान भैया लोगों के आमदनी का कैसे बढ़ावे में ओकर मदद कर जा सकेला।
1: बिल्कुल
0: तो जौने किसान के लगे जनबा तालाब हो, पोखरा हो, भा मछली पालन करे का उपयुक्त जगह हो, वो जनबा ये मछली पालन के माध्यम से व्यवसाय से जुड़ सकेले और योजना के तहत जनबा पात्र लाभार्थियों के अलग अलग मत्स्य गतिविधियन खातिर जनबा सरकारी सहायता मिल सकेला।
1: बिल्कुल, और एकरे खातिर जोन भी भैया लोगन मछली पालन करे चाहत हुए सरकार के तरफ से उ लोगन के भैया देख अनुदान भी दिया जाते हुए, सामान्य वर्ग के भैया देख 40% अनुदान हुए, आरक्षित वर्ग के 60%, और भैया देख नए तालाब के निर्माण पर अनुदान हुए। ओकरे साथ साथ मछली बीज हैचरी, कोल्ड स्टोर और आइस प्लांट लगावे खातिर भी देखा अनुदान हुए, और मछली परिवहन के लिए जौन वाहन लेवे चाहत हुए उनके लिए अनुदान हुए, और मछली पालक के अन्य सुविधा के लिए भी अनुदान
0: अनुदान
1: देहल
0: राशि
1: जात
0: बा
1: हुए।
0: तो देखो भैया, सही तकनीक प्रशिक्षण और बाजार से जुड़ाव के साथ है जनबा मत्स्य पालन के माध्यम से किसान के खेती के आमदनी वाला व्यवसाय में बदल सकेला। और देखा हमारे का बात बत कही तो होत रही, लेकिन अपने पंचायती में मत्स्य पालक विशाल कुमार सिंह भैया हुआ और अपने सफलता की कहानी बतावत हूँ कि कैसे मत्स्य पालन उनके खातिर एगो रोजगार का साधन बनल। तो हम तो कहते कि पहले जानकारी सुनल जाए।
1: एकदम सुनल जा भैया।
2: किसान भाई, हम लोग कृषक आय बढ़ोतरी के खातिर कई तरह के प्रयास कईल जाला, अपने खेती बाड़ी के एक सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ावल जाला। जो भी उपलब्ध संसाधन बा, चाहे सिंचाई व्यवस्था हो या फिर आपन खेती के जमीन के बात हो, तो ओके कई भाग में बांट करके अपने किसान भाई खेती बाड़ी करेलन, जैसे कि उनकर आमदनी बढ़े। अपने खेती योग्य भूमि पर तालाब लगा करके मत्स्य पालन भी कईल जा रहल बा, सुकर पालन भी कईल जा रहल बा, पशुपालन भी कईल जा रहल बा, एकरे साथ साथ बागवानी लगा करके भी लोग अपन आमदनी के बढ़ावत हुआ। तो एक ऐसे ही प्रगतिशील युवा किसान हुआ अपने साथ चतरा ब्लॉक के जलखोरी से विशाल कुमार सिंह। आप पढ़ाई लिखाई के बाद खेती बाड़ी से जुड़ लें और एकरे साथ साथ आप मत्स्य पालन से जुड़ लें। आज अच्छे ढंग से अपने मत्स्य पालन के आप आगे बढ़ावत हुआ, संयोग से आज अपने बीच हुआ, तो इनकर जो सफलता के कहानी बा आज हम लोग जानल जाई। विशाल कुमार जी, सबसे पहले तो अपने किसानवाणी कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत बा। हम और अपने किसान भाई ये जानल चाहिए विशाल जी कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक भयल।
3: मैं बीएससी एग्रीकल्चर में किया हुआ हूँ और एमएससी हॉर्टिकल्चर से किया हुआ हूँ। फिर उसके बाद हमने उसके पढ़ाई के साथ साथ हमने कहीं कहीं आय दोगुनी की तरफ जाने की तरफ कोशिश किया, तो हमने एक मछली पालन का व्यवसाय शुरू करना चाहा। तो
2: कितना दिन से आप जुड़ल हुआ?
3: हमें 4 साल हो गए उसके जुड़े हुए।
2: जी, तो विशाल जी, आप 4 साल के अवधि में मत्स्य पालन से जुड़ लें और पढ़ाई लिखाई के बाद जुड़ लें, बड़ा अच्छा बा। आज के युवा आपसे प्रेरणा लिहें, कैसे आपके सीख मिलल कि हम भी मत्स्य पालन ही करी?
3: हमें इसकी प्रेरणा, हम ऐसे घूमते टहलते गए थे एक करकी माइनर में, आजम खान जी हैं, उनके यहाँ पे करीब 3 से 4 हेक्टेयर में उनकी तालाब है। हम मछली पालन के बहुत कुछ सुने हुए थे जिसमें कि उसमें कम खर्च में भी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है मछली पालन में, इसीलिए हम प्रेरणा करते हुए हम गए घूमने के वहाँ पे। तो हम वहाँ से कुछ उनसे पूछे कि वहाँ पे कैसे इसका कहाँ से बच्चा मंगाया जाता है, कहाँ से कितना पानी उसका डेप्थ रहना चाहिए, तालाब निर्माण के लिए भी कुछ जानकारी लिए। तो उन्होंने हमें उसके बारे में पूरा समझाया, तो हमने वहां से आए हुए फिर अपने यहाँ पे पालन स्टार्ट कर दिया उसके जाके।
2: अच्छा, तो कितना रकबा में आपकी तालाब?
3: हमारा वो करीब 4 बीसा में तालाब है मेरा।
2: तो ये स्वयं के आपके तालाब?
3: जी, स्वयं का मेरा तालाब है।
2: विशाल जी, जैसे अगर कोई भी किसान भाई या मत्स्य पालक से जुड़े चाहत हूँ, तो उनके सबसे पहले तालाब के तैयारी पे कौन कौन खास बात पर ध्यान रखेंगे चाहिए?
3: सबसे पहले हमें जहाँ पे तालाब बनवाना है वहाँ की पहले मिट्टी और पानी की जांच करानी चाहिए।
2: जी,
3: और वहाँ पे हमें ध्यान देना चाहिए कि वहाँ जिस भी भूमि पे हमें तालाब बनाना है वहाँ पे तालाब की मिट्टी मतलब बलुई मिट्टी ना हो, और वहाँ पे जैसे वो मिट्टी रहनी चाहिए जो कि पानी को ज्यादा सोखे ना, मतलब अंदर ना लीचिंग ना करना पाए उसके
2: जी
3: लिए।
2: जी जी
3: तो हमें काफी, हमारे यहाँ पे लगभग एक पीली मिट्टी और काली मिट्टी, इन दोनों मिट्टी में काफी सर्वाइवल है जिससे कि पानी की लीचिंग भी थोड़ी कम होती है।
2: और आपके यहाँ जैसे जो तालाब में पानी की व्यवस्था बा, तो एक तो जैसे वर्षा जल संग्रहण होला, और
3: जी
2: अगर पानी की कमी हो जाला तो फिर कहाँ से आप उसमें पानी?
3: हमारे यहाँ समरसेबल लगा हुआ है मोटर,
2: तो वहां
3: जिसकी
2: से
3: तरह से हम
2: इतना
3: उसको,
2: पानी हो जाला कि आप उसमें पूर्ति कर
3: हाँ
2: सकें?
3: जी, इतना पानी होता है मतलब उस पूर्ति कर सकें पानी के लिए।
2: जी। कौन कौन किस्म के मछली पालन आप के लिए?
3: हम इसमें पालन करते हैं पंगासियस प्यासी करते हैं पालन।
2: का खासियत बाइकर
3: इसमें पंगासियस में क्या होता है कि इसमें कम जगह पे अधिक उत्पादन हम कर सकते हैं इसमें।
2: बाजार में मांग
3: भी अच्छा, इसका डिमांड रहता है।

0: ये मार्केट में कहीं भी जाने बाजार में ये होता है कि जिंदा मछली के ना अगर खोजते हैं आप तो कहीं ना कहीं मार्केट में प्यासी ही मिलती है।
1: अच्छा
0: अदर
1: अच्छा
0: मछली अगर आप रोहू या फिर कतला मिग्रेल ये सब अगर खोजते हैं तो वो नहीं मिलती हैं वो ताजी मछली, क्योंकि उन लोगों को ऑक्सीजन का डिमांड ज्यादा होता है इसलिए वो मार्केट में नहीं मिल पाती। अगर मिलती भी है तो बर्फ की मिलती है वो।
1: तो प्यासी मछली कुछ देर तक रखल जा
0: हाँ
1: सकल।
0: प्यासी मछली को अगर आप हर किसान तालाब से निकाल के भी अगर उसमें पानी अगर फ्रेश है वाटर तो 1 हफ्ते तक वो स्टोर कर सकते हैं अपने
1: अच्छा
0: पास।
1: अच्छा अच्छा तो कभी कभी वही थोड़ा छोटा छोटा प्लास्टिक के टब बना करके लोग बाजार में
0: हाँ
1: प्यासी मछली के बिक्री के खातिर रखे लें
0: जी
1: वैसे।
0: हाँ वैसे ही रखते हैं।
1: जी बड़ा अच्छा बा, अच्छा उत्पादन मिले एक एक खातिर उनके आहार व्यवस्था के बारे में का कहे जी।
0: आहार के लिए वो किसी भी कंपनी का कमर्शियल फीड यूज कर सकते हैं,
1: अच्छा।
0: और अपने से अगर बना के अगर फीड अपने यहाँ बना के वो अगर देना चाहते हैं तो उसमें मछली की जो भी उसकी लाइफ साइकिल है वो करीब 10 से 12 महीने हो जाती है। अगर आप मार्केट का फीड यूज करते हैं तो उसमें 7 से 8 महीने में वो 9 से 1 किलोग्राम तक, 900 ग्राम से 1 किलोग्राम तक वो तैयार हो जाती हैं।
1: 900 से 1 किलोग्राम तक मछली तैयार होके में लगभग कितना समय लग जाता है?
0: 7 से 8 महीने लगते
1: सात
0: हैं
1: से आठ महीना
0: जी।
1: अच्छा। अब हम लोग अभी थोड़ा एक पर और जानल चाहब और अपने सुनने वाले किसान भाई भी जानल चाहिए कि जैसे मान लें कि 7 से 8 महीना में मछली अगर पालन करे के बाद, तो जैसे मान लें कि आप शुरुआती दौर में अगर आप कर लें और मत्स्य बीज आप डल लें, ओकर कुछ हिसाब बा
0: तो हाँ उसमें ये
1: शुरुआत करत हूँ, मत्स्य बीज के चुनाव में आप सावधानी बरतें और कोशिश करें कि थोड़ा बड़ा से बड़ा ही मत्स्य बीज के आप चुनाव करें। विशाल जी, पूरा 7 से 8 महीना के दौरान मछली में कोई रोग या परेशानी भी आवेला?
0: जी परेशानी आता है उसमें क्या होता है कि हमें मछली जो होती है वो पानी के में ही रहने वाली होती है, बाहर नहीं। उसमें क्या होता है कि हमेशा पानी का पैरामीटर हमें लगभग हर 15 दिन पे चेक करना चाहिए होता है,
1: अच्छा
0: क्योंकि पानी का क्या होता है अगर पीएच लेवल बढ़ भी जाता है या घट भी जाता है तो उसमें मछली स्ट्रेस में रहती है, वो सही से भोजन भी नहीं उठा पाती है, इसीलिए पानी का हमेशा जांच करना रहता चाहिए।
1: अच्छा तो पानी की जांच करे पर अगर कोई उतार चढ़ाव हो रहा बा तो का कोई उपाय कर जा सकल होंगे?
0: जी अगर पानी में मुख्य मुख्य 3 चीज जांच हमेशा करनी चाहिए। एक होता है जो कि पीएच लेवल का जांच करना चाहिए, और
1: ठीक
0: अमोनिया होता है,
1: ठीक
0: फिर से एक नाइट्रेट होता है। जैसे अमोनिया हो गया तो अमोनिया पानी का जब भी जांच करते हैं वो लगभग 1 PPM से या 2 PPM तक रहना चाहिए। अगर वो ऊपर जाता है तो वो मार्केट में कई प्रकार की दवा अवेलेबल हैं जिसके अगर आप उसके दवा के थ्रू कंट्रोल करना चाहते हैं तो 20 से 25 किलो पर एकड़ आप डाल सकते हैं, जियोलाइट का प्रयोग कर सकते हैं।
1: सही कोई दवा है?
0: जी
1: अच्छा।
0: पीएच लेवल जैसे होता है, अगर पीएच लेवल आपके तालाब का कम है, 6 या 7 से कम है पीएच लेवल, तो उसमें आप चूना का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि चूना लगभग 2 किलो पर बिस्वा के हिसाब से आप प्रयोग कर सकते हैं। 5 फीट पानी रहना चाहिए तालाब में।
1: चूना के प्रयोग के और लोग भी सलाह देलन कि खेत तालाब के तैयारी के समय में भी चूना डाला जाला, उसे कुछ
0: जी
1: फायदा होला का?
0: जी उसमें क्या होता है कि वो कुछ उसमें कैल्शियम का मात्रा भी मिल जाता है जिससे मछली को काफी बढ़वार थोड़ी होती है। जी
1: अच्छा। तो ये तो भाई रोग और परेशानी। विशाल जी, जब मत्स्य बीज डाल दिया गया, उनके आहार व्यवस्था भी हो गई और इतना रोग और परेशानी से बचा करके आप ले लें, तो का कहे चाहिए बाजार व्यवस्था के बारे में? आप जितना भी मछली निकलेला आपके, तो ओके आप कैसे बाजार में भेजेलन?
0: होता क्या है कि मेरे यहाँ जो भी प्रोडक्शन होता है मछली का वो सीधे व्यापारी मेरे यहाँ आके तालाब से अपने उठा के ले जाते हैं वे लोग मार्केट में।
1: अच्छा। तो आपके मतलब बाजार में जाए कि नहीं पड़ेगा?
0: नहीं मार्केट में हमें नहीं जाना पड़ता है, वो जितने भी उसके होते हैं व्यापारी वो स्वयं आके गांव गांव वो पता लगाते रहते हैं, जिसके पास मछली तालाब होते हैं वो पूछते हैं कि नहीं हम आपके यहाँ तालाब कब तैयार हो जाएगी मछली, तो आप उन्हें एक अनुमानन डेट बता सकते हैं 10 दिन 15 दिन आगे पीछे कि नहीं इतने में तैयार रहती है, वो आपके यहाँ पे खुद ही आके वो अपना ले आते हैं, आपको कुछ भी उसमें करना नहीं होता है,
1: अच्छा, पूरा पूरा मछली
0: पूरा
1: लिया।
0: मछली ले आते हैं वो।
1: एक चीज और विशाल जी छूट गई कि का कुछ सरकारी अनुदान के भी व्यवस्था बा मत्स्य पालन में?
0: जी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत उसमें ये होता है कि ऐसे किसी भी स्कीम आती है, जैसे बायोफ्लॉक की होगी, बायोफ्लॉक की वो जो प्रोजेक्ट होता है उसका 14 लाख का प्रोजेक्ट होता है,
1: अच्छा।
0: उसमें अगर महिला के नाम से अगर आप ले रहे हैं तो उसमें करीब 60% की अनुदान मिलता है उसमें,
1: जी
0: अगर आप जेंट्स के नाम से लेते हैं तो उसमें 40%, अगर आप ST SC के कास्ट में आते हैं कैटेगरी में तो उसमें दोनों में चाहे फीमेल हो या मेल उसमें करीब 60% का अनुदान दोनों में मिलता है।
1: तो आप कोई योजना से जुड़ लें?

0: जी हम आरएएस मेरे यहाँ पे हम लिए हुए हैं, आरएएस टैंक योजना है, उसमें हमें अनुदान करीब 4.5 लाख रुपए मिला हुआ था और वो पूरा प्रोजेक्ट 7.5 लाख रुपए का था।
1: जी, तो मत्स्य पालक भाई, किसान भाई, आज के बातचीत से आप जरूर से जरूर जो बाकी मत्स्य पालन से जुड़े के मन बने हैं, और विशाल कुमार सिंह जी आज आप अपने स्टूडियो में आए लें और इतना बढ़िया जानकारी दे लें, एक एक खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी सर धन्यवाद।
2: लगे हाथ
0: भैया
2: भैया, देखा बाजार भाव भी लगल बा तो उहो बाँच देता।
3: बिल्कुल भैया, रावर्सगंज के हुए बाबूलाल मौर्या भैया भेजले हुए, और कुंतल में हुए भैया आलू 1100 से 1200 रुपया कुंतल, प्याज 4000 से 4200 रुपया कुंतल, टमाटर 2500 से 2800 रुपया, बैगन रहे 3000 से 3200 रुपया कुंतल, लौकी 1800 से 2000, करेला रहे 3500 से 4000 रुपया कुंतल, मूली 4000 से 4500, हरा मिर्चा 4500 से 5000, और धनिया रहे 10000 से 11000, फूल गोभी रहले 2500 से 3000 रुपया सैकड़ा, पत्ता गोभी 2200 से 2500, और नींबू रहले 600 से 700 रुपया प्रति
2: प्रति
3: सैकड़ा।
2: सैकड़ा तो ये तो रहल बाजार भाव रावणगंज मंडी का। बाबूलाल भैया के भी धन्यवाद दिया जाए,
3: बिल्कुल
2: लेकिन भैया देखा अपने पंचायती के समेटे का भी समय हो गया बा।
3: एकदम
2: अगले पंचायती में ओजोन परत के संरक्षण के प्रति जन जागरूकता के विषय पे बातचीत हुई भैया राम सिंह गौड़ भैया से अपन भोला भैया का, तो आकर के सुनल जाये, और यह आशा के साथ कि सब लोग अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तो हम आज पंचायती समेटल जाए।
3: बिल्कुल भैया,
2: तो सब
3: सब
2: पंचन
3: पंचन के
2: के
3: राम
2: राम
3: राम।
2: राम।

0: अभी हमारे ग्रामीण भाई अपना कार्यक्रम ग्राम जगत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 6:50 पर हमारे किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम किसानवाणी। इसका अनुप्रसारण हमारे लखनऊ केंद्र से किया जाएगा। आइए चलते हैं अपने लखनऊ केंद्र।
1: प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: पंचो जय
1: हिंद।
0: हिंद।
1: रत्ना बहनी,
0: हाँ ओम भैया।
1: देखो हम पंचे खेती करे थन और सोचे थन कि अपनी खेती में यहाँ ज्यादा ज्यादा मुनाफा होए।
0: भैया आज की जरूरत तो यह है कि अगर हम पंच खेती करी या कोनो काम करी तो वही में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो, वे के खातिर नई नई तकनीकें नई नई जानकारी का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी।
1: हाँ तो अपनी खेती में यहाँ देखो समन्वित कृषि प्रणाली अपनावे जरूरत है। काहे तेरे देखो आके जोन हम पंचे खेती करी थन जोन फसल उत्पादित करी थन वही माँ कबो कबो नुकसान हो जाते हैं।
0: सही बात कहा, तो नुकसान ना हो पावे, पूरी तरह से अपने हाथ खाली ना हो पावे, उनके खातिर खेती के साथ साथ वो खेती से संबंधित जो उन काम होते हैं उनका करत रही, जिसे हमका दोहरा लाभ मिले।
1: हाँ अब देखो हरहा गोरू पाल सकत हो अपने खेती के साथ और मछली पालन कर सकत हो, मुर्गी पालन कर सकत हो।
0: बिल्कुल सही बात कहा, तो इनका करे से जो है अपनी खेती के काम में कोई अड़चन हो ना आई, और साथ ही में ई काम करे से अपनी खेती में कहूँ ना कहूँ सहयोगी राहत है।
1: और यह बात यह होते है जैसे मान लो जोन अपन मुख्य फसल हम बंचे कर रहे हैं अगर वही माँ कोनो नुकसान हो जाते तो जोन दूसर फसल किन जा रही है वही तेरे मुनाफा हो जाते तो हम पंचन के यहाँ घाटा नहीं लग पाते।
0: सही बात कहा था कि अपने हाथ जो है पूरी तरह खाली नहीं हो पावत है, कुछ न कुछ अपने हाथे में यहाँ धन रहते है, जिसे काम कोई रुकत नहीं है।
1: हाँ और काम तबहू नहीं रुकत है जब हम पंचन के यहाँ आज की खबरें पता चल जाती हैं।
2: उत्तर प्रदेश में रबी सीजन 2026-27 की तैयारियों के तहत किसानों के लिए प्रमाणित बीजों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी गई है। कृषि विभाग की ओर से गेहूं, चना, मटर, मसूर, जौ, सरसों और अलसी सहित विभिन्न रबी फसलों के बीज 50% तक के अनुदान पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके साथ ही पात्र किसानों को निःशुल्क बीज मिनी किट का लाभ भी दिया जाएगा। किसान कृषि विभाग के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से निर्धारित अवधि में बीज की बुकिंग कर सकते हैं। गेहूं और अन्य फसलों के लिए ऑनलाइन बुकिंग की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित की गई है। लक्ष्य से अधिक बुकिंग होने की स्थिति में किसानों का चयन ई लॉटरी के माध्यम से किया जा सकता है। कृषि विभाग ने किसानों से समय रहते ऑनलाइन बुकिंग कराने का और योजना का लाभ उठाने की अपील की है।
3: प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: रत्ना बहनी।
4: हाँ ओम भैया।
3: देखो खरीफ की फसलें अपने ख्यात मैया है इबेरा और जो है महिमा का प्रबंधन की जाए। अगर कोई विशेषक भैया तेरे जानकारी मिल जाते तो करना नहीं खोई जाते।
4: तो भैया काहे ना जानकारी दिवा दिन जाए। आज की बात में खरीफ फसलों में सामायिक प्रबंधन जी के बारे में बता रहे डॉक्टर प्रदीप कुमार बिसेन भैया।
3: तो आओ जाना जाए।
5: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, इस समय खरीफ की फसलें आपके खेत में खड़ी हैं, तो सामयिक प्रबंधन क्या कुछ करें इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र फर्स्ट जमुनाबाद गोला लखीमपुर खीरी से वैज्ञानिक सस्य विज्ञान डॉक्टर पीके बिसेन साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब ये बताएं कि इस समय जहां खरीफ की फसलें खेत में हैं तो सामयिक प्रबंधन में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर किसान भाइयों बहनों को ध्यान देना है।
6: किसान बहनों भाइयों आपको सादर नमस्कार। इस समय किसान भाइयों को ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी हमारे देख रहे होंगे कि मौसम की पूर्वानुमान और मौसम की बहुत सारी जानकारियां आपको उपलब्ध हो रही है, बारिश हो रही है, और इसको देखते हुए अगर संभव हो तो खेत से अपने पानी, अगर धान का भी फसल है तो ज्यादा पानी उसमें भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई प्रजातियां हमारी ऐसी हैं जो कि उस तरह की नहीं है कि उनको पूरा पानी में डूब जाए वो, तो वहां अगर संभव हो तो पानी निकालने की आप व्यवस्था कर सकते हैं। अगर जिन क्षेत्रों में बारिश नहीं हो रही है तो वहां पे पानी लगाने की आवश्यकता है, हल्की पानी जरूर लगा दें। साथ ही साथ ये देखने में आ रहा है कि कुछ लोगों की जो धान की हमारी फसलें जिन्होंने समय से लगा दिया था उसमें बालियां भी निकल रही हैं, कुछ लोगों की बाली निकलने की अवस्था है, तो ऐसी अवस्था में अगर आपका जो नत्रजन है जिसका आपने भाग नहीं डाला है तो वो यूरिया के माध्यम से 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसका बुरकाव कर सकते हैं। इसके अलावा पोटास जो हमारे पास है उस पोटास को भी अगर आप ले लीजिए तो वो जो है अगर आपने डाला ही नहीं शुरुआत में तो 40 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से ले लीजिए, जो म्यूरेट ऑफ पोटास के नाम से आता है उसको डाल दीजिए।
5: डॉक्टर साहब जल प्रबंधन की बात चल रही है तो जहां जरूरत से ज्यादा बारिश का पानी खेत में है तो हर फसल में जल निकास
6: जी बहुत जरूरी है। खास करके धान तो हमारा ठीक है, फसल अपने आप को संभाल लेता है, लेकिन खास करके जो दलहनी फसलें हैं जैसे हमारा है इसमें उड़द है, मूंग है, अरहर है, तिल है, और साथ ही साथ मूंगफली है और मक्का भी है हमारा, ये फसलें हमारी जो है अगर ज्यादा बारिश हो रही है पानी लग गया तो ये सूख जाएंगी और इसमें बीमारी या जो हमारे कीट का भी प्रकोप हो सकता है।
5: डॉक्टर साहब पोषक तत्व प्रबंधन में धान के अलावा किसी और फसल पर कुछ देना है
6: इस समय? अगर जिसका ये देखने में भी आता है मूंगफली, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो है अभी कुछ लोगों ने लेट से भी बुआई की है, मतलब देर से बुआई उन्होंने कर दी, तो ऐसे मूंगफली की जो हमारी फसल है उसमें चाहें तो वो जिप्सम को कैल्शियम के रूप में और साथ ही साथ जो आपका बोरेक्स है इसमें कि बोरान होता है उसका 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से, और जिप्सम जो है हमारा वो 100 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से अगर हम डलवा दें खेत में तो इससे क्या होगा कि इस समय फ्लावरिंग मतलब फूल की अवस्था आ गई है मूंगफली में और कुछ लोगों में खूंटी बन रही जो कि हम पेगिंग कहते हैं, तो उसमें ये जिप्सम का जो रोल होगा वो बहुत ही अच्छा होगा और उससे हमारी फसल को फायदा ही होगा।
5: डॉक्टर साहब आपने पोटास की बात की, बहुत सारे किसान भाई बहन बेसल डोज में पोटास नहीं दे पाते हैं।
6: जी जी।
5: तो जो भी खरीफ की फसलें हैं क्या 0050 का छिड़काव
6: जी हाँ 0050 का कर सके, लेकिन ये ध्यान रहे कि खेत में उचित नमी रहे, सूखे में ना करें, उचित नमी रहे तभी उसका पानी छिड़काव कर दें, उसका घोल बना लें और घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं।
5: डॉक्टर साहब इस समय जब खरीफ की फसलें खेत में है तो हानिकारक कीट और बीमारियों के प्रबंधन के लिए फसल सुरक्षा महत्वपूर्ण है?
6: जी हाँ यह बहुत जरूरी है। इसमें फसल सुरक्षा में हमको समन्वित जो कीट प्रबंधन है, समन्वित जो हमारे रोग प्रबंधन है वो प्रक्रिया हमको अपनाना चाहिए। जैसे धान में अगर हम देखें तो इस समय जो है धान में सुंडी लगती है, अगर

0: संभव हो तो उसमें अगर चिड़ियों को बैठने की अगर व्यवस्था कर दिए हो और उस तरह का कीट आपका जो है प्रकोप नहीं दिख रहा है तो आप दवा कतई ना डालें।
1: यानी खेत में बर्ड पर्चर बना
0: जी
1: दें।
0: जी बर्ड पर्चर, उसमें चिड़ियों को बैठाने की व्यवस्था कर दें, और अगर तब भी नहीं रुक रहा है तब आप जो है दवाओं पे जाएं, तो पहले उन दवाओं का उपयोग में लाएं जो नीम आधारित हैं, जिसमें कि हम अजाडिरेक्टिन के नाम से मार्केट में हमारे बाजार में उपलब्ध होता है, उसका जो है 3 से 4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाइए, और उस घोल में ये ध्यान जरूर रखिए कि क्योंकि ये जो है फॉर्मुलेशन जो आता है इसी में आता है, इसको हम इंग्लिश में इमल्सिफाइड कंसंट्रेट कहते हैं, तो ये तैलीय होता है, तो इसको जो है अच्छे से पत्तियों पर फैलने के लिए इसमें आप चाहे डिटर्जेंट पाउडर या शैम्पू का जरूर समावेश करें।
1: ताकि स्टिकर का काम
0: जी
1: करें
0: जी स्टिकर
1: और
0: का, और वो फैल
1: स्प्रेडर
0: जाए,
1: का भी।
0: जी जी वो बूंद जो बनता है वो फैल जाए जो है।
1: डॉक्टर साहब, इसके अलावा भी कई तरह के हानिकारक कीट हैं, जैसे कहीं कहीं तना छेदक कीट की समस्या है, बहुत जगह फुदकों की समस्या है।
0: जी, तो ऐसे जगहों पे अगर हम देखें तो अगर आपका इन अजाडिरेक्टिन या हमने जैसे पहले पूर्व में आपको बताया अगर इनसे नहीं नियंत्रण होता है, तब हमारे पास है कार्ट्राप हाइड्रोक्लोराइड, SP उसको कहते हैं, और ये 400 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आपको उपयोग करना पड़ेगा, और इसका जो अगर मात्रा देखें तो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाइए और सायंकाल इसका छिड़काव जरूर कर दीजिए।
1: डॉक्टर साहब, कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड दानेदार में भी आता है?
0: जी हाँ, वो शुरुआती दौर में जब पत्तियां का जो कवरेज है, हमारी जो पत्तियां होती हैं उस समय पूरा जो है जमीन को ढकी नहीं रहती, इस समय जो पौधा है वो जमीन को ढक चुका है, इसलिए हम दानेदार का जो है हम अनुशंसा नहीं करते, खास करके इसमें छिड़काव के लिए ही अनुशंसा करते।
1: तो इसकी 2 ग्राम मात्रा
0: प्रति
1: प्रति
0: लीटर
1: लीटर
0: पानी
1: पानी के
0: में आप
1: हिसाब।
0: घोल बना के इसका छिड़काव करें, सायंकाल करें।
1: डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो और हानिकारक कीट हैं तो उनके प्रबंधन के लिए आईपीएम के कौन कौन से उपाय अपना सकते हैं?
0: जैविक उपाय भी हैं, जैसे बेवेरिया बैशियाना है, दूसरा हमारे पास है मेटाराइजियम है, इसके अलावा स्टिकर्स आते हैं हमारे पास, फेरोमोन ट्रैप्स आते हैं, लाइट ट्रैप्स आते हैं, इनका भी उपयोग हमको खेतों में करना चाहिए, जैसे और दूसरे हैं बैसिलस थिरुजेंसिस, इसको हम BT भी कहते हैं, इसके अलावा न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस होते हैं, इनका भी उपयोग अगर इनकी गुणवत्ता अच्छी है अगर आप डालते हैं तो ये टारगेटेड, मतलब जिस कीट को हमको नियंत्रण करना अगर उसके ऊपर इनका छिड़काव अगर हो गया तो वो उनको नियंत्रित कर देते हैं। इसके अलावा आपके खेत में भूरा फुदका भी देखने को मिलेगा,
1: जी,
0: जिसको कि हम हापर के नाम से जानते हैं, और इस
1: BPH।
0: जी हाँ BPH इस समय दिखेगा जरूर, क्योंकि ये मौसम है सितंबर का, बारिश बहुत ज्यादा हो गई है, खेत में नमी बहुत है, तो ऐसी अवस्था में भी आप ध्यान रखें कि खेत से हो सके तो पानी जरूर निकाल दें। इसके लिए दो हम दवा का नाम आपके सामने बोल रहे हैं, अगर ये मिल जाए तो आप उसका जरूर उपयोग करें। एक दवा का नाम है पाईमेट्रोजिन, जो कि 50% को हम लोग वेटेबल ग्रेन्यूल कहते हैं, जो कि 120 ग्राम प्रति एकड़ की दर से मिलता है, या इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक दवा और आती है ट्राइफ्लू मेजोरिन करके, ये 94 ml प्रति एकड़ की दर से इसका हम इसमें, दोनों में से कोई एक दवा आपको मिल जाए तो इसका आप छिड़काव कर सकते हैं।
1: पानी की मात्रा कितनी
0: जी हाँ,
1: होगी?
0: जब पानी की मात्रा इनमें जो है 200 लीटर प्रति एकड़ की दर से आप हमेशा जो है ध्यान रखें कि 200 लीटर का आपका जो है बनाना है, ताकि 1 एकड़ का आपका अच्छे से आप छिड़काव कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, कई बीमारियां भी लगती हैं धान के अलावा अन्य फसलों में भी?
0: जी, हम धान का भी मैं बता दूं, धान में इस समय सीथ ब्लाइट जो है, खास करके आपको देखेंगे पत्तियों के नीचे आपको धब्बे लाल रंग के, उससे आपकी बाली टूट के गिर सकती है, तो उसको हम ये रोकथाम के लिए ये ध्यान रखें कि खेत में नमी न रहे, और अगर संभव हो तो आप यूरिया कतई नहीं डालिएगा, उसमें एक दवा आती है एजॉक्सी स्ट्रोबिन, उसके बाद उसमें दूसरी दवा होती है डाइफेनोकोनाजाल, इसका जो है 200 ml प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी के हिसाब से, मतलब 1 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कर लेंगे।
1: धान के अलावा दलहन और तिलहन भी है?
0: जी हाँ, हम किसान भाइयों को एक चीज और भी बता दें, आप जो दलहनों में खास करके उड़द और मूंग हमारा है, अगर प्रजातियों के बारे में अगर आपको जानकारी हो तो अगर वो प्रजातियां आपके पास हैं जो किसी भी बीमारी से या कीट से अगर वो सहिष्णु हैं और रोधी हैं तो उसमें तो दवा कतई नहीं डालिए, उसमें जो है वो अपने आप, उसमें उनके कैरेक्टर हैं कि वो अपने आप को बचा लेते हैं, तो हम कुछ वैरायटियों का नाम बोलेंगे, अगर है तो उसमें दवाएं नहीं डालिएगा, खास करके मूंग में पंत मूंग 2 है, 3 है, PDM 54 है, PDM 11 है, ML 337 है, नरेंद्र मूंग 1 है, ये विराट भी है, ये जो है पीली पत्ती जो मोजैक बीमारी आती है, खास करके सफेद हमारे मक्खी से फैलता है ये, उसमें नहीं आती है, सहिष्णु होते हैं, टॉलरेट कर जाते हैं। दूसरी जो हमारी उड़द में आती है उसमें भी ये पंत उड़द 19 है, 30 है, PDU 1 है, और 1 है हमारे पास UG 218 तथा नरेंद्र उर्द 1 है, अगर ये भी प्रजाति है तो इसमें जो है पीली पत्ती मोजैक नहीं आती, लेकिन फिर भी अगर आपका नहीं नियंत्रण हो रहा है, ये प्रजातियां नहीं है,
1: और नुकसान का स्तर
0: जी जी
1: अधिक है?
0: हाँ अधिक है, तब इसमें हम करेंगे तो इसमें दवाओं

0: का एक जो है मिश्रण होता है जिसको हम कहते हैं पायरी प्रोक्सीफेन प्लस बाइफेंथ्रीन होता है, उसका 400 ml प्रति एकड़ की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे खरीफ फसलों में सामयिक प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके कृषि विज्ञान केंद्र जमनाबाद गोला लखीमपुर खीरी आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: किसान भाई आप हमारा मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं, 9453791558, 9453791558, 94-53-79-1558।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का खरीफ फसलों में सामयिक प्रबंधन के बारे में डॉक्टर साहब?
0: किसान भाइयों से मेरा निवेदन ये है कि खास करके ये ध्यान दें कि अगर बहुत सारी जानकारियां आजकल इस जो हमारे डोमेन में या कहिए तो कई क्षेत्रों में बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध हैं, तो अपने निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र, शोध संस्थानों, विश्वविद्यालयों से आप जरूर संपर्क करें और अपने ज्ञान का जो है बढ़ोतरी करें, साथ ही साथ जानकारी और इकट्ठा करें। और खास करके जो हमारे पास जो समन्वित कीट प्रबंधन या समन्वित व्याधि प्रबंधन के बहुत सारे हमारे पास मॉड्यूल्स हैं, उसके बारे में भी आप जानकारी इकट्ठा करिए और उनको खेतों में उपयोग में लाइए और आवश्यकता पड़ने पे ही कीटनाशी या जो हमारे व्याधिनाशी का उपयोग करें, ये ध्यान रखें।
1: डॉक्टर पीके बिसेन साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और खरीफ फसलों में सामयिक प्रबंधन क्या कुछ करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ओम भैया,
3: हाँ रत्ना बहनी,
2: अति नीक नीक जानकारी दे, वही के साथ में अगर बढ़िया से गौनाई सुनवा दे तो कत्ता नीक रहा।
3: अरे बिल्कुल रत्ना बहनी, देखो गौनाई लेके आया है, नाव सुना जाए और पंचो भाई सुने सतीश चंद्र श्रीवास्तव भैया के स्वर मैया।

0: रत्ना बहनी,
1: हाँ ओम भैया,
0: देखो अपने बीच में बहुत किसान पंचायत होते हैं जो इतनी मेहनत तेरे खेती के यहाँ बहुत नीकी तना तेरे करत हैं, तो आज के किसान अपने बीच में यहाँ हैं, तो आओ जान लीन जाए उनकी कहानी, उन्हें की जवानी।
2: किसान भाइयों बहनों, आइए आज आपको ले चलते हैं बहराइच जनपद के चित्तौड़ा ब्लॉक के सुरजापुर माफी गांव, जहां नौनमेसी किसान जय सिंह साहब टेलीफोन लाइन पर हैं। जय सिंह साहब नमस्कार।
3: नमस्ते
2: सिंह साहब, आप केला उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, ये बताएं कि इस साल रकबा कितना है आपका?
3: मेरे पास वही 25 एकड़ के आसपास लगता है। इस बार भी 23-23.5 एकड़ रकबा है, 25,000 प्लांट लगाए हैं।
2: और पुरानी फसल?
3: पुरानी फसल भी इतनी ही थी।
2: तो केला की हार्वेस्टिंग हो गई?
3: कटाई 96% कंप्लीट हो चुकी है। 5 तारीख को लास्ट गाड़ी लद के चली गई।
2: तो ये बताएं कि जो 24 एकड़ आपका केला है, उसकी रोपाई और रोपाई के पहले खेत की तैयारी से लेकर के फसल की कटाई तक कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखते हैं?
3: सबसे महत्वपूर्ण बात केले की खेती में समय होती है, और समय बीत जाने के बाद में कभी भी आपको अपेक्षित रिजल्ट नहीं मिलते हैं।
2: आगे कौन कौन सी देखभाल आप खड़ी फसल में करेंगे ताकि जाड़े के पहले आपकी अभीष्ट ऊंचाई तक पहुंच जाए फसल?
3: विशेष करके अभी हमारे पास 60 से 65 दिन बचे हैं 15 नवंबर आने में, और यही ये सबसे तेज बढ़वार का समय है। इसमें गोबर की खाद इकट्ठी की हुई रखी है, जैसे पहला मौका लगेगा वैसे उठा के हम पहुंचाएंगे पौधे के पास, गोड़जोत ठीक से करेंगे। तो हमारी अपेक्षित हाइट जो 3 फुट से 3.5 फुट 15 नवंबर के आसपास आनी चाहिए, उसके लगभग फसल पहुंच जाएगी।
2: अभी जो आपने रोपाई इस बार की है केले की, उसका अंतरण क्या है, लाइन से लाइन की दूरी, पौध से पौध की दूरी?
3: मेरे पास में मशीन का काम ज्यादा रहता है, तो 7 फुट लाइन से लाइन है और 5.5 फुट पे प्लांट से प्लांट है। लगभग 1080 से 1100 पौध 1 एकड़ में लगती है।
2: तो फसल की भूख मिटाने के लिए क्या किस्तों में आप उर्वरक की मात्रा देते हैं?
3: जी, ऐसा है कि पिछले अनुभव से समय से जब हम गोबर की खाद लगा लेते थे, तो नॉर्मली ये देखा जाता था कि 15 नवंबर तक पौधा रुकता नहीं है। उतने ही गोबर से जो करीब 400 से 500 क्यूबिक फीट 1 एकड़ में हम लगाते थे, उससे उसकी अपेक्षित ग्रोथ 3.5 फुट बन जाती थी। तो उर्वरक बहुत कम देना पड़ता था, ना के बराबर, यूं कहिए सिलेक्टिव फर्टिलाइजेशन करना पड़ता था, जो प्लांट अपेक्षाकृत कुछ छोटे रहते हैं उसको देखते हुए।
2: जी,
3: और उसका एक पैमाना था मैंने जो अपने अनुभव से बनाया कि 15 सितंबर तक के जो पौधा है वो लगभग 10 इंच हाइट जरूर ले ले। अगर छोटा होता था तो उसको 10 दिन पहले से पालना पोसना शुरू कर देते थे। ऐसे ही 15 अक्टूबर तक वो आपका 2 फुट से 2.25 फुट हाइट अवश्य ले ले। और ऐसे पौधे ये देखा जाता था कि 15 नवंबर आने तक 3.5 फुट हाइट 1 मीटर की गर्दन इनकी बन जाती थी।
2: जी, तो जो इस बार आपने हार्वेस्टिंग की है केले की फसल, तो उसका क्या आंकड़ा रहा, एकड़ में कितना लागत गिरी, उत्पादन कितना तक ले लिए और आपका मुनाफा हुआ कितना?
3: जी, 14.87 रुपए का एवरेज रेट छूटा है बिक्री का, और एक घार का वजन 24 किलो 24.5 किलो करीब आया है,
2: और लगभग 1100 पौधे प्रति एकड़ आए हैं आपके।
3: 1050 सर्वाइवल, 1000 पौधा। इस बार पहली बार ऐसा मैंने देखा है कि फ्रूटिंग ऑल

0: आया है, जो थकान है उसकी या जो उसकी जड़ें रूट जोन डिस्टर्ब्ड है, उसको मौका दें कि वो सुधर जाए और इस पीच में उसकी थोड़ी एनपीके पढ़नी छिड़काव जो 15-15-15 या 19-19-19 से करके, और एक फंजिसाइड जैसे एमी स्टार टॉप है, इसका 0.75 ml पर लीटर की दर से हफ्ते में एक बार दो बार करके उनको ये जिलाएं। और इन पौधों में एक बहुत सावधानी के साथ बताना चाहूंगा काम करने को भाइयों को कि जो ये प्लांट्स आते हैं ये कभी भी एक रूप नहीं होते हैं, उनको अपनी नर्सरी में उतार के ग्रेडिंग करके एक रूप बना लें।
1: जी हार्डनिंग
0: जो
1: कर लें।
0: पौधे जी आप 4 दिन से एक हफ्ता भी अगर 5 दिन भी रोकेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि कौन सा 6 पौधे में 8 पौधे की सेट पत्ती जो आती है उसमें छोटा है, उनको निकाल के एक तरफ कर लीजिए और जो बड़े पौधे हैं उनको एक तरफ कर लीजिए। तो आप अपने खेत में जहाँ पर उर्वरा शक्ति ज्यादा है उधर छोटे वाले लगा लीजिए, और जिधर जरा सा खेत नीचा या जहाँ उर्वरा शक्ति हल्की कम है वहाँ वो बड़े लगा लीजिए। कहने का तात्पर्य है कि छोटे पौधे एक तरफ लग जाएं, बड़े पौधे एक तरफ लग जाएं, तो आपको उनके प्रबंधन में भी आसानी होगी और कटाई में एक रूपता रहेगी।
1: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 94-151-21-488 9415121488 94-151-21-488।
1: जय सिंह साहब, आज इतनी अच्छी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे,
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। तो पहली वाली बात कहा,
3: पर हम तो सब यही डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
5: अब ओम भैया मौसम की जानकारी बता दीजिए। कायस की हम पंचन की खेती जो है मौसम पर आधारित रहा थे।
6: तो जो मौसम की जानकारी प्राप्त भय है वह भारत सरकार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत मौसम विज्ञान विभाग प्रादेशिक मौसम केंद्र लखनऊ तेरे अगले 7 दिन तक का जो वर्षा का पूर्वानुमान है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 15-16-17-18 तारीख तक संभाग में कहूं कहूं वर्षा गरज चमक के साथ बौछारें पड़े की संभावना है और 19-20-21 तारीखियां मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगभग सभी स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़े की संभावना है। तो ये तो रहे मौसम का हाल।
5: ओम भैया देखो पंच भाई बहनी सब कुछ प्रे कार्यक्रम में सुनत हैं जानत हैं, लेकिन जैसे कुछ कहा चाहते हैं या बतावा चाहते हैं तो उनके खातिर हम जो है पता सबका पता होना चाहिए।
6: हाँ तो अपने कार्यक्रम का पता है कार्यक्रम किसानवाड़ी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ जो पिन कोड है 226001।
5: और भैया ये तो चिट्ठी पत्री वाला पता है और एक नवा पता चलत है वो है ईमेल एड्रेस।
6: तो ईमेल भेजे खाते जो अपन पता है farmandhomeairlko@gmail.com।
5: तो चलक हो रही बिरिया और पंच भाई से लीन जाए आज्ञा। जय हिंद।

0: कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी, ये आकाशवाणी का लखनऊ के

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के। स्वामी विवेकानंद के अनुसार तुम ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं कर सकते जब तक स्वयं में विश्वास न कर लो।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली में किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर किए हस्ताक्षर। कहा, जल संसाधनों के समुचित उपयोग और जल सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण साबित होगा ये कदम। केंद्र सरकार ने कहा, 2000 रुपए तक के यूपीआई भुगतान पर नहीं लगेगा कोई शुल्क। वित्त मंत्रालय ने बदलावों को किया अधिसूचित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से शुरू होने वाले सेवा संकल्प अभियान को लेकर प्रदेश में तैयारियां तेज। ये अभियान नागरिकों को विकसित भारत 2047 के संकल्प से जोड़ेगा। और भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने लखनऊ में अपनी पुस्तक द सेकेंड ऑर्बिट का किया विमोचन। स्कूली बच्चों से साझा किए अंतरिक्ष यात्रा के अनुभव। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान। और अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में नई दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने किशाऊ परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: इस परियोजना का लगभग 90% वित्तीय भार भारत सरकार वहन करेगी और शेष 10% राशि 1994 के समझौते के अनुसार भागीदार राज्यों द्वारा वहन की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस समझौते को जल संसाधनों के समुचित उपयोग और भावी पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि परियोजना के साकार होने से उत्तर प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से अन्नदाताओं को संबल, पेयजल की उपलब्धता को मजबूती और यमुना की अविरलता को नई शक्ति मिलेगी। इस परियोजना के तहत उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर बहने वाली टोंस नदी पर कंक्रीट ग्रेविटी डैम बनेगा जहां 1562 मिलियन क्यूबिक मीटर जल संग्रहण होगा। इससे 97,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और 1476 मिलियन यूनिट स्वच्छ जल विद्युत भी प्राप्त होगी। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में आज 23 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया कि कैबिनेट ने मथुरा के छाता में एथेनॉल प्लांट को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस प्लांट में साल के 11 महीने एथेनॉल बनाने का काम होगा।
3: 19 वर्ष पहले शुगर फैक्ट्री बंद होती है, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में जो प्रस्ताव पास हुआ है, इथेनॉल प्लांट जो गन्ने से मक्का और धान, गन्ना समाप्त होने के बाद मक्का और धान से इथेनॉल बनाया जाएगा। ये प्लांट साल में 11 महीने चलेगा। जो भी इथेनॉल की मात्रा 3 करोड़ 96 लाख लीटर एक साल में इथेनॉल बनेगा। एक साल

0: मंत्रिपरिषद ने अलीगढ़ में नई यूनिवर्सिटी को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने इसके लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पीआरडी कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत प्रदेश के पीआरडी जवानों और उनके परिवार वालों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा दिए जाने का प्रस्ताव पारित किया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि बैंक 2000 रुपए तक के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई लेनदेन और रुपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने यूपीआई लेनदेन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह नियम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में किए जाने वाले यूपीआई लेनदेन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। अगर भविष्य में कभी डिजिटल लेनदेन पर कोई शुल्क जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाया भी गया तो वह केवल दुकानदारों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं। हालांकि ये शुल्क भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड लेनदेन पर लागू MDR से काफी कम होंगे। सरकार का यह स्पष्टीकरण भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में हालिया संशोधन के बाद यूपीआई लेनदेन पर शुल्क की आशंकाओं के बीच आया है। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से शुरू होने वाले सेवा संकल्प अभियान को लेकर तैयारियां तेजी से पूरी की जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में समीक्षा बैठक कर अभियान को सफल बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसी क्रम में हापुड़ के प्रभारी मंत्री केपी मलिक ने अधिकारियों के साथ बैठक कर एक माह तक चलने वाले इस अभियान की कार्य योजना पर चर्चा की। उधर शाहजहांपुर के प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने अधिकारियों को अभियान के सभी कार्यक्रम प्रभावी ढंग से कराने और अधिक से अधिक जन भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने बताया कि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाले अभियान का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के सेवाकाल की जन कल्याणकारी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना और नागरिकों को विकसित भारत 2047 के संकल्प से जोड़ना है।
2: सेवा संकल्प के अभियान को सफल बनाने के लिए शासन प्रशासन और संगठन के समन्वय के साथ कार्य योजना तैयार की है। 17 सितंबर को शाहजहांपुर जनपद में रक्तदान का आयोजन किया जाएगा और उसके बाद सबसे पहले लगातार 17 अक्टूबर तक बहुत सारे अभियानों के माध्यम से जन कल्याण की योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को देने का काम भी पूर्ण होगा।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि मंदिर का मुख्य निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अब अंतिम भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने बताया कि भविष्य में निर्माण की गुणवत्ता बनी रहे इसके लिए निर्माण कंपनियों से बैंक गारंटी ली जा रही है। साथ ही निर्माण के अंतिम भुगतान का ऑडिट भी थर्ड पार्टी से कराने का फैसला लिया गया है। श्री मिश्र ने बताया कि अब रामकथा संग्रहालय का काम शुरू होगा जिसके लिए 10 अक्टूबर से टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी।
3: संग्रहालय का जो सबसे बड़ा कार्य अब शुरुआत होगी आने वाले 10 अक्टूबर तक टेंडर जारी की जो टेक्नोलॉजी होगी उसका हार्डवेयर होगा सॉफ्टवेयर होगा वह बनाना है और उसको अंतिम रूप दिया जाए। अनुमान है कि टेंडर फाइनलाइज जो कि अक्टूबर के अंत तक कदाचित हो पाएगा उसके बाद लगभग 6 महीने लगेंगे गैलरी को कम्प्लीट करने में।
0: अंतरिक्ष यात्री और भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने आज लखनऊ में चल रहे गोमती पुस्तक महोत्सव में अपनी किताब द सेकेंड ऑर्बिट का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने स्कूली बच्चों और युवाओं के साथ संवाद किया और अपनी अंतरिक्ष यात्रा के अनुभव साझा किए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी में जानने की जिज्ञासा है और उन्हें सही दिशा दिखाना हमारी जिम्मेदारी है।
4: ज्यादातर सवाल प्रैक्टिकल थे कि हम क्या करें, हम कैसे आगे बढ़े और हम कैसे इन फील्ड्स में पार्टिसिपेट करें। तो आई थिंक कि जिज्ञासा है, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं और आई थिंक अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम

0: पूरा इकोसिस्टम इनेबल करें ताकि जो बच्चे आज स्कूल में हैं कल को वो निकल के भारत के लिए इन क्षेत्रों में कंट्रीब्यूशन कर सके।
1: भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर हुई थी। वर्ष 1982 में दिल्ली एशियाई खेलों के दौरान रंगीन टेलीविजन की शुरुआत ने दूरदर्शन के प्रसारण और दर्शकों की संख्या को नई ऊंचाई दी। वर्तमान में दूरदर्शन के 35 सैटेलाइट चैनल और 66 स्टूडियो केंद्र हैं। ये 24 से अधिक भाषाओं और विभिन्न बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित करता है। बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई जिलों में मध्यम से भारी वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों में राज्य के कई जनपदों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों के बाद अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली में किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर किए हस्ताक्षर। कहा, जल संसाधनों के समुचित उपयोग और जल सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण साबित होगा ये कदम। केंद्र सरकार ने कहा, 2000 रुपए तक के यूपीआई भुगतान पर नहीं लगेगा कोई शुल्क। वित्त मंत्रालय ने बदलावों को किया अधिसूचित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से शुरू होने वाले सेवा संकल्प अभियान को लेकर प्रदेश में तैयारियां तेज। ये अभियान नागरिकों को विकसित भारत 2047 के संकल्प से जोड़ेगा। और भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने लखनऊ में अपनी पुस्तक द सेकेंड ऑर्बिट का किया विमोचन। स्कूली बच्चों से साझा किए अंतरिक्ष यात्रा के अनुभव। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:31 हुए हैं। आइए सुनते हैं मिले जुले फिल्मी गीतों का सबरस कार्यक्रम।

अनु मल्लिक के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे समीर की रचना को। आवाज थी सोनू निगम की और फिल्म थी हमको दीवाना कर गए।

0: आदेश श्रीवास्तव के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे समीर की रचना को। फिल्म थी बागबान, आवाज थी सुदेश भोसले, अलका याग्निक और साथियों की। कार्यक्रम का अगला गीत इस संदेश के बाद।
1: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, 100 बात की एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
2: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।

अभी आप सुन रहे थे समीर की रचना को जसविंदर नरूला, सपना अवस्थी और साथियों की आवाज़ों में संगीत अनु मलिक का था। सबरस कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है चल मेरे भाई। आनंद मिलिंद के संगीत निर्देशन में रचना समीर की।

0: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: सबरस कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं जुदाई फिल्म का गीत अलका याग्निक और अभिजीत की आवाजों में।

0: अलका याग्निक और अभिजीत के गाए इस गीत के साथ ही आज का सबरस कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं, रात्रि के 8 बजे हैं। आइए सुनते हैं रेडियो रिपोर्ट।
1: प्रस्तुत है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर जन कल्याण सेवा समिति द्वारा चुर्क रावर्सगंज में आयोजित नमो मैराथन की रेडियो रिपोर्ट। आज दिनांक 15 सितंबर 2026 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जन कल्याण सेवा समिति द्वारा नमो मैराथन का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री जी के विजन फिट इंडिया को पूरा करना है। इस मैराथन में 18 से 26 वर्ष के युवा लड़के और लड़कियों ने पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ प्रतिभाग किया, जिसमें अपने जनपद के सुदूर इलाकों से भी आए युवाओं ने भी हिस्सा लिया। प्रातः 9 बजे से बालक वर्ग एवं 9:30 बजे से बालिका वर्ग ने मैराथन प्रारंभ किया और मैराथन सर्किट हाउस पर समाप्त हुआ, जिसमें बालिका वर्ग से सुमन पटेल प्रथम, खुशबू पाल द्वितीय एवं आकांक्षा यादव ने तृतीय स्थान प्राप्त किया, तथा बालक वर्ग से प्रथम स्थान मुकेश, द्वितीय स्थान विनोद चौहान, तो वहीं विक्रम सिंह ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। युवाओं की ऊर्जा से गूंजेगा मैराथन का मैदान, फिटनेस से बनेगा स्वस्थ और सशक्त हिंदुस्तान, दौड़ेगा युवा बढ़ेगा देश का मान, स्वस्थ युवा ही है भारत की असली पहचान। नमो मैराथन के इस उद्देश्य को सार्थक करते हुए माननीय समाज कल्याण राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार संजीव गौड़ जी अपने शब्दों से युवाओं में जोश और उत्साह भरते हुए,
2: देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर ये नमो मैराथन करके इनका नाम रोशन करने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का 17 सितंबर को उनका जन्मदिन है, उस दिन विश्वकर्मा पूजा भी है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन भी है। आप सब जानते हैं कि 2014 से लेकर के अभी तक जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो 13 साल गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए और 12 साल अपने देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल उनका के रूप में कार्य कर रहे हैं और इसी में आज उनके जन्मदिन के अवसर पर बहुत बड़ा 17 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक ये आयोजन का कार्यक्रम होगा और यहाँ से 500 हमारे युवा मोर्चा के लोग मोटरसाइकिल के माध्यम से या पूरे देश में जाएंगे और उनका देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जहां पर जन्मस्थली है वहां से लेकर के कर्मस्थली तक 500 लोग यहां से जाएंगे, 500 लोग वहां से आएंगे यहां पर और सारे जितने भी हमारे देश में विधानसभा क्षेत्र हैं उनको सारे विधानसभा क्षेत्रों को टच करते हुए एक हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का संदेश देते हुए वह लोग जाएंगे और हमारे देश

0: यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो 2014 के बाद से लेकर के अभी तक जो निचले पायदान में जो रहने वाले अंतिम व्यक्ति है उस व्यक्ति को तक ये योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो आज कार्यकाल चल रहा, डबल इंजन की सरकार चल रहा है, उसको लेकर के जन जन तक उनको पहुंचाने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज मैं धर्मवीर तिवारी जी को मैं हृदय से बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा कि इन्होंने नौजवानों के उत्साह के लिए, हमारे बच्चों और बच्चियों को उत्साह के लिए ये नमो मैराथन के माध्यम से हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन के रूप में मनाने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से वह बधाई के पात्र हैं। अब मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए सभी मंचासीन अतिथियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, पत्रकार मित्रों का स्वागत करता हूँ और आए हुए इस मैराथन नमो मैराथन में सभी अपने बच्चे और बच्चियों को हृदय से शुभकामनाएं देते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर धर्मवीर तिवारी ने स्वस्थ भारत विजन को साकार करने की ओर एक कदम बढ़ाते हुए नमो मैराथन की रूपरेखा और उद्देश्यों पर प्रकाश डाला और युवाओं को संबोधित किया।
2: आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में नमो मैराथन का आयोजन जन कल्याण सेवा समिति द्वारा किया गया था। उस जन कल्याण सेवा समिति के द्वारा सोनभद्र को फिट रखने और सोनभद्र के युवाओं को, सोनभद्र की प्रतिभाओं को निखारने के लिए और स्वस्थ रखने के लिए इस नमो मैराथन का आयोजन किया जाता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जैसा कि पूरा अपना जीवन उन्होंने दिया है सेवा के लिए और उनका यह नारा है कि फिट अगर इंडिया है तभी स्वस्थ रहेगा, मजबूत रहेगा और न थकना न रुकना, निरंतर चलते रहना जिन्होंने अपने जीवन का मंत्र बना लिया है, उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में ऐसा नमो मैराथन का आयोजन दूसरे साल यह जन कल्याण सेवा समिति के द्वारा किया जाता है। युवाओं में दौड़ेगा युवा, स्वस्थ होगा सोनभद्र और स्वस्थ होगा देश, तभी देश का मान बढ़ेगा। उस संकल्प के साथ यह मैराथन विकास का मैराथन है, न रुकेगा न थकेगा, निरंतर चलता रहेगा और सोनभद्र की प्रतिभाओं को उभारने के लिए जन कल्याण सेवा समिति निरंतर युवाओं का कार्यक्रम करती रहेगी। जो पुरस्कार जन कल्याण सेवा समिति ने रखा था वो प्रथम पुरस्कार 21,000 रूपए, द्वितीय पुरस्कार 11,000 रूपए और तृतीय पुरस्कार 5,100 रूपए और 21 सांत्वना पुरस्कार रखे गए थे। जैसा कि पिछली बार बालिकाओं ने कहा था कि सांत्वना पुरस्कार और बढ़ा दिए जाएं, तो पहले 7 था, अब 21 था और बालक और बालिकाओं ने मेहनत किया और लगातार आपने देखा होगा कि कहीं कोई रुका नहीं, न थका, निरंतर चलता रहा और समापन में भी वो उत्साह उन युवाओं में था जो देखने को मिला कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस पे जो उत्साह, जो ताकत दिखनी चाहिए वो युवाओं ने अपनी दिखाई है और सभी सोनभद्र वासियों को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यह प्रतियोगिता बालक और बालिका दोनों का था। बालक में 18 वर्ष से लेकर 26 वर्ष तक और बालिकाओं में भी 18 वर्ष से लेकर 26 वर्ष तक के लिए आयोजन था। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और 21 सांत्वना पुरस्कार मिलाकर ये बालकों का भी था और बालिकाओं को भी उतना ही पुरस्कार रखा गया था। सभी प्रतिभागियों को निःशुल्क टी शर्ट दिया गया है और सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी समिति की तरफ से जारी किया गया है। सभी ने भाग लिया और सबसे ज्यादा उत्साहजनक जो रहा वो बालिकाओं ने रहा। प्रथम वहाँ पे शुभारंभ युवा मोर्चा के लोगों ने किया, हमारे राष्ट्रीय खिलाड़ी बाबूलाल अपने प्रथम विजेता थे, उन्होंने किया, हरी झंडी दिखाई और बालिकाओं को उत्साहवर्धन के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय अभिषेक वर्मा जी ने हरी झंडी दिखाकर उनको रवाना किया।
1: माननीय राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार हंसराज विश्वकर्मा जी ने भी प्रतिभागियों एवं विजेताओं युवाओं के उत्साहवर्धन हेतु संबोधित करते हुए कहा,
0: वाराणसी के सांसद, देश के सबसे प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अभी जो ब्रिक्स सम्मेलन जो भारत ने अपनी अध्यक्षता में कराए, आपने देखा होगा टीवी पर, ऐसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 17 तारीख को है, उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर 76वां जन्मदिन है, हम लोग 76वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में भगवान विश्वकर्मा पूजा भी है। भगवान विश्वकर्मा भगवान ने सृष्टि का शिल्पकार किए हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत को गढ़ रहे हैं, भारत का विकास कर रहे हैं, भारत के लोगों का विकास कर रहे हैं। ऐसे दोनों लोगों का हम लोग बहुत बहुत आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिन के पूर्व पहले यह कार्यक्रम हो रहा है उनको दीर्घायु और शतायु होने की हम लोग शुभकामना देते हैं। और निश्चित तौर पर उन्होंने नारा दिया था कि खेलो इंडिया फिट इंडिया के तहत आज ये जो मैराथन का दौड़ हुआ है ये भी अपने प्रधानमंत्री का जो संकल्प है आत्मनिर्भर बनाने का, विकासशील से विकसित भारत बनाने का, एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण, शक्तिशाली भारत बनाने का, अब भारत माता को फिर से विश्व गुरु बनाने का जो संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री ने लिया है निश्चित तौर पर उसमें ये कड़ी मैराथन मैं धर्मवीर तिवारी जी का बहुत आभार व्यक्त करूंगा। कैसे हमारे जो बेटियां हैं बेटे हैं जो नौजवान साथी हैं इस मैराथन के दौड़ में अपने शक्ति का अपने ताकत का एकता का जो यहाँ दमखम दिखाने का काम किया उनको बहुत बहुत बधाई। निश्चित तौर पर आयोजक के जितने भी इनके साथी हैं सभी लोगों को बधाई, पत्रकार बंधुओं को बधाई और जो इतने दूर से आए हैं सब अपने यहाँ ये दौड़ में मैराथन दौड़ में भाग लेने के लिए उनको भी बहुत बहुत बधाई और पार्टी के सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ।
1: नमो मैराथन प्रतिभागी विजेता खुशबू पाल के विचार।
3: मेरा नाम खुशबू पाल है, मेरे पिताजी का नाम सीताराम पाल है, हम सलखन के रहने वाले हैं। हमने नमो मैराथन में भाग लिया, बहुत अच्छा करने का सोचे, फर्स्ट करने का सोचे थे लेकिन सेकंड हो गया, प्रयास तो बहुत था, अच्छा किए, अच्छा लगा आके। हम एक स्पोर्टमैन हैं, 10 किलोमीटर से स्पोर्ट करते हैं, हम ऑल इंडिया खेल चुके हैं, हम सोचते हैं कि और अच्छा करें। मेरा सपना है ओलंपिक खेलने का और मेडल लाने का, अपने देश का नाम रोशन करने का। हमारे भाई बहन हैं जो भी हैं वो आगे बढ़ें और अच्छा प्रयास करें।
1: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर जन कल्याण सेवा समिति द्वारा चुर्क रावर्ट्सगंज में नमो मैराथन की रेडियो रिपोर्ट। स्थलीय ध्वनिंकन था सौरभ तिवारी जी का, वाचन एवं प्रस्तुति सहयोग अचल श्रीवास्तव एवं प्रस्तुतकर्ता थे सचिन कुमार वर्मा जी।
4: अभी आप सुन रहे थे रेडियो रिपोर्ट जन कल्याण सेवा समिति कवरी तरावा सोनभद्र द्वारा आयोजित माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में चुर्क में आयोजित नमो मैराथन की रेडियो रिपोर्ट। स्थल ध्वनांकन सौरभ कुमार तिवारी, वाचन एवं प्रस्तुति सहयोग अचल कुमार श्रीवास्तव का और प्रस्तुतकर्ता थे सचिन कुमार वर्मा। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं, रात्रि के 8:11 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम।

अभी आप सुन रहे थे शब्बीर कुमार अनुराधा पौडवाल की आवाजों में कुली फिल्म का गीत। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं इस संदेश के बाद।

उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।

किशोर कुमार की आवाज में अभी आप सुन रहे थे आनंद बख्शी की रचना को, फिल्म थी कालिया। और आइए अब सुनते हैं शान फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज में।

मेहरबानी। दोस्तों, जिंदगी हसीन है मगर सिर्फ उनके लिए जिन्होंने प्यार किया है, क्योंकि सिर्फ प्यार करने वाले जानते हैं कि आन बान और शान से जीना किसे कहते हैं, है ना।

अब आइए सुनते हैं किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और फिल्म है दोस्ताना।

किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे दोस्ताना फिल्म का गीत। इसी के साथ फिल्म संगीत कार्यक्रम समाप्त हुआ। रात्रि के 8:30 हो चुके हैं। अब आइए आकाशवाणी ओबरा से सुनते हैं सुगम संगीत कार्यक्रम। आगाज करते हैं मनहर उदास की गाई हुई इस गजल के साथ।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: अभी आप सुन रहे थे संदेश के पहले मनहर उदास को, अब आइए सुनते हैं चंदन दास को। सुगम संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के उबरा केंद्र से।

इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए। अभी आप सुन रहे थे अजीम मलिक की लिखी हुई रचना को, फनकार थे चंदन दास। इसी के साथ गैर फिल्म संगीत का सुगम संगीत कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे। इसके तुरंत बाद यानी कि 9 बजे आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। आइए चलते हैं अपने दिल्ली केंद्र और सुनते हैं समाचारों का अनुप्रसारण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत ने कहा, चीन के साथ मुख्य चिंताओं को दूर करने में आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता को मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। भारत ने कहा, खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य। लाल सागर में बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया, लोगों से व्यापारियों को 2,000 रूपये से अधिक के UPI लेन देन पर लगने वाला 0.4% शुल्क व्यापारियों पर लगेगा। लोगों के बीच होने वाले लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। हौसी हमले की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की और दिल्ली में भारत तथा अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
2: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और 3 पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत और रूस के बीच ऊर्जा सहयोग द्विपक्षीय साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने कहा कि दोनों देश परमाणु क्षेत्र में भी लंबे समय से सहयोग कर रहे हैं। सम्मेलन से अलग विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सऊदी अरब के विदेश मंत्री की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों पक्षों ने हौसी विद्रोहियों के मुद्दे पर विचार विमर्श किया। भारत ने सऊदी अरब पर हाल के हौसी हमले की निंदा की। भारत लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती स्थिति से बेहद चिंतित है। श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं।
2: 50 के लगभग आउटकम्स हैं अलग अलग क्षेत्रों में और ये सब विकास आधारित आउटकम्स हैं और इन सभी पे लोगों के लिए अवसर पैदा होंगे। जब अर्बन मोबिलिटी की बात कही है, वहाँ भी हमारे देश में कई एक और ब्रिक्स देश में ई मोबिलिटी पर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काफी काम हो रहा है। तो ब्रिक्स देश आपस में अपने अपने उनके जो उनका एक्सपीरियंस है उसको साझा कर सकते हैं और फिर ये एक प्रस्ताव है और इस प्रस्ताव पर लोगों को अब ध्यान देना है और उसको देखना है किस प्रकार से इसको आगे ले जाया जाए।
1: जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं।
2: हम लोगों ने कई दफा देखा है कि इस प्रकार का आंख में धूल झोंकने वाली हरकत पाकिस्तान करता रहा है। इससे एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर के नाम पे अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, उनको एक्शन लेना चाहिए क्योंकि उनको खुद ही पता है कि लोग कहाँ हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए।
1: ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइया पर हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योगों के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर रडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।

0: 2026 में डीआरडीओ ने मिसाइल से लेकर रडार्स तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन्स तक, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटीज साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए डीआरडीओ आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को ही कोई नकार नहीं सकता।
1: देश के 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी का अविरल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली शामिल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पानी से जुड़ा ये 10वां विवाद है जो अब सुलझने वाला है। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस समझौते का स्वागत किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक समझौता है।
2: आज एक बहुत बड़ा समझौता 6 राज्यों के बीच में हुआ है, जिसका फायदा सिंचाई का भी होगा, पीने के पानी का भी होगा, पर्यावरण की दृष्टि से भी होगा। ये समझौता आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार देश के अंदर जल बंटवारे को लेकर के लंबित इन प्रकरणों का समाधान हो रहा है।
1: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के प्रयासों से ये समझौता संभव हो पाया है।
3: किसाऊ परियोजना हस्ताक्षर हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की पहल और सक्रिय प्रयासों से ही कई वर्षों से लंबित इस विषय पर राज्यों के बीच आज सहमति बनाने का रास्ता साफ हुआ है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच यूपीआई से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए ₹2000 तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। ₹2000 से ज्यादा के व्यक्ति से व्यवसायी लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि ₹75,000 और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए MDR की सीमा ₹300 प्रति लेन देन होगी। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यवसायी या कारोबारी का ये शुल्क यूपीआई से भुगतान करने वाले ग्राहकों पर न लगाएं। देश के माल निर्यात में इस वर्ष अगस्त में 26.12% की वृद्धि दर्ज की गई है और ये $43.81 अरब तक पहुंच गया। पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में उछाल से माल निर्यात में ये वृद्धि दर्ज हुई है। सोने के आयात में गिरावट से व्यापार घाटा कम होकर 5 महीने के निचले स्तर $26.86 अरब पर आ गया। जून 2022 के बाद इस वर्ष अगस्त माह में निर्यात वृद्धि सबसे अधिक 30.12% रही। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जैव E3 नीति और जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भारत पादप और मानव जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में एक साथ प्रगति देख रहा है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी को ऐसी तकनीकों में परिवर्तित किया जाना चाहिए जो कृषि संबंधी वास्तविक चुनौतियों का समाधान कर सकें और किसानों को लाभ पहुंचा सकें। खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने कहा है कि खेलों में प्रगति राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मिजोरम में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्रीमती खड़से ने ये बात कही।
6: We need to develop sports infrastructure.
7: हमें खेलों के बुनियादी ढांचे के साथ साथ युवाओं के विकास पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारे युवा ही विकसित भारत का भविष्य है। केंद्र सरकार लगातार राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं को तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं।
6: यूथ फॉर्मेशन बिल्डिंग।
1: अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आज राजस्थान के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में डिजिटल लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए समझौते

0: पर हस्ताक्षर किए। 16 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत से ये स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे। नई दिल्ली में जनजातीय कार्य मंत्रालय की सचिव रंजना चोपड़ा ने कहा कि इन विद्यालयों के विद्यार्थी आईआईटी और नीट प्रवेश परीक्षा में बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं।
1: इस साल जितने भी हमारे 500 से ऊपर स्कूल हमारे ऑपरेशनल हैं, उनमें से 450 से अधिक बच्चे आईआईटी जेईई एडवांस क्वालिफाई किए हैं और 350 से अधिक बच्चे नीट करे हैं। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो बच्चे एडवांस क्लियर करे हैं और नीट क्लियर करे हैं, वो जरूर किसी न किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। हौसी हमले की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नई चेतावनी हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में आज मक्का, जेद्दा और तैफ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हौसी विद्रोहियों ने आज दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैज प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए हैं। यमन में नए सिरे से शुरू हुए इस लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका की सराहना की है। श्री ग्रीन ने क्वाड संगठन की बढ़ती सक्रियता पर बल दिया। श्री ग्रीन ने भारत के राजनयिक नेतृत्व, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की भूमिका की प्रशंसा की। भारत ने एचआईवी एड्स के उपचार के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में सहायता के लिए आज बोत्सवाना को 10 टन एंटी रेट्रोवायरल दवाएं भेजी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि इससे भारत के ग्लोबल साउथ साझेदारों के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने की देश की प्रतिबद्धता का पता चलता है। उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने रैपिडो संचालित करने वाली कंपनी रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर गुमराह करने वाले विज्ञापन के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना गलत ट्रेड प्रैक्टिस, गलत अनुबंध और डार्क पैटर्न के लिए लगाया गया है। इसमें राइड कंफर्म होने से पहले राइडर्स से ज्यादा पैसे लेने के लिए कहा जाता था। केरलम के बिजली मंत्री सनी जोसेफ ने कहा है कि राज्य में बिजली की अत्यधिक कमी को देखते हुए सरकार उच्च दरों पर बिजली खरीदने पर विचार कर रही है। उन्होंने बिजली कटौती की समस्या के तुरंत समाधान का भरोसा दिलाया। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता वी मुरलीधरन ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि बिजली कटौती से जनता त्रस्त है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है प्राची प्रिया।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 74,004 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 23,119 पर स्थिर हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 41 पैसे कमजोर होकर 95.96 रुपए पर बंद हुआ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नुआखाई के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि ये पर्व किसान, फसल और भाईचारे का उत्सव है और ये सद्भाव की भावना को मजबूत करता है। ओडिशा के प्रमुख पर्व नुआखाई का अर्थ है नया खाना। इसे धान की नई फसल आने पर मनाया जाता है। दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 19वें ओवर में 7 विकेट पर 148 रन बना लिए हैं। पहले मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया था। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मुकाबला बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही खेला जाएगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिम बंगाल के हिमालय क्षेत्र, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। अगले 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में गरज चमक और तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और सिक्किम समेत पूर्वोत्तर भारत में भी कल तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा, चीन के साथ मुख्य चिंताओं को दूर करने में आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता को मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। भारत ने कहा खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य लाल सागर में बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया लोगों से व्यापारियों को 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेन देन पर लगने वाला 0.4% शुल्क व्यापारियों पर लगेगा लोगों के बीच होने वाले लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा हौसी हमले के अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की और दिल्ली में भारत तथा अफगानिस्तान के बीच दूसरा टी20 क्रिकेट मैच जारी है इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ नमस्कार
4: गुड इवनिंग This is Akashvani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. New Delhi says core concerns of India-China relations should be guided by mutual respect, interest and sensitivity. India says targeting of commercial ships and seafarers in Gulf region is unacceptable, expresses concern on escalating situation in Red Sea. Finance Ministry clarifies charges of 0.4% to be levied on person-to-merchant UPI transactions above 2,000 rupee will be paid by merchants. No charges on person-to-person transactions. Saudi Arabia activates warning in Mecca amid Houthi attack speculations. And in men's cricket, second T20 international between hosts Afghanistan and India underway in Delhi. And now the news in detail. The Ministry of External Affairs has said several issues were discussed during the meeting between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the 18th BRICS summit held in New Delhi recently. Addressing media in New Delhi this evening, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said the Prime Minister referred to India's concerns and underlined that both sides should show sensitivity to each other's core concerns.
5: Several issues came up during the discussions. Prime Minister referred to Indian concerns as well and underlined those that both sides should show sensitivity to each other's core concerns and be guided by the three mutuals, mutual respect, mutual interest and mutual sensitivity.
4: The spokesperson said External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held a meeting with the Saudi Foreign Minister on the sidelines of the BRICS summit. During the meeting, they discussed regional and international developments. Mr. Jaiswal said that the issue of the Houthis was also discussed. There was recently an attack on Saudi Arabia, which India has condemned. Mr. Jaiswal said New Delhi is deeply concerned with the escalation in the situation in the Red Sea region.
5: We are deeply concerned with the escalation in the situation that we see in the Red Sea region. We have condemned the attack on the Saudi sovereign territory, including on civilian infrastructure and economic assets. Such attacks, they undermine regional stability and threaten freedom of navigation through the Bab el-Mandeb. These are unacceptable to us. We hope that there is early restoration of peace and stability in the region. Having said that, let me say that we continue to receive energy supplies from that part of the world.
4: On the attack on commercial vessel MTL Gaia off the coast of Oman, Mr. Jaiswal said targeting commercial shipping, seafarers, civilians and civilian infrastructure in the region is unacceptable to India. When asked about the reward of 70 lakh Pakistani rupees announced by Pakistan on Jaish-e-Mohammed chief Masood Azhar, the spokesperson said such gimmicks and attempts at hoodwinking by Pakistan are not new. He said Pakistan must take concrete action rather than making announcements that are ultimately of no consequence. In Saudi Arabia, civil defense activated emergency alerts in Mecca, Jeddah and Taif today. Alerts had also been issued and lifted in six cities, including Yanbu, Saudi Arabia's main Red Sea oil port. More from our West Asia correspondent.
6: Saudi Arabia today issued fresh emergency alerts in Makkah, Jeddah and Taif in the context of potential Houthi attacks. The alerts were lifted in just a few minutes, with authorities saying the danger had passed. Alerts were earlier issued and lifted also for the city of Yanbu, the main Saudi Red Sea oil port. Monday's Houthi attacks on Khamis Mushayt, Aba and Taif had injured 13 civilians and damaged homes and vehicles in Saudi Arabia.

सात पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:15 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कुछ पुराने फिल्मी गीत भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में।

0: थे मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। अगला गीत इस सूचना के बाद।
1: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
1: डायल करिए 0544529710 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।
0: भोले बिसरे गीत कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, उपहार फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में।

कार्यक्रम समाप्त हुआ। रात्रि के 9:30 हुए हैं और आपका इंतजार हुआ खत्म और हम लेकर आ गए फरमाइशी फिल्मी गीतों का आपके लिए कार्यक्रम।

आपके लिए कार्यक्रम है। मैं लक्ष्मी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं और सबसे पहले आपको सुनाती हूं मुस्कान फिल्म का गीत।

0: निखिल विनय के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे समीर की रचना को। संगीत आवाज थी उदित नारायण के साथ अलका याग्निक की और फिल्म थी मुस्कान। कार्यक्रम का अगला गीत इस संदेश के बाद।
1: नमस्कार, यदि आप रेडियो प्रस्तुति और एंकरिंग में रुचि रखते हैं और अपनी आवाज के माध्यम से श्रोताओं के बीच अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो आकाशवाणी ओबरा आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका।
2: आकाशवाणी ओबरा द्वारा युववाणी कार्यक्रम के लिए असाइनमेंट अर्थात समनुदेशती आधार पर कंपियर एवं अंतरवार्ताकार का पैनल तैयार किया जा रहा है। इसके लिए ओबरा परिक्षेत्र में निवास करने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
1: अभ्यर्थियों का चयन स्वर परीक्षा यानी ऑडिशन और स्क्रीनिंग समिति के संस्तुति के आधार पर किया जाएगा और सफल अभ्यर्थियों का नाम पैनल में शामिल किया जाएगा।
2: ध्यान रहे, यह स्थायी और नियमित रोजगार नहीं है। आकाशवाणी ओबरा अपनी कार्यक्रमगत आवश्यकता के अनुसार ही पैनल में शामिल अभ्यर्थियों को समय समय पर कार्य हेतु आमंत्रित करेगा। प्रत्येक असाइनमेंट के लिए प्रसार भारती के नियमानुसार मानदेय देय होगा।
1: आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की आयु 28 अगस्त 2026 को 18 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही किसी मान्यता प्राप्त

0: विद्यालय अथवा महाविद्यालय से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
1: आवेदन शुल्क 118 रुपए निर्धारित है। शुल्क ऑनलाइन अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से PBBC ऑफ इंडिया प्रसार भारती आकाशवाणी वाराणसी के खाते में देय होगा।
0: आवेदन पत्र के साथ शुल्क जमा करने की रसीद संलग्न करना भी अनिवार्य होगा।
1: इच्छुक अभ्यर्थी सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में आकाशवाणी ओबरा कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं और पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन 28 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
0: और यदि आप व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा करने में असमर्थ हैं, तो आवेदन पत्र डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। पता इस प्रकार लिखें: स्वर परीक्षा युववाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी ओबरा जिला सोनभद्र, पिन कोड नंबर है 231219।
1: तो जुड़िए आकाशवाणी ओबरा से,
0: दीजिए अपनी आवाज को नई पहचान।
2: आकाशवाणी ओबरा से आप सुन रहे हैं आपके लिए कार्यक्रम। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, खूबसूरत फिल्म से। कुमार सानू, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ें और रचना संजय छेल की।

कुमार सानू की आवाज में अभी आप सुन रहे थे दिलवाले फिल्म का गीत। रचना थी समीर की, संगीत नदीम श्रवण का। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं धड़कन फिल्म से। उदित नारायण, अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजें, रचना एक बार फिर समीर की और संगीत नदीम श्रवण का।

0: लीजिए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: आकाशवाणी ओबरा से आप सुन रहे हैं आपके लिए कार्यक्रम, आपके लिए कार्यक्रम का ये आखिरी गीत आंखियों से गोली मारे फिल्म से।

0: अलका याग्निक और विनोद राठौर की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे ये गीत। इसी के साथ आज का आपके लिए कार्यक्रम समाप्त हुआ। एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में हमारे लखनऊ केंद्र से खेल दर्पण कार्यक्रम अनुप्रसारित होगा।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेल दर्पण।
2: कार्यक्रम खेल दर्पण में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपांकर मिश्र। श्रोताओं, खेल का मैदान केवल पदक जीतने की जगह नहीं है, यह सपनों को पहचान देने, अनुशासन सीखने और अपनी सीमाओं को चुनौती देने का भी माध्यम है। भारत में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन इनमें से कितनी प्रतिभाएं सही प्रशिक्षण, संसाधन और अवसर प्राप्त कर अपने सपनों को मंजिल तक पहुंचा पाती हैं? विशेष रूप से छोटे शहरों और कस्बों में अनेक बच्चे ऐसे हैं जिनमें प्रतिभा तो है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि इस प्रतिभा को सही दिशा कैसे दी जाए। इसी महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारा आज का विषय है छोटे शहरों की प्रतिभाएं, सपनों से सफलता तक का सफर। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार संजय वर्मा, जो लंबे समय से खेल जगत को करीब से देखते और समझते रहे हैं। साथ ही हमारी दूसरी प्रतिभागी हैं सीमा विश्वकर्मा, जो कि रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिम्नास्टिक की कोच हैं और जो युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के अपने अनुभव हमारे साथ साझा करेंगी। संजय जी और सीमा जी, आप दोनों का खेल दर्पण कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: संजय जी, चर्चा की शुरुआत हम आपसे करते हैं। जब हम भारतीय खेलों की बात करते हैं तो अक्सर हमारी नजर बड़े शहरों या बड़े प्रशिक्षण केंद्रों और चर्चित खिलाड़ियों पर जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर छोटे शहरों और कस्बों में खेल प्रतिभा की वास्तविक स्थिति आप किस तरह से देखते हैं?
4: आज जहां तक खेलों का सवाल है, पूरी दुनिया में खेल खेल नहीं रह गया है। ये किसी भी विकासशील देश की बात हो, चाहे विकसित देश की बात हो या अर्ध विकसित देश की बात हो, सभी में खेलों की स्थिति बदली है। विज्ञान, तकनीकी, आर्थिक संपन्नता, यूथ पावर, सभी कुछ इसमें समाहित हो गया है और यह ताकत का विषय हो गया है। चाहे ओलंपिक की बात लें, चाहे एशियन गेम की बात लें, इसमें भारत जैसे देश में जहां पे 70% भूभाग छोटे जगह पे है और कृषि प्रधान क्षेत्र से बिलोंग करता है, उसमें है। लेकिन निश्चित रूप से हम बड़े शहरों की तुलना को अगर गौर करें तो छोटे शहरों में या छोटे कस्बों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इसके पीछे की पृष्ठभूमि में अगर जाएं तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे गरीबी भी आता है, आर्थिक कमी भी आती है और खेलों को पढ़ाई के बाद लिया जाता है, यही कारण
2: जी
4: साफ दिखता है।
2: तो संजय जी, क्या हम ये कह सकते हैं कि समस्या जो है वो प्रतिभा की कमी की नहीं है, बल्कि प्रतिभा को पहचानने और उसे सही अवसर देने की है?
4: निश्चित रूप से सर, भारत में कस्बों में, गांव में टैलेंट बहुत ज्यादा है, चाहे किसी विधा को लें। खेल ही नहीं, कई ऐसे विषय हैं जिसमें भारत की प्रतिभाएं हैं, लेकिन वो पूरी तरह से वहीं चूक जाती हैं, क्योंकि जो जिले स्तर पे वो बहुत पहचान नहीं बना पाती हैं या उनको कोई खोजने वाला नहीं है। हम यहीं पे गड़बड़ हो जाते हैं और जो जिला स्तर से कोई चीज नहीं होती है तो आगे देश पे जाने में थोड़ी कठिनाई होने लगती है।
2: जी सीमा जी, अब आप पर आते हैं। आप जो हैं वो युवा खिलाड़ियों के साथ काम करती हैं, तो जब कोई बच्चा पहली बार जिम्नास्टिक सीखने आपके पास आता है तो आप उसमें किन गुणों को देखकर समझती हैं कि इसमें आगे बढ़ने की क्षमता या प्रतिभा है?
3: सबसे पहले तो हम बच्चे का बॉडी फिगर देखते हैं, वो कैसा है, मोटा ना हो, ज्यादा पतला भी ना हो, उसके पैर फ्लैट फुट ना हो, नौकनी ना हो, हाथ पैर सीधे होने चाहिए, टेढ़े नहीं होने चाहिए, ये सब देखते हुए उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी अधिक से अधिक होनी चाहिए, तब हम लोग उसको जिम्नास्टिक के लिए रिकमेंड करते हैं।
2: जी, ये तो हो गई बात उनके शारीरिक क्षमता की। अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या एक अच्छे जिम्नास्ट के लिए केवल शारीरिक क्षमता ही पर्याप्त होती है या आप उसमें कुछ मानसिक तौर पर उसकी मानसिक दृढ़ता या अनुशासन जैसी चीजें भी देखती हैं?
3: मानसिक तौर से भी स्ट्रांग होने चाहिए और फिजिकली भी स्ट्रांग होनी चाहिए,
2: दोनों का समन्वय होना। जी अच्छा संजय जी, क्या आपको लगता है कि आज छोटे शहरों के खिलाड़ियों को मीडिया या अन्य खेल संस्थानों में पहले की तुलना में अधिक पहचान मिल रही है?
4: निश्चित रूप से सर, पहले की स्थिति और अब की स्थिति में बहुत बदलाव आया है। खेलों में जो परिवर्तन हुआ है, आप देखेंगे पहले क्रिकेट या कई ऐसे खेल हैं जिसको एक विदेशी या खेलों या बहुत संपन्न लोगों का माना जाता था, आज गांव से क्रिकेट में निकलने लगे हैं प्लेयर। हॉकी में भी यही स्थिति है, कुश्ती बॉक्सिंग वगैरह में तो पहले से निकल रहे थे, एथलीट भी में आने लगे हैं। इसलिए गाँव का कहीं ना कहीं विकास तो जरूर हुआ है, जब से खेलो इंडिया या इस तरह का स्कीम चला है कहीं ना कहीं असर है, और गाँव से हर खेल में लगभग बच्चे आने लगे हैं।
2: जी अच्छा, किसी भी खिलाड़ी की यात्रा की शुरुआत जो है वो बहुत छोटी उम्र से होती है, लेकिन समस्या ये होती है कि अक्सर जो माँ बाप हैं, माता पिता, यह तय नहीं कर पाते हैं कि बच्चे की अगर रुचि है तो उसे केवल शौक रहने दिया जाए या उसे गंभीर प्रशिक्षण दिलाया जाए।

0: तो सीमा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि किसी भी माँ बाप को कब ये समझना चाहिए कि नहीं, बच्चे में खेल की प्रतिभा है और उसे विशेष प्रशिक्षण दिलाने की आवश्यकता है।
1: बच्चा अगर एक्टिव है, बहुत खेल में रुचि रखता है, तो माँ बाप को चाहिए कि वो उस प्लेटफॉर्म तक ले जाए और जो वो बच्चा खेलना चाहता है उसमें उसका एडमिशन कराएं और ट्रेनिंग दिलवाएं। इसमें माँ बाप का बहुत बड़ा सपोर्ट होना चाहिए। ले जाना और ले आने में बहुत मेहनत लगती है, एक छोटे बच्चों के साथ अकेले नहीं छोड़ा जा सकता है।
0: और साथ ही हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे जिम्नास्टिक है, तो क्या उसमें कम उम्र में शुरुआत करना जरूरी है?
1: जी सर, बड़े होने पे बॉडी स्टिफ हो जाते हैं, 4 साल के बच्चों में लचीलापन होता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छे से, उसको अच्छे से हम लोग करा सकते हैं।
0: जी, यानी कि अगर कम उम्र से करें तो वो बेहतर संभावनाएं उनमें
1: कर
0: होंगे।
1: सकता है।
0: जी संजय जी, दूसरी ओर हम ये भी देखते हैं कि कई माता पिता जो हैं वो पढ़ाई को प्राथमिकता देते हुए खेल को समय की बर्बादी मानते हैं। बड़ा पुराना सवाल है ये, है ना,
2: जी
0: लेकिन हम अभी भी ये नहीं कह सकते कि हम इससे उभर गए हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि क्या ये सोच बदल रही है?
2: नहीं, देखिए सोच काफी बदली है। देखिए भारत, मैंने पहले भी कहा, अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। यहाँ सबसे बड़ी चीज समस्या रहती है रोजी रोटी की। तो जब भी अभिभावक आता है तो सबसे पहले सोचता है कि हमारा लड़का इंजीनियर हो जाए, डॉक्टर हो जाए या किसी पेशेवर उसमें जाए, तो इसलिए खेलों की स्थिति खराब हो जाती थी। लेकिन जब से लीग चलने लगे हैं, जैसे कि आप देखिए IPL चलने लगा, इंडियन हॉकी लीग चलने लगा, इंडियन फुटबॉल लीग चलने लगा, कुश्ती के कमीशन बढ़े, तो पैसे अच्छे मिलने लगे। खेल को जब से पेशा में जोड़ा जाने लगा है, तब से थोड़ी सी स्थिति अभिभावकों की भी बदली है। अब वो देखते हैं कि बच्चों में काफी कुछ अच्छा है खेल के लिए, तो खेल के लिए छोड़ रहे हैं। हालांकि इसमें पर्याप्त सुधार अभी भी जरूरत है, अभिभावकों को थोड़ा सा अभी भी सोचने की जरूरत है।
0: जी सीमा जी, आप जिन बच्चों को प्रशिक्षण देती हैं, स्वाभाविक है कि वो पढ़ाई भी करते होंगे, स्कूल भी जाते होंगे, तो एक प्रशिक्षक के रूप में आप उन्हें करीब से देख रही हैं। आपको क्या लगता है कि खेल और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाया जा सकता है?
1: जी सर, बिल्कुल बनाया जा सकता है, क्योंकि अगर स्कूल और कॉलेज में भी पढ़ाई के साथ साथ खेल का विकास किया जाए तो खेल भी आगे बढ़ेगा और पढ़ाई भी, और उसका मानसिक रूप से भी विकास होगा।
0: जी संजय जी, अब हम आते हैं कि भाई जो छोटे शहर हैं, छोटी जगहें हैं, वहाँ की चुनौतियाँ क्या हैं? तो आपके अनुभव में, आपका एक लंबा अनुभव है, बहुत लंबे समय से आप गोरखपुर और आसपास के खेल और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को भी देखते रहे हैं, समझते रहे हैं, लिखते रहे हैं, तो आपके अनुभव में जो छोटे शहरों के खिलाड़ी हैं उनके सामने सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? खेल इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल सुविधाओं की कमी, या आर्थिक समस्या होती है, या उचित कोचिंग का अभाव होता है, या प्रतियोगिताओं में उन्हें अवसर नहीं मिलते हैं? क्या बड़ी समस्या है उनकी?
2: देखिए बहुत अच्छा सवाल है। खेलों के लिए सबसे अच्छा छोटा कस्बा है अभी भी भारत में। लेकिन होता क्या है कि जब छोटे बच्चे आते हैं या शुरुआत करते हैं, उसी समय थोड़ा सा संसाधनों की कमी होती है, घर वालों का प्रेशर रहता है, रोजी रोटी की चिंता रहती है, इसमें वो गड़बड़ हो जाते हैं। हालांकि सही बात यह है कि छोटे शहरों में भी काफी प्रयास चल रहा है, सुविधाएं कम है थोड़ी, और बड़े शहरों में सुविधाएं बहुत ज्यादा है। पहली बात तो देखिए, खेलों का विकास अगर आप गौर करें तो दो चीजों से सबसे ज्यादा होता है। एक तो स्कूल में अगर स्पोर्ट्स नहीं है तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, या बढ़ सकते हैं तो नाम मात्र का। दूसरा, जिला यूनिट अगर हर खेलों में हॉकी, जिला हॉकी लीग हो या जिला फुटबॉल लीग हो या जिला जिम्नास्टिक संघ हो, जिले स्तर पर अगर प्रयास किया जाए, सुविधाएं दिया जाए, तो अच्छे प्लेयर वहीं पर सर्च हो जाएंगे और वो हमारे प्रदेश, वो हमारे देश दोनों के लिए बहुमूल्य साबित होंगे। इसमें थोड़ी बदलाव की जरूरत है। हालांकि प्रयास किए जा रहे हैं, प्रयास में काफी उन्नति है, लेकिन अभी भी इसमें सुधार की जरूरत है।
0: जी सीमा जी, स्कूल की बात चली है तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि स्कूल की क्या भूमिका है खिलाड़ी को शुरू में ही पहचान कर उसे उचित स्थान दिलाने के, उचित प्रशिक्षण दिलाने में स्कूल की क्या भूमिका है?
1: स्कूल में सर, क्लास 1 से ही खेल को शुरू कर देना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ खेल अनिवार्य विषय होना चाहिए, जिससे कि हमारे देश में और बच्चे खेलें।
0: और एक कोच के रूप में आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या अगर अच्छी खेल सुविधा सिर्फ उपलब्ध करा दी जाए खिलाड़ियों को, तो क्या वो पर्याप्त है, या उसके साथ अच्छी कोचिंग, आधुनिक जो उपकरण हैं वो, अच्छी डाइट, ये सब भी जरूरी हैं?
1: जी सर, अच्छी डाइट और उपकरण के साथ साथ सर उनको मानसिक रूप से विकास के लिए भी जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी है उनके साथ, और एपरेटस अच्छे होने चाहिए। डाइटिंग के लिए तो जिम्नास्टिक में डाइटिंग का कोई रोल ही नहीं है,
0: जी
1: बच्चा वैसे ही स्लिम रहता है, भरपूर ज्यादा से ज्यादा वो डाइट ले नहीं सकता है, स्लिम रहेगा तभी जिम्नास्टिक वो कर पाएगा।
0: जी, और जिम्नास्टिक के जो खिलाड़ी आपके पास प्रशिक्षण पाते हैं, उन्हें आप क्या सलाह देती हैं कि अपनी जीवन शैली में, अपनी जीवनचर्या में किन चीजों को अपनाएं और किन चीजों से दूर रहें?
1: अनुशासन।
0: जी,
1: अनुशासन ही खेल को उड़ान देता है, अनुशासन ही नहीं है तो खेल नहीं सकता, ना तरक्की कर सकता है, दम हो जाएगा।
0: ये बताइए कि आप खुद जिम्नास्टिक की एक बहुत अच्छी खिलाड़ी रही हैं, राष्ट्रीय स्तर पर आपने प्रतिनिधित्व किया है, और गोरखपुर से आप हैं, आपने भी इसी शहर में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और अब आप यहाँ के बच्चों को प्रशिक्षण दे रही है, तो इस पूरे समय को देखें तो आपको क्या लगता है कि जैसे कोई अगर खिलाड़ी गोरखपुर या गोरखपुर जैसे छोटे शहर में प्रशिक्षण ले रहा है तो जो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं उनसे मुकाबला करने के लिए क्या उसे अतिरिक्त मेहनत करनी होती है, क्या करना होता है?
1: सर, सुविधाओं की बहुत अभाव है, जो अच्छे खिलाड़ी हैं वो तो अपना अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर जो गांव के बच्चे हैं या छोटे शहर के बच्चे हैं वहाँ उपकरण के अभाव होने के कारण जिम्नास्टिक के अपराटस ही इतने महंगे होते हैं कि उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है, टैलेंट की कमी नहीं है जिम्नास्टिक में।
0: जी, जो एस्पायरिंग जो बच्चे हैं या जो गार्जियंस हैं, माता पिता हैं, उनके लिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, उनके लिए एक जानकारी की चीज है, आप मुझे बताएं कि अगर कोई बच्चा आपके पास प्रशिक्षण प्राप्त करने आता है तो क्या जो सुविधाएं उसको चाहिए वो आपके स्टेडियम में या जो प्रशिक्षण केंद्र है वहाँ जो उपलब्ध है क्या वो पर्याप्त है या उसे अपने घर पर भी कुछ और व्यवस्थाएं करनी होती है?
1: घर पे तो जिम्नास्टिक की कोई व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, जो स्टेडियम में है उसी व्यवस्था में ही करना होगा।
0: जी, तो यानी कि यह पर्याप्त है, जो आपके पास अगर प्रशिक्षण के लिए आ रहे हैं तो आपके जो उपकरण हैं वहाँ जो सुविधाएं हैं उसका लाभ उठाकर वो कर सकते हैं?
1: कर सकते हैं, पर हमारे वहाँ भी अभी उपकरण उतने अच्छे तो नहीं है।
0: जी,
1: सब पुराने ही है।
0: मतलब ये सवाल पूछने का मेरा आशय जो था वो ये था कि जैसे बहुत सारे खेल हैं, जैसे बैडमिंटन है, जैसे टेबल टेनिस है, तो वहाँ आपको घर पर भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है, जैसे क्रिकेट ही है, महंगे खेल उपकरण होते हैं और आप सिर्फ प्रशिक्षण केंद्र पर डिपेंड नहीं रह सकते, आपके पास अपने व्यक्तिगत उपकरण होने चाहिए। तो मेरा आशा यही था कि क्या जिम्नास्टिक में अगर आपके पास व्यक्तिगत रूप से चीजें नहीं है तो भी क्या वो खेला जा सकता है?
1: नहीं सर, जिम्नास्टिक के उपकरण ही इतने महंगे आते हैं कि वो आपको उपलब्ध ही नहीं करा सकते।
0: जी जी जी,
1: गद्दे पे अगर आपने एक गद्दा भी खरीद लिया तो एक गद्दे पे आप जिम्नास्टिक नहीं करा सकते।
0: तो यह एक उत्साहजनक बात है कि मतलब आप प्रशिक्षण केंद्र के सहारे भी आप जिम्नास्टिक का खेल सीख सकते हैं, उसके लिए स्वयं से आपको कोई बहुत
1: तो सबसे बड़ा रोल कोच का होता है।
0: कोच का है। जी,
1: कोच नहीं तो जिम्नास्टिक बच्चा कर ही नहीं सकता।
0: जी, यही मुझे जानना था कि बाकी खेलों की अपेक्षा मुझे लगता है कि यह एक उत्साहजनक बात है।
1: वो टच बॉडी गेम होता है।
0: जी,
1: मतलब हाथ से हाथ देना, सब कुछ करना, करके ही सब कुछ किया जा सकता है।
0: जी जी जी, तो सबसे बड़ी भूमिका प्रशिक्षक की है, और अगर अच्छा प्रशिक्षक है तो आपके पास व्यक्तिगत रूप से चीजों की आवश्यकता नहीं है, आप उसके संपर्क में रहें, उसे प्रशिक्षण लें और आप अच्छा कर सकते हैं, है ना, जो कि जिम्नास्टिक को एक आकर्षक खेल बनाता है। संजय जी, अब आप पर आते हैं कि आपको क्या लगता है कि खेल सुविधाओं का विकास पहले तो महानगरों तक ही सीमित था, क्या अब ये छोटे शहरों तक आ रहा है, क्या जो सुविधाएं हैं खेलों की छोटे शहरों में उपलब्ध हो रही हैं?
2: एक्चुअली विकास तो जरूर है, पहले की तुलना में हम लोग उत्साहवर्धन स्थिति में आए और प्रैक्टिस चल रहे हैं, लेकिन वास्तव में अगर आप देखिएगा जीवन में किसी भी विभाग में, अगर आप पढ़ाई को भी ले लें तो बहुत अच्छा बच्चा इंटेलिजेंट है तो जरूरी नहीं कोई बहुत बड़ा अधिकारी हो ही जाएगा, जब तक आप कोचिंग नहीं करते हैं तो, या एकेडमी नहीं है तो। अब वो जवाना गया, अगर अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित होना है तो आपको स्पोर्ट्स एकेडमी या स्पोर्ट्स क्लब या स्पोर्ट्स एसोसिएशन को भी बहुत आगे आना होगा, तभी हम आ सकते हैं। सही बात यह है भारत में जो सच्चाई है कि स्पोर्ट्स एकेडमी की फीस बहुत ज्यादा है, जो दिल्ली, बम्बई, मद्रास बड़े शहरों में है, उसमें कोई छोटा मोटा आदमी एफोर्ड नहीं कर सकता है, 40,000 रुपया, 50,000 रुपया से ज्यादा ही है, इसमें गांव का आदमी कैसे इसको कर सकता है, ये बड़ा दुर्लभ चीज है भारत के व्यवहारिक दृष्टिकोण से सोचे तो। हाँ, ये हो सकता है कि जिले स्तर पर भी थोड़ी सी एकेडमी या सुविधाओं को दी जाए उपलब्ध, कुछ सरकारी लोग उपलब्ध कराएं, कुछ प्राइवेट लोग उपलब्ध कराएं, हम आप भी सुधरें तो खेल सुधरेगा।
0: किसी भी खिलाड़ी की सफलता के पीछे केवल उसका अपना परिश्रम नहीं होता बल्कि मेरा मानना है कि परिवार की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो सीमा जी, विशेष रूप से जो जिम्नास्टिक जैसा खेल है जहां प्रशिक्षण लंबा होता है और बहुत मेहनत वाला होता है, तो वहां माता पिता को बच्चों को किस तरह का सहयोग प्रदान करना चाहिए?
1: सहयोग ये है, हम उनसे यही अपील करेंगे कि उनको टाइम से ले जाएं, टाइम से ले जाएं, क्योंकि अगर एक दिन भी गैप होता है अगर बच्चे का जिम्नास्टिक में तो एक हफ्ते का समझ लीजिए प्रैक्टिस खराब, इसलिए गैपिंग नहीं होना चाहिए।
0: संजय जी, खेल पत्रकार के रूप में आपने सफल खिलाड़ी

0: स्थान तक पहुंची, जो एक बहुत बड़ा स्थिति है। और लड़कियां प्रैक्टिस भी कर रही हैं, अच्छा, इसमें कोई शक नहीं कि हम लोग बदल रहे हैं, लेकिन अभी भी थोड़ी जरूरत है सुविधाओं की।
1: अच्छा, अब आप दोनों से मैं ये जानना चाहूंगा कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि माता पिता अपने बच्चे के शुरुआती प्रदर्शन देखते हैं और देखकर जब वो बच्चा बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा होता है तो उसे बहुत जल्दी वो परिणाम चाहने लगते हैं, ठीक है ना? तो क्या यह खिलाड़ी पर अतिरिक्त मानसिक दबाव नहीं पैदा करता है यह प्रवृत्ति अगर माता पिता की है तो?
0: निश्चित रूप से सर, ये देखा जाए तो खेल में माँ बाप का रोल बहुत बड़ा है। माँ बाप हुआ, गार्जियन हुआ, एनवायरमेंट हुआ, इस सभी का कोऑर्डिनेशन अगर अच्छा है तभी आप खेल सकते हैं। क्योंकि आज के एज में होता क्या है, सब लोग पढ़ाई के लिए भाग रहे हैं, फीस बढ़ रहे हैं और एजुकेशन के प्रति उसमें एक लगा बहुत कुछ हो जाएगा, वो अभी थोड़ी कमी है हम लोग की सोच में। बच्चा खेल भी कह रहा है तो व्हाट्सएप पे खेल रहा है, ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। ये स्पोर्ट्स से दूर है, ग्राउंड से दूर हो जाता है और भारत में इसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। ज्यादातर लोग मोबाइल पे गेम खेलते हैं। अगर ग्राउंड पे जाके वही बच्चा एक बार अगर वो 400 मीटर का दौड़ हल्का हल्का कर ले तो शायद जीवन में बहुत सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो गार्जियन का भी माइंडसेट थोड़ा बदलना पड़ेगा। पढ़ाई के अलावा बहुत चीजें हैं, हालांकि खेल में भी बहुत चीजें हैं। अब खेल के भी जो सब्जेक्ट हैं बढ़े हैं, कमेंटेटर आप हो सकते हैं, स्पोर्ट्स क्रिटिक हो सकते हैं, प्लेयर हो सकते हैं, कोच हो सकते हैं, स्पोर्ट्स के स्टैटिस्टिकल अफसर हो सकते हैं, इसमें बहुत डाटा बढ़ा है। तो खेलों के प्रति लोगों को आम उजान जो आम लोगों का आना चाहिए।
2: पेरेंट्स सोचते हैं कि तुरंत हमको रिजल्ट,
1: जी यही मैं जानना चाह रहा था,
2: तुरंत रिजल्ट नहीं मिल सकता, क्योंकि बच्चा जब मेहनत करेगा धीरे धीरे धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगा, तुरंत रिजल्ट नहीं दिया जा सकता स्पोर्ट्स में। आप पढ़ाई करते हैं तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाएगा, पर खेल ऐसा चीज है कि तुरंत आपको रिजल्ट है, उस पर मेहनत करना पड़ेगा।
1: तो गार्जियन को यह समझना चाहिए कि इसे समय देना होगा, है ना? ये अच्छा कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत परिणाम आने लगेंगे।
2: और नहीं डालना चाहिए मानसिक रूप से कि तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, बेकार कर रहे हो, कुछ और करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, नहीं, इस सब चीजों के लिए पेरेंट्स को बिल्कुल भी
1: सीमा जी, अब ये बताइए कि भाई आप प्रशिक्षण दे रही हैं तो आपको जब प्रतिभाशाली बच्चा मिलता है, उनकी पहचान हो गई, प्रशिक्षण शुरू हो गया, आपके स्तर पर प्रशिक्षण उनका हो भी गया, तो अब जब खिलाड़ी को आगे जाना है, राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेना है, तो उसका रास्ता क्या है, कैसे वो आगे जाते हैं?
2: देखिए, पहले तो जिला स्तरीय प्रतियोगिता होती है, मंडल स्तरीय प्रतियोगिता होती है, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होती है,
1: जी
2: उसमें बच्चा सीढ़ी बाई सीढ़ी सिलेक्ट होता है। जब मंडल स्तर पर बच्चा सिलेक्ट होता है तो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जाता है, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जब बच्चा सिलेक्ट होता है फिर राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता में जाता है, राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता में जब सिलेक्ट होता है इंटरनेशनल के लिए बच्चा जाता है। और जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं एक कैंप लगता है, सारे बच्चे वहाँ इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर एक कोच नियुक्त होता है जो उन बच्चों को ट्रेनिंग देता है, ट्रेनिंग देने के बाद उनका इंटरनेशनल प्रतियोगिता में प्रतिभाग कराया जाता है।
1: तो अगर कोई बच्चा जिला स्तर पर हुई प्रतियोगिता और उसमें उसने अच्छा किया तो आगे बढ़ने के अवसर कितने बच्चों को मिलते हैं, फिर राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में जिले स्तर से कितने खिलाड़ी जा सकते हैं?
2: हमारे में तो सर 6 जाते हैं,
1: जो शीर्ष पर 6 लोग रहे हैं उन्हें आगे भेजा जाता है, और शायद ऐसा ही कुछ राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में भी होता होगा।
2: सभी राज्य स्तर, राज्य स्तर हमारी जिम्नास्टिक में शॉर्ट है और गेमों में,
1: और जो प्रतियोगिताएं होती हैं चाहे जिले स्तर पर हो चाहे राज्य स्तर पर हो, तो इसमें कैटेगरी किस तरह की होती है, मतलब महिला और पुरुष के अलावा उम्र को ध्यान में रखकर किस तरह की कैटेगरी और बनाई जाती
2: है? कैटेगरी अंडर 12 होता है,
1: जी
2: मतलब 14 साल के बच्चे से नीचे, उसके बाद 17 साल के बच्चे के नीचे का होता है, 19 होता है सर,
1: अच्छा
2: 19 साल के बच्चों को नीचे का, 3 श्रेणियों में जिम्नास्टिक कराया जाता है।
1: एक जो महत्वपूर्ण सवाल है विशेष रूप से जिम्नास्टिक के खेल में, वो है चोटों से बचाव, है ना? जिम्नास्टिक जैसे खेल में प्रशिक्षण के दौरान चोट लगने की आशंका रहती है, तो आप अपने खिलाड़ियों को किस तरह से इसके लिए तैयार करती हैं कि चोटों से बचे और चोटों से उबरें?
2: उनको सबसे पहले सर बेसिक चीजों करा के उनको मजबूत किया जाता है जिससे उनको चोट कम से कम आए, और पिट की व्यवस्था होती है, जो नए एलिमेंट सीखते हैं बच्चे, पिट अगर नहीं है तो डेंजरस हो सकता है सर।
1: पिट बताएं मुझे, पिट क्या है
2: सर? फॉर्म भरे एक गड्ढे होते हैं,
1: अच्छा,
2: उसमें फॉर्म भरे रहते हैं सर।
1: ओके।
2: और बच्चा अगर हाई बार वगैरह कर रहा है तो गिरता है तो उस फॉर्म में चला जाता है, तो उसको चोट नहीं लगती है सर। वो बेसिक चीज है सर, ये सारी चीजें, तब जाके वो दूसरे जगह मैट पे परफॉर्म कर सकता है।
1: संजय जी, आप मीडिया कर्मी भी हैं, लेख वगैरह आप लिखते रहे हैं, तो ये बताइए कि किसी खिलाड़ी की जब सफलता प्राप्त करता है राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो हम देखते हैं कि मीडिया अक्सर उसकी उपलब्धियों तक ही सीमित रहता है, उस पर खूब चर्चे होते हैं।

0: लेकिन जो उसकी पूरी यात्रा रही है या उसकी जो चुनौतियां रही हैं उनको सामने नहीं लगता है। आपका क्या कहना है?
1: एकदम सही बात है सर। जब आदमी एक जनरल प्लेयर, सामान्य खिलाड़ी जिला से गुजरता है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराता है तो वो पूरी तरह से लाइमलाइट में आ जाता है, मीडिया उसको लाइमलाइट में लेने लगती है। लेकिन वही खिलाड़ी जिला में कैसे परेशान हुआ, या बाधा उसको कितनी आई, या बारीक बारीक रूप से अड़चन कैसे हुआ, या फोल्डिंग में उसको कैसे प्रॉब्लम आई, जल्दी लिखा नहीं जाता है। तो मैं तो हमेशा इसका वो मुरीद रहा हूं कि प्लेयरों को रोल मॉडल के रूप में यूज करना चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी बनना बहुत कठिन है। और अगर आप रोल मॉडल बनाएंगे, जैसे हमारे यहाँ पॉलिटिशियन को बनाया जाता है, उसी तरह से उनको भी आप रोल मॉडल बनाएं, तो ये खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन होगा। कुछ नहीं कर सकते तो टूर्नामेंट को देखें, कोई टूर्नामेंट के लिए अगर स्पॉन्सर्ड में आता है तो हम जो मदद हो सकता है करें, या किसी खिलाड़ी को ही मदद करें। इतना अगर मोरल सपोर्ट है तो देश शायद नहीं वर्ल्ड तो एशिया के हम चुनिंदा दो तीन कंट्री में शामिल हो जाएंगे।
0: अच्छा, एक सवाल जो आज आधुनिक समय में उठ खड़ा हुआ है कि पहले के समय में हम देखते थे कि भाई बच्चों को क्या करना होता था, पढ़ाई करनी होती थी और बाकी के समय जो बचा उसमें खेलकूद करना होता था। लेकिन आजकल अनिवार्यतः बच्चों को जो है, जो डिजिटल दुनिया है, जो सोशल मीडिया है या मोबाइल है, कंप्यूटर है, उसमें उनको सहभागिता वो करते भी हैं और कुछ कारणों से उन्हें करनी पड़ती भी है और उसमें उनका काफी समय जाता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, खेल को जीवन का हिस्सा क्यों बनाया जाए, खेलों में प्रतिभा क्यों किया जाए, क्योंकि समय तो कम हो गया है।
1: देखिए, खेल जो है एक्चुअली मेंटल स्टेटस के लिए भी जरूरी है, और खेलकूद को अगर ये माना जाए कि सिर्फ खेल है तो हम यहीं पे गलती करते हैं। क्योंकि अच्छा खेल खेल रहे हैं तो जरूरी नहीं कि किसी टीम को परफॉर्म कर रहे हैं, हम शरीर से स्वस्थ रहेंगे। और कहा गया हेल्थ इज वेल्थ, अगर स्वस्थ है शरीर तो स्वस्थ मन उसी में निवास भी करता है। यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय ऋषि विवेकानंद को देखें अगर, तो उन्होंने भी कहा था एक बार कि हमें अगर गीता पढ़ने के बजाय फुटबॉल खेलने दिया जाए तो हम ज्यादा हर्षित होंगे। एक लाइन में ही सब कुछ निहित है। जबकि होता क्या है, हम लोग खेल को खेल के नजरिए से देखते हैं, और एक खिलाड़ी कितना तेज होता है ब्रेन का, इसको हम लोग नहीं देखते हैं। फिर पूरे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव फ्लक्चुएशन आते हैं, उसको भी झेलने की क्षमता रखता है कोई उतार चढ़ाव हो। इसलिए मेंटल स्टेटस को तो स्पोर्ट से जोड़ना ही चाहिए। और सही पूछिए, आज के एज में कई देशों में ऐसा है साइकिलिंग बहुत मस्त है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। भारत में साइकिलिंग कम, अभी चीन को ही आप देखें तो चीन में कहा गया है पांच आदमी है तो पांच साइकिल बाहर खड़े रहते हैं, और उनके यहाँ कोई नहीं है। उनके यहाँ अगर आपको 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जाना है तो आपको पास इशू कराना पड़ेगा पेट्रोल के लिए। लेकिन हमारे यहाँ अगर कोई साइकिल लेके जाता है तो लोग हंसने लगते हैं, या इसको आर्थिक रूप से जोड़ने लगते हैं। क्योंकि सही है कि मेंटल स्टेटस के लिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन का होना बहुत जरूरी है।
0: यानी कि यूं कहें तो गलत नहीं होगा कि आज के समय में जब हम में अधिकांश समय जो है कार्यालयों में बैठकर या मोबाइल पर टीवी पर बैठकर काम करना होता है, तो खेलों का महत्व एक तरह पहले से भी बढ़ गया
1: जी,
0: है ना।
1: जी,
0: खेलना जो है आज के समय में और ज्यादा जरूरी
1: जी,
0: है
1: जी, बहुत जरूरी है। आज के जो स्थिति है
0: जी,
1: वो तनाव का ये है हर, अच्छा ये इंडिया की बात नहीं, पूरे वर्ल्ड हर तरह का स्ट्रेस है। उसमें अगर मानसिक रूप को आप सुदृढ़ होना चाहिए पहले तो आपको ग्राउंड पे आना पड़ेगा। अगर ग्राउंड पे भी आप नहीं आ सकते हैं तो कम से कम योगा कीजिए, घर में एक्सरसाइज 15 मिनट का कीजिए, आप देखिए आपको कितना अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि इंडिया में ही है ऐसा, इंडिया में भी दो तीन स्टेट है, जैसे महाराष्ट्र आप ले लें, योगा वहां सब लगभग 75% लोग करते हैं, लेकिन बाकी स्टेट में ऐसा नहीं है। तो आपको शारीरिक चुस्ती के लिए कुछ नहीं तो करना ही करना पड़ेगा, और डाइटिंग पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा।
0: सीमा जी, अगर कोई बच्चा प्रतिभाशाली है और वो खेल में करियर बनाना चाहता है, आगे जाना चाहता है, तो आप क्या सलाह देंगे, उसे किन बातों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए?
2: अपनी प्रैक्टिस पर उसको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, समय देना चाहिए, और अपना शेड्यूल बना के प्रैक्टिस करना चाहिए।
1: शेड्यूल
2: नहीं तो बच्चा आगे नहीं जा सकता।
0: और ऐसे जो बच्चे हैं जो प्रतिभाशाली हैं और जो आगे इस खेल में, किसी भी खेल में जाना चाहते हैं, तो उनके माता पिता के लिए आपकी क्या सलाह होगी?
2: उनके माता पिता की यही सलाह है कि बच्चों को मोटिवेट करें, खेलें, घर से बाहर निकलें, मोबाइल थोड़ा सा कम देखें और स्पोर्ट्स एक्टिविटी पर ज्यादा ध्यान दें।
0: अब कार्यक्रम के अंतिम खंड में हैं हम, और जो है सीमा जी, थोड़ी सी जानकारी मैं आपकी जीवन यात्रा पर भी जानना चाहूंगा, क्योंकि एक छोटे शहर से निकलकर आप भी राष्ट्रीय स्तर तक गई हैं और आपने अच्छा प्रदर्शन किया है और आज एक जानी मानी कोच हैं आप, तो आपकी यात्रा कैसी रही राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने में, आपको किन संघर्षों

0: चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
1: मैं यही गोरखपुर की रहने वाली हूँ और मेरा एडमिशन गोरखपुर वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में क्लास 6 से हुआ, जिससे मेरा वहीं से करियर बनना स्टार्ट हुआ। मेरे कोच डोरीलाल सर थे और उसके बाद सविता मैडम, ये दो कोच हमारे हमको आगे बढ़ाने में बहुत मदद किए हैं सर। स्पोर्ट्स कॉलेज के हाई स्कूल पास करने के बाद मैं लखनऊ छात्रावास में एडमिशन लिया, उसके बाद वहाँ से बीए कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद मैं पटियाले गया, पटियाला में जिम्नास्टिक का डिप्लोमा की। फिर वहाँ से आने के बाद सर मैं एक साल तक वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में कोच रही, और उसके बाद मैं बीपेट करने गई, और फिर मैं बीपेट करके आने के बाद मैं रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में कोच नियुक्त हो गई।
0: इस यात्रा में आपके सामने सबसे बड़ी जो है चुनौतियां क्या रही, किन संघर्षों का आपको सामना करना पड़ा?
1: पहले तो स्पोर्ट्स कॉलेज में भी व्यवस्था अच्छी नहीं थी, वहाँ भी मैट के अभाव था, प्रेटस का अभाव था, अच्छे मैट भी नहीं थे, अच्छे प्रेटस भी नहीं थे, लेकिन हमारे कोच बहुत अच्छे थे, मैम और सर बहुत अच्छे थे, जो हम लोग को मोटिवेट करते थे उसी अप्रेटस पे, वो भी हम लोग के साथ उतने ही वक्त देते थे और लगे रहते थे हमको आगे बढ़ाने के लिए। कभी हम लोग का हाथ फट जाता था, कभी चोट लग जाता था मैट ना होने के कारण, तो हम लोग को भी बहुत उसका सामना करना पड़ा सर। पर स्टार्टिंग वो स्पोर्ट्स कॉलेज में स्टार्टिंग से था।
0: अच्छा, एक महिला खिलाड़ी के रूप में संक्षिप्त में आपसे जवाब चाहूंगा कि महिला खिलाड़ी के रूप में आपको अपने जीवन में, अपनी खेल यात्रा में किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा जो पुरुष या पुरुष जो खिलाड़ी हैं उन्हें नहीं सामना करना पड़ता है, क्या अलग रहा?
1: पुरुष महिला खिलाड़ी के साथ जाते हैं तो थोड़ी बहुत सारी परेशानियां होती हैं जो नहीं कह पाते हैं, और डांट भी पड़ती है कि तुमने नहीं किया, क्यों नहीं किया। अब हम लोग उससे बोल नहीं पाते अपनी बातें, मतलब जेंट्स को उससे कह नहीं पाते, ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है।
0: तो ऐसा हो सकता है कि जो महिला खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रही हो तो उनका जो सपोर्ट स्टाफ है, कोच है, उसमें एक महिला भी रहे।
1: महिला भी जाए तो बच्चा जो है अपनी परेशानी उससे कह सकता है, वो जाके कोच से बता सकता है
0: जी
1: ऐसी प्रॉब्लम है।
0: अच्छा, चलिए अब चलते चलते आप दोनों से मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर इस समय कोई युवा खिलाड़ी या उसके माता पिता हमें सुन रहे हैं रेडियो सेट पर, और उनके मन में ये सवाल है कि क्या छोटे शहर से निकलकर राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बना जा सकता है, क्या अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीता जा सकता है, आप क्या कहना चाहेंगे? संजय जी, सबसे पहले आप बताएं।
2: निश्चित रूप से देश आगे गया और अब छोटे शहर से ज्यादा प्लेयर आ रहे हैं बड़े शहरों की तुलना में। थोड़ा सा संसाधन अगर बढ़ा दिया जाए, या स्पोर्ट्स अकेडमी बढ़ा दिया जाए, या कोचिंग कैंप बढ़ा दिया जाए, रिजल्ट और भी अच्छा होगा। और गार्जियन को इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि खेल एक ऐसा विषय है जो तुरंत इसका परिणाम नहीं आता है, इसलिए उनको थोड़ा सा अपने पर प्रतिलोम बिठाना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव को समन्वय देना पड़ेगा, बच्चे को सपोर्ट करना पड़ेगा। बच्चे को डांटना नहीं है तो हम खेल में अपनी गतिविधि और भी सक्रिय होकर तेज हो जाएंगे और शायद भारत एशिया में एक शक्तिशाली देश हो जाए।
0: जी सीमा जी, आप क्या कहेंगी?
1: सर, हम ये कहेंगे कि अगर स्पोर्ट्स को बढ़ाना है तो जिला स्तर, मंडल स्तर, राज्य स्तर के कोचेस को बढ़ाया जाए, अच्छी कोचेस की नियुक्ति की जाए, जिससे खेल का स्तर बढ़ सके।
0: तो श्रोताओं, बात बिल्कुल स्पष्ट है, प्रतिभा चाहे किसी महानगर में जन्म ले या किसी छोटे शहर और कस्बे में, उसे आगे बढ़ने के लिए चाहिए सही दिशा, निरंतर अभ्यास, अनुशासन, परिवार का विश्वास और अवसर। आज की चर्चा ने यह भी बताया कि खेल केवल पदक जीतने का माध्यम नहीं बल्कि आत्मविश्वास, अनुशासन और बेहतर जीवन की आधारशिला भी है। मैं अपने दोनों अतिथियों, खेल पत्रकार संजय वर्मा और रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम गोरखपुर की जिम्नास्टिक कोच सीमा विश्वकर्मा का आभार व्यक्त करता हूं कि आप दोनों ने अपने अनुभव और विचार हमारे साथ साझा किए। श्रोताओं, आप सुन रहे थे आकाशवाणी का कार्यक्रम खेल दर्पण, और इस परिचर्चा का विषय था छोटे शहरों की प्रतिभाएं सपनों से सफलता तक का सफर। मैं हूं दीपांकर मिश्र, आपसे फिर मुलाकात होगी खेल दर्पण में एक नए विषय और नई खेल चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे FM 102.7 पर, हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं आपकी बात कार्यक्रम, यानी कि फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम।

आशा भोसले की आवाज में अभी आप सुन रहे थे उमराव जान का ये गीत। अभी आप सुन रहे हैं आपकी बात कार्यक्रम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में एक नजर फिल्म से।

0: अभी आप सुन रहे थे सुरेश वाडकर और भूपेंद्र सिंह की आवाजों में मौसम फिल्म का गीत। रचना थी गुलजार की। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
1: डायल करिए 0544529710 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।

अभी आप सुन रहे थे तवायफ फिल्म का गीत, क्षमा कीजिएगा इसे, किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजों में। अभी आप सुन रहे थे साहिर लुधियानवी की रचना को, संगीत था लक्ष्मीकांत पैरेलाल।

0: अभी आप सुन रहे थे तवायफ फिल्म का गीत महेंद्र कपूर की आवाज में। इसी के साथ आपकी बात कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज ये जानकारी दी।
2: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं।

0: ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइला हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। होती हमलों की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नई चेतावनी, हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में आज मक्का, जेदा और तरफ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हुती विद्रोहियों ने आज दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैज प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए। यमन में नए सिरे से शुरू हुई लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच UPI से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2,000 रुपए तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। 2,000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यवसाय लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रुपए और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रुपए प्रति लेन देन होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइलों से लेकर राडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
1: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर राडार तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटीज साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए DRDO आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को ही कोई नकार नहीं सकता।
0: भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में आयोजित 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग ले रहा है, जो 19 सितंबर तक चलेगा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश कर रहे हैं। सम्मेलन में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के 32 पीठासीन अधिकारी और 18 सचिव भी शामिल हैं, जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सदस्य हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज 17वीं सदी के कवि संत मकूल दास महाराज की स्मृति में भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा जारी स्मारक डाक टिकट का विमोचन किया। श्री सिंधिया ने संत मलूकदास को आध्यात्मिक शक्ति का वाहक बताया और देश में मुश्किल दौर में भी सनातन धर्म की मूल भावना को बनाए रखने में उनके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, उसके पीछे केवल आर्थिक विकास नहीं बल्कि गहरा सांस्कृतिक आत्मविश्वास भी है, जो दूसरे देशों से उसे अलग बनाता है। दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में भारत ने 14 ओवर और 5 गेंद में 3 विकेट खोकर 163 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:05 हुए हैं। अब संपन्न होती है हमारी आज की ये सभा। कल सुबह 5:50 पर अपने प्रसारण के साथ हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।